0: बताते हैं, इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
1: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया,

0: जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
1: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
2: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृण तक अपराध ना कर पाए।
3: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहां कहां पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
1: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन भी फुल है। एक ओर जहां ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई हुई है, वहीं फाइनल एसआईटी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3

0: सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
1: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब कांग्रेस में भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिसने आलाकमान की टेंशन को बढ़ा दिया है, चन्नी गुट की बगावत के बीच केंद्रीय नेतृत्व राजा वडिंग को हटाने के मूड में नहीं दिख रहा।

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: भाई ये नीचे रख ले यार।
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं?
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका आपसे, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: मुंबई के चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत के मामले में बीएमसी ने जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। हादसे के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही साथ साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। सवाल अब यह है कि क्या मुंबई वालों की जान की कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए हैं?

0: अब की बार मुंबई में मॉनसून हादसों की बाढ़ लेकर आया। बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है। बारिश से हुए हादसों की चर्चा विधानसभा तक में हुई। स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेकर बीजेपी विधायक अमित साटम तक ने लानत मलानत और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही, लेकिन नतीजा क्या निकला? सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी। इस हादसे में 11 साल के छात्र भान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे।
1: मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर दोपहर से ही बारिश हो रही थी और स्कूल से भरी हुई बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यहां पर एक पेड़ था जो उस बस पर गिर गया। इस हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं, तो वहीं 4 बच्चों को इलाज के लिए जैन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, तो वहीं एक 11 वर्षीय बच्चे की इसमें मृत्यु हो गई है। काफी दर्दनाक हादसा था, बारिश हो रही थी, कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई थी। ये चेंबूर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पेड़ गिरा था, यही वो पेड़ था जो गिरा। फिलहाल बस को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। बहुत ही विशाल ये पेड़ था जिसे काट के एक तरफ किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी इस पेड़ को हटाने का काम शुरू है। प्रशासन से प्रशासन का राहत कार्य जो है वो यहां पर पहुंच चुका था, लेकिन इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग जो पूर्व एमपी हैं यहाँ के राहुल चौहान उनके द्वारा की गई है।
0: लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। इस दुखद घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविक रोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। साथ ही साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने भी नाराजगी जताते हुए एक न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन पोस्ट करते हुए लिखा, बिहान की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी का कहना है कि कोई नहीं। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी चेंबूर हादसे की जांच रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति वाली कार्रवाई मंजूर नहीं है।
2: उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा डे वन से एक ही स्टेटमेंट था, ये जो रोड बने हैं ये मुंबई कर के लिए बने। मुंबई कर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहां पे रोड बने हैं, साइड ड्रेन भी बने हैं, लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था, तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर है उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए। गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा।
0: राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य भर में सड़क किनारे लगे सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाना चाहिए। बीएमसी की रिपोर्ट पर मेयर की आलोचना का समर्थन करते हुए विपक्ष के नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सिर्फ असहमति जताना काफी नहीं है। पेडनेकर ने कहा कि मेयर को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वहीं बीएमसी में शिवसेना के ग्रुप लीडर अमेक होले ने कहा कि चेंबूर हादसे की रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं कि जानकारी बाहर कैसे आई। उन्होंने भी पेड़ गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
3: जो जो ऑफिसर्स के नीचे से ये पूरा कंप्लेंट जो वो झाड़ के बारे में गया है उनकी इंक्वायरी होके उस पे ऊपर जो कुछ निर्णय आ सकता है वो महानगर पालिका ने देना चाहिए।
0: वहीं विरार में पानी भरे गड्ढे मौत का जाल बनते जा रहे हैं। ऐसे गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। विरार में बारिश भले थम गई, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरार पश्चिम में जकात नाका के पास सड़क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ प्रवीण नालावड़े, पालघर आज तक।
4: पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है और इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबरदस्ती भी लगातार जारी है। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
5: कड़ी लेके।

0: क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाए? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, अब क्या करेंगे मुनीर और शहबाज?
1: ये जो दहशत करती है,
0: पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आ गई, सबसे बड़ी बगावत हो गई, आटे बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर आई।
2: कहना चाहूंगी कि अगर हम दहशत गर्द होते तो ये लाखों के मजमे में लोग और लड़कियां, ये खवातीन अपने गोद वाले बच्चों को इधर लेके आती, ये कोई दहशत गर्द है, आके प्लीज चेक कर दिया जाए।
0: क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत और क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलाकोट से उठती ये आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कपा रही। पीओके की ये बगावत बता रही कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन ने आसिफ मुनीर की चूले हिला दी, वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के इस बगावत में कोई कमी नहीं आई। पिछले दो हफ्तों से पीओके में हुए इन प्रदर्शनों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर समेत बहुत से इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके वालों को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ पिछले 4 साल से पीओके सुलगा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद चुनाव से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पीओके की असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए हुए लोगों के नाम पर आरक्षित हैं। आरोप ये है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठा देती है और इन 12 सीटों के द्वारा ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। इसीलिए अब ये डिमांड है कि ये 12 सीटें खत्म करके इन पर पीओके के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। प्रदर्शन की कमान संभाली है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने, और इस कमेटी में शामिल लोग पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की काली कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो दुनिया के सामने आजाद कश्मीर का पाखंडी लेबल लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल पुराने प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ चुके हैं।
3: मौजूद है और उनकी आजादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इसके हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाए, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये की खत्म।
0: रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 80,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब और मंच पर खड़े ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और उनकी गोलियां भी बगावत की आग को ठंडी नहीं कर पा रही। जब किसी अवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के तख्तो ताज इतिहास के कूड़ेदान में बह जाते हैं।
3: और हुक्मरानों से हम कहते हैं कि ना तो लाल से काम नहीं चलेगा, मैं तो लाल से काम नहीं चलेगा। एक आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, दूसरा आता है कहता है फलाह नहीं मान रहा, हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रियासत के शहरी है, रियासत आवाम से है और रियासत आवाम से है और आवाम ही रियासत है, सुपीरियर रियासत आवाम है, आवाम ताकत है और आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी, आवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
0: इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस में महिलाएं और बच्चों के हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों, भारी टैक्स और आटे बिजली की महंगाई के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ ही पीओके में आजादी की मांग को लेकर चल रही बगावत में अब वहां का बच्चा बच्चा शामिल है।
4: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम मारूख और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने याद तक रेजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए हैं अगर वो पीछे ना गए उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शादी कार्ड नहीं मानेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप लोग के पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, मैं आपको आपके पेफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे, क्यों आप लोग पीछे खड़े, हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दें।
0: पीओके में भड़की आजादी की इस आग पर अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारत ने दो टूक कह दिया कि पीओके में जारी ये महाविद्रोह पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण, बुनियादी अधिकारों के हनन और प्रशासनिक जुल्म का नतीजा है।
5: देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज़ शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजन और दवाओं जैसी आवश्यक चीज़ों को रोका गया है, इंटरनेट ब्लैकआउट को लागू किया गया है और निहत्थे नागरिकों पर के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घोर दुर्व्यवहारों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराएगी।
0: ये उबाल बता रहा है कि पीओके की फॉल्ट लाइन एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के नाम पर जो गुब्बारा फुलाया था उसकी पूरी दुनिया के सामने हवा निकल चुकी है। प्रणव उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
9: You're listening to CNBC.
10: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
11: Keep it on smooth jazz.
12: This is Roots Reggae
13: exclusively on TuneIn.
14: This is classic hip hop
15: exclusively on TuneIn.
8: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
16: लैंडस्लाइड हो
12: हुआ था ये लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के बाद को एक्सपेंड करने के बाद, काफ़ी सालों की मेहनत करने के बाद उसको वो सर्वे करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि डैमेज इस तरह का हादसा फिर से ना हो उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ विद्या, पुणे आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फर्नांडिस मार्टिनेज ने किए गोल, अब स्पेन से फाइनल टक्कर। लगातार पांचवें दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, बंदर अब्बास, चाबहार, सिरक में धमाके। ईरान ने कुवैत और बहरीन में दागे ड्रोन मिसाइलें। ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को सीधी धमकी, कहा डेडलाइन देना मुझे पसंद नहीं, ठीक से पेश आओ। सेंटकॉम ने नाकेबंदी तोड़ रहे एक तेल टैंकर पर किया हमला। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक, 2 घंटे तक चला मंथन। अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे के साथ बैठक, सत्र में मुद्दे उठाने को लेकर हो सकती है चर्चा।

आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे 6 ताजा खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले बताएंगे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड को 2-1 से अर्जेंटीना ने हरा दिया है और इसी के साथ अब फीफा के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला होगा स्पेन के साथ। बुलेटिन में दूसरी बड़ी खबर होगी, लगातार 5वें दिन ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तीसरी खबर कि अमेरिकी हमलों के बदला लेने के लिए ईरान ने फिर खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। कुवैत बहरीन में धमाकों की भी खबर है। बुलेटिन में चौथी बड़ी खबर होगी, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस में भी अब हॉर्मुज जैसा संकट गहरा गया है, जाहिर है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। पांचवी खबर ये कि पाकिस्तान में एक बार फिर रोटी के लाले पड़ने वाले हैं, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक आटे की किल्लत दिख रही है। और छठवीं खबर, दिल्ली में कल प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसका असर केंद्रीय कैबिनेट से लेकर के बीजेपी के संगठन स्तर पर पड़ेगा, वो भी तब जब अब से कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहली और बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप। लगातार दूसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस ने 55वें मिनट और लोटारो मार्टिनेज ने 85वें मिनट में गोल किया। मुकाबले की शुरुआत में इंग्लैंड ने बढ़त बना ली थी। मैच के 55 मिनट पर इंग्लैंड की तरफ से एंथनी गॉर्डन ने गोल दागा, इंग्लैंड को बढ़त दिलाई, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने गोल दागकर बराबरी कर ली। 85 मिनट के बाद लोटारो मार्टिनेज ने गोल दागा और फिर अर्जेंटीना को जीत दिलाया। अर्जेंटीना फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी। तो 19 जुलाई की रात महामुकाबला रात 12:30 बजे न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये देखिए, ये फैंस का जश्न है, ये सेलिब्रेशन मोमेंट है और इसी के साथ लगातार दूसरे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है अर्जेंटीना स्पेन के साथ। अब 19 जुलाई को रात 12:30 बजे न्यू जर्सी के स्टेडियम में होगा महामुकाबला, बड़ा मुकाबला। तो फीफा वर्ल्ड कप अब अपने समाप्ति की ओर, और उस समाप्ति से पहले सेमीफाइनल में यानी जो जगह बनाई वो अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया, इसके पहले स्पेन ने हराया, स्पेन ने फ्रांस की टीम को हराया और अब इंग्लैंड की टीम को हरा के अर्जेंटीना फाइनल में स्पेन को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना पहुंच चुकी है। चलिए दूसरी और बड़ी खबर जिसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है, क्योंकि एक वैश्विक संकट फिर अब मुंबई खड़ा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के जंग में लगातार 5वें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका ने 5वें दिन ईरान के अलग अलग शहरों में एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, छावार, सेरिक, हेंगम, ये वो आइलैंड, ये वो इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। बंदर अब्बास, हेंगम आइलैंड पे और सेरिक आइलैंड के पास के दक्षिणी इलाकों में भी अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे हैं, यानी जिन मिसाइलों से अमेरिका ने हमला किए हैं वो भी गिरे हैं। तो ईरान पर लगातार 5वें दिन बड़ा हमला। रविवार को हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गुरुवार की देर रात तक भी, बुधवार की देर रात तक भी जारी रहा। आपको फिर बता दें कि एक बार कैसे हॉर्मुज में नियंत्रण को लेकर के शुरू हुई जंग आखिर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान ने कहा कि नियंत्रण उसका है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने का ऐलान कर दिया। बातचीत बेनतीजा रही और उसी के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं कि कैसे अलग अलग वॉरशिप जो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं उन पर लगातार जो फाइटर जेट वो स्क्रैम्बल कर रहे हैं, रात में ऑपरेशन चला रहे हैं। और तस्वीरें भी सेंटकॉम जारी कर रहा है जहां वो ये दिखा रहा है कि कैसे वो ईरान के महत्वपूर्ण उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अमेरिका की चुनौती ये है कि उसकी मारक क्षमता को कम कर सके और लगातार वो ऑपरेशन चला रहा है। वहीं ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेनाओं ने एक तेल टैंकर पर हमला किया है। ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे तेल टैंकर पर अमेरिका ने अटैक किया है। तुरकाओ का झंडा लगा था इस पर, एमटी बेलमा वो टैंकर है और उसे रोका अमेरिकी सेना ने। अमेरिकी सेना ने पहले बयान जारी किया गया था कि ईरान की बाड़ेबंदी है, अब कोई टैंकर ना ईरान जा सकता है ना ईरान से निकल सकता है। उसने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की ये टैंकर कोशिश कर रहा था, उसे चेतावनी दी गई और जब वो टैंकर नहीं माना, नजरअंदाज करने लगा, तब उस पर हेलफायर मिसाइल अटैक किया गया और उसे रोका गया।
तो कुल लड़ाई शुरू हुई थी जब ईरान ने टैंकरों को निशाना बनाया और अब खुद अमेरिका वही कर रहा है, वो भी हॉर्मुज में ऊर्जा टैंकरों को, एनर्जी टैंकरों को निशाना बना रहा है। ईरान की ओर जा रहे एक झंडा लगे टैंकर को उसने हेल फायर मिसाइल दागकर निशाना बनाया है। तो ईरान अमेरिका के बीच जंग को लेकर के ये पांचवा दिन हो चुका है। ईरान जा रहे एक टैंकर को अमेरिका ने मिसाइलों से निशाना बनाया है, ये दिखाने की कोशिश, ये साबित करने की कोशिश कि आखिर नियंत्रण किसका है। ईरान भी टैंकरों को निशाना बना रहा है और अब अमेरिका ने उसके बाड़ेबंदी तोड़ रहे एक टैंकर को हमला किया है, उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी और जब वो चेतावनी नहीं माना तब अटैक उस शिप पर हुआ है, कमर्शियल शिप पर, जो कि अमेरिका ने किया है। तो हॉर्मुज के पास आखिर ताजा हमले कहां हुए, लगातार पांच दिन के हमले। आप देखिए बंदर अब्बास, क्यों बंदर अब्बास निशाने पर है, क्योंकि यहीं से दरअसल ईरान की IRGC नेवी ऑपरेट करती है, उसी के साथ साथ उसके ऊर्जा संसाधनों का जो पूरा बेड़ा है वो यहां से निकलता है। इसी के साथ चाबहार पर जो पहले दिन हमला हुआ था वहां पर भी मॉनिटरिंग टावर था जिसकी तस्वीरें आई थी, चाबहार के मॉनिटरिंग टावर को उड़ा दिया था। और एक बार फिर ये वही चाबहार है जहां पर भारत का भी बड़ा निवेश था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत वहां से पीछे हट गया। तो इस बार चाबहार पर हमले हुए हैं। चाबहार के पास भी शुरुआती हमलों में यहां पर चूंकि उसकी सबमरीन हुआ करती थी, इस बार उसको चाबहार के पास ही कोनार्क आइलैंड है, उसी कोनार्क जो किनारा है वहां पर हमले हुए थे। उसके बाद बंदर अब्बास को फिर निशाना बनाया। अब हेंगम और सिरिक, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण आइलैंड है जो इन इलाकों में, हेंगम द्वीप का जो इलाका है वो किनारे पर है, सिरिक बीच में एक आइलैंड है, यहां से भी वो इस हॉर्मुज जो स्ट्रेट आपको दिखाई देता है नैरोसा इलाका 32 माइल्स का, इसके साथ इस पार खाड़ी देशों को जोड़ने वाले जो स्ट्रेच है यहां पर वो नियंत्रण कर सकता है अपनी नेवी के जरिए, अपनी जो सी सरफेस सबमरीन्स हैं उसके जरिए। लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया है, ईरान भी चुप नहीं बैठा है, अमेरिका के हर हमलों का वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और वो जवाब देता है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके जो कि इन खाड़ी देशों में मौजूद हैं, फिर वो चाहे UAE में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, जॉर्डन में हो, ये सब इलाके लगातार, बहरीन में सायरन सुने गए, कुवैत में भी जो है कुवैत आर्मी ने लोगों को अलर्ट भेजा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें डाली हैं। ये देखिए ये ड्रोन गिरा, सुनिए धमाकों की आवाज। ये वो तस्वीरें हैं जो बीते पांच दिनों में हमने देखी हैं कि कैसे ईरान पर लगातार हमला झेलने के बाद भी उसकी मारक क्षमताओं में कमी नहीं आई है, वो सटीक निशाने लगा रहा है अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, फिर चाहे वो अमेरिका के नेवल बेस हो, उसके एयर बेस हो, उसका ड्रोन कमांड सेंटर हो या उसके मिलिट्री अपरेटस इंफ्रास्ट्रक्चर रेडार्स हो, लगातार 4 क्रूज मिसाइल दागे हैं ईरान ने भी और हमले के बाद बहरीन में सायरन भी बजे गए हैं। तो बहरीन और कुवैत और जॉर्डन, ये तीन बड़े ऐसे खाड़ी के देश हैं जो इस बार सबसे ज्यादा हमले ईरान के झेल रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, पलटवार किया है। ये देखिए ये ताजा तस्वीरें बहरीन से आ गई, आज तक पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला किया था। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमेरिकी बेस पर दो हमले हुए, कई जगहों पर धमाके सुने गए। कुवैत सेना ने बयान भी जारी किया कि कुल 4 क्रूज मिसाइल, 21 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, वहीं बहरीन में सायरन बजे। ये देखिए जैसे ही बहरीन में इंटरसेप्शन हुआ और कई बार उस इंटरसेप्शन के बावजूद ड्रोन और मिसाइलें सीधे नीचे गिर रही हैं, यानी अमेरिकी सैन्य बेड़े को, उनके अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को अब नुकसान पहुंच रहा है। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि खाड़ी में जो वॉर 2.0 शुरू हुआ है तो वो आखिर कहां रुकेगा। तो पूरे घटनाक्रम से आपको एक बार 10 अपडेट बता देते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ है। पांच दिन का हमला है, मिडिल ईस्ट में महाजंग हुई है, इन पांच दिनों में 10 अपडेट क्या है। लगातार पांचवें दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, ईरान के कई सारे तटीय शहरों को निशाना बनाया, इसी के साथ साथ ईरान के कई इलाकों को, खासकर बंदर अब्बास से लेकर के कोनार्क आइलैंड, सिरिक आइलैंड, बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक पर, वहां पर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो ये देख रहा है। हेंगम आइलैंड को भी, वहां पर भी धमाके की आवाज सुनी गई है। ये वो बड़े अपडेट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पता चलता है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी वॉर 2.0 में क्या है। हॉर्मुज पर एक तेल टैंकर को भी अमेरिका ने निशाना बनाया, कोराकाओ का झंडा लगा हुआ था और यह एमटी बेलमा टैंकर दरअसल ईरान की सीमा में प्रवेश कर रहा था, उसे चेतावनी दी गई, रोका गया। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया, खाड़ी देशों पर हमला किया, कुवैत और बहरीन पर मिसाइलें दागी, वहां पर सायरन सुने गए। कुवैत में 4 क्रूज मिसाइलें भी ईरान ने दागी हैं अपने नए ऑपरेशन में। ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में
35 लोगों की मौत हुई है अब तक ईरान में। उसने दावा यह भी किया है कि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, क्योंकि अमेरिका की एयर स्ट्राइक बहुत घातक थी जिसका असर ईरान में भी लोगों को उठाना पड़ा है। लगातार पांचवें दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। हॉर्मुज में जब तक जो हमला ईरान कर रहा था टैंकरों पर, अब अमेरिका के निशाने पर भी वो टैंकर हैं जो ईरान की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मामला यहीं नहीं रुक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप जो पहले टोल टैक्स लगाना चाहते थे, फिर पलट जाते हैं ईरान को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो धमकी दी है, पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी हद तक ये पता है कि वो पूरी बात जानते हैं, उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए। वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए। ये भी कहा कि जल्दी पता चल जाएगा कि हम उनके साथ कोई समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप वो कार्ड खेल रहे हैं कि उन्हें पता तो हो ये ट्रंप कार्ड है कि पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। एक तरफ उन्होंने कहा कि सीज फायर खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ कहते उन्हें ठीक से बर्ताव करना चाहिए, और चौथी तरफ ये भी कहते हैं कि अब तो भारी बमबारी होगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है, धमकी दी है, डेडलाइन पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें बात करनी होगी। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन को लेकर के बड़ी खबर की, क्योंकि एक तरफ खाड़ी के देशों में जंग चल रही है, तो जंग के हालात अब दूसरी तरफ हैं, जो कि 4 साल हो चुके हैं यूक्रेनी हमलों में। रूस में भी हॉर्मुज जैसा संकट गहरा गया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से एजोब सागर में जहाजों की आवाजाही रुक गई है। पिछले 10 दिनों में रूस के 116 जहाजों पर यूक्रेन ने हमले किए हैं, इनमें 17 तेल टैंकर शामिल हैं। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी ने दावा किया है कि पिछले 10 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। ब्लैक सी में 20 जहाजों पर अटैक किया गया है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में हमला होने के बाद जब ये जंग शुरू हुई, तभी ये संभावना जताई गई थी कि ब्लैक सी में इसका असर होगा, और ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर यूक्रेन अटैक किया है, तो एजोव सागर में 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है।

0: रूस के सामने खड़ा हुआ होर्मुज जैसा संकट। रूसी जहाजों पर यूक्रेन ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी जहाजों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब यूक्रेनी हमलों से रूस को बड़ा झटका लगा है। ड्रोन हमलों से जेलेंस्की ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवर्दी ने बड़ा दावा किया है। ब्रोवर्दी ने कहा कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया, वहीं ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर हमले किए। एजोव सागर लंबे वक्त तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया करता था, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा कि रूस इन हमलों का जवाब कैसे देगा। आज तक ब्यूरो।
1: और बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। एक बार फिर वहां आटे का संकट गहरा गया। इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक अब किल्लत बढ़ने जा रही है। इस्लामाबाद में गेहूं की सप्लाई रोक देने की वजह से आटा मिलों में गेहूं का स्टॉक नहीं पहुंच रहा है, खत्म हो गया है, जिसको लेकर आटा मिल मालिकों ने किल्लत की आशंका जताई है। और अब पाकिस्तान के पंजाब सरकार पर गेहूं का परमिट रोकने का आरोप लगा है। साथ ही सप्लाई बहाल ना होने पर रावलपिंडी के आटा मिलों ने भी कामकाज बंद करने की धमकी दी है। बच्चे कहां तो कहावत कही जाती है, पाकिस्तान के पास तो आटा दाल के पैसे नहीं, वो आटा दाल भी व्यवस्था नहीं कर सकता। अब तो सच में वहां पर आटे की किल्लत होने लगी है, यानी 2 जून की रोटी भी अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। गेहूं की किल्लत, गेहूं की सप्लाई की किल्लत, आटा मिलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के सामने अब एक बार बड़ा आटे का संकट यानी खाद्यान्न संकट पाकिस्तान के सामने गहरा गया है। अब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले देश की राजनीति में बड़ी हलचल हो रही है। तो बात करेंगे बीती रात प्रधानमंत्री आवास पर हुई उस बड़ी बैठक की। पीएम मोदी के आवास पर कल बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। 2 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नए राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी के महासचिव संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम के गठन को लेकर के भी विचार विमर्श हो सकता है। बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, यानी अभी तक कुछ भी औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है। तो बीजेपी संगठन में संभावित बदलाव, आगामी राजनीतिक कार्यक्रम और इन सब के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बैठक में संगठनात्मक रणनीति, जिम्मेदारियों के बंटवारे पर भी चर्चा, जिसका सीधा सा कयास ये है कि क्या कैबिनेट में बदलाव होगा, क्या संगठन में बदलाव होगा। और वो इसलिए क्योंकि अब से 3-4 महीनों के भीतर चुनाव एकदम पीक पर होगा 5 बड़े राज्यों के। तो अब बात करेंगे आज तक पंचायत की। सियासी दिग्गजों का मेला लगा तो एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे की गूंज भी सुनाई दी, जिसने ये साफ कर दिया कि 2027 के चुनाव में कम से कम यूपी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है।
2: आज तक पंचायत का मंच सजा तो एक बार फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की गूंज सुनाई दी।
3: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं।
2: विपक्ष ने साफ किया कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही सियासी मैदान पर उतरने वाले हैं।
4: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावे या ना बनावे, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला, वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
5: चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी, इनके लोग शामिल हैं उसमें, भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को, अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे, योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे, नीपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी, गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंगल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो माताएं बने अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती है, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया, इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे।
2: उधर योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर राम मंदिर पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं।
6: ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
4: हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे माफिया मार गिराए, सारे चोरों को जेल भेज दिया, सारे पॉकेट मारों को जेल भेज दिया, ते वहाँ कहाँ पैदा हो गए, अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी।
2: बहरहाल यूपी में 2027 की लड़ाई में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस राम मंदिर ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, वहीं चढ़ावा चोरी के कलंक को विपक्ष किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
1: तो चढ़ावा चोरी मुद्दा तो बन गया, उसके ऊपर हो रही कार्यवाही भी मुद्दा बन गई, लेकिन और क्या हो रहा है? तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक्शन फुल है। एक ओर ट्रस्ट के सीईओ के लिए आवेदनों की बाढ़ आई है, तो अब एसआईटी रिपोर्ट भी जल्द आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में टिन्नू यादव के लिए और भी खुलासे हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
1: उधर संसद के आगामी सत्र से पहले परिसीमन को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद रामचंद्र पवार ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनकी पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी।
2: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
3: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
2: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 एमएलसी हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है वरना विरोध करने पर टीएमसी जैसा हाल होना तय है।
4: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
2: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: देव अपनी राशि बदल रहे हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा होगा प्रभाव, अलग अलग राशियों के जिंदगी में क्या होगा बदलाव और सूर्य देव किसको पहुंचाएंगे फायदा और किसको करेंगे नुकसान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे आजा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: मैं सलमा,
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया,

लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फर्नांडिस मार्टिनेज ने किए गोल, अब स्पेन से फाइनल टक्कर। लगातार पांचवें दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, बंदर अब्बास, चाबहार, सिरक में धमाके, ईरान ने कुवैत और बहरीन में दागे ड्रोन मिसाइलें। ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को सीधी धमकी, कहा डेडलाइन देना मुझे पसंद नहीं, ठीक से पेश आओ। सेंटकॉम ने नाकेबंदी तोड़ रहे एक तेल टैंकर पर किया हमला। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक, 2 घंटे तक चला मंथन, अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे के साथ बैठक, सत्र में मुद्दे उठाने को लेकर हो सकती है चर्चा।

अर्जेंटीना का फाइनल में स्पेन से मुकाबला होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट के लिए आईसीसी ने ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इस नए नियम के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर सात राउंड। लगातार चौथे दिन भी ईरान पर अमेरिका के हमले जारी हैं। कई शहरों में धमाके की खबर आ रही है। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेडलाइन देना उन्हें पसंद नहीं है। ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा और तेहरान बातचीत करना चाहता है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत हुई है जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में दो महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल। दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे, ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। अरब सागर ने अमेरिका ने कार्रवाई की है। ईरान जा रहे तेल टैंकर को रोका। सेंट्रल कमांड ने मिसाइल हमले से जहाज को निष्क्रिय किया। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे का संकट गहरा गया है। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी बंद होंगी। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा बन गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर और बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष इसमें मौजूद रहे। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 21 को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सांसदों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। अगले 24 से 48 घंटों में आ सकती है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा भी बागी गुट में शामिल हो गए। थामा रिताब्रता बनर्जी का साथ। मदन मित्रा के बागी होने पर ममता का बीजेपी पर आरोप। बोली, बीजेपी के इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से समझौता हमारा नहीं होगा। रामपुर में आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा आम रास्ते का बोर्ड। पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोला। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी, शरद पवार। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड से दुकान को एफडीए ने सील कर दिया है। 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजे। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में राजस्थान गए थे। पुलिस को शक कि वहीं दोनों की गुपचुप शादी हुई थी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिर में सबूत भी तलाशे। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी। सीसीटीवी पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाईराइज सोसाइटी के लिफ्ट में दो पूर्व एओए पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो बात करते हैं ईरान और अमेरिका के जंग की। अमेरिका लगातार पांचवें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक, हेंगम आइलैंड पर धमाकों की आवाजें सुनी गई है। ईरान की महर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। वहीं बंदर अब्बास, हेंगम आइलैंड, सिरिक के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। तो लगातार पांचवें दिन ईरान पर अमेरिका का हमला जारी है। हॉर्मुज में नियंत्रण और उस पर कब्जे की दावेदारी से शुरू हुई ये जंग अब खाड़ी देश में जंग 2.0 बन चुका है। इसके पहले अमेरिका ने सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया। उसके पहले हॉर्मुज में ईरान ने 2 वाणिज्यिक टैंकरों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए और एक बार इस हमले और प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है अब वो चेन रिएक्शन में बदलता जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच जो जंग है इस पर बड़ी खबर यह है कि पांचवें दिन ईरान पर अमेरिका ने हमले किए हैं, खासकर दक्षिणी इलाकों को, तटीय इलाकों को निशाना बनाया है। वो इसलिए कि वही ईरान की सप्लाई लाइन है।
तो ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेनाओं ने एक तेल टैंकर पर हमला किया। ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे इस तेल टैंकर पर अमेरिकी

0: का ने अटैक किया है। इस टैंकर पर कुराकाओ का झंडा लगा था। एमटी बिल्मा टैंकर पर अटैक किया, अमेरिकी सेना ने उसे रोका और उसके बयान जारी करके कहा है कि इस टैंकर ने अमेरिकी बाड़ेबंदी, अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की। ये ईरान जा रहा था, इसे रोका गया, टैंकर को चेतावनी दी गई और जब उसने चेतावनी नजरअंदाज कर दी तब उस पर हेलफायर मिसाइल दागा गया, उसे रोक दिया गया है। ईरान की बंदरगाह की तरफ जाने वाले इस टैंकर को इससे पहले परसों डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अब ईरान पर ब्लॉकेट लगाया जा रहा है, ईरान जाने वाले आने वाले किसी भी टैंकर को अनुमति नहीं दी जाएगी। एमटी बिल्मा उसी तरफ जा रहा था, उसे रोका गया, जब वो नहीं रुका तो उस पर हेलफायर मिसाइल दाग दी और उस जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया। तो कुराकाओ का यह झंडा था जिस पर अमेरिका ने भी अब हॉर्मुज में हमले किए हैं। जाहिर है इसके चलते खाड़ी देशों में स्थिति अब और तनावग्रस्त होने वाली है, तनाव और बढ़ने वाला है। लेकिन जंग से जुड़ी एक और खबर यह है कि ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर हमला किया है, यानी जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से भी जारी है। फार न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमेरिकी बेस पर दो हमले हुए हैं, कई जगहों पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। कुवैत सेना ने बयान भी जारी करते हुए कहा है कि कल तक कुल 4 क्रूज मिसाइल, 21 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में सायरन बजे हैं। तो कुवैत और बहरीन पर भी ईरान का हमला हुआ है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर सबसे पहली ये तस्वीरें जब ये हमले हुए हैं कुवैत में अमेरिकी बेस पर। कुवैत में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, एक सैन्य बेस जमावड़ा है और ये कुवैत से न सिर्फ उसका डिफेंस रेडार सिस्टम लगा है बल्कि अमेरिका की मारक क्षमता भी यहां से काफी ज्यादा है। तो न सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद उसके जंगी जहाज जो युद्धपोत हैं बल्कि इसके अलावा कुवैत से भी वो इंटरसेप्शन करता है, इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं जो कि कुवैत को बचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस सैन्य जब जो बेस है अमेरिका का कुवैत पर हमला हुआ है। वहीं बहरीन में भी, बहरीन में जहां पर अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट है, नेवल बेस है, वहां हमले हुए। लेकिन ईरान पर आखिर हमले कहां हुआ आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं। ईरान के कौन से इलाके सबसे ज्यादा इस समय अमेरिका के निशाने पर है? बंदर अब्बास, वो इसलिए क्योंकि हॉर्मुज का नियंत्रण सीधे सीधे यहीं से किया जाता है, IRGC नेवी का नियंत्रण भी यहीं से होता है। लेकिन इसी के साथ चाबहार पोर्ट जो कि दक्षिण पूर्व का इलाका है, चाबहार के साथ ही कोनार के दो आइलैंड जहां पर सबसे पहले हमलों की शुरुआत हुई थी, तो एक बार फिर यहां पर। उसी के साथ साथ जैसे दक्षिण पश्चिम में आते हैं हंगम और सिरिक, दो ऐसे क्रिटिकल आइलैंड जो ऊर्जा का स्रोत है ईरान के लिए और स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी काम करता है, तो उसको अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है। पांचवें दिन इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से हमले हुए हैं, तो ईरान का वो इलाका। लेकिन अब तक 10 बड़े घटनाक्रम बता देगा आखिर अब तक क्या हुआ है। लगातार पांचवां दिन है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया है, खासकर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में और तटीय शहरों को उसने निशाना बनाया। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक पर उस अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, हेंगम आइलैंड पर भी धमाके सुने गए हैं। ईरान में अब तक 30 से ज्यादा लोग मरे हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब उसके बाद क्या किया, हॉर्मुज में एक तेल टैंकर जो ईरान की सेवा में प्रवेश कर रहा था उस पर भी अमेरिका ने हमला किया। कुराकाओ का एमटी बिल्मा ये टैंकर था जिस पर अमेरिका ने मिसाइल दागी, हेलफायर, और उसी के साथ साथ ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत और बहरीन के ऊपर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं और इसको लेकर के अब ये जो कार्रवाई, इसके बाद तनाव की स्थिति बढ़ रही है। कुवैत बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ये कुल घटनाक्रम है अब तक 5 दिनों में मिला के अमेरिका की ओर से एक्शन हो रहा है, वो ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हॉर्मुज में नियंत्रण किसका होगा, अब ये दोनों के लिए अस्तित्व की बात हो गई, दोनों के लिए अहम की बात है कि आखिर यहां नियंत्रण किसका होगा। ईरान के हमलों में, अमेरिका के हमलों में ईरान में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं अब तक, ये जानकारी आई ईरान की ओर से, ये कहा गया है 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और ये तमाम वो लोग हैं जो ईरान के नागरिक हैं। वह ईरान को लेकर के अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दी है। जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा इसको लेकर के कोई डेडलाइन देना आप मुझे पसंद नहीं है। ये वही ट्रंप है जो कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे की डेडलाइन दिया करते थे। वो कह रहे मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी हद तक पता है, पूरी बात वो जानते हैं, लेकिन वो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को अब ठीक से पेश आना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि हम उनके साथ कोई समझौता करेंगे या नहीं करेंगे। ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कोई समझौता हो जाएगा, उस समझौते के बीच वो हमले कर देते हैं। जब सीज फायर की बातचीत दोहा में, स्विट्जरलैंड में होती है तब वो जो है IRGC पर हमले करते हैं और अब वो कह रहे हैं कि आगे बातचीत होगी या नहीं देखा जाएगा।
1: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story.
2: So are you meeting?
1: They better better behave. But they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: तो एक तरफ खाड़ी में जंगे हालात है, दूसरी तरफ चार साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग को लेकर के एक बड़ी खबर है। यूक्रेनी हमलों से रूस में भी हॉर्मुज जैसा संकट गहरा गया है। यूक्रेनी हमलों की वजह से एजोब सागर में जहाजों की आवाजाही रुक गई है। 10 दिनों में रूस के 116 जहाजों पर यूक्रेनी हमले किए हैं। इसमें 17 तेल टैंकर और 2 गैस टैंकर शामिल हैं। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोती का कहना है कि पिछले 10 दिनों में एजोब सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर अटैक किया गया है।

0: रूस के सामने खड़ा हुआ होर्मुज जैसा संकट। रूसी जहाजों पर यूक्रेन ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी जहाजों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब यूक्रेनी हमलों से रूस को बड़ा झटका लगा है। ड्रोन हमलों से ज़ेलेंस्की ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवर्दी ने बड़ा दावा किया है। ब्रोवर्दी ने कहा कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया, वहीं ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर हमले किए। एजोव सागर लंबे वक्त तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया करता था, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा कि रूस इन हमलों का जवाब कैसे देगा। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। भारत के पड़ोसी देश में एक बार फिर आटे का संकट गहरा गया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक अब किल्लत देखी जा रही है। इस्लामाबाद में गेहूं की सप्लाई रोक देने की वजह से 45 आटा मिलों में गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पर है, तो जिसको लेकर अब आटा मिल मालिकों ने किल्लत की आशंका जताई है। उधर पंजाब सरकार पर गेहूं के परमिट रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही सप्लाई बहाल न होने पर रावलपिंडी की आटा मिलों ने कामकाज बंद करने की भी धमकी दे दी है।

0: उधर पीओके में इस वक्त बगावत की आग लगी हुई है। इस आग की तपिश इस्लामाबाद और लाहौर तक महसूस की जा रही है। पीओके के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त मुजफ्फराबाद कूच के लिए निकल रहे हैं। क्या दिन क्या रात, लोगों का ये मार्च लगातार जारी है और इन प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की फौज का जोर जबर भी चल रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है।
1: रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रही है भीड़ अपना इरादा बता रही है कि अंजाम चाहे जो भी हो ये पीछे हटने वाले नहीं है। सुबह से लोग मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े हैं। पीओजेके के अलग अलग हिस्सों से कारवा निकला है। जमकर नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठ रही है। इस मार्च के लिए एक दिन पहले से रावलकोट और अन्य शहरों में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। नौकरी पेशा लोगों ने काम छोड़ा, स्कूली छात्रों ने स्कूल छोड़ा, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला और सब निकल पड़े मुजफ्फराबाद मार्च के लिए। इसमें शामिल छात्र अब पीओजेके से अपील कर रहे हैं कि अपने हक के लिए आगे आए।
2: अगर हमारे बेफाम नहीं माने जाएंगे, जाएं आपके बेफाम अपनी मर्जी से जिया, मैं आपके बेफाम की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठाएं।
1: दरअसल पीओजेके के लोगों ने ऐलान किया है कि उनकी 38 सूत्रीय मांगे मानी जाएं, अगर नहीं मानी गई तो वो पाकिस्तान असेंबली से आजादी का ऐलान कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ गए। सरकार इस लॉन्ग मार्च को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान की शाबाद सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को मानने की बजाय जिम्मेदार हुक्मरान सिर्फ टहलाने में जुटे हैं।
3: और रियासत अवाम से है और अवाम ही रियासत है। सुपीरियर रियासत अवाम है, अवाम ताकत है और अवाम की बात मानी जाएगी और अपनी होगी।
1: मुजफ्फराबाद तक आज हो रहे लॉन्ग मार्च की अगुवाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसे पाकिस्तान सरकार जून में ही बैन कर चुकी है। ऐसे में प्रतिबंध का हवाला देकर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाकर एक्शन ले सकता है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। उड़ीसा के पुरी, गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी में सुबह 9 बजे भगवान की रथ यात्रा पर विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। अहमदाबाद के जामालपुर के जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती भी हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे। इसके बाद सुबह 7:30 बजे तीनों रथ 16 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलेंगे। पुरी और अहमदाबाद रथ यात्रा में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। यानी दोनों जगहों पर सोचिए 15 लाख लोगों की भीड़ होगी। पुरी में रात भर तेज बारिश हुई और उसके बावजूद भी श्रद्धालु रथ यात्रा के मार्ग पर डटे रहे। इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था, उनकी भक्ति और साहस इतना ज्यादा है कि मौसम भी उन्हें हरा नहीं सकता। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रथ यात्रा की तैयारियां भव्य हैं। थोड़ी ही देर में यात्रा की शुरुआत होगी। तो अहमदाबाद और पुरी दोनों ही जगहों पर भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के साथ अपने रथ पर सवार होंगे और पूरी विधि के साथ श्रद्धालुओं के जोश के साथ। और ये देखिए रात में बारिश भी हुई है, लेकिन इस बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं का हौसला बेहद मजबूत है, क्योंकि ये पर्व है और ये इतना बड़ा पर्व है, ये आस्था का पर्व है। और उसी आस्था के साथ श्रद्धालु थोड़ी देर में रथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे ही हर्षोल्लास और जोश के साथ ये रथ यात्रा हर साल निकलती है। दशकों नहीं सदियों पुरानी ये परंपरा, और भारत में इस परंपरा धर्म सनातन की झलक दिखती है। और उसी झलक, उस ताकत की एक झलक आपसे थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देगी, जब पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। उसी के लिए सुरक्षा के भी तमाम तैयारियां हैं, कई कंपनियां लगाई गई हैं, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जगन्नाथ पुरी में भी और इसी के साथ साथ अहमदाबाद में भी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ पुरी की जगन्नाथ यात्रा जहां शुरुआत होनी है, और उसके पहले अहमदाबाद में जब रथ यात्रा के पहले मंगला आरती हुई सुबह 4:30 बजे और उसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। ये यात्रा के ठीक पहले अहमदाबाद की मंगला आरती की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब गृहमंत्री अमित शाह इसमें हिस्सा लिए, और उसके बाद यात्रा की अब औपचारिक शुरुआत हुई। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा होगा प्रभाव, अलग अलग राशियों के जिंदगी में क्या होगा बदलाव, और सूर्य देव किसको पहुंचाएंगे फायदा और किसको करेंगे नुकसान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक।
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फर्नांडिस मार्टिनेज़ ने किए गोल, अब स्पेन से फाइनल टक्कर। लगातार पांचवें दिन अमेरिकी हमलों से दहला ईरान, बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक में धमाके, ईरान ने कुवैत और बहरीन में दागे ड्रोन मिसाइलें। ट्रंप ने एक बार फिर दी ईरान को सीधी धमकी, कहा डेडलाइन देना मुझे पसंद नहीं, ठीक से पेश आओ। सेंटकॉम ने नाकेबंदी तोड़ रहे एक तेल टैंकर पर किया हमला। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक, 2 घंटे तक चला मंथन, अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे के साथ बैठक, सत्र में मुद्दे उठाने को लेकर हो सकती है चर्चा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव आज अपनी राशि बदल रहे हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर, देश दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा, आज इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह 8:52 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:52 तक, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सूर्य देव आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस अवसर को कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या है संक्रांति? देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं, किसी राशि में जाते हैं, तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, कुल मिलाकर 12 राशियां हैं, इसीलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में आते हैं मध्य जनवरी के आसपास, तब मकर संक्रांति होती है, और जब मध्य जुलाई में कर्क राशि में आते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और जब कर्क संक्रांति आती है, जो आज आ रही है, यहां से जल तत्व की शुरुआत होती है। सूर्य कर्क संक्रांति के बाद दक्षिणायन हो जाते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है। इस बार सूर्य देव कर्क राशि में 16 जुलाई की रात में, यानी आज रात में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आज राशि परिवर्तन के बाद अगले 1 महीने तक कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए सूर्य देव जब कर्क राशि में जाते हैं तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर अगले 4 महीने तक पड़ता है। जब तक सूर्य तुला राशि में ना चले जाएं, तब तक कर्क राशि के सूर्य का प्रभाव देश दुनिया पर पड़ता रहता है। तो सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सूर्य देव आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है सूर्य के राशि परिवर्तन के समय, और राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बृहस्पति यानी गुरु पंचम भाव में विद्यमान हैं और इसमें गुरु अस्त हो रहे हैं। जल की राशि कर्क में सूर्य और बृहस्पति का आना अच्छा नहीं है, इससे जल से आपदा पैदा होगी, भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनेंगी। दुनिया भर में अगले 4 महीने में युद्ध की स्थितियां काफी गंभीर हो सकती हैं, काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आम जनता के लिए भी इस समय समस्याएं बढ़ेंगी, और आप देखेंगे कि अगले 4 महीने में महंगाई बढ़ेगी, लोगों को स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। तो अगले 4 महीने में जल से आपदा आने की, भूकंप आने की, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है और युद्ध की स्थिति और ज्यादा नकारात्मक हो जाए ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है। सूर्य के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

पानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

दानों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं, 7 अक्टूबर 1981 का जन्म है, सुबह के 9:10, जन्म स्थान है भदोही उत्तर प्रदेश। शालिनी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कैसा रहेगा। शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से मुख्यतः आपको अपने डाइजेशन का, अपने लीवर का ध्यान देना है, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। देखिए, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर अगले 4 महीने तक प्रभाव बना रहता है, लेकिन अलग अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और राशियों पर प्रभाव अगले 1 महीने तक रहता है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की अगर बात करें तो आप स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, करियर में आपको सफलता मिलेगी और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। मिथुन राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपको सर दर्द की और स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। सिंह राशि, इस समय आप बड़ा निर्णय लेने में सतर्क रहें, किसी तरह का कोई जोखिम या कोई रिस्क लेने से बचिएगा, बड़े निर्णय और जोखिम लेने से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, आपको धन का लाभ होगा और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताएंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है,
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

वे होंगे धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि।

कहानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। तो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक हमने जाना कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर अपने पिता और अपने परिवार जनों की सेहत का ध्यान रखिएगा, स्वयं अपनी भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। धनु राशि, इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से सतर्क रहिएगा, चोट चपेट या दुर्घटना हो सकती है। मकर राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से

के लिए जरूरी रहेगा। कुंभ राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको आर्थिक लाभ होगा। आपकी चिंताएं और आपका तनाव दूर होगा। मीन राशि वाले अपने करियर में किसी तरह का जोखिम ना लें। करियर में अगर आप रिस्क लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें होंगी और इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। हड्डियों में और पेट में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

आगे करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो उत्तर और दक्षिण पोल से काम करती है। उत्तर से ऊर्जा प्रवेश करती है और दक्षिण से वो बाहर निकलती है। जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर और दक्षिण के आधार पर काम करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका आसानी से निकल सके। अगर आप जीते जी दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपके बीमार होने का खतरा बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसीलिए सर दक्षिण की तरफ करके सोना अच्छा है, लेकिन पैर दक्षिण की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

रखें। नंबर दो, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर तीन, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर चार, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर पांच, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। नंबर छह, विवाह तय हो सकता है। नंबर सात, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर आठ, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर नौ, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1979। जन्म का समय सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखते हैं रांची से। कुणाल कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो व्यापार की दिक्कतें कब समाप्त होंगी और भविष्य कैसा रहेगा। कुणाल, आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगले साल की शुरुआत में आप चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, व्यापार में परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन के बाद फरवरी 2027 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक मोती बनवा लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा।

कर्क राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है, आज धन संबंधी काम करना आपके लिए उत्तम रहेगा और आज सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गार्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का सपना तोड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लोटारो मार्टिनेज ने किए गोल, मेसी के पास दोनों गोल, मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयरस, सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी। कार्डिक में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच होगा, आज जीते तो भारत जीत जाएगा यह सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने ऐतिहासिक बदलाव के संकेत दिए। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक, चुनौतीपूर्ण बनाना इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में न ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान, मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में होगा फैसला। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिनले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआती से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी ही नॉकआउट में पहुंचेंगे। लगातार 5वें दिन भी जारी है ईरान पर अमेरिका के हमले, कई शहरों में धमाके की खबर। ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है, ईरान को अब ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप ने रक्षा उत्पादन पर जोर देते हुए कहा है कि ज्यादा खर्च नहीं लेकिन उत्पादन में तेजी चाहिए। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्यवाही नहीं है बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना है। वैंस ने कहा अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है, हमले की तस्वीरें भी साझा की। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने निशाना बने हैं, जानमाल का बड़ा नुकसान टल चुका है। कुवैत ने यह भी दावा किया कि 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए जो ईरान की ओर से कुवैत पर चलाए गए थे। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट में धमाकों से दहशत हुई, कई विस्फोटों की खबर सामने आ रही है। ईरानी हमले के बाद बहरीन में भी सायरन बजे, गृह मंत्रालय ने लोगों को अलर्ट जारी किया, क्षेत्रीय तनाव के बीच वहां पर सतर्कता बढ़ाई गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं, 1 नाबालिग भी शामिल है। दक्षिणी ईरान के सिरक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे, ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है। अरब सागर में भी अमेरिका ने कार्रवाई की है, ईरान जा रहे तेल टैंकर गोरो का सेंट्रल कमांड ने मिसाइल हमले से जहाज को ठप किया। अमेरिका का कहना है कि जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी जिसके बाद उस पर हमला हुआ। उधर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आटे का संकट गहरा गया है, गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक अब खत्म होने के कगार पर है। पंजाब सरकार पर बिना लिखित आदेश गेहूं परमिट रोकने का आरोप लगाया गया है। करीब 8,000 टन सप्लाई बाधित की गई है, ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई की चेतावनी अब दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें बंद होंगी। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा भी मंडरा रहा है। ओडिशा के पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आएंगे। तीनों देवता अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे देवता, फिर 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से लौटेंगे मुख्य मंदिर, 27 को मंदिर में करेंगे प्रवेश। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने बूस्ट दिया। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ

कनेक्टर 2.0 को मंजूरी दी गई है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 24 लाख रोजगार की भी उम्मीद जताई गई है। वाराणसी के लिए दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। गंगा किनारे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी हरी झंडी दी गई। कृषि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी दी है। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर के बदलाव के खबरों के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक। अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष इसमें मौजूद रहे। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद 21 को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी। कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता हुआ। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की तारीख। 8 अगस्त तक भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म। अब 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। अगले 24 से 48 घंटे में एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा बागी गुट में शामिल हो गए हैं। रिताब्रता बनर्जी का साथ थाम लिया है। मदन मित्रा के बागी होने पर ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का आदेश दिया। 6 हफ्ते में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब जोरों पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा सुगम यात्रा के लिए प्रबंधों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन, साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह से बैन होगा। रामपुर में आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया। पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोल दिया। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड विवाद फिर चर्चा में है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार के पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। बाकी पूर्व चुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी, शरद पवार गुट। सुप्रिया सुले ने परिसीमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स को अटकलें बताया। कहा एनसीपी शरद पवार के परिसीमन बिल का समर्थन की अफवाहें फिलहाल बेबुनियाद हैं। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील कर दी। 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था। एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के आधार पर व्यापार को बंद करवाया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स को सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन भी खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में राजस्थान गए थे। पुलिस को शक है कि वहीं पर इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिरों में सबूत तलाशने शुरू कर दिए। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी। इसका सीसीटीवी पर वायरल हुआ है वीडियो, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के हाईराइज सोसाइटी के लिफ्ट में दो पूर्व एओए पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। इसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो चर्चा में आ गया है। मंत्री का पोता विराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने दर्शन किए, फिर रेखी की और फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर चोरी की। लखनऊ में कई दुकानों में भीषण आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला। आग पर काबू पाया गया। नोएडा के ममूरा इलाके में एक 5 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से यह हादसा हुआ। आग के लपटों में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे के समय लगभग 50 परिवार इस इमारत में मौजूद थे। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में विकराल आग लग गई। धुएं का गुबार देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के बीड इलाके में चलती स्कॉर्पियो इन कार से धुआं निकला। मिनटों में जोरदार धमाके के बाद आग लगी। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में भीषण आग लगी। मौजूदा वाहन चालकों में अफरा तफरी मची। डर के कारण गाड़ियां छोड़कर लोग भागने लगे।

पालघर में मीरा रोड में एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर आग लग गई। समय रहते आग पर पाया काबू पाया गया, बड़ा हादसा टल गया। नासिक के भावली डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा गया, चलती कार पर पत्थरबाजी की गई। महाराष्ट्र के चंदपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर भरा ट्रक गायब कर दिया, पुलिस ने सनसनी केस खुलासा किया। कर्नाटक के बेलगावी में जिमखाना क्लब में गोलीबारी हुई, कारोबारी की हत्या की कोशिश में हथियारों के साथ बेखौफ घूमते दिखे आरोपी। झारखंड के गढ़वा में जुआ खेलने और कमीशन के लेन देन को लेकर के विवाद में युवक को गोली मारी गई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर किसान को गोली मारने का आरोप, घायल ने कहा कि आए थे जमीन कब्जाने। पटना के टीवीएस शोरूम में घुसकर लूटपाट और मारपीट हुई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी, जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। मुजफ्फरपुर में जमानत पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक पर मिला शव, इलाके में सनसनी फैल गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के बाद शव जलाया गया, पुलिस ने जमीन विवाद में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है। जयपुर के आमेर घाटी में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, एक की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात हुई, सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या की गई, 3 नाबालिग समेत 4 को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ, पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में एक की मौत, 11 घायल। रायसेन में दो भाइयों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर के विवाद हुआ, खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या की। जयपुर में पूर्व जज के बेटे ने बहन पर जानलेवा हमला किया, कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा, सीसीटीवी में वारदात कैद। नेपाल में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, 22 गांवों का संपर्क टूट गया है। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान आ गया, तेज बहाव से सड़क कट गई, प्रशासन अब अलर्ट पर है। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में भीषण बाढ़ आती है, गांव और स्कूलों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मथुरा में बढ़ने लगा है अब यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने सबको सुरक्षित बचा लिया। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कई इलाके अब पानी में डूब चुके हैं। सिक्किम के गैंगटोक में भी जोरदार बारिश हुई, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन अब सतर्क है। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान में काफी नमी देखी गई है। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने से मौत, 1 घायल है।

0: और अब बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा निकाली जाएगी। पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू के रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। अहमदाबाद के जमालपुर के मंदिर में भी जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। तो इस यात्रा की परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने अपने रथों पर विराजमान होंगे और फिर आगे यात्रा शुरू होगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पुरी में जहां पूरी हो चुकी हैं, अहमदाबाद में यात्रा के ठीक पहले मंगला आरती में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए, और 3री तस्वीर वो कि मौसम खराब है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं का हौसला, उनकी भक्ति और श्रद्धा की शक्ति इतनी मजबूत है कि उसे रथ यात्रा के लिए भीड़ उमड़ चुकी है। थोड़ी देर में गुजरात के मुख्यमंत्री पाहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे और यात्रा शुरू होगी। सुबह 7:30 बजे ही ये वक्त शुरू हो जाता है। 16 किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू हो जाएगी। पूरी और अहमदाबाद रथ यात्रा में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का, एक खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money, money, money, money, every month.
6: Soch batlo aur bank bhi.
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
10: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
11: शारदा यूनिवर्सिटी. द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी. वेयर आर यू?
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
10: विमल, बोलो जुबां केसरी.
13: वी मस्ट राइज, वी मस्ट फाइट. दरअसल ईरान की सड़कों पर ऐसे पोस्टर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि ये सिंबॉलिक जो हाथ आप देख रहे हैं, ये पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का है. लेकिन अब ये हाथ जो है जिसमें उनकी अंगूठी हमेशा नजर आती थी, जो एक पावर का साइन था, वो अब ईरान में, खासतौर पर तेहरान के इलाकों में नजर आएगा, आजादी स्क्वायर पर नजर आएगा. आप देखते रहिए आज तक.
14: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं. एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं. इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत. दूसरे पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं. इसमें लिखा गया है दिल में बाबर, मुंह में राम. ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं.
15: जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे.
14: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है. खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था. कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई. आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई. अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है. उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है. खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जाँच के लिए गठित SIT की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है. आज तक ब्यूरो.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सॉरी।

0: राम मंदिर के दान पात्रों में चोर लग गए थे। ये खबर जैसे ही सामने आई, मंदिर ट्रस्ट ने यूपी सरकार से जांच की अपील की और फिर सीएम योगी ने जो एसआईटी बनाई उसने राम के नाम पर हो रही बहुत सी धांधलियों की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। 13 जून को सरकारी आदेश पर बनी एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के साथ लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन ने जांच शुरू की। जैसे जैसे मंदिर में चोरी की पड़ताल आगे बढ़ी, मंदिर व्यवस्था में बहुत सी गड़बड़ियों के खुलासे होते गए और तब जाकर मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद राम मंदिर के अंदर दान पात्रों से चोरी के मामले पर 3 जगह कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। एसआईटी पता लगा रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे के अलावा और क्या क्या घोटाले हुए। पुलिस पता लगा रही है कि इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है और अब सुप्रीम कोर्ट की नजर भी इस पर पड़ गई है, जिसने केंद्र, यूपी और एसआईटी को नोटिस जारी करके पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एसआईटी में रखे गए सदस्यों से लेकर अब तक की जांच में पाए गए तथ्यों की स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद अब एसआईटी को पहले रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है। शायद यही वजह है कि 15 जुलाई तक सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट अब देर से सौंपी जाएगी। वैसे अब तक की जांच में एसआईटी ने जो तथ्य सबूत पाए हैं और अंतरिम रिपोर्ट में जैसे संकेत मिले थे उसके मुताबिक फाइनल रिपोर्ट में न केवल कथित चोरी में सीधे तौर पर शामिल लोगों की पहचान की जाएगी बल्कि उस जवाबदेही की कड़ी की भी जांच की जाएगी जिसकी वजह से कथित गबन जारी रहा। इसमें दान पात्रों की कस्टडी से लेकर कैश की गिनती, बैंक तक ट्रांसपोर्टेशन, बैंक में जमा कराने से लेकर ऑडिटिंग तक के हर चरण पर जवाबदेही तय की जाएगी। इसके अलावा दान प्रबंधन के लिए बनी एसओपी, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस में पाई गई कमियों का भी जिक्र होगा। उधर खबर है कि अयोध्या पुलिस ने चोरी के पैसे की ट्रैकिंग के लिए इनकम टैक्स विभाग से जांच में मदद मांगी है, जिसमें शक के दायरे में ज्यादातर गिरफ्तार किए गए आरोपित और उनके परिजनों के खाते। पुलिस 8 आरोपियों और उनके परिजनों के करीब 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। इन खातों में 2022 से हुए लेनदेन की पड़ताल चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पैसे किन खातों तक पहुंचे, क्या उनका शेयर बाजार में निवेश हुआ, क्या चल अचल संपत्तियां बनाई गईं, या किसी दूसरे साधनों में पैसों का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस संदिग्धों के खातों के विस्तृत बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड, नॉमिनी की जानकारी और लेनदेन का इतिहास मांग रही है। इनमें नगद जमा, बड़ी रकम की निकासी, खातों के बीच ट्रांसफर और आरोपियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए निवेश का विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस को इन पड़ताल में अगर अन्य लोगों की मिलीभगत का पता चलता है तो आगे अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मिसाइलें, ट्रंप की सीधी धमकी, कहा डेडलाइन पसंद नहीं, ठीक से पेशा। तो वहीं कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर हुई बैठक, करीब दो घंटे तक चला मंथन, अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष रहे मौजूद।

0: काले हैं तमाम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित, प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। मेसी के दो जबरदस्त पास से इंग्लैंड को 2-1 से हराया, अब स्पेन से फाइनल में टक्कर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

वक्त है खास बुलेटिन सुपर आज का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे, साथ ही इसमें दिखाएंगे आपको कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले कहां कहां पर हुए हैं, कहां कहां ईरान में तबाही हुई है, इसकी भी जानकारी पूरी डिटेल के साथ आपको देंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ता डेंजर, इस पर भी एक एक अपडेट आपको देंगे और बताएंगे कि होर्मुज में कैसे ताजा हालात है, और बात रूस और यूक्रेन युद्ध की भी करेंगे, उस खबर पर भी करेंगे डिटेल से बात। और खबर पाकिस्तान की भी होगी जहां पर आटा की महंगाई वाली मुसीबत आ गई है। खबरें सियासत की भी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बैठक हुई, उसमें क्या कुछ हुआ इस पर देंगे आपको अपडेट। और खबर फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी भी, फाइनल में पहुंच गया है अब अर्जेंटीना, तो उसकी डिटेल भी आपको देंगे कि कैसे अर्जेंटीना पहुंचा। और सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका में जारी जंग की खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर, अमेरिका ने लगातार पांचवें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक और हेंगाम द्वीप पर कई धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान की मेयर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाके हुए। वहीं बंदर अब्बास, हेंगाम द्वीप और सिरिक के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल से भी तबाही मची है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तो ये ताजा तस्वीरें जारी की है जो आप देख रहे हैं, जिसमें अमेरिकी बेस से हमले के लिए लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और ईरान पर एयर स्ट्राइक की ये ताजा तस्वीर है। अमेरिका ने ईरान के कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट कर दिया है। मिडिल ईस्ट में महाजंग चल रही है। ईरान भी कुवैत के अलावा कई जगहों पर हमले कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, जिसको इंटरसेप्ट भी लगातार अमेरिका कर रहा है। ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के भी कई हमलों को नष्ट किया, उनको भी रिटेलिएट किया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन किन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ईरान में कई हमलों की आवाज सुनाई दी गई है। बंदर अब्बास, चाबहार, हेंगाम द्वीप और सिरिक, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने मिसाइल दागी और नॉनस्टॉप इन इलाकों पर अटैक किया गया है। ईरान का बंदर अब्बास, चाबहार, हेंगाम द्वीप और सिरिक, यहां पर अमेरिका ने मिसाइल दागी और इसके जवाब में ईरान ने कुवैत पर हमला किया। कुवैत पर ईरान ने मिसाइलें दागी है, उसकी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ताजा वीडियो अमेरिका की तरफ से भी जारी किया गया है। अब ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। इससे पहले भी बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया, चाबहार पर मिसाइलें दागी गई, हेंगाम द्वीप और सिरिक पर भी तमाम हमले किए गए हैं। नॉन स्टॉप अटैक अमेरिका कर रहा है। और ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी सेनाओं ने एक तेल टैंकर पर भी हमला किया। जानकारी के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने यह हमला किया है। कुराकाओ के झंडे वाला एमटी वेल्मा टैंकर पर अटैक कर अमेरिकी सेना ने उसे रोका और हमला किया। फिर बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की गई और टैंकर को कई चेतावनी भी दी गई, जिसको नजरअंदाज करने पर उस पर हेलफायर मिसाइल से हमला कर दिया गया और उसको रोका गया है। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने पर यह अटैक किया गया है। ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे तेल टैंकर को रोका गया। अमेरिका ने जवाब दिया है कि नाकेबंदी को तोड़ने की वजह से उस पर हमला किया गया है। कुराकाओ झंडे वाला एमटी वेल्मा टैंकर, उसको रोका गया और उस पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे उसको रोका गया है। तो अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने के जवाब में यह हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है। तो उधर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के मददगार देशों को निशाना बनाया। कुवैत और बहरीन पर फिर से ईरान ने हमला किया है। दरअसल फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमेरिकी बेस पर 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। जानकारी के मुताबिक बहरीन की सीमा में कई ईरानी मिसाइल गिरे, जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। वैसे कुवैत सेना ने बयान जारी कर कहा है कि कल तक 4 क्रूज मिसाइलें और 21 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया गया। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में भी सायरन की आवाज सुनी गई है। ताजा वीडियो जारी भी किए गए हैं।

अब आपको बताते हैं कि अमेरिका लगातार पांचवें दिन कैसे ईरान के ठिकानों को तबाह करने में लगातार जुटा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।

0: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हॉर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीजफायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनके सैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वे ठीक से पेश आए। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर इस जंग का अंत कब होगा? आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी लड़ाई को लेकर वो 10 बड़ी खबरें क्या है। उससे पहले जॉर्डन पर आज एक बार फिर से ईरान का हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने जॉर्डन में एक बार फिर से हमला किया। जॉर्डन के अजराक बेस पर ईरान के इस हमले में अमेरिका के मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया। हालांकि हमले में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है अभी तक इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी है। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है, जॉर्डन पर हमला किया गया, जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया है।

तो ताजा वीडियो आप देख रहे हैं। ईरान की मीडिया ने इस वीडियो के जरिए दावा किया है कि जॉर्डन में एक बार फिर से उन्होंने हमला किया है। जॉर्डन के अजराक बेस पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। अमेरिका के मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया है। ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइल दागी गई है, ईरान ने मिसाइल दागी है, अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। धमाकों की आवाज वहां पर सुनाई दी गई है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है और इसका ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि हमले में अमेरिका को अभी कितना नुकसान हुआ है, जॉर्डन पर ये जो हमला हुआ उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। तो 10 बड़ी अपडेट अब इस युद्ध से जुड़ी आपको दे देते हैं। अभी कहां कहां पर हमला हुआ है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इसको लेकर जानकारी आपको देते हैं। तो भीषण जंग चल रही है दोनों ही देशों के बीच। ईरान भी पलटवार कर रहा है। ऐसे में लगातार आज पांचवा दिन है एमओयू के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। वहीं ईरान के कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक और उन पर एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइलें दागी गई। साथ ही हेंगाम द्वीप पर भी कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है। वही होर्मुज पर एक तेल टैंकर पर भी अमेरिका ने हमला किया है, जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसा अमेरिका कह रहा है। कुराकाओ के झंडे वाले एमटी बिल्मा टैंकर पर भी अटैक किया गया। वहीं ईरान ने फिर से खाड़ी देशों पर हमला किया है। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान अटैक कर रहा है, यानी ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों में 35 लोगों की मौत भी हो चुकी है और ऐसे में ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में 300 से ज्यादा लोग उनके घायल भी हो चुके हैं, जिसके जवाब में लगातार ईरान हमला कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनमें से 72 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। 300 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में घायल हुए हैं, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, 72 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। तो ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से धमकी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी हद तक पता है और पूरी बात जानते हैं, उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि जल्द पता चल जाएगा कि हम उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। और अब बात रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर। दरअसल यूक्रेनी हमलों से रूस में भी होर्मुज जैसा संकट गहराया है। यूक्रेनी हमलों की वजह से एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही रुकी और पिछले 10 दिनों में रूस के 116 जगहों पर यूक्रेन ने हमला किया। इसमें 17 तेल टैंकर, 2 गैस टैंकर भी शामिल है। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदिक ने यह दावा किया है कि पिछले 10 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया और ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर अटैक भी किया गया है।

0: रूस के सामने खड़ा हुआ होर्मुज जैसा संकट। रूसी जहाजों पर यूक्रेन ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी जहाजों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब यूक्रेनी हमलों से रूस को बड़ा झटका लगा है। ड्रोन हमलों से जेलेंस्की ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे हमलों की वजह से रूस के एजोव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवर्दी ने बड़ा दावा किया है। ब्रोवर्दी ने कहा कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया, वहीं ब्लैक सागर में 20 जहाजों पर हमले किए। एजोव सागर लंबे वक्त तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा था। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया करता था, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखना होगा कि रूस इन हमलों का जवाब कैसे देगा। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर आवाम आटे के लिए मोहताज होने लगी है। वहां पर एक बार फिर से आटे का संकट गहरा गया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक किल्लत नजर आ रही है। इस्लामाबाद में गेहूं की सप्लाई रोक देने की वजह से कई आटा मिलों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने का कगार पर आ गया है। तो आटे की किल्लत को लेकर पाकिस्तान नजर आ रहा है। 45 आटा मिलों में स्टॉक खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है अब पाकिस्तान, और आटे की किल्लत पाकिस्तान में हो रही है। गेहूं की सप्लाई रोक देने की वजह से आटे का संकट पाकिस्तान में गहरा गया है।
0: पाकिस्तान में एक बार फिर रोटी के लिए संकट। इस्लामाबाद में गेहूं की सप्लाई रोकी गई। आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर इस्लामाबाद तक किल्लत के आसार। 45 आटा मिलों के पास गेहूं खत्म होने की कगार पर पाकिस्तान में एक बार फिर आटे को लेकर जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं शहबाज और मुनीर की जोड़ी को कोई सुझाव भी नहीं सूझ रहा है। इस्लामाबाद के लिए गेहूं की सप्लाई बाधित होने के चलते 45 आटा मिलों के पास अब कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, जिसको लेकर आटा मिल मालिकों ने सरकार को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो आटे की मारामारी मच जाएगी। आटे की कमी की आशंका के चलते शहबाज सरकार की नींद उड़ गई है, जहां एक तरफ पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं परिवहन परमिट को सस्पेंड कर दिया है, वहीं आटा मिल मालिकों की धमकी से शहबाज सरकार डर गई है।
2: जुड़वा शहरों के शहरी तैयार हो जाएं आटे के बहरान के लिए। इस्लामाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन का एक इंतबा जारी किया गया, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे जो परमिट हैं वो महकमा खुराक पंजाब की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए हैं। पंजाब से आने वाली गंदम पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो है निसार कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सबसे फसल नहीं होती, जो भी चीजें हैं सप्लाई है वो दूसरे सुबह से होती। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से जो है अपील करते हुए दिखाई दे रहे और कहा है कि फौरी जो है इसमें मुदाखलत की जाए और ये मसला फिलफौर हल किया जाए, वरना ना सिर्फ इस्लामाबाद की बल्कि रावलपिंडी की जो 5 मिल्स हैं आटे की वो भी बंद हो जाएंगी।
0: महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तानियों में अब आटा का डर सताने लगा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में गहराया ये संकट कब दूर होगा। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कर लेते हैं पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक की। पीएम मोदी के आवास पर कल बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है और 2.25 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम के गठन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बीजेपी संगठन में संभावित बदलावों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब बात मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति की कर लेते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के आवास पर आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेता शामिल होंगे, जिसमें सत्र के दौरान जनहित और राजनीतिक मुद्दों को उठाने तथा पार्टी की व्यापक संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने पर गहन चर्चा की जाएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो बात कर लेते हैं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवन में से 38 भवन को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है। प्राधिकरण ने संस्थान को 15 दिन का समय भी दिया है और वो इन भवन को स्वयं हटा ले, ये कहा गया है। तो वहीं रामपुर के पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी मेन गेट के भी बाहर ये आम रास्ता है का बोर्ड लगा दिया है और इससे विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और सार्वजनिक मार्ग को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है।
0: आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा पीडब्ल्यूडी का बोर्ड, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा रास्ता। यूपी में चुनावी घमासान से पहले रामपुर में अब सियासी गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट के रास्ते पर प्रशासन ने एक बोर्ड लगाकर उसे आम रास्ता बताया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से बोर्ड लगाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय का मुख्य गेट फिलहाल बंद है और वहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ऐसे में इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही अभी शुरू नहीं हो सकी है।
3: गेट यूनिवर्सिटी का बंद है, जैसे आम रास्ता है तो गेट खुलेगा?
4: बिल्कुल खुलेगा, अगर वो खोलने में आनाकानी करेंगे गेट को तो फिर हम पुलिस प्रशासन की मदद से जो उसको खुलवाएंगे, क्योंकि इसमें गेट हमें केवल स्टेन का गेट तोड़ने पे है, ना कि गेट खोलने पे। तो ये पब्लिक के सड़क है तो पब्लिक के लिए गेट नहीं खोलेंगे तो फिर प्रशासन हमारी इसमें हेल्प करेगा, हम वहां जाकर अनुरोध करेंगे।
0: वहीं यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासन का सख्त रुख देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की मार के। अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते काफी नुकसान पहुंचा। 26 जिलों के करीब 1,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अब तक 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है और 29 लोग घायल भी हुए हैं।
0: अरुणाचल प्रदेश में मानसूनी आफत का कहर, बाढ़ के चलते कई इलाकों में तबाही का मंजर। एक लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित। लगातार बारिश के बाद कुमेय नदी में उफान के चलते अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई इलाकों का संपर्क भी टूट चुका है। मलबे की चपेट में आने से कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ से पारसी पार्लो सर्कल और दामिन सब डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते 85,000 हेक्टेयर फसलें तबाह हुई। अरुणाचल प्रदेश में तबाही का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद ताई तागाक खुद मैदान में उतरे और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ताई तागाक ने केंद्र सरकार से विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि विनाश का पैमाना इतना बड़ा है कि अकेले राज्य सरकार इसे संभाल नहीं सकती। राज्य सरकार की माने तो बाढ़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। राज्य के 26 जिलों के 425 गाँव में बाढ़ से करीब 1,00,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहा है और राहत कार्य चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से युवराज मेहता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बात कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे और उससे पहले अहमदाबाद में सुबह 7 बजे से ही भव्य रथ यात्रा निकल चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में भी शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने के झाड़ू से रथ के आगे सफाई भी की। पुरी और अहमदाबाद में लाखों लाख श्रद्धालुओं के यात्रा में पहुंचने का सिलसिला जारी है।

0: तस्वीर आप देखिए, अब इस यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पुरी की तस्वीर और अहमदाबाद की ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। जोर शोर से तैयारियों के बीच इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। अहमदाबाद खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और ये दो तस्वीरें, एक तरफ पुरी में भी पूरा उत्साह के साथ इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा और शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना भी करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंचे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पर दर्शन भी किए, मंगला आरती की उन्होंने सुबह सवेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस ने 55वें मिनट और लोटारो मार्टिन्स ने 85वें मिनट में गोल किया और मुकाबले की शुरुआत में इंग्लैंड ने बढ़त भी बना ली थी। मैच के 55वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को बढ़त बनाई थी और लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने गोल कर बराबरी की और 85वें मिनट में लोटारो ने गोल कर जीत दिलाई। अब अर्जेंटीना फाइनल्स में स्पेन से भिड़ेगी और फाइनल की बात करें तो मुकाबला 19 जुलाई की रात 12:30 बजे से न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
4: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
13: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
14: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
12: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: यूट्यूब पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। आज तक वर्टिकल

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे हाचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे?
1: मैं सलमा।
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

की खबरों के बीच पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता।

इंद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से आएंगे बाहर। तीनों देवता अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे देवता, फिर 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा में लौटेंगे मुख्य मंदिर, 27 को मंदिर में करेंगे प्रवेश। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म को भी निभाया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले। कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की पर मुहर। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने दिया बूस्ट। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ रूपये का निवेश, 24 लाख रोजगार की उम्मीद। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण और गंगा किनारे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी हरी झंडी। कृषि क्षेत्र और किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को दी स्वीकृति। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद रहे। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद 21 को एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उससे पहले सर्वदलीय मीटिंग में टीएमसी होकर शामिल। कंप्रेस्ड बायोगैस और साथ ही प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की तारीख, 8 अगस्त तक भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म। अब 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, अगली 24 से 48 घंटे में आ सकती है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की बागी गुट में शामिल हुई थामा ऋतव्रता का साथ। मदन मित्रा की भी बागी होने पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। बोली, बीजेपी के इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का आदेश दिया। 6 हफ्ते में जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर। कावड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों का निरीक्षण। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त हुई। भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे और साथ ही जुगाड़ वाहन और साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह से बैन। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा आम रास्ता का बोर्ड। पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोला। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड विवाद पर फिर से चर्चा शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोले, सरकार के पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट। सुप्रिया सुले ने परिसीमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट को बताया कले। कहा, एनसीपी एसपी के परिसीमन बिल का समर्थन करने की अफवाहें बेबुनियाद है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील की। 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त हुई। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था। एफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर व्यापार बंद कराया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं लैब में। रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुणे रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंची। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में गए थे राजस्थान, तो वहीं पुलिस को शक है कि वहीं हुई थी दोनों की गुपचुप शादी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिर में तलाशी ली। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड की दिलाई थी बढ़त। और वहीं आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो ने किए गोल। वहीं मेसी के पास पर दोनों गोल हुआ और मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 19 जुलाई को न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स। सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी की गई। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच। आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले ही खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड।
टूर्नामेंट के शुरुआती मैच को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि

शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला होगा। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, और अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक कुमारी भीषण टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में दो पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े, सीसीटीवी वायरल। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र। मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता हुआ नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने किए दर्शन, फिर की रेकी, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर की चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुआं के गुबार। नोएडा के ममूरा में 5 मंजिला घर में भीषण आग लगी, 2 लोगों की मौत हुई। इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से पूरा हादसा हुआ। नोएडा के ममूरा में आग के लपटों की वजह से फंसे 40 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे में समय रहते हुए 50 परिवार मौजूद थे। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी विकराल आग, धुएं का गुबार देखकर इलाके मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड में चलती स्कॉर्पियो एन कार से निकला धुआं, मिनटों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हुई। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी भयंकर आग, मौजूदा वाहन चालकों में मची अफरा तफरी। डर के कारण गाड़ियां छोड़ने पर भागने को मजबूर हुए लोग। पालघर में मीरा रोड पर एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर लगी आग, समय रहते हुए आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा चला। नासिक के भावली डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़, विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा किया गया, चलती कार पर की गई पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर से भरा ट्रक किया गायब, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। कर्नाटक के बेलगावी में जिमखाना क्लब में हुई गोलीबारी, कारोबारी की हत्या की कोशिश में हथियारों के साथ बेखौफ घूमते दिखे आरोपी। झारखंड के गढ़वा में जुआ खेलने और कमीशन के लेन देन को लेकर विवाद में युवक को मारी गई गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर किसान को गोली मारने का आरोप, घायल बोला आए थे जमीन कब्जाने। पटना के टीवीएस शोरूम में घुसकर लूटपाट और मारपीट की गई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जांच के लिए एसआईटी गठित। मुजफ्फरपुर में जमानत पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक पर मिला शव, इलाके में सनसनी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद जलाया गया शव, पुलिस ने जमीन विवाद में वारदात को अंजाम देने की जताई आशंका। जयपुर के आमेर घाटी में तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई, 1 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, 3 नाबालिग समेत 4 हिरासत में लिए गए। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में 1 की मौत हुई, 11 घायल। रायसेन में 2 भाइयों ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ, खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। जयपुर में पूर्व जज के बेटे ने बहन पर किया जानलेवा हमला, कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, 22 गांव का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़, गांव और स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गंगटोक में भी जोरदार बारिश हुई, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, उसके साथ मौसम सुहावना हुआ लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान में हुई काफी ज्यादा गिरावट। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने के कारण मौत हुई, 1 घायल।

आपका देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह 8:52 तक, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 7:52 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 7:52 तक राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।

बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

भाव समाप्त होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते।

होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

वे होंगे धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि।

कहानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: परंपरागत उद्यम फिर से पुनर्जीवित हो चुका है जिसने कभी यूपी को एक पहचान दिलाई थी। याद करिए आजादी के तत्काल बाद 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का जो योगदान था वह 14% था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो घट करके मात्र 7% के आसपास रह गया था। यानी देश प्रगति कर रहा है लेकिन यूपी अवनति की ओर था। लगातार उसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। कारण था अन्नदाता किसान को पानी नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान को समय पे बीज नहीं मिलता था, अन्नदाता किसान के लिए बिजली नहीं थी, किसान अपने खेत में जाने से डरता था, पैदावार हो गई फसल और ज्यादा हो गई वह भी एक समस्या थी क्योंकि उसका दाम किसान को नहीं मिलता था, बिचौलियों को मिलता था। एग्रीकल्चर यूपी के आधार थी, सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग पावर जब परंपरागत उद्यम के साथ जुड़ती है तो परिणाम देती है, इकोनॉमी को तेज करती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क था लेकिन पिछली सरकारों के इंस्पेक्टर राज ने उसको तबाह कर दिया था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाता था, कहीं विभागीय उत्पीड़न के शिकार वे लोग होते थे। न उन्हें टेक्नोलॉजी दी गई थी, न उनको डिजाइन दी गई, न उनके लिए पैकेजिंग की सुविधा थी, न उनके लिए मार्केट की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था। परिणाम था हताश और निराश होकर के लोग। जो किसान यूपी के अंदर कभी आत्मनिर्भर इकाई बनकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत करता था, जो कारीगर कभी यूपी के अंदर उद्यमी था, वो प्लान कर चुका था, कारीगर श्रमिक बन गया, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को तो डूबना ही डूबना था और यही यूपी के अंदर हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से 2026 के बीच में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। आज किसान के लिए समय पे बीज है। आप याद कर रहे होंगे इस समय अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी लेकिन यूपी में किसानों को फर्टिलाइजर समय पे मिल रहा है, पेस्टिसाइड समय पे मिल रहा है, सीड समय पे मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने 24 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक हुई, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे के साथ बैठक। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर हुई मीटिंग। तो वहीं उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित।

0: सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा पराश। बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला आज शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल दिल्ली में बैठकों के दौर से सियासी पारा दिल्ली में चढ़ा हुआ है। ऐसे में कल पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग होगी, तो आज सोनिया के घर पर भी मंथन होगा। देश की ये सब बड़ी सियासी खबर पर डिटेल आपको देंगे। वहीं क्या ममता बनर्जी के अभिषेक प्रेम की वजह से टूट रही है उनकी पार्टी। बगावत के बाद मदन मित्रा ने क्या तीखा हमला किया है, बताएंगे आगे। वहीं मेसीमई में हुआ है अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटीना में जबरदस्त जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की सियासत की दो बड़ी अहम खबरों के साथ। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और कल पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक हुई। तो आज सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री वीएल संतोष की पीएम आवास पर यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन में फेरबदल की अटकलें काफी तेज है।
1: संसद के मानसून सत्र में महज 4 दिन बाकी रह गया है और उमस भरे मौसम में दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजधानी के राजनीतिक तापमान को बढ़ाने में बीजेपी की लगातार 2 बैठकों ने अहम भूमिका निभाई है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। करीब 2 घंटे के इस मंथन में कौन सा अमृत निकला इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम का गठन और संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक 1 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक के बाद हुई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 6 सांसदों के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की थी। इस बीच राजधानी में आज एक और अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस संसदीय पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर यह बैठक होने वाली है। संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 अगस्त को शुरू होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल देर रात तक जो बैठक हुई, कई घंटों तक वो बैठक हुई है, उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है, डिटेल सामने आई है कि बैठक में क्या मुद्दों पर बात हुई है?
2: देखिए पूजा, आधिकारिक डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मानसून सत्र से पहले राजनीतिक पारा दिल्ली में बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं और कल जो बैठक हुई है वो इन सभी बैठकों की सबसे बड़ी बैठक कही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक हुई जिसमें न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे बल्कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि जो चर्चा हुई है वो न सिर्फ आने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई है बल्कि नितिन नवीन की अपनी टीम को लेकर भी चर्चा हुई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार क्यास लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन की टीम में कौन ऐसे नेता होंगे, किनको जगह मिलेगी, किसको किस तरह का पद मिलेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर होती हुई साफ नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे बीजेपी को नए नेताओं के नामों की सूची जारी करते हुए, क्योंकि चर्चाएं ये भी है कि कैबिनेट रिशफल होना है तो कैबिनेट रिशफल से पहले संगठन में रिशफल हो, उसमें बदलाव हो, इसकी जरूर प्राथमिकता बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए ये बैठक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब बैठक में सबसे बड़ी बात यह रही कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे, तो संगठन के अनुरूप भी चर्चा हुई। अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है क्योंकि मानसून सत्र भी आ रहा है साथ साथ।
0: बिल्कुल पीयूष, मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस में भी आज एक बैठक होने वाली है। अमित भी हमारे साथ जुड़ गया। अमित, कांग्रेस की जो बड़ी बैठक मानसून सत्र से पहले होने वाली है उसका क्या एजेंडा सामने आया है?
3: देखिए पूजा, मानसून सत्र है और इंडिया गठबंधन के लिए फिर से ये सत्र बेहद ही अहम हो गया है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2 बहुत ही अहम बिल लेकर आ रही है जिसमें डिलिमिटेशन बिल को फिर से संसद के सामने, सदन के सामने रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पहले अपनी आंतरिक रणनीति को बनाना होगा और ये भी तय करना होगा कि सरकार को आखिरकार वो किन मुद्दों पर घेरने जा रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो या फिर डिजिटेशन बिल को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत हो। तो एक बार जब ये रणनीति बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद सोमवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक होगी, पार्लियामेंट के अंदर ही वो बैठक होगी और फिर वहां से स्ट्रैटेजी तैयार होगी। लेकिन पूजा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन के लिहाज से यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले सत्र और इस सत्र में फर्क ये होगा कि टीएमसी है वो टूट चुकी है पूरी तरह से, डीएमके इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुका है और इसके साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि एनसीपी एसपी की तरफ से भी डिलिमिटेशन बिल पर दो राय नई राय बनाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने घर को सुरक्षित करना होगा और फिर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी रणनीति तैयार करना होगा, जिसके लिए आज सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सांसदों की बैठक होने वाली।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। चुनावी हार के बाद मुश्किलों से जूझ रही ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। दरअसल ममता के करीबी रहे मदन मित्रा ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है और ऋतव्रत बनर्जी के खेमे में मिलने के बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मदन मित्रा ने कहा है कि तृणमूल को छोड़कर भी मैं तृणमूल में ही हूं। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से माफी मांगता हूं लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि टीएमसी में तौर तरीका बदल ही नहीं रहा था।
4: तृणमूल कांग्रेस की जितना सारी पद थे, मजा यह है मैंने सबसे इस्तीफा दे दिया लेकिन इस्तीफा देने को बाद जिस गोद में बैठे हैं वो भी तृणमूल का ही गोद है। तो जो छोड़ा छोड़ा लेकिन नहीं गया, साथ में रह गया क्योंकि हम तृणमूल कांग्रेस में ही हैं। हमारा स्लोगन है वोट दिन वोट दिन, जोड़ा फूले वोट दिन, आमड़ा काड़ा तृणमूल। तो हम तृणमूल छोड़ा ये सही है लेकिन तृणमूल का साथी है, तृणमूल का घर है ये, तृणमूल का घर में ही बैठे हैं हम। ममता बनर्जी से माफी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं कि हम आपको साथ छोड़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हम रोज एक महीना गया, रोज शाम को जाके ये सभी लोग गया, ये बदलने का कुछ नहीं, बदलने वाला कुछ नहीं।
0: पार्टी महासचिव बनाए जाने के 11 दिन बाद ही मदन मित्रा बागी हो गए और तमाम पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद वो सीधे बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी के पास पहुंच गए। मदन मित्रा ने टीएमसी में टूट के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। मदन मित्रा ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में टीएमसी बिखर रही है।
4: हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है, पार्टी सबके लिए है, सबका है लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए देखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े।
0: ममता बनर्जी ने मदन मित्रा के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी सिर्फ एक बहाना है। ईडी के नोटिस को ममता ने मदन मित्रा की वजह बताया।
5: ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा कोलकाता से। अनुपम, जो मदन मित्रा कह रहे हैं, क्या वही बगावत की वजह लग रही है या फिर जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसमें सच्चाई है?
6: जी देखिए, सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को ईडी ने समन किया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और उसके ठीक बाद ही मदन मित्रा जो इतने दिनों तक ममता बनर्जी के साथ थे, आपको याद होगा जब 2 जून के बाद से टीएमसी में बगावत शुरू हुई थी और उसके बाद एक अलग गुट हो गया, उसके बावजूद जहां सांसद भी टूटे, मदन मित्रा लगातार ममता बनर्जी के साथ बने हुए थे, बहुत पुराने बहुत खास साथी रहे हैं ममता बनर्जी के। लेकिन अचानक से उनका जाना, तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या वो दबाव में हैं, क्या ईडी की टीम ने जब उनकी पत्नी और उनके दो बेटों को समन किया, बुलाया, क्या इस दबाव में उन्हें छोड़ना पड़ा? तो यह सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाया है। हालांकि यह भी सच है कि अब तृणमूल कांग्रेस में जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी और बहुत खास लोग थे, उसमें भी टूट आनी शुरू हो गई है। पहले फिरहाद हकीम गए, जो माना जा रहा था कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी साथी हैं, और अब मदन मित्रा का जाना एक तरह से निसंदेह ये जो ममता बनर्जी
0: बारी बारी से सभी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी पर ही सवाल उठा रहे थे, तो क्या लग रहा है, क्या बागियों की सूची में अब आगे और कोई नाम भी शामिल हो सकता है?
6: देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरीके से बेहद करीबी लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में ये कह पाना कि कोई और ममता बनर्जी के साथ अंत तक बना रहेगा या गुट नहीं छोड़ेगा, अलग गुट में नहीं जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है, ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत खास और अहम साथी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज जो ममता बनर्जी के पक्ष में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कल तक फिरहाद हकीम या मदन मित्रा तो कल तक ममता बनर्जी के पक्ष में सवाल कर रहे थे, अचानक से उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और लोग जो अब तक आज तक ममता बनर्जी के पक्ष में ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे हैं, और जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, यह भी हो सकता है, आशंका है कि और भी कुछ लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ दे। अब देखिए, कुल सांसद जो है उनमें से संख्या काफी कम हो गई है, अब राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर कुल 17 सांसद ही ममता बनर्जी के पास रह गए हैं, जब भी एक समय 41-42 सांसद हुआ करते थे 2 महीने पहले तक, वहीं पर जो विधायक हैं 80 में से कुल मुश्किल से 20 विधायक फिलहाल ममता बनर्जी के साथ हैं, तो ऐसे में ये जो संख्या है ये धीरे धीरे बढ़ रही है बागी गुट की, और जो ममता बनर्जी के साथ लोग हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये तो सच्चाई है और वास्तविकता है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की। दरअसल जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है, और रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे।

0: आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर किया यूनिवर्सिटी की इमारतों का निर्माण। रामपुर प्रशासन ने आजम खान को दिया 15 दिन का वक्त, अवैध निर्माण हटाओ वरना तोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आजम खान यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिन का समय मिला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है।
1: ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उनको ने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन हैं बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके दोषीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है।
0: अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान मंत्री थे। शहरी विकास मंत्री रहते ही उन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की तहसील सदर के सिंखेड़ा गांव में है। जब इमारतों का निर्माण हुआ तो ये क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत था। उस वक्त 2 भवनों का नक्शा आजम खान ने पास कराया था, लेकिन 2024 में ये पूरा इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण को मिल गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने निर्माण को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान साफ हुआ कि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 2 भवनों का नक्शा था, लेकिन निर्माण किए 40 भवन।
1: जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से RDA ने टेक ओवर किया है, तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के दोस्तीकरण से संबंधित, वो अब RDA को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर RDA ने दोस्तीकरण का आदेश पारित किया है।
0: यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की मेन गेट की जो सड़क है वो भी आजम खान ने सरकारी फंड से बनवाई थी। अब लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया है। PWD ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बोर्ड लगा दिया है कि ये सार्वजनिक रास्ता है।
2: इसका जो बोर्ड का एरो है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये बोर्ड का एरो जो है यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर, जो इसके अंदर जो रोड है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सरकार प्रशासन ने इसको आम रास्ता घोषित किया है। ये आम रास्ता है, जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस है।
0: जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 4 लेन की CC रोड है। PWD ने 2016 में इसे स्वीकृति दी थी। उस वक्त इसकी लागत 16 करोड़ के आसपास थी, जिसमें लगभग 13 करोड़ 50 लाख में काम किया गया था। लेकिन 2019 में यूनिवर्सिटी ने रास्ता बंद कर दिया। मामला हाई कोर्ट तक गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डिसमिस हो गया। उसके बाद लोअर कोर्ट में फिर केस आया। लोअर कोर्ट ने PWD के पक्ष में फैसला दिया। जौहर यूनिवर्सिटी फिर हाई कोर्ट गई। अब मामला विचाराधीन है। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग ने ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया है। आमिर खान, रामपुर आज तक।
3: हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, जब हाईकोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है तो फिर अचानक से ये सब एक्शन आखिर क्यों हो रहा है?
4: देखिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके लिए कह सकते हैं बुलडोजर एक्शन एक बड़ा एक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये उन मानचित्रों पर है जहां पर रामपुर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इस बात को पुष्टि की है और नोटिस जारी किया है कि जो 40 कमरे बनाए गए थे भवन अंदर, यानी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें से 38 बिना नक्शा पास किए ही पास बना लिए गए हैं। अब उनको ध्वस्त किया जाना है, उसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। 15 दिन सुनने का वक्त दिया गया है कि या तो खुद वो अपनी बिल्डिंग को तोड़ ले, नहीं तो जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो खुद इसको तोड़ देगी। इससे पहले जो सुनवाई में जो सबूत उन्होंने पेश किए, जिससे संतुष्ट नहीं हुआ है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद अब ये बड़ा बुलडोजर का एक्शन होता है। यानी कि 40 पूरे कमरे जो बने हैं उसमें से 38 तो अवैध हैं, और इसको लेकर ही पूरी तरीके से अथॉरिटी ने ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं सारे मैप के बिना बनाए गए थे, और इसको लेकर ही ये नोटिस जारी हुआ है। रही बात जो आम रास्ता है बाहर का, वहां पर वो पहले आम रास्ता था जो गवर्नमेंट के फंड से बना था, जिसके बाद अब ये बताया गया कि पहले से ही 2019 के बाद से ही उसमें कब्जा कर लिया गया था, और कब्जा करने के बाद उसमें अपने आप ही वहां पर रोड चलाई जा रही थी। तो उसको फ्री किया गया है, एक कॉमन वे दिया गया है कि वो आम रास्ता है। तो कहीं ना कहीं ये जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आजम खां के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो बुलडोजर एक्शन है वो विद इन 15 डेज चलना है, और नोटिस पारित कर दिया गया है,
3: अल्टीमेटम दिया गया है बस आजम खान को। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल एमपी में इसी मानसून सत्र में सामान्य नागरिक संहिता विधेयक आ सकता है, और मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट सीएम मोहन यादव को सौंप दी है, और अब माना जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में एमपी सरकार में इसे विधानसभा में पेश कर सकती है, और 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा। दरअसल 5 दिन का सेशन है और इसी में ये पेश किया जा सकता है।

0: तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी यूसीसी की राह पर निकल चुका है और एमपी के समान नागरिक संहिता में क्या खास है जो जानकारी हमें मिली है आपको बताते हैं। दरअसल इस ड्राफ्ट को बनाने में मध्य प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है और आपको भी बता दें कि जेसीसी से अनुसूचित जनजातियां इसमें बाहर है। विवाह, तलाक और साथ ही भरण पोषण पर प्रावधान किया गया है। साथ ही उत्तराधिकारी, दत्तक और साथ ही लिव इन पर भी प्रावधान किए गए हैं। लैंगिक समानता और एमपी के रीति रिवाज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये ड्राफ्ट तीन भाग में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों का अध्ययन और संरक्षण है और वहीं पहले भाग में 10 अध्याय भी शामिल है। दूसरे भाग की बात करें तो उसमें यूसीसी का पूरा मसौदा है जिसमें 4 भाग, 404 धाराएं, 7 अनुसूचित जातियां हैं और तीसरे भाग में जनता से प्राप्त सुझावों पर आधारित रिपोर्ट भी शामिल है। तो समिति को 9,58,000 से अधिक सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और भाग तीन में लिंगवार और साथ ही समुदायवार विश्लेषण भी शामिल है। तो आपको ये बता,
1: 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है।
0: हम बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका में जारी जंग की। दरअसल अमेरिका ने लगातार 5वें दिन ईरान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह, चबहार, सिरिक और हंगाम द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान की मेयर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाके हुए। वहीं बंदर अब्बास, हंगाम द्वीप और सिरी के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये ताजा तस्वीरें भी जारी की है जिसमें अमेरिका के बेस से हमले के लिए लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है और ईरान पर एयर स्ट्राइक की ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट कर दिया है।

0: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। होर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनके सैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाज उसे गूंज रहा है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वे ठीक से पेश आए। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर इस जंग का अंत कब होगा? आज तक ब्यूरो।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, युद्ध अब किस मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है? क्या अब सुलह का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ट्रंप लगातार एक के बाद एक नई धमकी भी दे रहे हैं?
2: वो तो आदत है पूजा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी देना बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चारा नहीं है दोनों देशों के लिए। खासतौर से अगर हम देखें कि जिस अंदाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर इस कन्फ्लिक्ट या इस युद्ध से असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। यही कारण है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अब्बास अराग़ची, वो कल कतर गए थे। वो वहां के अमीर के कंडोलेंस के लिए वहां पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर या पर्दे के पीछे कहें तो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप से सीधा संवाद नहीं हो ईरान का, लेकिन जो मीडिएटर है कतर खासतौर से और खाड़ी के दूसरे देश, वो चाहते हैं कि ये तनाव जल्द से जल्द खत्म हो। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कोशिश है, पांच दिन से लगातार जिस अंदाज से अलग अलग शहरों को जो है निशाना बनाया जा रहा है और अब मौतें भी हो रही है। 7 सैनिक ईरान के मारे गए हैं और ईरान का कहना है कि 30 लोग भी मारे गए हैं, 300 के करीब घायल हैं। उस बीच कल
1: 300 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत का दावा भी ईरान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी के लिए। बात फीफा वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। दरअसल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुका है और कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। खास बात यह रही कि मैच में 85 मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 0-1 से पिछड़ी हुई थी।
3: मेसी में हो गया है अर्जेंटीना, तस्वीर अर्जेंटीना के न्यू क्वीन प्रांत के कर्टलको की है। स्टार फुटबॉलर मेसी की मूर्ति के आगे झंडा लहराकर फैन जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा है। फैंस की खुशी की कोई सीमा नहीं है। ब्यूनस आयर्स की सड़कें नीली सफेद रंग में रंगी हुई हैं। अर्जेंटीनी टीम की पोशाक में सड़कों पर जमा हजारों लोग जश्न में डूबे हैं। जमकर आतिशबाजी हो रही है। हर तरफ सिर्फ जश्न दिखाई दे रहा है। यह खुशी इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पचासी मिनट तक हार की कगार पर खड़ी टीम ने मैच के आखिरी 7 मिनट में ऐसी वापसी की जिसने फिर दुनिया को दिखा दिया अर्जेंटीना क्यों है चैंपियन टीम। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में एंथोनी गार्डन के गोल से बढ़त बनाई। 85वें मिनट तक अर्जेंटीना 0-1 से पीछे था, लेकिन फिर शुरू हुआ मेसी मैजिक। लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल उन्हीं की शानदार असिस्ट से आए। पहले 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा और फिर इंजरी टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल करके इंग्लैंड के सपनों को तोड़ दिया। जैसे ही अंतिम सीटी बजी, अर्जेंटीना में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा।
1: आज कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम दूसरा टी20 मैच खेलने उतरेगी और तीन मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे भी है। अगर आज टीम इंडिया जीती तो सीरीज में 2-0 से बढ़त भी मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना भी करेंगे और उससे पहले अहमदाबाद में सुबह 7 बजे से ही भव्य रथ यात्रा शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने के झाड़ू से रथ के आगे सफाई भी की और पुरी और अहमदाबाद में लाखों लाख श्रद्धालुओं की यात्रा में पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तो बिना ब्रेक के खबरें जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले वक्त हो गया है इस वक्त की सुर्खियों का।

अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे साथ बैठक। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर हुई मीटिंग। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। वहीं रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। मेसी के दो जबरदस्त पास से इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब स्पेन से फाइनल में टक्कर।

ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी। पावन रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। सुबह से जारी विधि विधान से पूजा अर्चना। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी किया गया शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का दिखा झलक। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह

कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला। बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड के सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटी के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत। जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील में तबाही हुई। हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मचा। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटल्स में पुलिस ने की छापेमारी। देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। कई युवतियां और युवक को पुलिस ने किया डेटिंग। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा। वज्रपात से अलग अलग गांव में 2 किसान की मौत हुई, 1 घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान 1 की मौत हुई। पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई। सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। सामान भी जब्त किए गए। मेरठ में दिव्यांग युवक से अमानवीय बर्ताव का वीडियो वायरल हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने काम दिलाने का झांसा देकर किया प्रताड़ित। वाराणसी में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। विजिलेंस टीम ने पकड़ा। वहीं राजस्थान के कोटपूतली में बाघ के रेस्क्यू के दौरान जमकर बवाल मचा। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी के आंदोलन जारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। पीड़ित लोगों ने समस्या सुनाते हुए कई आवेदन भी सौंपे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी में पूरा हादसा मसूरी का कैद हुआ और वायरल हुआ। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 पूर्व AOA पदाधिकारी भिड़े। सीसीटीवी वायरल। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र। मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता आया नजर। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने दर्शन किए, फिर की रेकी, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर की चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भयंकर आग। दूर तक दुखा आग के धुएं का गुबार। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। टायर फटने की वजह से घर में घुसी ट्रक और सो रहे 3 लोगों की कुचलकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को निकलवाया और कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी विकराल आग। धुएं का गुबार देखकर इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड में चलती स्कॉर्पियो एन कार से निकला धुआं। मिनटों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग। गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हुई। मुंबई के होस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी भयंकर आग। मौजूदा वाहन चालकों में मची अफरा तफरी। डर के कारण गाड़ियां छोड़कर भागने को मजबूर हुए लोग। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 3 नाबालिग समेत 4 हिरासत में। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 1 की मौत, 11 घायल। रायसेन में 2 भाइयों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ। खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। जयपुर के पूर्व जज के बेटे ने बहन पर किया जानलेवा हमला। कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील की। 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था और एफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर व्यापार बंद कराया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुणे रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंची। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में गए थे राजस्थान। पुलिस को शक वहीं हुई थी दोनों की गुपचुप शादी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिर में तलाशी सब। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, 22 गांव का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान। तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड के आती है भीषण बाढ़। गांव और स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर। वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, कई इलाके पानी में डूब गए। सिक्किम के गैंगटॉक में जोरदार बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है भारी बारिश, तापमान में आई काफी ज्यादा कमी। लखीसराय में

0: बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांव में दो किसानों की बिजली गिरने की वजह से मौत हुई, एक घायल। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो मार्टिन्स ने गोल किए। मेसी के पास पर हुआ दोनों गोल। मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 19 जुलाई को न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स, सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी की गई। कार्डिक में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच, आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने एक ऐतिहासिक बदलाव किए। कई इस नए नियम के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम। मुंबई इंडियंस का कप्तान, मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला आएगा। अगले साल से पूरी तरह से बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फीडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे और उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। लगातार 5वें दिन भी जारी ईरान पर अमेरिका के हमले, कई शहरों में धमाके की खबर। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेतावनी दी। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा उन्होंने डेडलाइन देना पसंद नहीं और ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर, बोले ज्यादा खर्च नहीं उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना। वेंस ने कहा अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेनकॉम ने बताया कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने बने निशाना जालमान का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर। बहरीन में वजह सायरन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी सतर्कता। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत हुई जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं और 1 नाबालिग भी शामिल। दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे, ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। अरब सागर में अमेरिकी कार्रवाई, ईरान जा रहे तेल टैंकर को रोका। सेंटकॉम ने मिसाइल हमले से जहाज को किया निष्क्रिय। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट, गेहूं की सप्लाई रुकने की वजह से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर। पंजाब सरकार पर बिना लिखित आदेश गेहूं परमिट रोकने का लगाया गया है आरोप। करीब 8,000 टन सप्लाई बाधित हुई। ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई की चेतावनी जारी की गई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने दिया चेतावनी, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी होंगी बंद। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कॉप्स का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियां और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्रीराम पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना के श्रीकृष्ण संबंधी बयान पर मचा बवाल। वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग तेज। बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। 5वें दिन बीआरएस का समर्थन, किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का ऐलान किया। अमेरिका के यूटा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख, हर संभव काउंसलर सहायता का भरोसा। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा आम रास्ता का बोर्ड, वही पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोला। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड विवाद फिर से चर्चा में बना। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोले सरकार के पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद गुट पवार। वहीं सुप्रिया सुले ने परिसमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स को बताया अटकले, कहा एनसीपी एसपी के परिसमन बिल का समर्थन करने की अफवाहें बेबुनियाद। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया डांस सॉन्ग आया सामने, मैंने दिल तुझको दिया रिलीज हुआ। इस गाने को नकाश अजीज ने गाया है और इंद्र कुमार ने लिखे हैं वो। वहीं बदली जा सकती है श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईटा की रिलीज डेट। यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अब 28 अगस्त को रिलीज हो सकती है फिल्म। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म ने 33वें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया 27 लाख का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिर से मचेगा रू बाबा का धमाल। दरअसल जल्द से शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 4 की शूटिंग। मेकर्स ने किया कर फिल्म जननायकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने दी है कुछ खबरें। मूवी की रिलीज डेट का अनाउंस किया गया, फिल्म 23 जुलाई को होगी रिलीज। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार ट्रक घर में जाकर घुस गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ट्रक का टायर फटने की वजह से हुआ। घर में 3 लोग सो रहे थे जिन्हें ट्रक ने कुचल डाला। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। सीमेंट से लदा ट्रक वाराणसी से सोनभद्र की तरफ जा रहा था। वहीं गुस्साई भीड़ ने वाराणसी सोनभद्र हाईवे जाम कर दिया है और जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। 3 लोगों की मौत की खबर इस पूरे हादसे में सामने आई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं जयपुर की आमेर घाटी इन दिनों हादसों को लेकर चर्चा में है। एक बार फिर से इस घाटी में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस पूरे हादसे में एक युवक की मौत हुई है। इसके पहले 9 जुलाई को एक बाइक कार से टकराई और दोनों ही हादसों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये मोड़ कितना खतरनाक है और हादसों की वजह ये मोड़ बन गया है। आमेर घाटी में एक हफ्ते में ये चौथा हादसा हुआ है। जयपुर आमेर घाटी में एक और हादसे की ये तस्वीर सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और इस मोड़ को काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, 2 बाइक आमने सामने आती है, उनकी भीषण टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो वही गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर जमकर मारपीट हुई है जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए, वीडियो में लिफ्ट के अंदर एक महिला सहित 3 लोग नजर आ रहे हैं और महिला के निकलते ही झगड़ा मारपीट में बदल गया। वीडियो में 2 लोगों के बीच हाथापाई होती हुई दिख रही है। दोनों पहले AOA के पदाधिकारी रह चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में किए गए कमेंट्स पर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और लिफ्ट में अकेले मिले तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। महिला के निकलने के बाद ही दोनों शख्स एक दूसरे पर चढ़ गए और मारपीट शुरू कर दी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ये लिफ्ट के अंदर एक दूसरे पर मारपीट की गई। तो अब खबर गुरुग्राम में। एक ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने उससे रंगदारी मांगी है और जान से मारने की धमकी दी है। ठेकेदार को धमकाने पहुंचे बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें काली स्कॉर्पियो का काफिला नजर आ रहा है। ठेकेदार का कहना है स्कॉर्पियो में करीब 50 से 60 बदमाश पहुंचे थे। पीड़ित ठेकेदार ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
9: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
10: वाह वाह वाह वाह।
9: सेबी और NSE का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
11: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
12: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स, और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
15: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
16: In association with Hint, बड़े आराम से
17: शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at शारदा यूनिवर्सिटी, where are you?
18: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
19: विमल बोलो जुबां केसरी।
20: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
21: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
20: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ बाराबंकी सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
5: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
4: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।

0: छतरी ना खोल बरसात में,
1: आहा भीग जाने दे
0: मेरी छतरी के नीचे हाचा।
1: क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी?
0: सलमा या कमला?
1: सलमा भी थी, कलमा भी होगी, ये कमला भी होगी।
2: अरे आप कमला गाओगे,
1: सलमा
2: ये सलमा गाएंगे।
1: कोई तो आगे और पीछा होगा मामला।
0: मैं कमला पसंद, ये सलमा पसंद। नेताओं ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया है जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट जो है आजकल सबसे ज्यादा है, तो का ही कर सकते हैं आप। और सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं, संघ ने इधर लेटर जारी कर दिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे साथ बैठक। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर हुई मीटिंग। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। मेसी के दो जबरदस्त पास से इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब स्पेन से फाइनल में टक्कर।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ फिर से हाजिर है। सुबह सुबह जहां ईरान अमेरिका में बम बारूद जारी है, वहीं गुजरात में जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रथ यात्रा निकाली गई। आज सुबह में इन खबरों के साथ हमारी नजर जिन खबरों पर होगी उनमें खास है दिल्ली में मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का दौर। कल पीएम आवास पर बीजेपी के दिग्गजों का मंथन चला, तो आज एक घंटे बाद सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। हम दोनों खबरों की तह में जाएंगे, साथ ही बताएंगे कि अपने भतीजे के बारे में ममता बैनर्जी ने क्यों कहा कि वो शेर की तरह लड़ रहा है। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर बात राम रहीम तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का, जहां सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इसे सरकार और बीजेपी की नई टीम से जोड़ा जा रहा है। तो आज होने वाली कांग्रेस की बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तय होगी। विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस के बड़े नेता मंथन करेंगे। तो इन बैठकों में कल रात जो बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, वो एक उच्च स्तरीय बैठक रही। सात लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। बैठक की कोई औपचारिक जानकारी तो नहीं आई है। माना जा रहा है कि करीब दो घंटे की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम का गठन और इसके साथ साथ संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक एक दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह के घर पर भी बैठक हुई थी और ये उसके बाद हुई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और छह सांसदों के साथ महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की थी। तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, ये जो बैठकें हुई हैं, एक लगातार दौर चला आ रहा है बैठकों का, क्यों अहम हो जाती है टाइमिंग के हिसाब से, ये हमें समझाएं।
1: ये देखिए, कुछ दिनों में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा कर रही है और लगभग तैयारियां सरकार ने कर ली है कि कौन से ऐसे बिल हैं जिनको सरकार लेकर इस बार आने वाली है। अब अगर हम बात करें डिलिमिटेशन की, तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे ये बिल जो है वो गिर गया था, लेकिन इस बार सरकार अगर इस बिल को लेकर आएगी तो पूरी तैयारी के साथ आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर गेम में सरकार पिछली बार पिछड़ गई थी, इस बार नंबर जब तक हाथ में नहीं होगा तब तक इस बिल को दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कल जो बैठक हुई उसमें सूत्र बताते हैं कि ना सिर्फ मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई बल्कि नितिन नवीन की नई टीम, अब तक भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ गए हैं, युवा अध्यक्ष आ गए, लेकिन अब तक उनकी टीम, जो नई टीम है वो अब तक उसका ऐलान नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चाएं हैं। सूत्र बताते हैं कि पहले जो है वो संगठन में फेरबदल होगा और उसके बाद कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। और इसीलिए कल जो बैठक हुई वो अब तक की बैठकों की सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। कल की बैठक में ना सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे बल्कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष भी मौजूद थे। और संगठन महामंत्री का पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करना और उस बैठक में शामिल होना कई महत्वपूर्ण संदेश देता है, क्योंकि संगठन में बदलाव होना और संगठन महामंत्री के का जरूर उसमें बोलबाला होगा, उनकी बात रखी जाएगी। तो इन्हीं सभी चीजों के बीच में कल की बैठक महत्वपूर्ण हुई। और इससे पहले हमने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। तो मानसून सत्र के साथ साथ बीजेपी की नई टीम और कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल, सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा कल संभवतः हुई होगी।
0: जी पीयूष, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कल हुई बीजेपी की बैठक और अब बैठक होने वाली है कांग्रेस की। कांग्रेस खेमे में आज क्या होने वाला है? क्या परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल को कांग्रेस को विपक्षी खेमे में सेंधमारी का डर सता रहा है? कल शरद पवार खेमे से भी बड़ी खबर आई थी। संकेत मिले थे कि पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के साथ जा सकती है। कांग्रेस की बैठक में संभव है कि सबसे ज्यादा इसी मसले पर चर्चा हो। हालांकि बाद में सुप्रिया सुले ने इस पूरी खबर को डाउनप्ले करने की कोशिश की थी, लेकिन संकेत आए थे। और ऐसे में बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और मनीष तिवारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में आज। कांग्रेस की। इसमें चिंता रहेगी कि क्या इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो परिसीमन बिल में सरकार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल जो संकेत मिले उससे कुछ ऐसा ही शक कांग्रेस को हो सकता है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी राहुल गौतम का, जो कि सोनिया गांधी के आवास के बाहर ही खड़े हैं। ये बताएं राहुल, कितनी बड़ी चिंता है ये कांग्रेस के लिए अगर एनसीपी एसपी ये कहती है कि हम परिसीमन बिल पर हो सकता है विचार करेंगे, हालांकि वो ये साफ करती है कि हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर ही विचार करेंगे, तो आज की बैठक में क्या क्या चिंताएं हैं उनकी?
2: देखिए, अब से थोड़ी देर में ये मुलाकात शुरू होगी, ये बैठक शुरू होगी और इसमें तमाम बड़े नेता, जैसे आपने भी कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल, तमाम लोग जुटेंगे और मंथन होगा कि सरकार को कैसे घेरा जाए। इसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख तौर पर रहेगा, नीट का मुद्दा रहेगा और एथेनॉल के बारे में जानकारी मिल रही है कि विपक्ष उठाएगा। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले की तरफ से जो बयान आए हैं उसके बाद से कांग्रेस जो है वो असहज हो गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सरकार के साथ डिलिमिटेशन बिल पर भी दिखाई दें और साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक में रहने का भी दावा करें, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने लीड किया था और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ रखते हुए उस बिल को गिराया गया था पिछले सत्र के अंदर। तो कांग्रेस कम से कम ये मानना है कि आप दोनों नावों में नहीं सवार हो सकते। अगर आप डिलिमिटेशन बिल के साथ अगर खड़े होंगे तो जाहिर है फिर हमारा आपके साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच में एक लंबा एक संबंध रहा है उन दोनों के बीच में। तो इसके लेकर जो आखिरी वर्ड है या जो आखिरी फैसला है कि इसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, आप ये मान के चलिए कि सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जब यहां से क्लैरिटी आएगी पार्टी को कि आखिर इस मसले पर आगे क्या कहना है, क्योंकि शरद पवार एक पुराने सहयोगी रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि दो नावों में सवार होना एनसीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ये साफ कर चुकी है कि हम डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ ही रहने वाले हैं और वोट भी उसके खिलाफ ही करेंगे।
0: जी शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी का। और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां अभिषेक बैनर्जी को लेकर ममता बैनर्जी की ममता जाग गई है। कल बागी खेमे से जुड़ने वाले मदन मित्रा ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोला, उन्हें पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, तो ममता बैनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अभिषेक बैनर्जी शेर की तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने मदन मित्रा को ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से डर कर भागने वाला बताया। दरअसल खबरें यह आई थी कि मदन मित्रा के परिवार को समन्स जारी किए गए हैं ईडी की तरफ से और उसके बाद से ही उनकी तरफ से दल बदला गया है। ऐसे में मौका मिल गया ममता बैनर्जी को उन पर वापस हमला करने का और कहा कि दरअसल अभिषेक ही हैं जो शेर की तरह लड़ रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब एक एक करके बड़े नेता छिटकते जा रहे हैं ममता बैनर्जी से और ऋतव्रत गुट की टीएमसी का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं।
3: ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: कभी ममता बैनर्जी के खासम खास रहे मदन मित्रा ने पाला बदलते ही बाकियों की तरह अभिषेक बैनर्जी पर ही मोर्चा खोल दिया।
4: हम लोग अभिषेक बैनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है, ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी, ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े।
0: ममता बैनर्जी का हाथ छोड़ने वाले सभी अभिषेक बैनर्जी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और पाला बदल रहे हैं। मदन मित्रा ने भी जब यही फॉर्मूला अपनाया तो ममता बैनर्जी के सब्र का बांध टूट गया, वो खुलकर अभिषेक बैनर्जी के बचाव में आ गई।
3: তারা একটু শিক্ষা নিন, অভিষেক অনেক খারাপ আপনাদের কাছে, বাহানা হয়ে গেছে ওটা। তো অভিষেকের বউ যদি 1.5 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে সিবিআই অফিসে যেতে পারে সাক্ষী দিতে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তখন আপনাদের মনে নেই 25-30টা কেস দেয়া হয়েছে, সে তো সহ্য করছে, একটু সেটিং করে নিলে সব থেকে রিলিফ হতে পারত। তাহলে যাদের আজকে আপনারা বলছেন বাহানা দেখিয়ে যে অভিষেক হচ্ছে আপনাদের আয়না তাই আপনারা চলে যাচ্ছেন, এটা আপনাদের বাহানা। অভিষেকের সব অন্যায় ক্ষমা হয়ে গেছে, যদি আপনাদের চোখে কোনো অন্যায়ও করে থাকে, যে সে আজকে লড়ে যাচ্ছে বাঘের মতো।
0: तो आइए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हैं कोलकाता का। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, जो प्यार दिखता है ममता बैनर्जी का अभिषेक के लिए, उसमें वो कहती है गलती की भी तो उबर गया, शेर की तरह लड़ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई खामी है और पार्टी टूट रही है, क्या आंख मूंद कर बैठी है वो?
5: जी देखिए, अब तक जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आए हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी का जो प्यार है अभिषेक बनर्जी के प्रति, जो ममता है, माया है, वो अभी तक कायम है, वो बरकरार है। पार्टी के लगभग 80 विधायक थे, टूटकर 20 से भी कम विधायक, लगभग 20 के आसपास विधायक रह गए हैं। 41-42 सांसद थे, अब सिर्फ 17 सांसद ममता बनर्जी के पास हैं। ज़्यादातर सांसद, ज़्यादातर विधायक अब अलग गुट बना चुके हैं। ऐसे में मदन मित्रा का जाना, देखिए मदन मित्रा पिछले 40-50 वर्षों से ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए थे, एकदम खासम खास उनके थे, और जब पार्टी टूट रही थी, जब सारे लोग अलग हो रहे थे, तब भी 2 दिन पहले तक मदन मित्र ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन इसके बाद अचानक से ममता बनर्जी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। ममता का आरोप है कि ईडी ने उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों को समन किया था, दबाव में, प्रेशर में ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और बहाना बनाया जा रहा है अभिषेक बनर्जी को, जबकि अभिषेक बनर्जी की पत्नी का भी ममता बनर्जी ने जिक्र किया, कहा कि उन्हें सीबीआई ने बुलाया था, वो अपने बच्चों के साथ सीबीआई दफ्तर गई थी, तो वो भी साथ नहीं छोड़ रही हैं। तो ऐसे में 2 बातें क्लियर है, एक तो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगी, अभिषेक और ममता अंत तक साथ रहेंगे, इतना तो फिलहाल लगभग अब तक पता चल रहा है, लेकिन उनके बहुत जो दूसरे खासम खास हैं वो धीरे धीरे उनसे अलग हो रहे हैं अभिषेक बनर्जी के चलते।
0: जी अनुपम, शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के राम रहीम वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है। उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र की एक पत्नी हो सकती है तो रहीम की क्यों नहीं। एमपी में इसी मानसून सत्र में समान नागरिकता संहिता विधेयक यानी कि यूसीसी आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इसी मॉनसून सत्र में एमपी सरकार में इसे विधानसभा में पेश भी किया जा सकता है। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 5 दिन का सेशन है और इसी में यह पेश किया जा सकता है।
6: हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर, आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: तो मध्य प्रदेश भी यूसीसी की राह में निकल चुका है। एमपी के समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी में क्या खास है वो हम आपको समझाते हैं। जो जानकारी हमें मिली है हम आपको बताते हैं। तो इस ड्राफ्ट को बनाने में मध्य प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है, ये दावा कर रही है सरकार। साथ ही यूसीसी से अनुसूचित जातियों को बिल्कुल बाहर रखा गया है। विवाह, तलाक, भरण पोषण इन सब के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही उत्तराधिकार, दत्तक, लिव इन इन सब को भी इसके दायरे में लिया गया है। लैंगिक समानता और एमपी के रीति रिवाज इनका पूरा ध्यान रखा गया है, ये भी दावा सरकार का है। अब ये जो ड्राफ्ट है ये तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों का अध्ययन और सारांश है। पहले भाग में 10 अध्याय शामिल है यानी कि 10 चैप्टर। दूसरे हिस्से में यूसीसी का पूरा मसौदा है जिसमें 4 भाग, 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां हैं। तो ये मसौदा है दूसरे हिस्से का। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की जिसमें जनता से जो सुझाव मिले उन पर आधारित एक रिपोर्ट भी शामिल है। समिति को 9.58 लाख से भी ज्यादा सुझाव मिले थे। तीसरे हिस्से में लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण भी शामिल है। तो ये पूरा मसौदा है हम आपको जो बता रहे हैं यूसीसी का, जो इस मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह। आइए सीधा रुक करते हैं उन्हीं का और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से यूसीसी का मामला बढ़ रहा है। रवीश, जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या उस पर विवाद होना जायज है? यूसीसी का मसौदा, उसके कुछ जानकारी हमारे सामने आ गई है और उसकी जरूरत को भी लोगों को समझाने की जरूरत है, लेकिन इस तरह के बयान क्या वहां पर सियासी गलियारों में विवाद नहीं पैदा कर रहे?
7: बिल्कुल अंजलि, और ये दूसरी बार है जब इस तरीके का कोई बयान सामने आया हो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कि सरकार के मुखिया भी हैं। इससे पहले उन्होंने दतिया में जब नामांकन रैली हुई थी आशुतोष तिवारी की 2 दिन पहले, तब वहां पे भी उन्होंने यही बयान दिया था और कल इंदौर में भी उन्होंने इसे दोहराया है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो स्पष्ट कर रही है कि एक देश में 2 अलग अलग कानून नहीं चलेंगे और प्रदेश में भी 2 अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। उसी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है। तो उनका कहना साफ तौर पर कहा था कि अगर कानून हिंदू पक्ष के लिए बना हुआ है तो मुस्लिम पक्ष के लिए धर्म के आधार पर अलग कानून नहीं हो सकता और इसीलिए यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जब से मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर के लोगों से सुझाव मांगे गए थे तब से ही इस पर विवाद हो रहा है। ना केवल जो मुस्लिम समाज है वो इस पर आपत्ति उठा रहा है बल्कि कांग्रेस के जो मुस्लिम विधायक हैं वो भी यूसीसी के इस मसौदे पर लगातार अपनी आवाज को मुखर कर रहे थे और उन्होंने भी ये कहा था कि संविधान में उनको हक दिया गया है कि वो धर्म के आधार पर उनका जो कानून है उसको वो माने और इसीलिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के काफी ज्यादा विवाद है। पहला, 2 अलग अलग जो कानून है वो खत्म हो जाएंगे और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी यूसीसी में जो प्रावधान आ रहे हैं उसे लेकर के भी विवाद इस वक्त मध्य प्रदेश में मचा हुआ और इस बीच अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं उसने यहाँ की सियासत को जरूर गर्म कर दिया।
0: जी रवीश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। और इस वक्त रुक करें एक और बड़ी खबर का, आपको बताएंगे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक सड़क है उसे अब आम रास्ता घोषित कर दिया गया है क्योंकि उनका कहना है सरकारी खर्च से बनी है ये सड़क। उधर ये भी दावा है प्राधिकरण का कि 40 में से 38 इमारतें अवैध है क्योंकि सिर्फ 2 का नक्शा पास कराया गया था। और तीसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
8: देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया था, ऐसा संज्ञान में आया था कि उनके द्वारा जो भवन बनाए गए हैं उनके मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए गए हैं। 15 दिन का उनको समय दिया था अपना पक्ष रखने का, उन्होंने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और आज प्रातःकाल उन्होंने उनकी पर्सनल अपीयरेंस भी थी, उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। और पूरे प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है।
9: सर, कितनी बिल्डिंग थी वहाँ पे टोटल?
8: कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे हैं जिसमें से 38 भवन अवैध पाए गए। तो तत्समय जब निर्माण हुए थे तो 2 भवन, 40 में से 2 भवनों का निर्माण उन्होंने किया था, उसकी मानचित्र स्वीकृति भी जिला पंचायत से कराई है। इससे ये क्लियर होता है कि उन्हें कानून की जानकारी थी कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका मानचित्र जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाना है, लेकिन जो 38 शेष भवन है वो भी उसी समय बने और उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया है। इस दृष्टि से वे भवन जो है अवैध रूप से निर्माण किया गया है।
10: आज जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है ये आम रास्ता है, ये आम रास्ता कैसे सर?
11: आम रास्ता इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो रोड अंदर जा रही है 4 लेन CC की, वो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई है। इसका निर्माण कार्य 2019 में कम्प्लीट हो गया था, 2016 में वो स्वीकृत हुई थी और स्वीकृति के उपरांत उसका 4 लेन में CC कार्य किया गया। तो वो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, तो वो आम रास्ता जो भी लोक निर्माणों की सड़क बनती है पब्लिक के लिए बनती है, आम रास्ता ही है वो सभी हमारा, इसलिए वो हमने बोर्ड लगाया कि आम रास्ता है।
12: कितनी लंबी सड़क है सर ये?
11: सड़क हमारी 3.5 किलोमीटर लंबाई की है, 16.5 करोड़ की इसकी स्वीकृति आई थी, जिसमें 13.5 करोड़ का इसका बॉन्ड का बना, लगभग 13.5 करोड़ रुपए हैं जिससे इसका सिविल कार्य हमने कराया था और 3.5 किलोमीटर लंबाई में ये बनाई गई है। 2 किलोमीटर हमारी गेट से लेकर सीधी पीछे बंदे तक जाती है और 4 लेन की सड़क है हमारी।
0: और अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है और पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। उससे पहले अहमदाबाद में सुबह 7 बजे से ही भव्य रथ यात्रा शुरू हो गई। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की है। पुरी और अहमदाबाद में लाखों लाख श्रद्धालुओं के यात्रा में पहुंचने की संभावना है। तो चलिए आपके लिए तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जगन्नाथ की यात्रा की, और ये है पुरी की पहली तस्वीर जहां आप देख सकते हैं उड़ीसी नृत्य किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम आपके लिए अहमदाबाद की भी तस्वीर लेकर आ रहे हैं जहां आज गृह मंत्री सुबह 4 बजे की आरती के लिए पहुंचे और उन्होंने आरती की परिभाषा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
1: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
2: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
7: सोच बदलो और बैंक भी.
8: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा. अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद.
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी. वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स. इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
13: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स.
14: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
15: मीडिया 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
16: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
14: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.
17: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
18: YouTube पे आप देखिए आज तक वर्टिकल. अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत. अब देखिए आज तक वर्टिकल.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिचुएशन रूप में हुई बड़ी बैठक, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे साथ बैठक। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर भी हुई मीटिंग। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट, विधानसभा के मॉनसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित, प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु, शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

टिकट को लेकर चल रहे कानूनी लड़ाई में आज बेहद अहम दिन है। लंदन हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। राम मंदिर की मस्जिद बनाने की कोशिश का मामला पीटर्सबरो का है, जो अब यूके हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदू समाज ने हाई कोर्ट में पीटर्सबरो सिटी काउंसिल के उस फैसले को चुनौती दे दी है, जिसमें ब्रिटेन के सबसे पुराने मंदिर की जमीन पर इस्लामिक मिशन को मस्जिद और मदरसे के लिए देने का फैसला किया गया है। पीटर्सबरो सिटी काउंसिल और यूके इस्लामिक मिशन के बैरिस्टर्स ने 14 जुलाई को हुई सुनवाई में अपनी दलीलें अदालत में रखी थी, जो आज की सुनवाई में पूरी होंगी। मंदिर की ओर से पैरवी कर रहे बैरिस्टर भी आज ही अपनी अंतिम दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। माना यह जा रहा है कि यह अंतिम सुनवाई होगी जिसमें उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया जा सकता है। इस सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर

0: इसलिए उसकी जमीन को रिलोकेट या उस मंदिर को इस तरह से रिलोकेट नहीं किया जा सकता। ये केवल एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, और ये जो आस्था के सवाल है ये कोर्ट को समझाए जा रहे हैं। हालांकि सिटी काउंसिल की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसमें कहा गया है कि उन्होंने ट्रस्ट को समय दिया था, जो बिड दी गई ये कॉम्पिटेटिव बिडिंग है, इस कॉम्पिटेटिव बिडिंग के अंदर 14 लाख पाउंड का जो बिड है मंदिर की तरफ से जो दिया गया था ट्रस्ट की तरफ से, उससे ज्यादा की बिड जो है यूके इस्लामिक मिशन की तरफ से दी गई है। अब ये दोनों के बीच का फैसला है, काउंसिल को पैसे की जरूरत है और केवल पैसे के आधार पर ये फैसला किया जा रहा है। लेकिन आप इसका कन्वर्टेशन अच्छी तरीके से समझ सकती हैं अंजलि, कि यदि एक मंदिर की जमीन के ऊपर वहां राम मंदिर को हटाकर यदि मस्जिद बनाई जाएगी तो इसके कितने रिपरकशंस हैं, या इसके क्या जो सामुदायिक प्रभाव है, कम्युनल जो प्रभाव है उसके, वो क्या हो सकते हैं। और हिंदू और मुस्लिम का समुदाय जो है वो ब्रिटेन का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला समुदाय है, और ऐसे में दो बड़े समुदायों के बीच में यदि तनाव का कारण या तनाव के बीज बोए जाते हैं तो ये ब्रिटेन के लिए भी संवेदनशील मामला होगा, और यही दलीलें अदालत के अंदर भी रखी जा रही हैं जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से भी।
1: जी प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, दूसरी बातों के लिए भी आपके पास आएंगे, क्योंकि अब बात हो रही है ईरान और अमेरिका युद्ध की।

ईरान अमेरिका युद्ध का तीसरा राउंड बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार पांचवें दिन भी दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। पूरे मिडिल ईस्ट को अब देखा जाए तो वो दहल उठा है इस लड़ाई से। हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर से ऊर्जा संकट गहराने लगा है। उधर अमेरिका अब इस युद्ध को और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की सेना ईरान में उतरती है तो लड़ाई और भीषण हो जाएगी। तो अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। अमेरिका ने फिर किया है ईरान पर हमला। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। लगातार पांचवें दिन मिडिल ईस्ट में बमबारी हुई है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान भी हुआ है। 35 लोगों की मौत। हिंगाम द्वीप और सिरिक के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल ने तबाही मचा दी है। तो आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमले किए हैं। तो आपको दिखाते हैं हम यहां पर कि कौन से वो इलाके हैं जिन पर लगातार निशाना बना रहा है अमेरिका। तो ईरान जो है उसको धमकी दे रहा है, उस पर बमबारी कर रहा है और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सटे हुए इलाकों पर ज्यादा फोकस रहा है। आप देख सकते हैं कि यूएई, ओमान, ये वो खाड़ी देश हैं जिन पर पलटवार ईरान की तरफ से की जा रही है। तो धमकी जो दे रहा है इस वक्त ईरान, उसका कहना है कि अगर उस पर हमले जारी रहते हैं तो जो देश जो बेस बनाते हैं अमेरिका के, उनके लिए भी अब स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ये वो मानचित्र है जिसमें हम आपको समझाते हैं कि अमेरिका ने कहां कहां हमले किए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बंदर अब्बास, लगातार इस पर हमले हो रहे हैं। चाबहार, जहां पहले तो नहीं होते थे लेकिन इस बार चाबहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है, अमेरिका का दावा है कि यहां पर मिलिट्री को सपोर्ट, सैन्य सपोर्ट दिया जाता है। हिंगाम द्वीप, सिरिक, लगातार ये कुछ इलाके हैं जो फोकस में रहे हैं अमेरिका पर, जिन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बार बार अमेरिका दाग रहा है। और आइए इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेनाओं ने एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने यह हमला किया है। कुराकाव के झंडे वाले एमटी बेलमा टैंकर पर अटैक किया अमेरिकी सेना ने और उसे रोका और हमला किया। फिर बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे इस टैंकर को चेतावनी दी गई थी और कई चेतावनी दी गई थी, जिसको नजरअंदाज करने पर उस पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया और उसे

0: उधर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने अमेरिका के मददगार देशों को निशाना बनाया है। कुवैत और बहरीन पर फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमेरिकी बेस पर दो धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बहरीन की सीमा में कई ईरानी मिसाइल गिरी हैं, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। वैसे कुवैत सेना ने बयान जारी कर कहा कि कल तक 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया था। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में भी सायरन बज रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये ताजा वीडियो है उसी अटैक की, जब ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं और बहरीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। और आइए अब आपको इस युद्ध से जुड़े 10 अपडेट दिखाते हैं। लगातार पांचवें दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक, इन सब जगहों पर लगातार एयर स्ट्राइक की गई है। साथ ही में हेंगाम द्वीप पर भी धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में और सेना भेजने की प्लानिंग कर रहा है यूएस, ये कहा जा रहा है। ग्राउंड ट्रूप्स तक भेजे जा सकते हैं। और ये खबर किसने छापी है? अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने ये दावा किया है कि जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। हॉर्मूज में तेल टैंकरों पर अब अमेरिका ने हमला कर दिया है। ये भी एक मोड़ आया है इस मामले में। और ईरान ने फिर से जवाब में खाड़ी देशों पर हमला कर दिया है, क्योंकि वहां पर यूएस के बेसिस हैं। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों में 35 लोगों की मौत हो गई है। ईरान का ये भी दावा है कि यूएस के हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस बीच अमेरिका की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि हॉर्मूज के आसपास के द्वीपों पर अमेरिकी सेना उतर सकती है। सिचुएशन रूम की आपात बैठक में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की, और उसी में ये बात सामने आई है कि अब ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी का। अशरफ, ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल यानी कि जमीनी हमला ये अब तक देखा नहीं गया है। बस एक ऑपरेशन हुआ था जब ग्राउंड ट्रूप्स गए थे, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये एक बहुत बड़ा एक्शन होगा अमेरिका की तरफ से, इसको क्या माना जाए? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है
1: अंजलि? यही एक रास्ता है अमेरिका के लिए अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दौर का भी जो युद्ध हुआ था उसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया था अमेरिका ने, क्योंकि काफी दबाव जो है अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता की तरफ से था कि इसमें कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ सकती हैं अमेरिकी सेना की। यही कारण है कि पहला फेज का जो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था उसमें ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल कई बार कहा तो था अमेरिका ने लेकिन किया नहीं था। लेकिन क्या अब की बार जो है अब आखिरी रास्ता यही अमेरिका के लिए बचा है ईरान को दबाव में डालने के लिए, या ईरान का जो ग्रिप है स्टेट ऑफ हॉर्मूज में उसको कम करने के लिए? हाँ, ये संकेत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार 2-3 दिन पहले बातचीत में भी कहा था, ये भी एक रास्ता एक विकल्प है, क्योंकि जिस अंदाज से ईरान की तरफ से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और अब ये दायरा भी ईरान ने भी बढ़ाया है, जब उनके सैनिकों की मौत हुई, जब उनके नागरिक मारे गए करीब 35 और 300 से ज्यादा घायल है। बीती रात जो है इरबिल जो कंसुलेट है अमेरिका का इराक में उस पर ड्रोन से हमले हुए हैं, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ अमेरिकन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अभी तक फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव अमेरिका पर और उसके पास अब हवाई युद्ध से जाकर जमीनी युद्ध को लेकर ही
0: कुछ। जी बिल्कुल अशरफ, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका भेज सकता है जमीनी सेना। तो आपको बताते हैं कि सिचुएशन रूम जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे अपने बड़े सलाहकारों के साथ, वहां पे जो बैठक हुई उसमें आखिर क्या क्या हुआ, तो अमेरिकी अखबार ये छाप रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है। अगर उसकी माने तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बढ़ाना मतलब वो संभावित विकल्पों में हवाई हमलों को पहले तो और तेज कर सकते हैं, ये पहला उनके पास विकल्प हुआ, यानी कि खार्क और हॉर्मुज जो द्वीप के हैं और जो आसपास हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जितने भी ईरानी द्वीप हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सके, जमीनी सैनिक उसके लिए भेजे जा सकते हैं। ये चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। बैठक में पिकैक्स माउंटेन, इसकी सुरंग, जो ये सुरंग परिसर है इस पर बमबारी के भी विकल्प तैयार किया गया है। ये सुरंग परिसर ईरान के संभावित गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये सब चर्चाएं हुई हैं उस वॉर रूम में, सिचुएशन रूम में, कि कैसे हम वहां पर ग्राउंड ट्रूप्स भेज सकते हैं, हमारे सैनिक पहुंच सकते हैं और कुछ खास ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है, उसका रुख करते हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने धमकी दी है कि अब ये लड़ाई हॉर्मुज से बाहर लाल सागर तक जा सकती है, यानी कि रेड सी तक पहुंच सकती है। अभी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, आगे लाल सागर में बाब अल मंदेब भी बंद हो सकता है। ये एक और स्ट्रेट है, एक जल डमरू मध्य है जिसकी बात कही जा रही है। यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान बाब अल मंदेब को बंद करवा सकता है, यानी कि एक और कोशिश इंटरनेशनल दबाव बढ़ाने की। बाब अल मंदेब अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है, ये एक अहम रूट है और इस रूट पर हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान ब्लॉकेट कर सकता है। हमने पहले भी हुतियों को देखा है कि वो लाल सागर पर लगातार हमले करते हैं, जब भी उनका मन होता है उनकी पायरेसी भी वहां देखी जाती है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मानचित्र कैसा बैठता है। लाल सागर आपको यहां दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पहले जो कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, वो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को संकुचित करने की और उसे बंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जिनको प्रॉक्सीज कहा जाता है, यानी कि उसके साथी ईरान के हुती विद्रोही, उनकी मदद भी ली जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि लाल सागर से जाता हुआ जो स्ट्रेट है उसे भी रोका जाए। ये एक और कोशिश है इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की, ताकि दूसरे देश भी अमेरिका पर दबाव बनाए, क्योंकि एक बार फिर से एक कोशिश है एक और इंटरनेशनल रूट को रोकने की। तो ईरान की तरफ से ये नई धमकी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी हद तक पता है और पूरी बात जानते हैं। वो ईरान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए, साथ ही कहा जल्द पता चल जाएगा कि हम उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। यहां ईरान के बारे में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक और नई धमकी दे रहे हैं।
2: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे,
13: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब
2: अयोध्या,
1: वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
2: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे ईष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत SIT गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए। ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए। मैं ये चाहता हूं, ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक।
1: मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आज सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे साथ बैठक। कैबिनेट और संगठन में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर भी हुई मीटिंग।
0: उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आ सकता है सामान्य नागरिक संहिता विधेयक।
1: रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता।
0: धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु। शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और 11 में। मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर।
2: नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। चंडीगढ़ में 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआई एमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर में आज अमित शाह की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन के पदाधिकारी भी होंगे मीटिंग में शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 2 महीने में गृह मंत्री की दूसरी बड़ी बैठक। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पियर्स कोर का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्री राम पर बोलने का अधिकार नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना के श्री कृष्ण संबंधी बयान पर मचा बवाल। वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग तेज। बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। 5वें दिन बीआरएस का समर्थन और किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका के यूटा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख। हर संभव कौंसुलर सहायता का भरोसा।
1: लगातार 5वें दिन भी जारी ईरान पर अमेरिका के हमले। कई शहरों में धमाके की खबर। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेडलाइन देना उन्हें पसंद नहीं है, ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर। बोले, ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना। वेंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर सुनी गई। बहरीन में बजे सायरन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी सतर्कता।
2: ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं और एक नाबालिग भी शामिल। दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल्स गिरे, ईरानी सरकारी मीडिया का है दावा। अरब सागर में अमेरिकी कार्रवाई, ईरान जा रहे तेल टैंकर को रोका। सेंटकॉम ने मिसाइल हमले से जहाज को किया निष्क्रिय। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स जो है उसकी एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी होंगी बंद। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का है खतरा। ब्रिटेन के पीटर्सबरो में हिंदू मंदिर वाले परिसर को मस्जिद बनाने के मामले में आज अहम सुनवाई। सिटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अंदर मौजूद रहने की संभावना, अलर्ट पर प्रशासन। यूएस में फ्लोरिडा के पेंसाकोला के बीच पर एयर शो वीक की शुरुआत के दौरान यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स का खतरनाक स्टंट, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जांच शुरू।
1: मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो ने किए गोल, मेसी के पास पर हुआ दोनों गोल। मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 19 जुलाई को न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स, साथ ही सड़कों पर झूमे लोग, जमकर की गई आतिशबाजी। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच, आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर सेवन राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। दरअसल मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला। अगले साल से पूरी तरह से बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे।
2: ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी। पावन रथ यात्रा को लेकर देशभर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा, सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती, पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंचे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति, ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत का की दिखी झलक। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह, बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किए नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज, कृष्ण के भेष में किया नृत्य। पुरी में रथ उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से की मुलाकात, शंकराचार्य का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई।
1: नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, 22 गांवों का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट मोड पर। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़, गांव और स्कूलों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गैंगटॉक में भारी बारिश, जोरदार बारिश की वजह से भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहावना, लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान में काफी ठंडक आई। वहीं लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर जारी, अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने की वजह से मौत हुई, 1 घायल।
2: मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, सीसीटीवी हुआ वायरल। गाजियाबाद की क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में दो पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े, सीसीटीवी वायरल। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र। मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और एस्कॉर्ट के साथ रील बनाता हुआ नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने किए दर्शन, फिर की रेकी और फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर कर दी चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुआं और उसका गुबार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका के 500 रुपए गुम होने पर छात्राओं की निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई। घटना के विरोध में परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला। बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड की सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटी के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत, जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अजमेर की आना सागर झील में तबाही, हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप।
1: वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटल में पुलिस ने की छापेमारी, दे व्यापार के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया, कई युवतियां और युवक को पुलिस ने किया डिटेन। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, वज्रपात से अलग अलग गांव में 2 किसान की मौत हुई, 1 घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान 1 की मौत हुई, पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई, सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, सामान भी किए गए जब्त। तो वहीं मेरठ में दिव्यांग युवक से अमानवीय बर्ताव का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, 2 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों ने काम दिलाने का झांसा देकर किया प्रताड़ित। वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुई, विजिलेंस टीम ने पकड़ा। राजस्थान के कोटपुतली में बाघ के रेस्क्यू के दौरान जमकर बवाल मचा, आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी का आंदोलन जारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। पीड़ित लोगों ने समस्या सुनाते हुए कई आवेदन भी सौंपे और साथ ही इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए।
2: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, टायर फटने की वजह से घर में घुसा ट्रक, सो रहे 3 लोगों की कुचलकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस की क्रेन ने मदद की और ट्रक को निकलवाया और कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी विकराल आग, धुएं का गुबार देख इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड़ में चलती स्कॉर्पियो कार से निकला धुआं और मिनटों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर हुई खाक। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी भीषण आग, मौजूदा वाहन चालकों में मची अफरा तफरी, डर की वजह से गाड़ियां छोड़ भागने लगे लोग। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या, 3 नाबालिग समेत 4 हिरासत में। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में 1 की मौत, 11 घायल। रायसेन में 2 भाइयों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद, खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या की। जयपुर में पूर्व जज के बेटे ने बहन पर किया जानलेवा हमला, कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात।
1: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील की, 4,000 किलो खाद्य सामग्री जब्त। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था, एफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर व्यापार बंद कराया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए लैब भी भेजे। रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुणे रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंची। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में गए थे राजस्थान। पुलिस को शक कि वहीं हुई थी इन दोनों की गुपचुप शादी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिर में तलाशी सबूत। फिल्म तेरा यार हूं में मैं का नया डांस सॉन्ग रिलीज हुआ। मैंने दिल तुझको दिया रिलीज हुआ। इस गाने को नकाश अजीज ने किया गाया है और इंद्र कुमार ने लिखे हैं इसके बोल। बदली जा सकती है श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा की रिलीज डेट। यश की फिल्म टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अब 28 अगस्त को रिलीज हो सकती है फिल्म। इम्तियाज अली के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा। फिल्म ने 33वें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया 27 लाख का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर फिर से मचेगा रू बाबा का धमाल। जल्द शुरू होगी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 4 की शूटिंग। मेकर्स ने किया कन्फर्म। फिल्म जननायकन के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने दी है खुशखबरी। मूवी की रिलीज डेट की अनाउंस किया गया। फिल्म 23 जुलाई को होगी रिलीज।

0: और आइए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। कांग्रेस खेमे में आज क्या होने वाला है, क्या परिसीमन बिल यानी कि डिलिमिटेशन बिल को कांग्रेस को विपक्षी खेमे में सेंधमारी का डर सता रहा है। कल शरद पवार खेमे से भी संकेत मिले थे कि पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के साथ जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस की बैठक में संभव है कि सबसे ज्यादा इसी मसले पर चर्चा हो, इसी पर नजर रहे। बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और मनीष तिवारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक है दिल्ली में कांग्रेस की, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और चर्चा का जो मुख्य विषय रह सकता है वो है डीलिमिटेशन बिल, जो पिछली बार निरस्त हो चुका था, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कोशिश है उसके लिए समर्थन जुटाने की।
1: चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अब हुआ देखिए कुछ देर में बैठक होने वाली है जो कि एक अहम बैठक है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा उस बैठक में की जाएगी, क्या विपक्ष की रणनीति होगी?
2: देखिए, आप जानते हैं कि चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि सरकार दोबारा से परिसीमन बिल लेकर आ सकती है। ऐसे में जो सुप्रिया सुले की तरफ से बयान दिया गया है कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम परिसीमन बिल को सपोर्ट करें, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी असहज है। और जाहिर है इस जो बड़ी बैठक चल रही है, मैं वहीं मौजूद हूं सोनिया गांधी के आवास पर, जनपद पर, जहां पर तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं और रणनीति तय हो रही है। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने यही होगी कि जो विपक्षी खेमा है उसको कैसे एक रखा, क्योंकि लगातार आप जानते हैं जो बीजेपी है, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए है, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है और यह चिंता बढ़ा रहा है कांग्रेस पार्टी की। उनको लगता है कि अगर ऐसे ही जो फ्लोर मैनेजमेंट है या जो लोग पार्टियां हैं अगर वो एनडीए की तरफ झुकाव रखने लगी तो जाहिर है कि इस बिल को रोकना भी उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी जिन पर चर्चा कर रही है, उसमें प्रमुख है राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा नीट का मुद्दा है, एथेनॉल है, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर अगर सरकार इस बिल को लेकर आती है परिसीमन बिल, तो हम इसको कैसे रोकेंगे, क्या हमारे पास इनफ नंबर्स हैं या नहीं है, अगर हमें रीच आउट करना है अपने सहयोगियों को से तो कैसे किया जाए, फ्लोर मैनेजमेंट कैसा हो, क्योंकि लगातार आपको याद होगा पिछली बार भी कांग्रेस ने ही लीड किया था, वो जो पूरी विपक्षी एकता हमको देखने को मिली थी, जिसके बाद सरकार का जो बिल था वो गिरा था लोकसभा के अंदर। तो कांग्रेस की कम से कम आप ये कहते हैं चिंताएं बड़ी हुई हैं, अगर एनसीपी सरीखे जो और पार्टियां हैं वो भी अगर उस तरफ झुकाव रखती हैं इंडिया
0: की। राहुल, खबर आ रही है कि अब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े नेता पहुंच गए, कौन कौन पहुंचा है?
2: देखिए, मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सलमान, इसके अलावा प्रमोद तिवारी, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, मानिकम टैगोर, नासिर हुसैन, ये तमाम जो नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, डिप्टी लीडर हैं, एलओपी हैं दोनों हाउसेज के अंदर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा जो व्हिप हैं नासिर हुसैन, जयराम रमेश, मानिकम टैगोर, के सुरेश, के तमाम नेता मौजूद हैं। और एक बड़ी खाका आप कह सकते हैं, बड़ी रणनीति जो है उसको लेकर चर्चा हो रही है।
1: राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा और बैठक में जाने से पहले प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, देखिए।
3: सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने कहा वो आ जाए, हम उसे देखें। पिछली बार तो धोखा किया था, अमित शाह जी बोल गए कि 50% हम बढ़ाएंगे और जब ड्राफ्ट देखा गया उसमें था ही नहीं, तो उसने कहा पहले लेके आए तब हम अपने विचार रखेंगे। उसने कहा मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूं कि हम उसका समर्थन करेंगे। आज मैं सुबह का बयान सुप्रिया का बता रहा हूं।
4: सर, सोनम वांगचुक के अनशन का जो 19वां दिन है वो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि लार्ज हार्टेडनेस दिखाएं और उनके मुद्दों को भी अकोमोडेट करे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन।
3: देखिए, वो बाद में आए, राहुल गांधी पहला आदमी है जिसने पूरी ताकत के साथ जब ये पेपर लीक आउट हो रहे थे तो वो टकराया है सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो इस मुद्दे पे जहां जनहित का मुद्दा है, छात्रों के हित के मुद्दा है, हम पहले से आवाज उठा रहे, आज उनकी भी आवाज उठ रही। मैं तुमसे अपील करूंगा कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है मोदी की, तो यहां अनशन से काम नहीं चलेगा। बल्कि जन आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से बनाए और इस सरकार को किस तरह हम अवदस्त कर सके लोकतांत्रिक ढंग से, उस पर विचार करें। और उन्हें चाहिए था कि सबसे बड़े दल कांग्रेस से विचार विमर्श करके तब कदम उठाते। खैर, नैतिक रूप से हम उनका समर्थन करते हैं और ये मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा था, कांग्रेस का मुद्दा था।
0: और अब बात राहुल गांधी के छात्र गूंज आंदोलन की। कल राहुल गांधी देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे, लेकिन इससे जुड़ा उनका एक ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड पेपर लीक का एपी सेंटर बना दिया गया है।
1: दरअसल राहुल गांधी ने लिखा है कि यू की एसएससी परीक्षा में एक सिस्टम बैठ गया है जहां पर पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए गए रेट से मिलता है। तो छात्रों के लिए मैं कल देहरादून आ रहा हूं, ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया है। इस बीच एक बड़ी खबर गुजरात से। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी खबर, अहमदाबाद में वो हैं और आज वो बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे गुजरात बीजेपी मुख्यालय पर ये बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी।
0: सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की यह बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन महामंत्री रत्नाकर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी बृजेश दोषी का जानने के लिए कि दरअसल इस बैठक में होगा क्या, ये बताएं बृजेश। ये जो बैठक है, क्योंकि गृह मंत्री वहां खुद मौजूद है और मुख्यमंत्री के साथ पूरी ये चर्चा होगी, तो क्या अहम है इस बैठक के बारे में?
5: देखिए, ये पहली बैठक नहीं है। 28 मई को भी केंद्रीय गृह मंत्री जब गुजरात थे तब उन्होंने ऐसी एक बैठक की थी जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई थी, जहां पे बीजेपी का परफॉर्मेंस, हालांकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा था, पर जहां पे भी वो सीट हारे तो उस सीटों का आकलन किया गया था कि सूर्य उसे हारे। अब उन सीटों के आधार पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक की गई। सूत्रों का दावा है कि आज जो चर्चा होगी वो विधानसभा चुनाव को लेकर होगी, विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी रणनीति में आगे बढ़ पाए। और जो 7 टर्म हो चुके हैं, करीबन 35 साल जितना वक्त हो गया है बीजेपी सत्ता में है, तो वैसे में एंटी इनकमेंसी नॉर्मल हो जाती है, तो उस एंटी इनकमेंसी को कैसे दूर किया जा सके, उन सभी मुद्दों पर आज जो है बैठक में चर्चा होगी। सरकार और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
1: चलिए ठीक है, बैठक पर नजर बनाए रखेगा ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी
8: Tune-ins How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
10: सवारी सोकुडो।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
11: छक्का
12: सब कैशलेस हो गया
11: है। ला भाई मेरा बैट,
12: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
13: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं कि ये मालगाड़ी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम मौजूद हैं मंकी हिल, जहां पर भूस्खलन हुई है, क्योंकि यहां पर 327 mm से ज्यादा पिछले चार घंटों में बरसात हुई है। करीब 85 से ज्यादा रेल सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं, बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हुई। ऐसे तीन और स्थल हैं और आज तक वो इकलौता चैनल है जो इस स्पॉट तक पहुंचा है। कैमरा पर्सन स्वराज दीक्षित के साथ दिवेश सिंह, लोनावला आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: EU सोच बदलो और बैंक भी।
6: In association with Hint, बड़े आराम से।
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ा खुलासा। चश्मदीद ने बिहार पुलिस पर खड़े किए गंभीर सवाल। न्यायिक जांच आयोग के सामने पुलिस की थ्योरी पर उठा दिए सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यायिक आयोग के सामने गवाही देते हुए चश्मदीद महिला ने बिहार पुलिस पर कई सवाल खड़े किए। ललिता देवी ने बयान दर्ज कराने के बाद कहा कि सरेंडर के बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई और ये सब कुछ उसने देखा था।
10: देख ले रहे कि जैसे झोपड़ी में बैठे रहें, प्रशासन ने गाड़ी आई लो पानी का तो भाग जलो तो गोली लग जाये तो अपने अपने झोपड़ी में ढुक गए। लेके फेंके लेके ढुकल के बाद अपन यहाँ के मांग रहे कि तीन मांग हमारे पूरी कही जाए तो एक जना SDM रे कहलन कि SDM के गाड़ी आई पीछे से DSP साहब के तो वहाँ के कहनी कि तहार मांग पूरी कही जाएगा अथी पिस्तौल फेंक दो ए पोल से ओ पोल तले फेंक दे बन पिस्तौल प्रशासन दो को हथियार उठा ले बन आ कंधा पे हाथ ले जाके होने धो के आ पीछे से तरह मार के आ गोली।
9: चश्मदीद के साथ साथ भरत तिवारी के भाई ने भी जांच आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराया और बिहार पुलिस की जांच और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए।
11: मैंने यही बोला कि न्याय दिलवाए और जो भी इसमें है पुलिस वाले कर्मचारी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
9: जांच आयोग के सामने अब तक 25 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच आयोग की रिपोर्ट में क्या होगा। आरा से सोनू सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। बीजेपी से पवार गुट की नजदीकियों पर भी होगा मंथन। सोनिया के आवास पर जुटे राहुल खड़गे समेत कई बड़े नेता।
1: उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक।
0: रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता।

0: अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक, सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी, कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक।
1: धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु, शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और 11 में। आप चर्चा करेंगे धर्म से जुड़ी तीन खबरों की। दरअसल यूपी के एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मौलाना ने हिंदुओं के आराध्य राम कृष्ण को लेकर जिस तरह का बयान दिया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
1: उधर यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के राम रहीम वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है। उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र की एक पत्नी हो सकती है तो रहीम की क्यों नहीं। एमपी में इसी मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी आ सकता है और ये बयान इसी संदर्भ में दिया गया है।
0: ब्रिटेन में एक हिंदू मंदिर को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में आज बेहद ही अहम दिन भी है क्योंकि लंदन हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। राम मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश का मामला पीटरबोरो का है और जो कि अब यूके हाईकोर्ट तक पहुंच भी गया है।
1: तो यूपी के इटावा में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। जो मौलाना रहता है वहां पर जिसे विवादित बयान देने की आदत सी हो गई है, वो अक्सर मजहबी बयान देकर विवाद फैलाता रहता है, लेकिन इस बार मौलाना ने हद कर दी क्योंकि इस बार उसने हिंदुओं के आराध्य श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया।

0: सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये भी देखिए।
1: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का दसवां मंत्र देख लीजिए। योगी योजित सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा।
0: सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
2: ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ ले, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ ले अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
0: ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जगदीश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं।
3: हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी?
0: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
4: आशीष, देखिए श्री कृष्ण को मुस्लिम बता रहे हैं मौलाना, ऐसे कट्टर बयान दे रहे हैं, ऐसे में कब इनकी गिरफ्तारी होगी?
5: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अगर हम कहें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं योगी सरकार आगे बढ़ रही है। और ऐसे में ये वीडियो आना जिसमें साफ कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण भी नमाजी थे पांच वक्त की, तो कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को भड़काने का भी काम किया जा रहा है। इस वीडियो में जिस तरीके से स्पीचेस दी जा रही हैं उससे कई हिंदू संगठन नाराज हुए हैं, कईयों ने तो प्रदर्शन की भी बात कही है। जिस तरीके से ये इटावा के रहने वाला जजेस अंसारी लगातार इस तरीके के स्पीचे दे रहा है, जिससे कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो काफी आहत हो रहे हैं। और ऐसे में
6: और इस तरह के बयानों पर जरूरी भी है कि लगाम लगाई जाए। शुक्रिया आपका। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के राम रहीम वाले बयान पर सियासी उबार आ गया है। उन्होंने कहा कि जब रामचंद्र की एक पत्नी हो सकती है तो रहीम की क्यों नहीं।
4: एमपी में इसी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक आ सकता है और मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट सीएम मोहन यादव को सौंपी भी थी। अब माना जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में एमपी सरकार में इसे विधानसभा में पेश भी किया जा सकता है। तो 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र होगा शुरू और 5 दिन का ये सेशन होने वाला है और इसी में ये पेश किया जा सकता है।
7: हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है।

0: मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: तो हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, मंशा भले ही मुख्यमंत्री साहब की रही हो कि यूसीसी के बारे में लोगों को समझाया जाए, लेकिन बताने का तरीका बेहद विवादित रहा।
2: बिल्कुल, और इसी को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके से समाज में भेदभाव की बात जो है वो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार जो है वो बार बार यही कह रही है कि कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर एक प्रदेश है, एक देश है, तो एक ही विधान यानी एक ही कानून होना चाहिए, दो समुदायों में अलग अलग कानून मान्य नहीं होंगे। और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे 55 जिलों में, आपको बता दें कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों से सुझाव लिए हैं, और जब ये सुझाव मांगे जा रहे थे तो उस दौरान भी मुस्लिम समुदाय से कई आपत्तियां इसमें सामने आई थी, उन सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन देखना यह है कि जो मसौदा तैयार हुआ है अब यूसीसी का, उसमें अलग अलग समुदायों की तरफ से जो सुझाव दिए गए, खासतौर से मुस्लिम समुदाय की तरफ से, उनको कितना शामिल किया गया है यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि सोमवार से बताया जा रहा है 20 जुलाई से मानसून का सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, और मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के इसी मानसून सत्र में यूसीसी का जो कानून है उसे लाया जाएगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में, आपको यह भी बता दें कि जो संख्या बल है भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा के भीतर, तो वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और निश्चिंत है कि वो यूसीसी को बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू करवाने वाली है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब अलग अलग जगहों पर जब जा रहे हैं तो अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके शब्द जो निकल रहे हैं वो मध्य प्रदेश की
3: थोड़ी सियासत भी काफी तेज हो गई है एमपी में। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका जानकारी के लिए। मैं ब्रिटेन में हिंदू मंदिर को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में आज बेहद अहम दिन है क्योंकि लंदन हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। राम मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश का मामला पीटरबरो का है और जो कि अब यूके हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हिंदू समाज ने हाईकोर्ट में पीटरबरो सिटी काउंसिल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ब्रिटेन के सबसे पुराने मंदिर की जमीन पर इस्लामिक मिशन को मस्जिद और मदरसे के लिए देने का फैसला किया गया था।
1: पीटर्सबरो सिटी काउंसिल और यूके इस्लामिक मिशन के बैरिस्टर्स ने 14 जुलाई को हुई सुनवाई में अपनी दलीलें अदालत में रखी थी जो आज की सुनवाई में पूरी होंगी। मंदिर की ओर से पैरवी कर रहे बैरिस्टर भी आज ही अपनी अंतिम दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि अंतिम सुनवाई होगी जिसमें उच्च न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया जा सकता है। इस सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अदालत के अंदर भी मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे।
3: तो रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। 15 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया गया है 40 में से, क्योंकि 38 इमारतें अवैध बताई जा रही है। ऐसे में अब उनको नोटिस थमा दिया है और इमारतों को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है।
4: देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया था, ऐसा संज्ञान में आया था कि उनके द्वारा जो भवन बनाए गए हैं उनके मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए गए हैं। 15 दिन का उनको समय दिया था अपना पक्ष रखने का, उन्होंने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और आज प्रातःकाल उन्होंने, उनकी पर्सनल अपीयरेंस भी थी, उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। और पूरे प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है।
5: सर, कितनी बिल्डिंग थी वहाँ पे टोटल?
4: कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे हैं जिसमें से 38 भवन अवैध पाए गए। तो तत्समय जब निर्माण हुए थे तो दो भवन, 40 में से दो भवनों का निर्माण उन्होंने किया था, उसकी मानचित्र स्वीकृति भी जिला पंचायत से कराई है। इससे ये क्लियर होता है कि उन्हें कानून की जानकारी थी कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका मानचित्र जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाना है, लेकिन जो 38 शेष भवन है वो भी उसी समय बने और उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया है। इस दृष्टि से वे भवन जो है अवैध रूप से निर्माण किया गया है।
6: आज जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है ये आम रास्ता है। ये आम रास्ता कैसे सर?
7: आम रास्ता इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो रोड अंदर जा रही है 4 लेन CC की, वो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई है। इसका निर्माण कार्य 2019 में कंप्लीट हो गया था, 2016 में वो स्वीकृत हुई थी और स्वीकृति के उपरांत उसका 4 लेन में CC कार्य किया गया। तो वो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, तो वो आम रास्ता जो भी लोक निर्माणों की सड़क बनती है पब्लिक के लिए बनती है, आम रास्ता ही है वो सभी हमारा, इसलिए वो हमने बोर्ड लगाया कि आम रास्ता है।
8: कितनी लंबी सड़क है सर ये?
7: सड़क हमारी 3.5 किलोमीटर लंबाई की है, 16.5 करोड़ की इसकी स्वीकृति आई थी, जिसमें 13.5 करोड़ का इसका बॉन्ड का बना, लगभग 13.5 करोड़ रुपए हैं जिससे इसका सिविल कार्य हमने कराया था। और 3.5 किलोमीटर लंबाई में ये बनाई गई है, 2 किलोमीटर हमारी गेट से लेकर सीधी पीछे बंदे तक जाती है और 4 लेन की सड़क है हमारी।
8: हम इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हैं और हम बताएं आपको कि यहाँ पे एक प्रशासन ने कल एक बोर्ड लगाया था कि ये आम रास्ता है, और ये आम रास्ता के बाद यहाँ इसका एरो जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर का इसको मार्क किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। और हम इस वक्त मौजूदगी हमारी है और जौहर यूनिवर्सिटी में हम अभी बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जो 38 बिल्डिंग्स हैं उनको हम दिखाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक कैंप लगा है, छात्र छात्रा परामर्श केंद्र, क्यों लगा है, किसकी तरफ से लगा है, ये पूरी हम अभी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जी जी, आप लोग कहाँ से आए हैं?
9: जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट।
8: जी,
9: डिग्री कॉलेज से आए।
8: क्यों यहाँ पे कैंप किसने लगवाया है?
9: शासन ने लगवाया।
8: किसने लगवाया ये पूरी बात बताएं?
9: काउंसलिंग के लिए लगवाया, बच्चों के काउंसलिंग, बच्चे पैनिक ना हो इसके लिए उनको सही दिशा। मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, हमको तो यहाँ पर उधर है।
8: क्या नाम है?
9: रिजवी साहब से।
8: रिजवी साहब, मैं रिजवी साहब से बात करने की कोशिश करूँ। डॉक्टर रिजवी साहब, मैं ये जानना, आज ये कैंप लगाया किसने लगाया सर?
10: ये प्रशासन से ये सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद की जा रही है
8: जी।
10: तो अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर लें लोग, तो उनके लिए।
8: आपको क्या प्रशासन से सूचना मिली थी?
10: यही कि हमें गाइड करना है बच्चों को, एक काउंसलिंग टाइप।
8: किस तरीके की काउंसलिंग?
10: कि बच्चे और जो पढ़ रहे हैं वो किन कोर्सेज में, अगर ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो कहाँ जा सकते हैं, जो और कॉलेजेस हैं जहाँ अवेलेबल है कोर्स वहाँ जा सकते हैं, यही।
3: और इस पूरे जौहर यूनिवर्सिटी के मामले पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए।
11: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
12: अवैध जमीन पर है, परमिशन नहीं ली हमसे।
11: हम ये कह रहे हैं, आप क्या कोई यूनिवर्सिटी बना पाए अभी तक? और आप केवल कमियां खोज रहे हैं, ऐसे मुद्दे खोज रहे हैं जिनसे आप भगवान राम के मंदिर के लुटेरों को बचा ले जाए, सोच रहे हैं वो बहस बंद हो जाए, तो कैसे बंद हो जाएगी?
1: और अब रुक करते हैं केंद्र की राजनीति का। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस की भी इस वक्त मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय करने वाली बैठक चल रही है।
13: ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया।
14: They knew very clearly that this bill actually cannot be passed.
15: ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे कभी हारे नहीं।
16: देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष के साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है।
17: ये पिछले सत्र की बात है जब संसद में विपक्ष और सरकार का जबरदस्त आमना सामना हुआ था। परिसीमन बिल पर जमकर तनातनी हुई थी, बहुमत ना होने के बावजूद सरकार ने विधेयक पेश करने का दांव खेला। दो तिहाई समर्थन न होने से विधेयक गिर गया, लेकिन सियासत अब तक जारी है। सरकार बिल दोबारा पेश करने की तैयारी में है और इस बार संख्या बल जुटाने का भी शिद्दत से प्रयास हो रहा है। कैसे ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 20 जुलाई से हो रहे मानसून सत्र की तैयारी का आलम देख लीजिए। 15 जुलाई को पीएम आवास पर बैठक हुई, 16 जुलाई को कांग्रेस नेताओं की बैठक, 21 जुलाई एनडीए संसदीय दल की बैठक, यानी बैठकों का दौर है, चिंतन मंथन का सिलसिला है। खबर है कि कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। करीब 2 घंटे के इस मंथन से कौन सा अमृत निकला, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम का गठन और संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक के बाद हुई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 6 सांसदों के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की थी। शिंदे के साथ उद्धव गुट से टूटकर आए 6 सांसद भी थे।
18: गृह मंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने यूबीटी के 6 बागी सांसदों के साथ मुलाकात की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों के पीछे एक कारण स्पष्ट है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को संसद के दोनों सदनों से किसी भी कीमत पर पारित करा लिया जाए। इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद किसी भी नीति को अपनाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
17: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ हुई इन बैठकों का दायरा काफी बड़ा माना जा रहा है, लेकिन मानसून सत्र को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी साफ साफ दिख रही है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर बैठक बुलाई है, जिसमें संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, के सुरेश और मनीष तिवारी को बुलाया गया है। संसद का ये मानसून सत्र तब हो रहा है जब सामने यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका मतलब साफ है कि सत्र के दौरान संग्राम खुलकर होने वाला है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: एक और 11 वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: Order for Jennifer C.
22: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
21: Yeah. Can you handle that much caffeine?
22: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
21: Oh, really? That's great.
22: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
21: Yeah, you just said that.
22: Did you say I just said that?
21: Yeah, I'm cutting you off.
22: I can't have any more? Why not?
23: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
24: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
25: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
26: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
27: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
26: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
27: They score!
26: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं। इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं। इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ बाराबंकी सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
1: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रायर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
0: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।

मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। बीजेपी से पवार गुट की नजदीकियों पर भी होगा मंथन। सोनिया की आवाज पर जुटे राहुल खड़गे समेत कई बड़े नेता। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक। सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी। कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। और धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु। शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

0: आज तक मैं हूं आपके साथ वांशु दीक्षित। 12 बजे वाला रिपोर्टर की शुरुआत दिल्ली में चल रही एक बड़ी बैठक से करेंगे। दिल्ली में 10 जनपद यानी सोनिया गांधी की आवाज पर एक बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के बड़े नेता यहां मौजूद हैं और यह बताया जा रहा है कि मानसून सत्र की तैयारियों पर यह बैठक चल रही है। राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, यह बैठक कितनी अहम है और क्या रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस?
1: माइक ऑन करो।
0: राहुल, सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि बैठक कितनी अहम है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? तो 10 जनपद पर कांग्रेस की जी बोलिए राहुल।

0: तो मानसून सत्र की रणनीति पर यह बैठक में चर्चा की बात कही जा रही है और बड़े दिग्गज है जो कांग्रेस में नीति निर्धारित करते हैं, जो कांग्रेस की रणनीति तैयार करते हैं, वो सभी लोग आज 10 जनपद में जुड़े हुए हैं। राहुल गौतम बने हुए हमारे साथ। राहुल, आवाज आ रही है तो बताइए, बैठक कितनी अहम है और आगे की क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है इस बैठक में?
1: देखिए, बैठक बहुत ज्यादा अहम है। इसका कारण ये है कि आपको ध्यान होगा, सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर हमको सरकार आश्वासन देती है तो हम जो डिलिमिटेशन बिल है उसको समर्थन करने का विचार कर सकते हैं, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार आप कह सकते हैं कि असहज है, क्योंकि उनका एक अपना सहयोगी अगर सरकार के साथ खड़े होने की बात करता है तो जाहिर है ये एक बहुत सुखद स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए उसको लेकर जो रणनीति बनानी है उसको लेकर ये बैठक है। 10 जनपद पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद हैं, और एक खाका तैयार किया जा रहा है कि आखिर सरकार को कैसे घेरा जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने लीड ली थी ताकि विपक्षी खेमा एक रहे, तो और इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आखिर विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट रखा जाए, उसको लेकर ही रणनीति बनाई जा रही है।
0: बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। तो कांग्रेस के कई मुद्दों के साथ परिसीमन वाला मुद्दा अहम है, और कल सुप्रिया सुले ने कहकर कांग्रेस का तनाव बढ़ा दिया कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है, और इस पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
2: सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने कहा वो आ जाए, हम उसे देखें। पिछली बार तो धोखा किया था, अमित शाह जी बोल गए कि 50% हम बढ़ाएंगे, और जब ड्राफ्ट देखा गया तो उसमें था ही नहीं। तो उसने कहा पहले लेके आए, तब हम अपने विचार रखेंगे। उसने कहा मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूं कि हम उसका समर्थन करेंगे। आज मैं सुबह का बयान सुप्रिया का बता रहा हूं।
0: तो कांग्रेस की अभी बैठक चल रही है, तो एक और बैठक है जिस पर कल चर्चा हो रही है। कल पीएम मोदी की आवाज पर बीजेपी के बड़े नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक हुई, और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की पीएम आवास पर यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन में फेरबदल की अटकलें बहुत तेज है। पूरी रिपोर्ट बता रही हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बहुत अहम बैठक हुई। इस बैठक के अंदर बीएल संतोष मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। किस तरीके से जो सत्र आने वाला है उसमें चीजों को आगे मूव किया जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल इस बार सरकार लाने वाली है। डिलिमिटेशन का बिल, जिसमें कि वुमेन रिजर्वेशन की बातचीत होगी, वो बिल सामने आने वाला है, और एक अमेंडमेंट किया जाएगा जिससे कि अगर प्रधानमंत्री या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो कि एक कुर्सी पर बैठा है, अगर वो जेल जाता है तो 30 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। पिछली बार देखा गया था किस तरीके से जब इन बिल को पेश किया गया था तो ऑपोजिशन एकजुट होकर उन्होंने इस बिल का विरोध किया था, लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी नहीं है। बहुत सी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है और ये कहा है कि जब ये बिल को प्रस्तुत किया जाएगा तो वो एनडीए के साथ, यानी कि एनडीए के समर्थन के अंदर साथ खड़ी नजर आएंगी। किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई ये लगभग 2.5 घंटे तक चली, और किस तरीके से एनडीए को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे चलना है, इन सब चीजों पर यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश से। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण खुद से हटा दो वरना हम हटा देंगे। आजम खान की यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिन का समय मिला है जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान मंत्री थे और शहरी विकास मंत्री रहते ही उन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था।
4: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 48 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार मंडरा रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण मानता है कि जौहर यूनिवर्सिटी की बनी 40 इमारतों में 48 इमारतें ऐसी हैं जो अवैध हैं, यानी कि जिनको लेकर ना ही जिला पंचायत से परमिशन मांगी गई और ना ही डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन मांगी गई है, और इस नाते उन्हें 20 दिन का समय दिया गया है, या तो वो उन अवैध इमारतों को खुद हटा लें वरना फिर बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से रामपुर में की जाएगी। अब इस मामले को लेकर जो विश्वविद्यालय है उसका ये कहना है, कोर्ट में ये कहना है कि जब ये निर्माण हुआ उस वक्त विकास प्राधिकरण इस गांव जहां पर ये निर्माण हुआ है वहां पर नहीं था और ना ही ये जमीन किसी जिला पंचायत के अंतर्गत आती थी।
0: देखिए 40 में से 38 भवन है जिस पर बुलडोजर चल सकता है। अब इस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं।
5: सर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे जमीन।
6: मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करेंगे।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो है भोपाल से। मध्य प्रदेश में इसी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठन किया था उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंप दी है और अब ये माना जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में मध्य प्रदेश सरकार में इसे विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा और 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। 5 दिन का सेशन है और इसी सेशन में ये पेश किया जा सकता है।
7: 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो रहा है और मध्य प्रदेश सरकार इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी को लागू करना चाहती है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने से पहले प्रदेश के सभी 55 जिलों में जाकर के लोगों से संवाद किया था। धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों और समाज से जुड़े हुए अलग अलग धर्मगुरुओं से मुलाकात कर सुझाव मांगे गए थे, जिसके बाद करीब 10 लाख से ज्यादा सुझाव पर अमल करने के साथ ही मध्य प्रदेश में यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है। फिलहाल मसौदा तैयार कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा जा चुका है और अब सरकार इसे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाकर प्रदेश में यूसीसी को लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री इस बात को ज्यादातर सभाओं में दोहरा भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर एक कानून है तो वो सबके लिए मान्य होगा, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून के मध्य प्रदेश में अब कोई जगह नहीं होगी।
0: और यूसीसी की वकालत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए।
8: 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है।
0: और आइए मध्य प्रदेश से आपके लिए चलते हैं कोलकाता। ममता बनर्जी की अब मुसीबत बढ़ गई। लंबे समय तक ममता बनर्जी के बहुत करीबी रहे मदन मित्रा भी अब बागी खेमे में पहुंच गए हैं।
9: चंदीमा भट्टाचार्य और बॉबी हकीम के बाद अब बारी है मदन मित्रा की और मदन मित्रा ने साफ तौर पे कल ये कह दिया कि वो ऋतव्रतो गुट के साथ जुड़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी के प्यार में पूरी तरीके से अंधे हो गए थे और इस वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ अभिषेक बनर्जी से चूक हो रही है, कहाँ उनकी गलती हो रही है। खासकर उन्होंने इस बात पर भी इशारा किया और निशाना साधा ममता बनर्जी पर कि जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा था अभिषेक बनर्जी और उनके आईपैक के टीम की तरफ से उसको लेकर खासा नाराज रही हैं। खासकर जो पुराने और कद्दावर नेता माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया और सीधे तौर पे मदन मित्रा ने एक तरीके से अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया बाकी लोगों की तरह ही कि अभिषेक बनर्जी के वजह से आज तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी गुट का ये स्थिति है और ये हाल है।
0: तो देखिए पार्टी महासचिव बनाए जाने के 11 दिन बाद ही मदन मित्रा बागी हो गए। तमाम पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद वो सीधे बागी गुट के नेता विभ्रत बनर्जी पास पहुंच गए। मदन मित्रा ने टीएमसी में टूट के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में टीएमसी बिखर रही है।
10: हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसके बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है, पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी, ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े।
0: और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने आरोपित शिवराज रघुनाथ की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया शिवराज रघुनाथ मॉन्टेगर साजिश में शामिल है, इसने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। सीबीआई ने कहा कि इसके फोन से 132 क्वेश्चन मिले हैं जिसमें से 111 प्रश्न हूबहू वही थे जो परीक्षा में आए थे। सृष्टि ओझा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, और कुछ क्या कहा गया है सीबीआई की तरफ से? सृष्टि, सीबीआई की तरफ से विरोध जताते हुए और क्या कहा गया जमानत का विरोध जताते हुए? जी चलिए, लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीबीआई की तरफ से विरोध यहां पर जताया गया है जमानत को लेकर। अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट है गाजियाबाद से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित GS7 हाई राइज सोसाइटी है। अब यहां पर लिफ्ट के अंदर 2 लोगों में फाइट हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़ने वाले दोनों शख्स अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन यानी AOA के पूर्व पदाधिकारी हैं। सीसीटीवी फुटेज कल सुबह का है जिसमें दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए और एक दूसरे पर मुक्के मारते हुए दिखाई दे रहे हैं।
11: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित GS7 हाई राइज सोसाइटी में 2 लोग अचानक से लिफ्ट में भिड़ गए। दरअसल ये मामला कल का यानी 15 जुलाई का बताया जा रहा है, जब दीपक चोपड़ा और प्रहलाद कुमार दोनों ही जो कि पहले AOA में काम कर चुके हैं एक साथ लिफ्ट में चढ़ते हैं। दोनों में पहले बहसा बहसी होती है और उसके बाद ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में अचानक हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने दीपक चोपड़ा की तहरीर पर एक FIR दर्ज की है। इस FIR के बाद गाजियाबाद पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया है और CCTV फुटेज है उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों पक्षों ने अपने बयानों में एक दूसरे पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। अब गाजियाबाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिसके वजह से ये लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में तब्दील हो गई।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में कितने सुरक्षित हैं स्कूल भवन? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने स्कूलों के स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार या उससे पहले बने सभी पुराने सरकारी स्कूल भवनों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। सरकार ने फिलहाल 108 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित एवं खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया है और अगले कुछ महीनों के भीतर 7 स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जा सकता है।
12: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के तमाम स्कूलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया है और इन स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ 7 ऐसे स्कूल हैं सरकारी जिनको डेमोलिशन करने का भी आदेश जो है वो जारी किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जसोला के गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आप हालत देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है इसका स्ट्रक्चर लगभग 2008 के अंदर ये बना था और किस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दरारें आपको नजर आएंगी, जो जो दीवारों के अंदर अगर आप देखेंगे मलबा झड़ता हुआ नजर आएगा। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पहली बार इस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया और इन स्कूलों को डेंजर घोषित करा गया है और अब इन स्कूलों की फिर से रिनोवेशन और पूरी तरीके से नए सिरे से इन स्कूलों को जो है वो बनाया जाएगा ताकि बच्चों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब दिल्ली से आपको लिए चलते हैं मुंबई। एक वायरल वीडियो से मुंबई का जुहू बीच अब चर्चा में आ गया है। वीडियो में जुहू बीच पर कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। बीएमसी के कर्मचारी मशीनों की मदद से कचरे के ढेर को हटा रहे हैं। बीएमसी टीमें कचरा उठाती हैं और अगले दिन फिर वहां पर कचरे का ढेर लग जाता है। अब इतना ज्यादा कचरा बीच पर कैसे पहुंच रहा है? क्या ये पर्यटकों का है या फिर नालों से बहकर आ रहा है? अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं।
13: इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो मुंबई का जुहू बीच है। अक्सर जहां पर पर्यटक दिखाई देते हैं वो किसी नाले का स्वरूप ले चुका है। जुहू बीच पर आप देखेंगे कितना कचरा जो है वो मौजूद है और बीएमसी का कहना है कि लगभग 180 टन कचरा जो है वो हर रोज निकाला जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड की जिस जैसा ये जो दृश्य है ये जुहू बीच पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जेसीबी यूज कर इस पूरे कचरे के ढेर को हटाया जा रहा है। जहां सोशल मीडिया पर ये पूरा जो दृश्य है ये वायरल हो रहा है, लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं, वहीं पर प्रशासन के लिए बीएमसी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, जुहू बीच को पहले जैसा फिर से साफ कैसे किया जाए।
0: आइए अब वेस्ट एशिया की बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और लगातार पांचवें दिन भी दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक और हैंगाम द्वीप पर कई धमाके की गूंज सुनाई दी। ईरान की महर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाके हुए। बंदर अब्बास, हैंगाम द्वीप और सिरिक के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल से तबाही मची। अब तक के अमेरिकी हमलों में ईरान में बताया जा रहा है 35 लोग मारे गए हैं, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं।
14: बुधवार रात को लगातार पांचवें दिन अमेरिका की तरफ से ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहे और जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में लगातार जवाबी कार्रवाई होती रही। एक तरफ जहां पर अमेरिका का दावा है कि उन्होंने सैन्य शक्ति जो ईरान की है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, वहीं पर ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाता जा रहा है। बीती रात इराक की इब्रिल में ड्रोन से हमला हुआ जो यूएस कौंसलेट इराक के इब्रिल शहर में है। उस बीच वहां पर कई अमेरिकी नागरिकों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। जिस अंदाज से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है उस बीच अब अमेरिका की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान के कब्जे या ईरान की तरफ से उस पर पकड़ को किस तरह से कम किया जा सके।
0: और देखिए इस बीच खबर यह भी है कि ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट का दावा है कि हॉर्मुज आसपास के द्वीपों पर अमेरिका की सेना उतर सकती है।
15: अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार बीते 4 दिनों से बमबारी कर रहा है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसा कोई नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के कई शहरों और इलाकों के ऊपर बम और मिसाइलें दाग रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी जंगी जहाज ईरान के तटीय इलाकों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऑपरेशन रूम के अंदर मीटिंग भी की और साथ ही अमेरिका एक बार फिर उन कार्रवाई और उन प्लान्स के ऊपर लौट रहा है जहां पर ईरान के तटीय इलाकों पर सैनिक भेजने की कार्रवाई भी शामिल है और साथ ही खर्ग आइलैंड जैसे इलाकों को कब्जे में लेने वाले प्लान भी शामिल है।
0: और आइए अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गया। कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। गजब रोमांचक मैच। खास बात यह थी कि मैच में 85 मिनट तक अर्जेंटीना 0-1 से पिछड़ी थी और बाद में 2-1 से जीत गई।
16: फीफा वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इस मुकाबले में एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भारी पड़ रहा है, लेकिन इस मैच में अभी सब कुछ होना बाकी था क्योंकि लियोनेल मेसी का जादू अभी तक चला नहीं था। 55वें मिनट में इंग्लैंड को सफलता जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद लगातार अर्जेंटीना की तरफ से प्रयोग और प्रयास किए जा रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आखिरी मिनटों में लियोनेल मेसी का जादू चला। दो शानदार असिस्ट लियोनेल मेसी ने दिए जिसको गोल में कन्वर्ट किया इस अर्जेंटीना की टीम के शानदार स्ट्राइकर्स ने। नतीजा ये हुआ कि अर्जेंटीना एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। अब देखना होगा कि क्या इस बार एक बार फिर से अर्जेंटीना इस ट्रॉफी को जीतने में कामयाब होती है या फिर स्पेन की नजर अपने एक और टाइटल पर होगी।
0: और अब खबर रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। अब उससे पहले अहमदाबाद में सुबह 7 बजे से ही भव्य रथ यात्रा शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ की आगे सफाई की। पुरी और अहमदाबाद में लाखों लाख श्रद्धालुओं की यात्रा में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यहां वक्त तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
18: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
17: सवारी सोकुडो।
19: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
20: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट,
9: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
14: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
18: इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
3: Money every month.
4: Soch batlo aur bank bhi.
5: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
6: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
7: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
5: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत, अब देखिए आज तक वर्टिकल।
10: इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे। सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, और 2036 तक 3 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा।
11: स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा कि सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है इन द वर्ल्ड। सी देयर आर ओनली 2 थिंग्स, प्राइस एंड वैल्यू। बफेट साहब ने एक सबसे बड़ी चीज सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड। एक का हजार दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं, बाजार आपको डराएगा रोज आकर। एक तू आ ना भाई, हमारा तो पार्टी चालू है, हम वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वही से यहाँ भी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया कैंप। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने के चलते अवैध करार दिया गया था और 15 दिन के भीतर स्वयं गिराने के भी आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश पर मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा नेता सुनील साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी कुछ बना नहीं सकती लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ जरूर सकती है। AIMIM पर भी जमकर बरसे समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन। बिना नाम लिए बोले कि लोगों को मालूम है कि कौन बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना जर्दिश अंसारी का विवादित ऑडियो वायरल। मौलाना ने भगवद गीता के एक श्लोक को गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया।
1: अरे भाई, अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10 मंत्र देख लीजिए।
0: कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना पर भड़के महंत विष्णुदास। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सबक सिखाने वाले को देंगे नाम। मौलाना के श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए इसे सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात बताया। पटना झारखंड में मौलाना जर्जश अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। किसी गहरी साजिश की भी आशंका जताई। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर में यूपी चुनाव को लेकर रथ यात्रा निकालेंगे। सभी जिलों में कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनावों से पहले शुरू होने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। जगह को लेकर मंथन जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार SIT जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने CCTV फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाई राइज सोसाइटी के लिफ्ट में 2 पूर्व AOA पदाधिकारी भिड़े। CCTV वायरल हुआ। गाजियाबाद में कलियुगी बेटे की खतरनाक करतूत। जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या की। आरोपित की तलाश में पुलिस। मेरठ में दिव्यांग युवक से अमानवीय बर्ताव का वीडियो वायरल। 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने काम दिलाने का झांसा देकर किया प्रताड़ित। वाराणसी में GST के डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। टायर फटने की वजह से घर में घुसा ट्रक। सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई।

0: और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नकद बरामद कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आशीष श्रीवास्तव। आशीष, ट्रस्ट ने जांच शुरू होने से पहले ही चोरों के पास से 2-3 करोड़ रुपए बरामद कर लिए थे, तो गोविंद देवगिरी क्यों कह रहे थे कि चोरी ही 2-3 करोड़ की हुई थी?
1: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी की जो ये फाइनल रिपोर्ट है उसमें कई और चीज़ों को इंक्लूड किया गया और उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पहले ही ये चोरी पकड़ी जा चुकी थी और जिसमें बरामदगी भी हुई थी। यानी कि एसआईटी ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं ये लेट चीज़ें हुई हैं सामने, अगर पहले ही एक्शन हुआ होता तो शायद इस स्टेज तक नहीं पहुँचने दिया जाता। और ये भी माना है कि जो करोड़ों की चोरी हुई थी उसकी बरामदगी भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट ने की थी। तो अब जब बरामदगी भी की गई थी, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी और इससे पहले भी सारी चीजें ऑलरेडी की जा चुकी थी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता।
0: अच्छा, और सवाल है, क्या एसआईटी की रिपोर्ट में चोरी की गई वास्तविक रकम को लेकर कुछ खुलासा होने वाला है क्या?
1: बिल्कुल निमांशु, चोरी की जो रकम है वो कितनी ज्यादा की गई है वो खुलासा जरूर होगा।

0: समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने यूपी में रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। ये रथ यात्रा सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के किसी बड़े धार्मिक स्थल से होने वाली है। इसके बाद अखिलेश का ये चुनावी रथ उत्तर प्रदेश के हर जिले से होकर गुजरने वाला है। ये रथ यात्रा किसी धार्मिक स्थल से निकलेगी और इसे लेकर पार्टी के अंदर फिलहाल मंथन चल रहा है कि कहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगस्त के आखिर में, आखिरी हफ्ते से ही इस रथ यात्रा को लेकर हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी को धर्म के मोर्चे पर घेरने का प्लान बना चुकी है। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, अखिलेश यादव की रथ यात्रा का क्या प्लान बन रहा है? क्या ये आडवाणी जी की रथ यात्रा की तरह होने वाली है क्या?
1: हिमांशु, देखिए रथ यात्रा की अगर आप बात करेंगे तो अखिलेश यादव हर चुनाव में, और अखिलेश यादव ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने भी जब रणनीति बनाना शुरू किया या जो चुनावी सफर उनका शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी रथ यात्रा के जरिए अपना चुनावी सफर तय करती रही। खासकर जब चुनाव नजदीक आते हैं उस रथ यात्रा से इन्होंने सरकार बनाई भी है और अच्छे सीट्स निकाले भी हैं। अगर 24 का इलेक्शन भी देख लें तो अखिलेश यादव जगह जगह रथ लेकर गए थे। रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जहां जहां उनका रथ जाएगा वहां कनेक्टिविटी होती है, जो नेता कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता को कहीं ना कहीं रथ पर सवार देख पाते हैं और ये तस्वीरें हर चुनाव में होती, तो इस चुनाव में भी तैयारी यही है। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, सितंबर के पहले सप्ताह से कहीं ना कहीं रथ यात्रा की शुरुआत हो सकती है। देखिए अगर चुनाव जल्दी होता है तो कुछ डेट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, और अगर चुनाव नॉर्मल डेट्स पर होते हैं तो भी उसके मुताबिक ही रथ यात्रा।
0: अच्छा, आपने ये बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में रथ यात्रा निकलने वाली है और सितंबर के पहले हफ्ते में ही जन्माष्टमी है, तो क्या अखिलेश मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दिए जा रहे सियासी चैलेंज का हेड ऑन मुकाबला तो नहीं करेंगे?
1: देखिए हिमांशु, ये अभी तय नहीं है कि रथ यात्रा निकलेगी कहां से, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है वो ये मिल रही है, जिस तरीके से अयोध्या चंदा चोरी का मामला हुआ है समाजवादी पार्टी इसे शांत तो नहीं होने देगी। अभी पार्लियामेंट भी होने जा रहा है, वहां भी सपा सांसद इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। एक तरफ इथेनॉल का मुद्दा विपक्ष उठाएगा लेकिन राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए केंद्रित रहेगा। जो जानकारी प्राप्त हो रही है कोई धार्मिक स्थल हो सकता है जहां से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी रथ यात्रा शुरू करे। अब वो सीतापुर भी हो सकता है, नैमिषारण्य है वहां पर, या कोई कई और स्थान है जहां से ये रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए जो हिंदुत्व के पीछे बीजेपी की, अगर उसको जवाब देना है उस पर, उस रणनीति पर भी कहीं ना कहीं सपा काम कर रही है।
0: थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं सितंबर के पहले हफ्ते का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दों में से एक रहने वाला है। ये समाजवादी पार्टी कई बार कह भी चुकी है और इस मुद्दे के बहाने समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ सत्य धर्म सनातन के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रही है।

0: संत के चरण, सनातन की शरण, समाजवाद की सीख और वोटों की भीख। सत्ता के 7 साल की दूरी ने अखिलेश यादव को आखिरकार मुलायम समाजवाद से आगे सख्त सनातन की ओर सरकने को मजबूर किया है। अयोध्या के चढ़ावा चोरी के बहाने ही सही, लेकिन अखिलेश यादव ने आखिरकार धर्म के मोर्चे पर अपने दल को सनातन सीख का पहरेदार करार देना शुरू कर दिया है। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर पर सनातन ही समाजवाद है का विशाल पोस्टर लगाने के बाद अब अखिलेश यादव यूपी में रथ यात्रा का प्लान बना चुके हैं।
1: कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
2: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय समीकरण गांठने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं झोंक पाए।
0: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। जब से चुनावी रैलियों में संविधान की किताब दिखाकर अखिलेश ने अयोध्या फतह की थी, तब से अखिलेश ने पीडीए को अपना पक्का वोटर मान लिया और फिर दूसरे वोटर ब्लॉक्स की ओर कदम बढ़ा दिए, और ये वो वोटर थे जो सनातन के नाम पर बीजेपी से जुड़े हुए थे। लिहाजा अपने समाजवाद को सनातन का पर्याय बताने के लिए अखिलेश ने अपने इटावा में केदारेश्वर मंदिर की शुरुआत की। कुंभ के शंकराचार्य विवाद से धर्म, संस्कार, सनातन, व्यवहार की बहस में एंट्री मारी और फिर अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड के विसल ब्लोअर होने का दावा करके असली सनातनी होने का दावा करने लगे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में

0: विधानसभा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा।
1: चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा, हम मुद्दा बनावे या न बनावे, जो साधारण जनमत है, जो साधारण व्यक्ति है, वो रोज पूछता है बाबू अयोध्या में मंदिर से कैसे चोरी हो गया, ये लोग क्यों चुरा ले गए मामला। वो हमको नहीं चोर बताते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं बताते हैं, वो उन्हीं को बताते हैं। इसने समाजवादी पार्टी का जनाधार जनता में बढ़ा और इनका जनाधार इस चोरी से कम हुआ।
0: हालांकि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मुद्दे पर बीजेपी जरा भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। सीएम योगी तो पिछले 3 हफ्तों से हर मंच पर अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की पुरानी तारीखों के पन्ने पलट रहे हैं।
2: जब उनकी सरकार थी तो निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून दिया गया था और श्री अखिलेश यादव ने सदैव रामद्रोहियों की तरह आचरण किया है, शिव द्रोहियों की तरह आचरण किया है, कृष्ण द्रोहियों की तरह आचरण किया है, कभी हिंदू हितों का सम्मान नहीं किया, कभी उनका आदर नहीं किया। और उनके द्वारा जब भी ऐसी कोई बातें बोली जाती हैं या ऐसा कुछ दिखाया जाता है तो राम भक्तों का, राष्ट्रभक्तों का, पूज्य संतों का, सबका अपमान करते हैं।
0: दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि जब 2024 में तो संविधान के नाम पर कामयाबी मिल गई थी लेकिन विधानसभा में वो खिताबी फार्मूला और खाते में खटाखट 8,000 वाली चाल शायद नहीं चले, इसीलिए हिंदू वोट को पाले में लाने के लिए सनातन का सवाल उठाना सियासी पतवार बन सकता है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि यूपी में जिस बीजेपी को 2019 में 49.6% वोट मिले थे वो 2024 में घटकर 41.4% रह गया। जिस समाजवादी पार्टी को 2019 में 18.11% वोट मिले थे वो 2024 में बढ़कर 33.59% हो चुका था। ऊपर से 2019 में जिस बीजेपी को यूपी में 8% मुस्लिम वोट मिले थे वो 2024 में 2% तक गिर गए। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की फिक्र छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी अब सनातनी वोट जोड़ने पर लग गई है। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी रणनीति अब धर्म छोड़ो जाति जोड़ो के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: तो अखिलेश अब रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं और इस रथ यात्रा का क्या चरित्र होगा, क्या ये सनातन हिंदुत्व धर्म पथ पर चुनावी सफर वाली रथ यात्रा होगी या जैसे अखिलेश सामान्य तौर पर बस में चुनावी यात्राएं करते हैं वैसी यात्रा होगी। खैर यात्रा तो तब होगी ना जब, लेकिन अखिलेश का ये चुनावी धर्म पथ आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ अखिलेश पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के पीडीएफ फॉर्मूले की माला जपते हैं, रात भर के शब्दों में एसी वाली पीसी में लगातार पीडीए के मसले उठाते हैं, दूसरी तरफ वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गौरक्षा अभियान का समर्थन करते दिखाई देते हैं और तीसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स का सबसे बड़ा हितैषी भी बनने का दावा करते हैं।
4: अब कुछ दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहकर के भाजपा की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ छिपा नहीं, राजनीति में कुछ छिपना नहीं है। आरोप झूठा आरोप लगाने से लगेगा नहीं। भाजपा भी बहुत तरीके की बात करती है, बहुत चोरी चोरी पोस्टर लगाती है, स्टिकर चिपकाती है, बयान देती है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। भाजपा की विदाई तय है।
3: यूपी के रामपुर की बात करते हैं, आजम खान की बनाई गई अली जौहर यूनिवर्सिटी पर इन दिनों बड़ा खतरा मंडरा रहा है और खबर है कि अलीगढ़ अथॉरिटी यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को अवैध करार देकर उन पर बुलडोजर चला सकता है।
5: आजम खान की मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान ने नियमों को ताक पर रखकर किया यूनिवर्सिटी की इमारतों का निर्माण। रामपुर प्रशासन ने आजम खान को दिया 15 दिन का वक्त, अवैध निर्माण हटाओ वरना तोड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आजम खान यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिन का समय मिला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है।
6: ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है, इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र दो ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके दोषीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है।
5: अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान मंत्री थे। शहरी विकास मंत्री रहते ही उन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की तहसील सदर के सिंखेड़ा गांव में है। जब इमारतों का निर्माण हुआ तो ये क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत था। उस वक्त दो भवनों का नक्शा आजम खान ने पास कराया था, लेकिन 2024 में ये पूरा इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण को मिल गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने निर्माण को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान साफ हुआ कि यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ दो भवनों का नक्शा था, लेकिन निर्माण किए 40 भवन।
6: जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से RDA ने टेक ओवर किया है, तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के दोस्तीकरण से संबंधित, वो अब RDA को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर RDA ने दोस्तीकरण का आदेश पारित किया है।
5: यही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की मेन गेट की जो सड़क है वो भी आजम खान ने सरकारी फंड से बनवाई थी। अब लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया है। PWD ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बोर्ड लगा दिया है कि ये सार्वजनिक रास्ता है।
7: हम इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हैं और हम बताएं आपको, यहाँ पे एक प्रशासन ने कल एक बोर्ड लगाया था कि ये आम रास्ता है, और ये आम रास्ता के बाद यहाँ इसका एरो जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर का इसको मार्क किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये जा रहा है। ये बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग ये है, और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूदगी हमारी दर्ज है, और हम इस वक्त दिखाएंगे ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है और ये ही रोड जो है अंदर तक जा रही।
5: जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 4 लेन की CC रोड है। PWD ने 2016 में इसे स्वीकृति दी थी। उस वक्त इसकी लागत 16 करोड़ के आसपास थी, जिसमें लगभग 13 करोड़ 50 लाख में काम किया गया था। लेकिन 2019 में यूनिवर्सिटी ने रास्ता बंद कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस डिसमिस हो गया। उसके बाद लोअर कोर्ट में फिर केस आया। लोअर कोर्ट ने PWD के पक्ष में फैसला दिया। जौहर यूनिवर्सिटी फिर हाईकोर्ट गई। अब मामला विचाराधीन है। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग ने ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया है। आमिर खान, रामपुर आज तक।
3: अब धर्म मजहब के नाम पर चल रही सियासत में अर्थ के अनर्थ की एक खबर आपको बताते हैं। श्रीमद भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सतत मात्मनाम रहसी स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यह गीता के 6th अध्याय का 10वां श्लोक है और इसका अर्थ है कि साधक को एकांत में निरंतर ध्यान करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भौतिक इच्छाओं और संग्रह से मुक्त होना चाहिए। अब इस श्लोक को मंत्र बताते हुए यूपी के एक मौलाना ने झारखंड में जाकर क्या कहा है आपको सुनाते हैं। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मौलाना इटावा का है और कृष्ण जन्मभूमि पर सियासी चर्चा के बीच इसका बयान वायरल हुआ। अब हिंदूवादी संगठन इस मौलाना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
8: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
9: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
10: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
9: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
8: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
9: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे?
10: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
9: मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है, लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है, इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इस बार इसने श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ये देखिए।
8: योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह।
11: जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
9: इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये भी देखिए।
11: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा।
9: सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
11: ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ ले, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ ले अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
9: ये पहला मौका नहीं है जब इस मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है। मौलाना जगदीश अंसारी जैसे चेहरे फिर तेजी से दिखने लगे हैं।
12: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और ऐसे मौलाना पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए।
9: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
17: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health.
18: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
19: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
15: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
14: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
13: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
20: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.

0: चुनाव से पहले एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में बगावत की चिंगारी सुलगी तो आग बुझाने की जिम्मेदारी दिल्ली में आलाकमान तक पहुंच गई। पंजाब की रिपोर्ट लेकर प्रभारी भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है और उसमें भी वर्डिंग को ही जिम्मेदारी जारी रखने की सिफारिश की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर भी वर्डिंग की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 सांसद और 8 से 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में करीब 55 हलका प्रमुख बताए जा रहे हैं, जबकि 12 हलका प्रमुख ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
1: क्या नेतृत्व परिवर्तन की
2: कोई भाई यहाँ नीचे रख ले यार,
3: मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं।
1: अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश?
3: मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है।
0: अब सवाल यह है कि पिछली रिपोर्ट के बाद भी राजा वडिंग को न हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद चन्नी गुट ने बैठक की थी। ऐसे में अगर राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रहने का फैसला जारी रहता है तो फिर चन्नी अब आगे क्या फैसला करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को पंजाब से सत्ता खोनी पड़ी थी। वहीं बीजेपी भी चन्नी को ऑफर दे चुकी है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़ आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में बनी सरकार को घेरने की रणनीति। पवार के बदले रुख पर भी हुआ मंथन। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली आयोग की रिपोर्ट। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आ सकता है समान नागरिक संहिता विधेयक। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। अमेरिकी अखबार का खुलासा, ईरान में सेना भेजने पर विचार कर रही है ट्रंप। सिचुएशन रूम में हुई बड़ी बैठक। सैन्य विकल्प बढ़ाने पर विचार। ईरान पर एयर स्ट्राइक जारी। कुवैत बहरीन में जवाबी अटैक। धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु। शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

0: का स्वागत है। ये वक्त नॉन स्टॉप 100 का है, लेकिन उस पर जाने से पहले बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, करीब 2 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस इस मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल का विरोध करेगी। खबरें आ रही थी कि इस मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को लाया जा सकता है।
1: पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरे एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृहमंत्री ने एक दो विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा।
0: और अब वक्त है नॉन स्टॉप 100 का।

0: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज, ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया कैंपस। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने के चलते अवैध करार दिया गया और 15 दिन के भीतर स्वयं गिराने के दिए आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश पर मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी कुछ बना नहीं सकती लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ जरूर सकती। AIMIM पर भी जमकर बरसे समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन। बिना नाम लिए बोले कि लोगों को मालूम है कि कौन बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना जजिश अंसारी का विवादित बयान जारी वायरल हो गया है। मौलाना ने भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना पर भड़के महंत विष्णुदास, तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इनाम का किया ऐलान। मौलाना के श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए इसे सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात बताया। झारखंड में मौलाना जरजीश अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग आई है। किसी गहरी साजिश की भी आशंका जताई गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जीन सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे झंडी। चंडीगढ़ में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआई एमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर में आज अमित शाह की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन के पदाधिकारी भी होंगे मीटिंग में शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद होंगे। 2 महीने से गृहमंत्री की दूसरी बड़ी बैठक। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कोर का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्री राम पर बोलने का अधिकार नहीं। बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों को प्रदर्शन जारी। 5वें दिन BRS का समर्थन। किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका की यूटा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख। हर संभव कौंसुलर सहायता का भरोसा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिल्स को स्टॉक खत्म होने का डर सता रहा है। और पाकिस्तान में जो आटे की मिल्स हैं उनकी एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी बंद हो जाएंगे। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा। ब्रिटेन के पीटर्सबरो में हिंदू मंदिर वाले परिसर को मस्जिद बनाने के मामले में आज अहम सुनवाई। सिटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अंदर मौजूद रहने की संभावना। अलर्ट पर प्रशासन। यूएस फ्लोरिडा के पेंसाकोला बीच पर एयर शो वीक के दौरान यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स का खतरनाक स्टंट देखने को मिला। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जांच शुरू की गई। लगातार पांचवें दिन भी ईरान पर अमेरिका के हमले जारी, कई शहरों में धमाके की खबरें। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा उन्हें डेडलाइन देने पसंद नहीं है और ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर, बोले ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना है। वैंस ने कहा अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने बने निशाना, जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन किए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर। बहरेन में बजे सायरन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, क्षेत्रीय तनाव के बीच बड़ी सतर्कता। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो मार्टिनेस ने किए गोल। मेसी के पास पर हुए ये दोनों गोल। मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 19 जुलाई को न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयरस, सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच, आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाने का कोशिश है इस बदलाव के जरिए, और शुरुआती दौर को हल्के में न ले सके कोई भी टीम, ये भी है इच्छा। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी। पावन रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा, सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती, पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति, उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का दिखाई दिया जलवा। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह, बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किए नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज, कृष्ण के वेश में किया नृत्य। पुरी में रथ उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से की मुलाकात, शंकराचार्य का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई। नेपाल में बारिश के बाद उफान में आई पहाड़ी नदियां, 22 गांवों का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़, गांवों और स्कूल में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया उनको सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूब गए। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जोरदार बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना, लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान भी हुआ काफी ठंडा। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांवों में 2 किसानों की बिजली गिरने से हुई मौत, 1 घायल। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक कुमारी टक्कर, सीसीटीवी हुआ वायरल। गाजियाबाद की क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े, सीसीटीवी वायरल। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र, मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और एस्कॉर्ट के साथ रील बनाता हुआ नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने किए दर्शन, फिर की रेकी, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर की चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुएं का गुबार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका के 500 रुपए गुम होने पर छात्राओं की निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई, घटना के विरोध में परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला। बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड की सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई, बेटी के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत, जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अजमेर की आना सागर झील में तबाही, हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता, पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटल्स में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, कई युवतियों और युवकों को पुलिस ने किया डिटेन। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, वज्रपात से अलग अलग गांव में 2 किसान की मौत, 1 घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 चचेरे भाइयों पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान 1 की मौत, पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई कर रहा है, सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया, सामान भी किए जब्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं मुंबई से खबर। मुंबई में लोकल ट्रेन में फिर से मारपीट का एक मामला सामने आया है, विरार चर्चगेट लोकल के एक डिब्बे में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। बताया जाता है कि एक सीट को लेकर इनके बीच विवाद हुआ और फिर फिर बात मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि डिब्बे में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दोनों को रोकने या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर लोग सिर्फ इस घटना को देखते रहे या वीडियो बनाते रहे। कुछ ही दिन पहले मीरा रोड स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन में एक यात्री पर चाकू से हमला किए जाने की घटना सामने आई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स में सफर करना पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया है, और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
3: इसमें रात में लगभग 12:30 बजे की ये इंसिडेंस है। इस इंसिडेंस में उस वक्त जगह की कोई कमी नहीं होती है, किंतु तीन कलीग जो कोवर्कर हैं वो साथ में बैठना चाह रहे थे, उसलिए उन्होंने उस सीट पे बैठे हुए जो व्यक्ति पहले से उस पर बैठा हुआ था उसे उठने के लिए बोला, और इससे इसके चलते वो उसमें लड़ाई हुई, और जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसे उन व्यक्तियों ने के द्वारा मारपीट की गई। इसमें भी किसी नुकीले हथियार या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों व्यक्तियों ने जो जानकारी दी है उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने मारा उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ था और उस कड़े से उसे इंजरी हुई है। ये दोनों जो दो व्यक्ति थे इनमें से चार में से दो व्यक्ति ठाकुरली स्टेशन पर उतर गए थे, जो दूसरे दो व्यक्ति थे उन्हें कल्याण स्टेशन पर जानकारी के आधार पर उतारा गया। उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार दिए गए और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
0: तो आइए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, देख सकते हैं किस तरह से लड़ाई वहां पर हो गई, और वो सब एक सीट को लेकर हुआ। तीन आदमी जो साथ बैठना चाहते थे एक आदमी के सीट न देने पर उससे भिड़ पड़े, और ये देखिए किस तरीके से लात घूसे वहां पर चले, लोग आसपास खड़े देखते रहे। ये हाल है मुंबई की लोकल ट्रेन का। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of
6: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का।
1: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: वो हॉस्पिटल है, तकरीबन 470 जो पेशेंट थे पाकिस्तानी बॉम्बिंग में मारे गए। जो वो पेशेंट्स थे उनके रहने की जो व्यवस्था वहां पे थी, पूरे कंपाउंड में जो है प्लान्ड बॉम्बिंग हुई और कोई यहां का कोना हिस्सा नहीं है जो बचा। सब कुछ तबाह हो गया। मीर फरीद, काबुल आज तक।

राम मंदिर चढ़ावे की जिन्होंने चोरी की है अब उनका हिसाब जल्दी ही होने वाला है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। टिन्नू यादव की मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में गहरी पैठ थी। दानपात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहती थी। चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रही। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। चंपत राय को लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है क्योंकि पुलिस की जांच अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उधर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन करने वालों की होड़ लगी है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए हजारों आवेदन आ चुके हैं। आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बताई जा रही है। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक।

0: रूस के सामने खड़ा हुआ होर्मुज जैसा संकट। रूसी जहाजों पर यूक्रेन ने किए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा रूसी जहाजों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब यूक्रेनी हमलों से रूस को बड़ा झटका लगा है। ड्रोन हमलों
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री को मिली आयोग की रिपोर्ट। मोहन यादव ने कहा, जब भगवान राम ने एक शादी की तो रहीम इससे अलग क्यों। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। मौलाना जर्जिस के भगवान कृष्ण पर दिए जहरीले बयान से भड़का साधु संतों का गुस्सा। पूरे यूपी में प्रदर्शन। अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग। धूमधाम से शुरू हो गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। पुरी में जमा हुए हजारों श्रद्धालु। शाम 4 बजे निकलेगी भव्य यात्रा।

0: خبرك
1: خبر خبر خبر
2: ये देखें भाई, ये सरकारी आटा है जो कि पुलिस मोबाइल में भर के ले जाया जा रहा है।

0: जैसी करनी वैसी भरनी, हमेशा दूसरों की मुसीबत बढ़ाने वाला पाकिस्तान अपनी करनी का खामियाजा भुगत रहा है। वो एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा है। पड़ोसी मुल्क के सामने सबसे बड़ा और सबसे नया संकट आटे का है। इस्लामाबाद समेत कई शहर आटे के संकट का सामना कर रहे हैं। वहां खाने पीने की किल्लत बढ़ने की आशंका हो चली है। पाकिस्तान में आटे का भाव आसमान छू रहा है। उधर दूसरा मोर्चा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का है, जहां सरकार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। संकट का तीसरा मोर्चा सियासी है, वहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मौलाना फजलुर रहमान लगातार सरकार और सेना प्रमुख मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं। इन तीन मोर्चों पर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। भारत के मामले में टांग अड़ाने वाला पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। उसके सामने रोटी के लाले पड़ गए हैं। आर्थिक संकट तो पहले से ही पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा था, अब ताजा संकट वहां आटे की कमी का है। राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर के सामने दो वक्त के निवाले की आफत है। वहां गेहूं की भारी किल्लत है, आटा बेहिसाब महंगा हो चुका है, तो पेट भरने वाली एक रोटी की कीमत भी आसमान छू रही है।
1: पाकिस्तान सरकार की हवा हवाई बातें चलती रहेंगी। शहबाज और उनकी हुकूमत अपने अवाम को बातों में घुमाकर समझाते रहेंगे, शांत कराते रहेंगे, लेकिन कब तक? आटा जिससे 2 जून की रोटी मिल जाती है, पाकिस्तान में उस आटे का भाव आसमान छू रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के हवा हवाई वादों के उलट वहाँ संकट बेहिसाब बढ़ा है। स्थिति यह है कि संकट के बादल अब इस्लामाबाद तक मंडरा रहे हैं। हालात ये हैं कि मार्केट में आटे की कमी पड़ती जा रही है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी की किल्लत का सामना कर रहे हैं।
2: 15 किलो की पैकिंग में आटा पड़ा हुआ है और 10 और 20 किलो नहीं है।
3: सर काफी देर से हम लिखवा रहे हैं कंपनी को, वो भेज ही नहीं रहे, सप्लाई नहीं आ रही,
4: मिलता ही नहीं है। शार्ट है, दुकानदार कहता है मुझे इतने का नहीं पड़ा, मैं आपको कैसे दूँ।
5: तकरीबन 10 किलो का होना चाहिए, 40-50 थोड़े।
6: लाहौर में कम से कम 1,66,000 से लेकर 1,70,000 थैला सप्लाई किया जा रहा है।
7: गंदम इस मरतबा ना थोड़ी सी फसल में शॉर्टफॉल आया।
8: अगर हम जिद पे अड़े हैं तो इसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा।
9: लोग जो डिमांड करते हैं वो 10 किलो और 20 किलो में करते हैं, 15 किलो वाला आटा जो है महंगा पड़ रहा है।
10: यहाँ पे तो सस्ता आटा क्या, सस्ती रोटी भी नहीं मिलती है।
11: गंदम है मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी नाकस है कि ना आड़ती के पास आ सकी है ना महकमे के पास आ।
12: 20 रुपए की रोटी है, जहां भी चले जाएं, किसी भी होटल पे चले जाएं तो 20 रुपए से कम रोटी है ही नहीं।
1: इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसे शहरों में लोगों को आटे दाल का भाव अब पता चल रहा है। संकट कितना गहरा है इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 15 किलो आटे का पैकेट अब 2500 रुपए पाकिस्तानी रुपए तक मिल रहा है, मतलब 1 किलो आटे का भाव हो चुका है करीब 160 रुपए किलो। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये भाव सामान्य आटे का है, अगर चक्की का आटा खाना हो तो पाकिस्तान के लोगों को करीब 180 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सामान्य आटे से बनी एक रोटी की कीमत भी करीब 25 रुपए में बिक रही है।
13: आटे के हवाले से गंदम के सीजन को खत्म हुए 3.5 महीने हुए हैं। 3500 रुपए पे आपने गंदम किसान से सपोर्ट प्राइस कायम की। लाहौर से कराची और अब मैं पिंडी के दायरे मौजूद हूँ। इस सूरत हाल यह कि लाहौर में आज 4300 रुपए फी मन के ऊपर कीमत जो है वो गंदम की आई। आटे की कीमत की सूरत हाल यह है कि इस शहर के अंदर पिंडी के अंदर 15 किलो का आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यहाँ 17 से 20 रुपए की रोटी फरोख्त हो रही है।

0: 20 किलो आटे का थैला एक साल में 1200 रुपए से जायद महंगा हो गया। इस वक्त कीमत 2500 से 2600 रुपए है। तहरीके इंसाफ के दौर में 20 किलो थैले की कीमत 1200 रुपए थी। इनकी जब पीडीएम की हुकूमत आई, मीन जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, तो ये 3000 रुपए तक भी आटे की कीमत लेकर गए थे। लेकिन आजकल अभी गंदम जो है वो अब से सिर्फ 2 महीने पहले उसकी नई फसल आई है, उसके बावजूद इस वक्त आटे की कीमत जो है वो 2600 रुपए फी 20 किलोग्राम है। आप सोचिए, आपसे 4 महीने के बाद जब गंदम को आए हुए 6 महीने हो चुके होंगे, तो ये आटे की कीमतें किस तरफ जाएंगी और लोग किस तरीके से रोटी खाना अफोर्ड करेंगे।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की आवाम महंगाई, रोजगार और ऐसे ही कुछ मांगों को लेकर शहबाज सरकार से टकराव के मूड में है। एक दिन पहले ही हजारों हजार की संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च भी किया। सवाल वहां की हुकूमत से है कि आखिर ऐसी हालत क्यों? ऐसे विरोध प्रदर्शन के बीच अब आटा संकट से पसीना छूट रहा है। संकट इस कदर है कि कब बाजार से आटा गायब ही हो जाए तो कोई नहीं जानता। इस्लामाबाद की आटा मिलों तक गेहूं की सप्लाई पूरी तरह ठप है, लिहाजा गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है। असर ये कि कई आटा मिल बंद हो चुके हैं और जो चल भी रहे हैं वो बंद होने की कगार पर है। हर कोई आटे और गेहूं के संकट को लेकर पाकिस्तान में सवाल पूछ रहा है, लेकिन हुक्मरान चुप्पी साधे बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: पाकिस्तान के लिए आटे का इंतजाम करना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। आखिर ये संकट गहराया कैसे? अचानक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गेहूं के स्टॉक की कमी कैसे हो गई? क्या इसके पीछे की वजह सियासी जोड़ घटाव है जिसका खामियाजा वहां की आवाम भुगत रही है?
3: सरकारी आटा है जो कि पुलिस मोबाइल में।
1: पाकिस्तानी आवाम का यह दर्द नया नहीं है। आटा के लिए पहले भी उन्हें जूझना पड़ा है, आवाज उठानी पड़ी है। उसी पाकिस्तान की ये तस्वीरें हैं जहां बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तानी फौज को आटे की खेप बचाने के लिए AK-47 तक चलानी पड़ी थी। एक वक्त में इस्लामाबाद में आटे की लूट भी हुई थी। सरकारी आटे वाले ट्रक पर टिड्डों की तरह पाकिस्तानी टूट पड़े थे। पूरी दुनिया ने ऐसी तस्वीरें देखी थी। अब उसी पाकिस्तान के सामने खाद्य संकट का नया दौर जारी है। वहाँ हुकूमत तो बदली लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले।
4: इन दिनों के अंदर आटे की कीमत कहीं से कहीं चलेगी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। खुदारा इसको आके देखे कहां से कहां कीमतें पहुंची। गरीब आदमी क्या करेगा? कोई चेक एंड बैलेंस रखे, कोई देखे। गरीब आदमी कहां जाएगा, क्या करेगा?
5: आटा तकरीबन 140 से 150 तक पहुंच गया है, तो अब गरीब आवाम जो मजदूर हैं वो अब उनका बहुत मुश्किल से गुजारा होता है।
6: ये सिंध हुकूमत की ना आहली है। ये फौरन आटे की कीमतें कम होनी चाहिए और लोगों को, सिंध की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।
7: आटे की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा देखने में आ रहा है।
8: गरीब आदमी सिर्फ आटा ही खाता है, उसके बस में है क्या? तो गरीब आदमी किधर जाए, किससे पूछे, कहाँ जाए?
9: दिहाड़ी मजदूरी बनते वो सिर्फ हमारा 600 रुपए, तो इतने महंगाई में हम क्या करेंगे, किधर जाए?
1: इससे पहले 2019-20 में भी पाकिस्तान ने आटे की भारी कमी झेली थी। साल 2023 में भी कराची और दूसरे शहरों में आटे के लिए मारपीट की घटनाएं हुई थी। 2025 में सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में आटे के लिए हाहाकार मचा था। इन दिनों इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक समस्या आ खड़ी हुई है।
10: गंदम की बात ले लें आप, आटे की बात ले लें, तो आटे का थैला जो कि 1400 रुपए में मिल रहा था, 20 किलो आटे का थैला, अब वो आपको 2300 से लेके 2900 में मिल रहा है। कराची में रेट्स कुछ और हैं, लाहौर में रेट्स कुछ और हैं, इस्लामाबाद में रेट्स कुछ और हैं, लेकिन ये जो सर्कल है, ये जो दायरा है, ये इसी तरीके से घूम रहा है। तो अब आप ही खुद फैसला कीजिए कि नान बाय एसोसिएशन गलत है या हुकूमत की गवर्नेंस की ये नाकामी है कि वो अपने ही किए गए फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर पाती।
1: पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट की माने तो देश भर में आटे की बढ़ती कीमतों से राजधानी में भोजन का गंभीर संकट मंडरा रहा है। समस्या विकराल है क्योंकि बात अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक इस्लामाबाद में करीब 70 रजिस्टर्ड आटा मिले हैं। उनमें से 45 आटा मिलों में गेहूं का स्टॉक खत्म होने की

0: कगार पर है। वहीं रावलपिंडी में केवल 11 आटा मिले हैं, जिनमें से वर्तमान में बहुत कम ही चालू है।
1: आज कश्मीर में आटे का बुहरान शदीद होता जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे पंजाब और कश्मीर की सरहद के ऊपर, और उन ट्रकों को गंदम ले जाकर कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अद्वियात भी रोकी गई, खुराक भी रोकी गई। कश्मीरी इस पे बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, गिजाई किल्लत के शदीद खदशात हैं। तो अब किया यह है हुकूमत ने कि क्योंकि ट्रकों को बार बार लोग आकर देखते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और बताते थे कि जनाब ये देखिए ट्रक खड़े, इनको कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो सरकार ने इन ट्रकों को वापस रवाना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि ट्रक यहां से हटाएं इस शाहरा से और इनको वापस ले जाएं पीछे।
0: दरअसल ये समस्या पंजाब खाद्य विभाग की ओर से गेहूं की सप्लाई के परमिट अचानक रद्द किए जाने के बाद बढ़ी है। परमिट रोके जाने से 8000 टन गेहूं की सप्लाई रुक गई है। आरोप है कि पंजाब सरकार ने बगैर लिखित आदेश के गेहूं के परमिट रद्द कर दिए। इसे लेकर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की रावलपिंडी शाखा ने चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्ट परमिट को मनमाने ढंग से रोकने से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली सत्यन में आटे की आर्टिफिशियल कमी पैदा होगी। आटे के भाव आसमान छूने लगेंगे, साथ ही काला बाजारी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गेहूं की सप्लाई बहाल नहीं होने पर रावलपिंडी की आटा मिलों ने कामकाज बंद करने की धमकी दी है। उधर आटा मिल मालिक अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से दखल की अपील कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में आटे की किल्लत हो गई है और कैसे उसके लिए लोग परेशान हैं। उधर जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर सेना प्रमुख असम मुनीर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और मुनीर को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन होने का भरोसा है तो वर्दी उतारे, राजनीतिक पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। फजलुर रहमान ने यहां तक कह दिया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान सरकार के नियंत्रण से बाहर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्तून इलाकों में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। उनके दावों के मुताबिक 2-3 दिन में 50 से ज्यादा शव पश्तून इलाकों में पहुंचे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुजफ्फराबाद मार्च कर शाहबाज सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को एक मौका देते हुए 21 जुलाई तक अपना प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन धार्मिक गुरु और जमीयत उलेमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर बड़ा हमला बोला है और सैन्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
3: एक तरफ शहबाज सरकार और उनकी आर्मी है, आर्मी चीफ असीम मुनीर है, तो दूसरी तरफ उन पर सुलगते सवाल। ये वो मोर्चा है जिनसे निपटने का उपाय पाकिस्तान सरकार को नहीं समझ आ रहा, और इसी लाचारगी में असीम मुनीर के रेंजर्स POJK के बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। लेकिन मुनीर को चुनौती देने वाला भी उठ खड़ा हुआ है
4: और ये बात सुन
3: मौलाना फजलुर रहमान चैलेंज कर रहे हैं कि लाशों की सियासत छोड़ सेना प्रमुख असीम मुनीर को अगर जनता का समर्थन होने का भरोसा है तो वे वर्दी उतारें, राजनीतिक पार्टी बनाएं और चुनाव लड़ें।
4: सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
3: फजलुर रहमान का सवाल पाकिस्तान की हुकूमत से भी है। वो आंकड़े गिना रहे हैं, बलूचिस्तान और पख्तून के हालात आवाम के सामने रखकर बता रहे हैं कि कैसे वहां जुल्म की इंतहा हो रही है।
4: और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक है। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी, पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने दो तीन दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं।
3: मौलाना ने जिस हालात का जिक्र किया है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुछ ऐसी ही क्रूरता पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में भी दिखाई है। अभी दो दिन पहले यानी 14 जुलाई को ही रावलाकोट में इकट्ठा हुई भीड़ पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जून महीने में रावलाकोट में ही ऐसी ही क्रूरता हुई थी, तब मौत का आंकड़ा 15 के करीब था। पाकिस्तान सरकार इस पर अब तक अपनी आंखें मूंदी रही है, उसे सिर्फ बेगुनाहों पर बल प्रयोग की नीति ही समझ आ रही है। POJK के हक की लड़ाई लड़ रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लगातार पाकिस्तान सरकार को आईना दिखा रहा है कि वो उन्हें विवादित हिस्से को न माने।
5: डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है, ये एक मुतनाजा इलाका है। जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है, वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है, और इसके हम अपना हाथ महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी, और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
3: POJ के मेन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने इस ऐलान के साथ मुनीर के गले की नस दबा दी है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को गर्दन की नस बताते रहे। ऐसे बयान के बीच अपनी 38 सूत्री मांगों को लेकर एक दिन पहले ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फराबाद मार्च के लिए निकले थे, लाखों लोग रावलाकोट में भी जमा हो चुके थे। ये लॉन्ग मार्च शहबाज सरकार की आंखें खोलने के लिए था, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने प्रस्तावित लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक टाल दिया। अपने हक की आवाज उठा रहे इन लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को अपनी मांगे पूरी करने का एक आखिरी मौका दिया है। लगे हाथ समूह ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 22 जुलाई से दोबारा मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा, साथ ही POJK में चल रहे धरने जारी रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
2: और बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदलने के मामले में आज एक अहम दिन है। ब्रिटेन के पीटरबरो हिंदू मंदिर की कानूनी लड़ाई के बीच लंदन के हाई कोर्ट रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में पीटरबरो हिंदू मंदिर केस की अहम सुनवाई होने जा रही है। ये केस भारत हिंदू समाज बनाम पीटरबरो सिटी काउंसिल के बीच है। मामला ब्रिटेन के सबसे पुराने राम मंदिर की जमीन इस्लामिक मिशन को मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए देने का है। पीटरबरो सिटी काउंसिल और यूके इस्लामिक मिशन के बैरिस्टर्स ने 14 जुलाई को हुई सुनवाई में अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी थी, जो आज की सुनवाई में पूरी होंगी। और मंदिर की ओर से पैरवी कर रहे बैरिस्टर भी आज ही दोपहर में अपनी अंतिम दलीलें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अदालत के अंदर भी मौजूद रहेंगे। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने अपने फैसले को कानूनी बताया है। काउंसिल ने कहा है कि यह गैर कानूनी नहीं है और उन्हें पैसों की जरूरत है, जबकि हिंदू समुदाय इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो आपको इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो दरअसल हिंदू पक्ष की है, जो रवाना हो रहा है इस सुनवाई के लिए, जो कि लंदन के हाई कोर्ट में होगी। और उम्मीद यही है कि वहां पर अदालत के बाहर और अंदर लोग मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, ये मामला किस तरीके से लगातार गर्माता जा रहा है, और ये अगर देखा जाए तो लंदन या यूके के लिए कह लें तो ये बेहद संवेदनशील भी बन सकता है।
6: बिल्कुल ठीक कहा अंजलि आपने, संवेदनशील इस लिहाज से क्योंकि अगर आप हिंदू और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ब्रिटेन में आबादी के लिहाज से दूसरे और तीसरे नंबर पर है, यानी बड़ी आबादी हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की है और जाहिर तौर पर एक धार्मिक टेंशन का खड़ा का सबब बन सकता है ये केस। और यही वजह है कि ये मामला जुडिशियल रिव्यू के पास है, अदालत इस मामले को दोनों पक्षों को सुन रही है। हालांकि धार्मिक मामला मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं से अलग वहां पर तकनीकी मामलों पर दलील हो रही है क्योंकि इस मामले को लेकर पीटरबरो सिटी काउंसिल के अंदर भी मतभेद थे। अब से कुछ देर पहले मैंने जो एक काउंसलर है उनसे बात की, रॉजर एंट्यून्स से, और उनका कहना था कि एक चैरिटी है मंदिर एक और इसलिए इस मामले को कमर्शियल बिडिंग पर नहीं डाला जा सकता था। यही वजह है कि जो पीटरबरो सिटी काउंसिल का यह फैसला है वो कानून के तकाजे के ऊपर, कानून के आधार पर सही नहीं बैठता है और इसीलिए हमने इस मामले को अदालत के अंदर चुनौती दी है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है वो इस मामले के ऊपर अदालत को महत्वपूर्ण फैसला करना है, दोनों तरफ की दलीलों को सुना जाएगा
2: और इस मामले पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
10: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: No.
3: Oh, no.
4: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
4: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
3: Oh, my God.
2: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
2: Boo bloody hoo.
4: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
3: Love runs deeper than we know.
4: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी की आवाज पर राहुल खड़गे समेत कई बड़े नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम को मिली आयोग की रिपोर्ट। मोहन यादव ने कहा, जब भगवान राम ने एक शादी की तो रहीम इससे अलग क्यों। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। मौलाना जर्जस के भगवान कृष्ण पर दिए जहरीले बयान से भड़का साधु संतों का गुस्सा। पूरे यूपी में प्रदर्शन। अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग। और ब्रिटेन में राम मंदिर को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है हिंदू समुदाय। आज हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। मंदिर की जगह मस्जिद मदरसा बनाने का हो रहा कानूनी विरोध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। जैसा कि हमेशा होता है, न्यूज रूम लाइव में हम सबसे पहले बताते हैं वो कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो वो हम आपको बता देते हैं। आज सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो होगी मानसून सत्र को लेकर। बहुत रोमांचक इस बार का मानसून सत्र देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। बीजेपी की तरफ से भी बैठक की गई, उसमें क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर होने वाली है, एक मौलाना विवादित बयान देता है और उस विवादित बयान के बाद अब साधु संत गुस्से में है। श्री कृष्ण पर ऐसी जुबान का इस्तेमाल करता है जिसको लेकर अब लोगों के अंदर आक्रोश आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर, आजम का जौहर, अब क्या उस पर बुलडोजर चलेगा। 15 दिन के लिए कहा गया है कि आप खुद हटा लेंगे तो अच्छा है। 40 में से 38 इमारतें ध्वस्त करने की बात की जा रही है, क्या एक्शन लिया जा सकता है इस पर हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें जो हमारी अगली खबर होने वाली है कि किस मुद्दे पर बात की जाएगी। जगन्नाथ मंदिर पर कि जगह जगह आज जो जगन्नाथ यात्रा है उसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है और शहर शहर भक्ति की आस्था यहां पर देखी जा रही है। कैसे जोरदार तरीके से तैयारी की जा रही है आप। लेकिन सबसे पहले जो बात है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तैयारी की है। मानसून सत्र को लेकर एक बैठक होती है और बैठक में यह तय किया जाता है कि इस बार मानसून सत्र पर सरकार को घेरा जाएगा। ये तैयारी की हुई है। और ये भी हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जयराम रमेश, ये सभी बड़े दिग्गज बैठक में शामिल थे। 2 घंटे की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दम भरा कि सरकार परिसीमन बिल पास नहीं करा पाएगी, 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी। कांग्रेस ने बहुत साफ किया है कि विपक्ष एकजुट है और सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। वहीं कल रात पीएम आवास की बैठक में बीजेपी ने भी मंथन किया। जाहिर है मानसून सत्र के साथ उन बिलों पर चर्चा हुई होगी जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। विपक्ष की अपनी तैयारी, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी और सब क्यों हो रहा है मानसून पक्ष के लिए। लेकिन जयराम रमेश जो मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कैसे दम भरा कि सरकार बिल पास नहीं करा पाएगी, वो हम आपको सुनाते हैं।
2: राहुल जी संपर्क में है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। आजकल मीडिया में बहुत खेती हो रही है, समाचार की खेती हो रही है, पर उस पर मैं गुजारिश करूंगा आप लोग विश्वास न करें। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
0: तो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप। जयराम रमेश बोल रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और वो जो बहुमत है वो हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जयराम रमेश, वो भी सुन लीजिए।
2: हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है, एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर एक तिहाई आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया, पूरे एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया।
0: राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। राहुल एक बात बताइए, जयराम रमेश बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, किस आधार पर इतना दम भर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और बहुमत नहीं मिल पाएगा सरकार को?
3: तो ये कॉन्फिडेंस है, ये प्राइमरीली तीन पार्टी से आ रहा है, एक है डीएमके, एक है समाजवादी पार्टी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी। तो ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पिछले दो महीनों में, जब आखिरी बारी इस बिल को गिराया गया था उसके बाद से, कि डीएमके या समाजवादी पार्टी इस बिल के पक्ष में वोटिंग करेंगे। और देखिए जो आंकड़ा है वो लगातार एक बात कह रहे हैं, जो गैप है सरकार को, जो दो तिहाई आंकड़ा चाहिए बहुमत का, वो मिल नहीं सकता, उनके पास नंबर्स नहीं है, पार्टियां उनके साथ भी नहीं है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वो लगातार टच में बने हुए हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो दूसरी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनके टच में है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रिया सुले का जो बयान का जो जिक्र हो रहा है पिछले कुछ रोज से, वो उन्होंने खंडन किया है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम एनडीए के साथ जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि देखिए जो आंकड़ा है दो तिहाई का वो इतना ज्यादा है, और इस बिल को याद रखिएगा आपको दोनों सदन में पास कराना पड़ेगा, यानी लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास कराना पड़ेगा। तो शायद अगर राज्यसभा में आपने वो नंबर मैनेज भी आपके लिए वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कलंकित बहुमत का नाम दिया, उन्होंने कहा कि अमित शाह और सरकार ये चाहती है कि जो उनकी हार हुई थी उसको जीतने बदला जाए, लेकिन अगर दो तिहाई बहुमत मिलता है तो वो पूरी तरीके से कलंकित बहुमत होगा, ऐसा आरोप लगाया जयराम रमेश।
0: ये तो जयराम रमेश बोल रहे राहुल, लेकिन सबसे बड़ा पेच वहां पर भी फंसा था, कल सुप्रिया सुले का भी बयान आया था, शरद पवार जो एनसीपी है उनके गुट का, तो उसको लेकर जयराम रमेश की तरफ से क्या कहा गया वो भी जरा सुन लेते हैं।
2: सुप्रिया सुले ने खंडन किया है, जो खबर चलाए गए थे सुप्रिया सुले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है, कल रात को ही इन्होंने स्पष्ट तरीके से खंडन किया है।
0: कितनी देर की बाइट है ये कितनी देर की बाइट? और सुप्रिया सुले इस पूरे मुद्दे पर, देखिए सुप्रिया सुले का कल भी बयान सामने आ गया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था, लेकिन सुप्रिया सुले इस पर क्या कह रही है वो भी हम आपको बताते हैं।
4: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड कंसिडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग if the 50% cap is to be discussed, and the bill how will it be implemented is still a question mark.
0: Rahul Gautam hamare sath mein hamare sahyogi jude hue hain. Rahul, ab is mudde par jo Jairam Ramesh ki taraf se jo dam bhara ja raha hai, lekin Supriya Sule ka kuch aur bayan samne aata, ab isko lekar kaise dur hogi galatfehmiyan?
3: देखिए कांग्रेस पार्टी का एक धारा है जो असहज है सुप्रिया सुले के बयान से, हालांकि वो लगातार ऑन द फेस ऑफ इट ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने खंडन कर दिया है, लेकिन जैसा अभी आपने खुद वो बयान चलवाया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम कंसिडर करेंगे अगर वो 50% का जो क्लॉज है अगर वो सरकार डाल दे। आपको ध्यान होगा अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ये ऑन द फ्लोर कहा था कि आप तमाम लोग सपोर्ट करिए और मैं जाकर इसमें ये अमेंडमेंट जुड़वा के लाता हूँ, क्लॉज जुड़वा के लाता हूँ। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो असहज है ऐसे बयानों से। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप दो नावों में सफर नहीं कर सकते, आप एक तरफ डिलिमिटेशन बिल को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि जो भी इस तरफ जाएगा वो हमारे साथ खड़ा बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। तो एक कश्मकश है कांग्रेस पार्टी में, विपक्षी खेमे के अंदर, कि आखिर अगर सरकार जो पूरे ये रूमर्स चल रहे हैं कि अगर ये बिल लेकर आने वाली है परिसीमन, तो क्या आंकड़ा जुगाड़ दिया गया है और आप जानते हैं कि ऐसे कई सारे बिल थे जो सरकार अभी तक पास करा चुकी है आंकड़ा नहीं भी होने के बाद, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट वो इस तरीके से करती है। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक एक ऐसा बिल था जो कि राज्यसभा में पास करा लिया था सरकार ने। तो अभी भी कई चीजें हैं,
0: बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के लिए भी विपक्ष के लिए भी चुनौती यहां पर साबित होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा आज हर पूरे देश में हो रही है। एक मौलाना विवादित बयान देता है श्री कृष्ण को लेकर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब मोर्चा संभाल लेते हैं। सब मोर्चा संभाल लेते हैं और उसके बाद FIR भी यहां पर दर्ज करवाई जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसको लेकर प्रदर्शन किया और जर्जिश अंसारी के बयान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए FIR की मांग की। हजरतगंज थाने पहुंचे, मौलाना के खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की। तो इटावा का एक मौलाना बयान देता है और उस बयान के बाद कैसे जगह जगह कोहराम मच जाता है, कैसे हर जगह विरोध होता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
6: क्या श्री कृष्ण मुस्लिम थे?
7: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
6: क्या श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे?
5: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
6: क्या श्री कृष्ण दीन का प्रचार करते थे?
7: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
6: मिलिए मौलाना जर्जिश अंसारी से। इस मौलाना के नाम में जर्जिश जुड़ा है लेकिन इसकी जुबान में जहर भरा है। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है, तब जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती दिख रही है। इस मौलाना ने फिर अपना चरित्र दिखाया है। इस बार इसने श्री मद भागवत गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ये देखिए।
8: योगी योजित सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
6: इसकी बातें सुनकर आपका सिर चकराने लगेगा, इसकी दलील सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कुनबा बनाने की इसकी कोशिश की मिसाल देखिए। इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये भी देखिए।
5: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
8: यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी योजित सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा।
6: सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने की इसकी कोशिश देखिए। श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को ये उल्टी दिशा में मोड़ने लगा है। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
7: ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
6: ये पहला मौका नहीं है जब इस
0: तो अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है ये मौलाना यहां पर बता रहे हैं। हालांकि मौलाना बयान देते हैं, उसके बाद लोगों में नाराजगी अब बढ़ जाती है, हर जगह FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। साधु संत और महात्मा कैसे आक्रोशित हो रहे हैं वो सुनिए।
9: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए।
10: इटावा के किसी मानसिक विक्षिप्त एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, वो तो राम जी को भी इस्लाम का उपासक बताते हैं। अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है? कृष्ण और राम को मानने वालों के वंशज होकर भगवान कृष्ण के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हो?
11: एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था। और तुझे एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण का इतिहास उठाकर के मत देख, अपना इतिहास उठा करके देख।
12: मौलाना जर्जिस ने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण पे टिप्पणी की है। ऐसे मौलानाओं को तो मैं चाहती हूँ आदरणीय योगी जी, ऐसे लोगों को आप पाकिस्तान भेजें, क्योंकि आए दिन ये हमारे हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, हमारी आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं।
0: आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से साधु संतों ने मौलाना की ओर अब मोर्चा खोल दिया है, मुश्किलें बढ़ती दिख रही है मौलाना की?
13: बिल्कुल हिमांशु, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मौलाना का यह बयान उस समय आया है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, और ऐसे में ये बयान बहुत मायने रखता है। जो सारे हिंदू सनातन के जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सभी इससे आघात हैं और कहीं ना कहीं अब FIR दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो उनके लिए पूजनीय है, सनातन के लिए श्री राम जो पूजनीय है, अब उनके लिए अगर ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम है और नमाज ही थे, तो ये सबसे बड़ा आघात होगा। और इसी को लेकर अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, FIR की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जर्जिस की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ सारे सनातनी जितने जुड़े हुए साधु संत हैं वो कहीं ना कहीं जीप काटने तक बात कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर अब सारे संगठन एक साथ एकजुट हो गए हैं और पूरे प्रदेश भर में इस जर्जिस जो कि मौलाना है इटावा का, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार गिरफ्तारी
0: वाले वक्त में मामला और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे, जौहर यूनिवर्सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट आजम खान का, लेकिन अब रामपुर जो अधिकारी है वो लगातार इस पर शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहे हैं और विकास प्राधिकरण की तरफ से 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि 15 दिन का वक्त देते हैं, खुद हटा लीजिए नहीं तो फिर उनको हटाना पड़ेगा। और 15 दिन का वक्त यहां पर दिया गया है, 40 में से 38 हैं, 2 की परमिशन ली थी लेकिन बनवा दिए थे करीब 40 भवन। और उसी के बाद अब रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया है, अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटा देंगे, 15 दिन का वक्त भी दिया गया है। तो ये देखिए कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर अब सड़क बना दी गई है और ये जो सड़क पहले से बनी थी अब उस पर बोर्ड लगा दिया गया है और कह दिया गया है कि ये आम रास्ता है, कई सालों पहले बनी थी। अब 40 जो भवन बनाए गए थे परमिशन सिर्फ 2 की थी और इसीलिए अब 38 जो भवन थे इमारतें उनको अवैध घोषित किया गया है। और रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है कि 15 दिन का वक्त आपको देते हैं, आप खुद हटा लीजिए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में विचाराधीन केस, अब इस मामले में उम्मीद आजम खान कि जौहर यूनिवर्सिटी को आगे कोर्ट से है। तो यूनिवर्सिटी के मेन गेट से कैसे वो आम रास्ता बना दिया गया है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
14: अभी अभी जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी पहुंची हैं, बताएंगे
15: सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है, बस और मुझे कुछ नहीं करना।
16: कुछ
15: भी नहीं, ये सब तो जी
16: 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानते हैं?
15: नहीं कुछ नहीं मानती हूँ, अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
14: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
15: अभी कुछ कह नहीं सकती।
14: 3:30 बजे हमारे साथ आजम खान की पत्नी जो जौहर यूनिवर्सिटी अभी पहुंची है, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे और अभी हमें 15 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। इस वक्त अभी अभी जौहर यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी खबर है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा अभी अभी पहुंची है और तंजीम फातिमा ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया है, हमने आज तक से बात की है, उन्होंने हमसे कहा है कि अभी 15 दिन का हमें समय दिया गया है, 15 दिन का हमें समय है, अभी हम कुछ अभी नहीं कहेंगे और जो भी हम कहेंगे अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रामपुर सामिर खान आज तक।
0: अब देखिए मामला आजम खान से जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ बीजेपी और दोनों एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं।
16: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
17: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
0: और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही मुद्दा है, तो ऐसा नहीं है। AIMIM के नेता हैं असीम वकार, अब वो भी इस मुद्दे पर कूद आए हैं और उन्होंने भी बयान दिया।
18: मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें हैं उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले।
0: और अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अब नए नए मोड़ लगातार सामने आ रहे हैं। SIT रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है, बहुत से खुलासे अब इसमें हो रहे हैं और ये माना जाएगा कि जब रिपोर्ट सभी के सामने आ जाएगी, कुछ और चौंकाने वाले खुलासे ऐसे होंगे जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं। टिन्नू यादव एक मुख्य किरदार जो इस पूरे मामले में, देखिए आधिकारिक तौर पर टिन्नू यादव शामिल नहीं था जो भी यहां पर बनाया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसका हाथ था और अब टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आ गई है। विस्तृत जांच में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। रिपोर्ट में उन्हें प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर SIT ने कोई अंतिम टिप्पणी अभी नहीं की है, क्योंकि पुलिस की विवेचना अभी भी जारी है। और अब बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें हर जगह आप देखेंगे तो आस्था का सैलाब आपको दिखाई देगा, आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में सुबह सुबह दर्शन किया। अब ये जो 6 तस्वीरें हैं, ये 6 तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, पुरी में पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह सुबह जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली, CM भूपेंद्र पटेल वहां पर आए, जो सोने की झाड़ू होती है उससे यहाँ पर झाड़ू लगाई गई। तो अहमदाबाद में आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह 4 बजे परिवार संग मंगला आरती में शामिल हुए। भक्तों की भक्ति की झांकी यहां पर देखी जा रही है, सांस्कृतिक नृत्य भी यहां पर हो रहा है, भक्ति भाव में इस वक्त श्रद्धालु डूबे हुए हैं। और नोएडा में भी एक यात्रा भगवान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि मौसी के घर निकल पड़े हैं प्रभु जगन्नाथ। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
20: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
22: Savari.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
2: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
4: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
12: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
13: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
11: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
16: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

और इस रिमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी की आवाज पर राहुल, खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम को मिली आयोग की रिपोर्ट। मोहन यादव ने कहा, जब भगवान राम ने एक शादी की तो रहीम इससे अलग क्यों। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। मौलाना जर्जिस के भगवान कृष्ण पर दिए जहरीले बयान से बड़का साधु संतों का गुस्सा। पूरे यूपी में प्रदर्शन। अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग। ब्रिटेन में राम मंदिर को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है हिंदू समुदाय। आज हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। मंदिर की जगह मस्जिद मदरसा बनाने का हो रहा है कानूनी विरोध।

0: आज तक के मंच पर आपका स्वागत है, पंचायत आज तक में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, लखनऊ में ज़रूर हम हैं और चर्चा लखनऊ की सियासत की होगी, उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, लेकिन क्योंकि आप सांसद हैं और सपा के चेहरा हैं दिल्ली में खास करके, तो इसलिए मेरा पहला सवाल होगा मानसून सत्र पर। आज ये खबर आई कि एनसीपी शरद पवार गुट अब डीलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करेगा। जो स्पेशल सेशन हुआ था, इंडिया ब्लॉक एक साथ जुट करके आप लोगों ने उसको पारित नहीं होने दिया था। इस बार क्या इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ दिख रहा है?
1: सबसे पहले मारिया जी, आपको और पूरे आज तक परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की ऐतिहासिक सरजमी पर हमें अपनी पार्टी का पक्ष रखने का आपने मौका दिया। जिस सवाल से आप शुरुआत कर रही हैं, मैंने भी मीडिया में कुछ देखा सुना, और जिस तरह की एनसीपी ने कंडीशन रखी है, मैं समझता हूं वो कंडीशन कभी सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। और जो विपक्ष है, जैसा आपने 16-17 अप्रैल को देश की संसद में देखा था, संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस बिल को जो तानाशाही लाने का डिलिमिटेशन बिल षड्यंत्र है, उसको हम लोग रोकेंगे। और जो आपने मुझे मंच दिया, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश के जनमानस को महिला बिल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। महिला बिल 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ, संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष की सारी पार्टियों ने साथ दिया, लेकिन उस महिला बिल में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीति और नियत है, जो नियत में खोट है, जो महिलाओं को मुद्दा बना के या महिलाओं को आगे करके डिलिमिटेशन बिल पास करना चाहते हैं, इसका पूरा का पूरा विपक्ष पुरजोर विरोध पहले भी किया था, और आने वाले जब कभी भी ये दोबारा संसद में आएगा, मुझे तो उम्मीद है कि शायद बीजेपी के लोग अब ऐसे दोबारा गलती नहीं करेंगे, और अगर वो लाएंगे तो हम लोग उतने ही मजबूती के साथ विरोध करेंगे।
0: लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एनडीए का कुंभा बढ़ गया है और तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, एनसीपी शरद पवार अब इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि डीएमके भी शायद सपोर्ट कर सकता है, जो 2/3 जो चाहिए
1: मारिया जी, इस बात
0: वो शायद मिल जाए।
1: मैं इस बात के लिए इतना ही कहूंगा, अभी से पूर्वानुमान लगाना किसी भी दल के प्रति आप पूर्व नियोजित कोई बात कहें, वो बात गलत होगी। अगर संसद में ये बिल आएगा तो स्वाभाविक है सबका पक्ष सामने होगा, कौन दल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, पूरा देश उसको देखेगा, और मैं समझता हूँ संसद के सत्र का आने का हम सबको इंतजार करना चाहिए इस मुद्दे पर।
0: चलिए, कुछ दिनों में ही शुरुआत होने वाली है, तो हम इंतजार करते हैं। अब चर्चा यूपी की सियासत की। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे सुबह में, उन्होंने बहुत आरोप लगाया है आप पर, समाजवादी पार्टी पर और आपकी राजनीति पर। उनका कहना है, और मैं उनकी बातों को कोट करूंगी, उनका कहना है, जो राम को नकारने वाले लोग क्या आस्था की बात करेंगे, ये राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर उन्होंने कहा। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि विदेश घूमने वाले क्या यूपी को जानेंगे।
1: अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विदेश घूमने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इतनी आपत्ति है, तो मैं उन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हालांकि मारिया जी आप लोगों को शायद मौका सवाल का नहीं दिया था, केवल भाषण देके चले गए थे, क्योंकि हमने क्रॉस डिस्कशन होते नहीं देखा, भाषण सुनते जरूर देखा
0: अभी,
1: है
0: अभी उप मुख्यमंत्री
1: लेकिन मैं उन्हीं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से सवाल करता हूं, अगर हमारे नेता कुछ जाते हैं विदेश में, कुछ आइडिया लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे नेता से कम 20 गुना ज्यादा देश के प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं, क्या उनके बारे में वो यही राय रखते हैं? लेकिन ये सवाल हो सकता है आज तक से आप ना पूछ पाए या मीडिया के लोग ना पूछ पाए, लेकिन हम समाजवादियों को चिंता नहीं है, अगर वो हमारे नेता पर आरोप विदेश यात्रा पर लगाते हैं तो स्पष्ट जवाब

0: एसआईटी की रिपोर्ट क्या सबमिट आदरणीय अखिलेश जी को होनी है?
1: नहीं, उनको नहीं करनी है,
0: क्या उनको होनी है
1: के तौर पर?
0: जो उनका होना जरूरी है। ये बेवजह के सवालों में आप लोग सवाल उलझाना चाहते हैं। देश के अंदर, देश के ही हमारा एक प्रांत है मणिपुर, सालों साल जलता रहा, क्या एक बार देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री झांकने गए वहां? लेकिन आप लोग ये सवाल उनसे नहीं कर पाएंगे, क्या सबमिट रिपोर्ट उनको होनी है क्या? और मीडिया के माध्यम से आज टेक्नोलॉजी के जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में जो भी रिपोर्ट आएगी, आप सब जो न्यूज देंगे, और मैं समझता हूँ सबसे पहली उस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी, सबसे पहले किसी का विचार आएगा वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का आएगा, ये मुझे विश्वास है।
1: तो आप मानते हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होगा?
0: देखिए, सवाल चुनाव का नहीं अकेले, ये चुनाव का मुद्दा तो बीजेपी के लिए था। मैं तो देख रहा हूं 1990 से, जब सदे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उस समय से, और अब तक मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के रुखों को बदलते हुए देखा है। उस समय सदे नेताजी ने कहा था कि या तो ये फैसला सर्वसम्मति से आपस में बातचीत से हो, या माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। और अंततोगत्वा वही हुआ, माननीय न्यायालय का जब 19 में फैसला आया, उसके बाद ही मंदिर निर्माण का रास्ता सुगम हुआ और रास्ता खुला। लेकिन मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस समय जो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों से, 1990 से लेके आज तक जितना भी चंदा इकट्ठा किया है, क्या उसका कोई भी हिसाब किताब दोगे? राम मंदिर के जो जगह है, जिस जगह पे मंदिर बना है, निर्मोही अखाड़े के पास, उसका उसके पक्ष निर्मोही अखाड़े के पक्ष में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, और उसी निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने, जो 90 के दशक में लोगों ने दिया था, सहयोग दिया था भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ, वो चोरी हुआ। और ये जो चंदा चोरी खुली है, ये तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। आप अगर समय देंगे तो मैं डेट बाई डेट, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बयान दिया, जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर, सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है। एक ही दिन में जमीन की कीमत आप सोचिए 12-12 गुने बढ़ी है। और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने। जरा भी आंखों में पानी है, जरा भी प्रभु श्री राम के प्रति आपके दिल में आस्था है, तो कम से कम ऐसे चंदा चोरों को कठोरतम कार्रवाई देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए।
1: लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा ये कहती है कि जिन्होंने राम को ही नकारा है वो राम मंदिर की क्या बात करेंगे?
0: कभी हम लोगों ने राम को नहीं नकारा है, ये बीजेपी के लोग गुमराह करते हैं। जब जमीन का कोई विवाद माननीय न्यायालय में लंबित है, तो क्या न्यायालय के फैसले आने का इंतजार नहीं किया जाएगा? और ये बीजेपी के लोग पहले जवाब तो इस बात का दें, पूरे देश और दुनिया के हिंदू पूछ रहा है कि 90 से लेके आज तक जितना लोगों ने चंदा दिया है उसका हिसाब किताब कहां है? और मैं आज फिर कह रहा हूं इस मंच से, ये जो बैठे हैं अयोध्या में अभी, ये छोटी मछलियां हैं, ये पैसे की सप्लाई कहीं दूर दूर तक जा रही है, इस बात की जांच करनी चाहिए आप।
1: अब चर्चा करते हैं हम आपके साथ आपके सहयोगी दल कांग्रेस की, उसमें है इमरान मसूद, और वो एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। अभी समय है चुनाव में, लेकिन वो शायद इसलिए बयान दिए जा रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन ये है कि आप से वो नेगोशिएट करेगी, कांग्रेस पार्टी नेगोशिएट करेगी सीट शेयरिंग में। और उन्होंने जो 2024 में आपका परफॉर्मेंस रहा, उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को दे रहे हैं।
0: देखिए, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा जो लोग इंडिया अलायंस के मजबूती में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: इमरान मसूद वही कर रहे हैं।
0: मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे सर्वमान्य नेता और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब,

0: जिस दिन मिलके कोई फैसला लेंगे हम उस फैसले को अंतिम मानेंगे। क्या इमरान मसूद या उनको लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है समाजवादी पार्टी से वार्ता करने का, नेगोशिएशन करने का? और नहीं किया है तो इस तरह की बयानबाजियों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिवस पर कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी कही और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने लिखा, मैं उस बात को गंभीरता से लेता हूं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह देंगे कि हमारी तरफ से इमरान मसूद ही सर्वे सर्वा और फैसला लेंगे, हम उस दिन उनकी बात को गंभीरता से लेंगे। उससे पहले हम इस तरह के लोगों को गंभीरता से नहीं लेते।
1: तो लेकिन रुकने के लिए भी तो नहीं कह रही कांग्रेस पार्टी?
0: तो अब इसका जवाब तो कांग्रेस की लीडरशिप देगी, हम तो नहीं दे सकते।
1: आपने कहा कि छोटे छोटे दल आपके साथ थे 2022 में, और उसी छोटे दल के एक नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी को बर्थडे के दिन कुछ सलाह भी दिया और कुछ टिप्पणी भी की कि वो ACPC की राजनीति करते हैं।
0: अब ये लोग गंभीरता बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अखिलेश यादव जी समाजवादी आंदोलन के वो तपे तपाए लोहा हैं जो मैं समझता हूँ जिनको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी गर्मी, सर्दी, बरसात कभी डिगा नहीं सकती अपने उद्देश्य से। वो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, और जिनकी बातें कर रहे हैं, अगला कभी मौका मिले तो इनसे पूछिएगा कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें की थी, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या क्या बातें करके गए थे, क्या आज वो अपनी बातों पे कायम हैं? अगर कायम हैं तो उनकी वर्तमान बातों को हम थोड़ा सा तवज्जो दे देंगे, जब पुरानी बातों पे जो कायम ना हो उनकी वर्तमान बातों पे चर्चा करके मैं अपना समय नहीं खराब करूंगा।
1: बस एक सवाल गठबंधन पर, क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, तो क्या कांग्रेस भी करती है? जो DMK के साथ हुआ उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने DMK को बताया तक नहीं और वो TVK के साथ अलायंस में गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। तो आपको क्या इंडिया ब्लॉक को, और खास करके आप बहुत ही प्रमुख पार्टी हैं, आपको इस बात का लगता है कि शायद कांग्रेस को बताना चाहिए था?
0: देखिए अभी इसका फैसला तो कांग्रेस पार्टी के लोग लें कि उन्हें क्या फैसला लेना, उनका अपना आंतरिक मामला है, और उस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं ये DMK के साथियों का मामला है। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में हम लोग हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में मीटिंगों में रहते हैं, हर अभियान में साथ रहे, मैं इतना ही कह सकता हूं DMK के पास जो भी क्षमता थी, और देश के चौथे नंबर की नहीं पांचवें नंबर की वो सबसे बड़ी पार्टी थी, अब चौथे नंबर की हो गई चूंकि TMC 20 से हट गई, जब भी कभी मौका आया तो DMK के साथियों ने 100% इंडिया अलायंस का साथ दिया है। मुझे याद है 17 अप्रैल को वोटिंग हो रही थी डिलिमिटेशन बिल पर, 23 तारीख को तमिलनाडु में वोटिंग चुनाव थी, और 17 तारीख को DMK के 22 के 22 साथी अपना चुनाव छोड़ के डिलिमिटेशन बिल को बचाने के लिए यहां पे अपना वोट कर रहे थे, अपना खुद का चुनाव छोड़ के। ये बात मुझे जरूर याद है, DMK के साथियों ने इंडिया अलायंस का साथ दिया है। अब उनके साथ चूंकि हमारे पार्टी का वहां तक संगठन नहीं है तमिलनाडु तक, कांग्रेस के साथी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस के साथी तय करें, हम इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।
1: यूपी चुनाव में असादुद्दीन ओवैसी की भूमिका क्या देखते हैं आप, और क्या अगर कोई अलायंस होगा, क्योंकि बिहार में भी कहा जा रहा था कि उनका कोई रोल नहीं होगा और उसके बाद हमने देखा 2025 के चुनाव में उन्होंने सीट ली और 2020 के चुनाव में भी किया था, तो असादुद्दीन ओवैसी की MIM के साथ क्या कोई गठबंधन हो सकता है?
0: देखिए मैं समझता हूँ
1: कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकता,
0: मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस ने रिजल्ट ला के दिखाया है। चाहे भगवान प्रभु राम श्री राम का मंदिर का उद्घाटन करके BJP एक उपलब्धि के तौर पर पूरे देश के अंदर ये कहती घूम रही थी कि 400 पार भी करेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को भी बदलेंगे, और न जाने क्या क्या दावे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने 43 सीटें जीत के BJP की दिल्ली की सरकार को बैसाखी पे लाने का काम किया था। ये ताकत है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में ये ताकत है आदरणीय अखिलेश यादव जी की, और 43 हम जीते थे, 5 काउंटिंग में हराए गए थे, और शायद उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास होता कि इतना कम अंतर बचा है, तो मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरकार बदल देता, ये हैसियत उत्तर प्रदेश की है। लोगों को एहसास नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग चुनाव आते आते उन्हीं को दिखाना शुरू करते हैं। एग्जिट पोल में भी बात करो अगर आपकी, तो शायद 12-14 से ज़्यादा हम लोगों को नहीं दिखाया होगा आपने लोकसभा के चुनाव में, और आप ही ने नहीं, पूरी प्रिंट मीडिया जितने सर्वे टीम थी, कोई भी हमें 12-14 से ऊपर नहीं दिखा रहा था, बल्कि बहुत सारे लोग सिंगल डिजिट में दिखा रहे थे। तब भी हम लोग 43 जीत के आए, 5 काउंटिंग में हराए, जनता को एहसास नहीं हो पाया, नहीं तो जनता के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरकार पलट देती, और मैं समझता हूं हमारा ये वर्तमान इंडिया गठबंधन अपने आप में सक्षम है। और आज मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे इस वीडियो क्लिप को खोलिएगा, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया गठबंधन कम से कम 300 सीटें जीत के आएगा।
1: चलिए, अब हमारे पास बस 30 सेकंड बच गया है, तो एक आखिरी सवाल ये कि भाजपा कहती है कि आप आइएगा या समाजवादी पार्टी आएगी तो माफिया राज होगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर एक बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं।
0: बीजेपी में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी पार्टी की नहीं, इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने इस उत्तर प्रदेश के 19 बड़े माफियाओं की सूची मांगी थी कि इनके लाइसेंसों का डिटेल दो, और आप आश्चर्य करेंगे, मैं अभी डेटा दे दूंगा, टाइम कम दिखा रहे हैं, 2-3 को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री जी के जाति के हैं, और मुख्यमंत्री जी में क्षमता नहीं है कि एक पर भी कार्रवाई कर दें। अगर कार्रवाई करनी होगी तो जौनपुर में यादव पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो गाजीपुर में निषाद के ऊपर कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो विश्वकर्मा परिवार पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो चौरसिया पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो चौहान पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो राजभर पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो जाटवों पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो पासियों पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो खटिक लोगों पे करेंगे, कार्रवाई करनी होगी तो बाल्मीकि लोगों पे करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, और इस सच्चाई को उत्तर प्रदेश का जनमानस पूरी तरह से जानता है, और इस उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो केवल एक जाति के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहना भी बेईमानी है, एक जाति के भी मुख्यमंत्री हैं, नौकरियां देंगे तो उनको ठेकेदारी में, आप पता कर लीजिए, पीडब्ल्यूडी सिंचाई से लेके जितने विभागों में आपकी क्षमता हो आप पता कर लीजिए कि 10 साल के अंदर कौन कौन ठेकेदार बिल्डअप हुए, डेवलप हुए, आप पता करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लाभ के पद हैं, जितने भी लाभ के स्थान हैं, वहां पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति झांक नहीं सकता है। और अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का आदमी है तो वो चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, चाहे एलिजिबल हो या ना हो, शर्तें पूरी करता हो या ना करता हो, उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि मुख्यमंत्री की जाति का है, तो उसके लिए सारी चीजें छूटें। चेक करिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, मैं समझता हूं 70% अकेले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग भी अब अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यह है प्रदेश की सच्चाई, और इस सच्चाई को जानते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज नोट करके रखिए, काउंटिंग के दिन खोलिएगा 27 के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश की पीड़ित की जनता सबका समर्थन और आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने का काम करेंगे, ये मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं।
1: चलिए, धर्मेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत आज तक में आपने सारे सवाल लिए और जम करके जवाब दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: At Fresh Time Market, $75 isn't just a grocery run. It's 8 delicious meals for a family of 4. Chicken, pork chops, fresh fruits and veggies. Not to mention energizing breakfasts like smoothies, oatmeal, eggs, and avocado toast. So stop by Fresh Time Market today and fill your cart and your week with incredible flavor, freshness, and ease. Remember, $75 isn't just a grocery run. It's 8 delicious meals for a family of 4. And of course, a whole lot of quality. Fresh Time Market, rooted in value.
5: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
6: What about me, Jack? What about me? Ooh, yeah, yeah. Don't stand so close.
5: upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Well played, Jack. Well played.
5: Jack FM, playing what we want.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
7: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Yes.
8: सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने आरोपित शिवराज रघुनाथ की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया शिवराज रघुनाथ माउंटेगर साजिश में शामिल है। इसने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। सीबीआई ने कहा कि इसके फोन से 132 क्वेश्चन मिले थे जिसमें से 111 हूबहू प्रश्न वही थे जो परीक्षा में आए थे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
10: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
13: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
12: हैट्रिक का दावा।
13: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
12: विश्वास पूरा
13: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
12: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
14: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
15: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं उनका भविष्य खराब कर सकते हैं ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है डेवलपमेंट की सोच नहीं है कुछ बनाने की सोच नहीं है बिगाड़ने की सोच है मिटाने की सोच है तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।

ममता बनर्जी की पार्टी से गिरा एक और विकेट। राज्यसभा सांसद और बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा। वीडियो में ममता बोली, जिसे जाना हो जाए फिर से बना सकती हूं पार्टी। परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी की आवाज पर राहुल, खड़गे समेत बड़े नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। चंदा चोरी और नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी। सीएम को मिली आयोग की रिपोर्ट। मोहन यादव ने कहा, जब भगवान राम ने एक शादी की तो रहीम इससे अलग क्यों। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चल सकता है बुलडोजर। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतें अवैध घोषित। प्रशासन ने विश्वविद्यालय के अंदर बनाया आम रास्ता। पुरी में थोड़ी देर में निकलेगा भगवान जगन्नाथ का दिव्य रथ। हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में कई संभावित विधेयकों को लेकर बनी रणनीति। महासचिव जयराम रमेश और सांसद नाजिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीटिंग में हुए चर्चाओं की जानकारी, संभावित विधेयकों के विरोध की तैयारी। जयराम रमेश ने परिसीमन सहित कई बिलों में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करने का ऐलान किया, बोले परिसीमन के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाएगी सरकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी संसद में उठाएगा विपक्ष, दल बदल को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार ने राव जवनी कोर्ट की 3 अदालतों को एनआईए के मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया, अब एनआईए के नए मामले इन अदालतों में सुने जाएंगे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई का कोर्ट में बड़ा खुलासा, लातूर स्थित एक कोचिंग संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के सवाल के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। सीबीआई के मुताबिक आरोपित के फोन में केमिस्ट्री के 132 हाथ से लिखे सवालों की जो तस्वीरें मिली उनमें से 111 सवाल एनटीए के मास्टर क्वेश्चन सेट से मिले हुए। सीबीआई ने यह भी बताया कि मोटे गांवकर का बेटा कुलकर्णी की केमिस्ट्री ट्यूशन क्लास में पढ़ता था और वहीं से ये सवाल उपलब्ध कराए गए। पीएफआई के पूर्व सदस्य ई अबू बकर को झटका, पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट संगठन ने जारी की रिपोर्ट का मामला अब केवल कानून व्यवस्था का नहीं है बल्कि नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता से जुड़ा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार, पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चंडीगढ़ में 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआईएमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास। गांधीनगर में आज अमित शाह की बड़ी बैठक, सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा, संगठन के पदाधिकारी भी होंगे मीटिंग में शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 महीने में गृहमंत्री की दूसरी बड़ी बैठक। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज, ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया कैंप। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने के चलते अवैध करार दिया गया था और 15 दिन के भीतर स्वयं गिराने की भी आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश पर मचा सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी कुछ बना नहीं सकती लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ सकती है। एआईएमआईएम पर भी जमकर बरसे समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन, बिना नाम लिए बोले कि लोगों को मालूम है कौन है बीजेपी की बी टीम। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना जर्जेश अंसारी का विवादित ऑडियो वायरल हुआ, मौलाना ने भगवद गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद, हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की, प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग। श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना पर भड़के महंत विष्णुदास तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इनाम का ऐलान किया। मौलाना के श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान पर बचा सियासी घमासान, बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए कहा, इसे सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात बताया। वक्ता ने झारखंड में मौलाना जर्जेश अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की, गहरी साजिश की आशंका जताई। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कॉर्प्स का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों का, सुरक्षा हालातों की समीक्षा की, जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्रीराम पर बोलने का अधिकार नहीं। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना के श्री कृष्ण संबंधी बयान पर बचा बवाल, वायरल वीडियो को लेकर विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग थी। बहादुरगढ़ में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी, 5वें दिन बीआरएस के समर्थन, किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का ऐलान किया। अमेरिका के यूटा में भारतीय नागरिकों की चाकू मारकर हत्या, सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख, हर संभव काउंसलर सहयोग का भरोसा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट, गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने दी चेतावनी, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी होंगी बंद, इस्लामाबाद में खाद संकट गहराने का खतरा।
ब्रिटेन के पीटरबरो में हिंदू मंदिर वाले परिसर को मस्जिद बनाने के मामले में आज अहम सुनवाई। सिटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर और अंदर मौजूद रहने की संभावना, अलर्ट पर प्रशासन। यूएस फ्लोरिडा के पेंसाकोला बीच पर एयर शो वीक की शुरुआत के दौरान यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स का खतरनाक स्टंट, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जांच शुरू। लगातार पांचवें दिन भी जारी ईरान पर अमेरिका के हमले, कई शहरों में धमाके की खबर, ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है, ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर, बोले ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना। वेंस ने कहा अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने बने निशाना, जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान की चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर। बहरीन में सायरन बजे, गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया। मैसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना पहुंची, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त, आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल दाग दिए। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो मार्टिनेज ने किए गोल, मेसी के पास पर हुआ दोनों गोल, मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स, सड़कों पर झूमे लोग, चमकर आतिशबाजी। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच, आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किया ऐतिहासिक बदलाव, इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम, मुंबई इंडियंस का कप्तान, मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी, अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी, पावन रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालु में उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा, सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती, पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु में जोरदार उत्साह, बारिश के बीच देश के कोने कोने से पहुंची भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति, ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत दिखी। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, 22 गांवों का संपर्क टूट चुका है। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव के चलते सड़क कट गई। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़, गांवों और स्कूलों में पानी के जाने से जनजीवन होता है अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। असम के लखीमपुर में भारी बारिश में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूब गए। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जोरदार बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांवों में 2 किसानों की बिजली गिरने से मौत, 1 घायल। यूपी के बांदा में दबंगों की सरेआम गुंडे, बिजली चोरी मामले की जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गाड़ी से टक्कर लगने के बाद श्रद्धालुओं का हंगामा, गाड़ी में भी तोड़फोड़। विरार के अरनाला समुद्र तट पर दर्दनाक हादसा, समुद्र में नहाने उतरे 4 बच्चे डूबे, पुलिस की तत्परता से बची 2 बच्चों की जान, 2 की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। मुंबई के अंधेरी इलाकों में हिट एंड रन का मामला, गलत दिशा में आ रहा है स्कूटी ने नाबालिग लड़की को मारी टक्कर, हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल। औरैया में निजी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी ने यमुना नदी में कूद कर किया सुसाइड, आत्महत्या से पहले अस्पताल स्टाफ पर लगाया उत्पीड़न के आरोप।
मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, सीसीटीवी वायरल हुआ। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में दो पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र, मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता दिखा। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर से पहले चोर ने किए दर्शन, फिर रेकी की, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर चोरी की। लखनऊ की कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुएं का गुबार। राजस्थान की सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका के 500 गुम होने के पर छात्राओं की निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई, घटना के विरोध में परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला। बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड के सिर में दो गोली मारकर हत्या, बेटे के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत, जमीनी विवाद को लेकर पिता को गोलियों से भूना, आरोपित की तलाश जारी। राजस्थान के अजमेर के आना सागर झील में तबाही, हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता, पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटलों में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, कई युवतियों और युवक को हिरासत में लिया। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, वज्रपात से अलग अलग गांव में दो किसानों की मौत, एक घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजित को लेकर दो चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान एक की मौत, पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई करता दिखा, सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। मेरठ में दिव्यांग युवक से अमानवीय बर्ताव का वीडियो वायरल, दो आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों के ने काम दिलाने का झांसा देकर किया प्रताड़ित। वाराणसी में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने पकड़ा। राजस्थान के कोटपुतली में बाघ की रेस्क्यू के दौरान जमकर बवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, पत्थरबाजी भी की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों और आदिवासी का आंदोलन जारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए। पीड़ित लोगों ने समस्या सुनाते हुए कई आवेदन भी सौंपे, इस दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म पराग में श्री मुरारी की एंट्री, फिल्म निर्माता ने पहली झलक जारी की। फिल्म मेहमान का फर्स्ट लुक जारी हुआ, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म रागिनी 3 की शूटिंग शुरू, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। रणबीर कपूर की रामायण को सीबीएफसी से ग्रीन सिग्नल, बिना किसी कट के पास हुए दो महा ट्रेलर, 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में रिलीज होगा।

0: अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नाले के पास एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान भरभराकर धराशायी हो गया। मकान की चपेट में बिजली के कई पोल भी आ गए। मकान गिरा तो आसपास हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। ग्रेटर नोएडा नाले के किनारे दो मंजिला मकान गिर गया। सफाई का काम चल रहा था और इसी दौरान भरभराकर ये दो मंजिला मकान गिर गए। देखिए और देखिए ये जो तार थे, जो वायर जो विद्युत सप्लाई करते हैं, बिजली सप्लाई करते हैं, ये भी उसकी चपेट में आ गए। तो बड़ा हादसा हुआ। नाले की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ और एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान गिर गया। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुजफ्फराबाद मार्च कर शहबाज सरकार की चुनौती को बढ़ा दिया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को एक मौका देते हुए 21 जुलाई तक अपना प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया, लेकिन धार्मिक गुरु और जमीयत उलेमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर पर बड़ा हमला बोला और सैन्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
1: एक तरफ शहबाज सरकार और उनकी आर्मी है, आर्मी चीफ असीम मुनीर है, तो दूसरी तरफ उन पर सुलगते सवाल। ये वो मोर्चा है जिनसे निपटने का उपाय पाकिस्तान सरकार को नहीं समझ आ रहा और इसी लाचारगी में असीम मुनीर के रेंजर्स पीओजेके के बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, लेकिन मुनीर को चुनौती देने वाला भी उठ खड़ा हुआ है।
2: और ये बात सुन
1: मौलाना फजलुर रहमान चैलेंज कर रहे हैं कि लाशों की सियासत छोड़ सेना प्रमुख असीम मुनीर को अगर जनता का समर्थन होने का भरोसा है तो वे वर्दी उतारें, राजनीतिक पार्टी बनाएं और चुनाव लड़ें।
2: सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे।
1: फजलुर रहमान का सवाल पाकिस्तान की हुकूमत से भी है। वो आंकड़े गिना रहे हैं, बलूचिस्तान और पख्तून के हालात आवाम के सामने रखकर बता रहे हैं कि कैसे वहां जुल्म की इंतहा हो रही है।
2: और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी, पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने दो तीन दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं।
1: मौलाना ने जिस हालात का जिक्र किया है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुछ ऐसी ही क्रूरता पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में भी दिखाई है। अभी दो दिन पहले यानी 14 जुलाई को ही रावलाकोट में इकट्ठा हुई भीड़ पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जून महीने में रावलाकोट में ही ऐसी ही क्रूरता हुई थी, तब मौत का आंकड़ा 15 के करीब था। पाकिस्तान सरकार इस पर अब तक अपनी आंखें मूंदी रही है, उसे सिर्फ बेगुनाहों पर बल प्रयोग की नीति ही समझ आ रही है। पीओजेके के हक की लड़ाई लड़ रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लगातार पाकिस्तान सरकार को आईना दिखा रहा है कि वो उन्हें विवादित हिस्से को न माने।
3: ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाजा इलाका है, जिस मुतनाजा इलाके में आवाम के पास ये राइट है, जम्मू कश्मीर के मसले के मुतालिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है, और इस पे हम अपने हाथ में फूल सकते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म अब अब ये हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म, हुकूमत की जंग खत्म।
1: पीओजे के मेन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने इस ऐलान के साथ मुनीर के गले की नस दबा दी, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को गर्दन की नस बताते रहे। ऐसे बयान के बीच अपनी 38 सूत्री मांगों को लेकर एक दिन पहले ही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग मुजफ्फराबाद मार्च के लिए निकले थे। लाखों लोग रावला कोर्ट में भी जमा हो चुके थे। ये लॉन्ग मार्च शहबाज सरकार की आंखें खोलने के लिए था, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने प्रस्तावित लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक टाल दिया। अपने हक की आवाज उठा रहे इन लोगों ने पाकिस्तानी सरकार को अपनी मांगे पूरी करने का एक आखिरी मौका दिया है। लगे हाथ समूह ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 22 जुलाई से दोबारा मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। साथ ही पीओजेके में चल रहे धरने जारी रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरी में शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवान को 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। उससे पहले अहमदाबाद में सुबह 7 बजे से ही भव्य रथ यात्रा शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ की आगे सफाई की। पुरी और अहमदाबाद में लाखों लाख श्रद्धालुओं के यात्रा में पहुंचने की संभावना है। पुरी से आपको लिए चलते हैं अयोध्या। बड़ी खबर, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विस्तृत जांच में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई। रिपोर्ट में उन्हें प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की, क्योंकि पुलिस की विवेचना भी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इस हाई प्रोफाइल मामले में नई जवाबदेही तय होती है। तो टिन्नू यादव की भूमिका और गहरी हो गई है, जो लगभग जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। उसमें चंपत राय को क्लीन चिट नहीं दी गई क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां थी। प्रबंधन निगरानी में लापरवाही की बात भी कही गई। अब अनिल मिश्रा पर भी गंभीर सवाल है। एसओपी भर्ती में कई अनियमितता हुई, कई जो भर्तियां हुई हैं उनमें नियमों का पालन नहीं हुआ है और अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आएगी तो वो कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
6: Tune in how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
10: EU सोच बदलो और बैंक भी।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
14: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
15: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
17: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: टीएमसी का गिरा एक और विकेट, राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा, ममता का जवाब, जिसे जाना हो जाए फिर से बना सकती हूं पार्टी। परिसीमन बिल का संसद में विरोध करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी के घर पर राहुल खड़गे की बैठक में बनी रणनीति, चंदा चोरी नीट पेपर लीक पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड गुजरात असम के बाद मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लाने की तैयारी, मुख्यमंत्री को मिली आयोग की रिपोर्ट, डॉक्टर मोहन यादव बोले, जब भगवान श्री राम ने एक शादी की तो रहीम इससे अलग क्यों। रामपुर में आजम खान के साम्राज्य पर चलेगा बुलडोजर, जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें अवैध घोषित, अखिलेश बोले, बीजेपी को शिक्षा में दिखती है सांप्रदायिकता। पुरी में थोड़ी ही देर में भगवान जगन्नाथ का दिव्य रथ निकलेगा, हजारों श्रद्धालु मौजूद, अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएट।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत आपका खबरदार में। और हम एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, टीएमसी को एक और झटका लगा है, राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं, कल मदन मित्रा ने बगावत की और आज एक और राज्यसभा की सांसद ने इस्तीफा दे दिया। कोयल मलिक एक एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, उन्होंने टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया है, ममता बनर्जी को जबरदस्त झटके, एक और सांसद उनसे अलग हुई है और इस बार राज्यसभा सांसद का पद कोयल मलिक ने छोड़ दिया है। टीएमसी से अलग हो गई थी मदन मित्रा के बाद, दूसरे ही दिन ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। तो ममता के करीबी तो टीएमसी छोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके सांसद, उनके विधायक लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं, अपनी ही पार्टी में फूट हो गई है, टूट हो गई है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह से लगातार जूझ रही हैं। पीयूष हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कोयल मलिक का इस्तीफा ममता के लिए कितना बड़ा झटका और इसे क्या हम एनडीए में एक और टीएमसी के नेता के जाने के तौर पर देख सकते हैं आने वाले दिनों में?
2: जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जब कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया है तो अब जो सीट खाली हुई है वहां पर भी चुनाव होंगे और चुनाव की तारीख जल्द इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि हाँ, इसमें कोई दोराई फिर से नहीं है कि ममता बनर्जी को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई है, 20 सांसद लोकसभा के अलग हो गए हैं, राज्यसभा के अब 3 प्लस एक और कोयल मलिक यानी कि 4, 13 सांसद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के हैं, अब वो घटकर 13 से 9 हो गए हैं क्योंकि 4 सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो इससे पहले जो 3 सांसदों ने इस्तीफा दिए थे राज्यसभा के, वो उन तीनों के तीनों सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए है और अब उनका चयन लगभग तय है राज्यसभा में, यानी 24 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद कहलाए जाएंगे। और अब ये जो गणित है लगातार बीजेपी और एनडीए के समर्थन में बढ़ता जा रहा है और आज कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया।
0: बहुत धन्यवाद पीयूष। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। कभी ममता बनर्जी के खासम खास रहे मदन मित्रा ने भी पाला बदल लिया और पाला बदलते ही बाकियों की तरह मदन मित्रा भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। देखिए तो बड़ी खबर एक और यहां पर यह है कि मदन मित्रा कल अलग हो गए थे अभिषेक बनर्जी पर और उन्होंने जबरदस्त आरोप लगाए हैं। अलग होते ही जैसे ही वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से अलग हुए, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा दिए कई सारे। अब यहां जितने भी लोग जा रहे हैं ममता बनर्जी का साथ छोड़कर, भले ही वो उनके बागी हुए गुट के साथ जा रहे हों, ऋतुव्रत के साथ जा रहे हों या बीजेपी से जुड़ रहे हों, उनके केंद्र में अगर कोई होता है तो वो अभिषेक बनर्जी।
3: अभिषेक बनर्जी को बताए थे आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसके बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है, पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी, ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए देखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े।
0: अभिषेक बैनर्जी को लेकर ममता बैनर्जी की ममता जाग गई है। कल बागी खेमे से जुड़ने वाले मदन मित्रा ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला बोला, अभिषेक को पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया तो ममता बैनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अभिषेक बैनर्जी शेर की तरह लड़ रहे हैं, उन्होंने मदन मित्रा को ईडी से डर कर भागने वाला बता दिया।
4: ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমার কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने मानसून सत्र में सरकार के विरुद्ध ऐलान जंग कर दिया है। 12 घंटे की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दंभ भरा कि सरकार परिसीमन बिल पास करा नहीं पाएगी, 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएगी। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि विपक्ष एकजुट है, सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। वहीं कल रात प्रधानमंत्री के घर की बैठक में बीजेपी ने भी मंथन किया तो जाहिर है मानसून सत्र के साथ उन बिलों पर चर्चा हुई जिसके लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। हम 3 तस्वीरें यहां पर आपको दिखा रहे हैं। सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इसमें सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे, यही रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, परिसीमन को लेकर उस पर चर्चा हुई, बिल आएगा क्योंकि उसे पास करवाना एक चुनौती है। तो विपक्ष और कांग्रेस के नेतृत्व में ये कह रहा है कि हम एकजुट होकर सरकार का विरोध करेंगे।
5: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को

0: ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
1: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उसमें मॉनसून सत्र में जो चर्चा होगी उस पर पहले एक सहमति बनाने का प्रयास किया जाए, सभी को बताया जाए और सभी की सहमति भी ली जाए, तो परिसीमन पर संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा की मांग भी की जाए। तो ये इस पत्र में ये मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखकर एक सर्वदलीय सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है। लिखा है कि परिसीमन पर सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद में पेश किए जाने से पहले हमें उसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। और अब खबर अयोध्या की। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ा किरदार टिन्नू यादव को माना जा रहा है, लेकिन चंपत राय भी दूध के धुले नहीं हैं। सूत्रों की माने तो चंपत राय को क्लीन चिट नहीं मिली है अभी। उधर अखिलेश यादव इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला यूपी की सियासत में दूध पकड़े हुए है। एक तरफ बीजेपी है जो चढ़ावा चोरों के लिए सजा की बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे लेकर योगी को घेरने में जुटी हुई है। इधर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। भले ही वो ट्रस्ट की आधिकारिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, लेकिन मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में उसकी गहरी पैठ थी। इतना ही नहीं, दान पात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहने की बात जांच में सामने आई है। जांच एजेंसी का मानना है कि चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रहीं। जिन कर्मचारियों को चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी दी गई, वो आउटसोर्स्ड हाउसकीपिंग स्टाफ थे और उनकी नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं हुई। एसआईटी का कहना है कि एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। सूत्रों के मुताबिक विस्तृत जांच में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। रिपोर्ट में उन्हें प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि पुलिस की विवेचना अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इस हाई प्रोफाइल मामले में नई जवाबदेही तय होती है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा यूपी में गरमाया हुआ है, इसके बहाने विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उनका उत्तर प्रदेश के हर जिले तक जाने का प्लान है।
1: देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
2: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं झोंक पाए।
0: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी, जब से चुनावी रैलियों में संविधान की किताब दिखाकर अखिलेश ने अयोध्या फतेह की थी। तब से अखिलेश ने पीडीए को अपना पक्का वोटर मान लिया और फिर दूसरे वोटर ब्लॉक्स की ओर कदम बढ़ा दिए, और ये वो वोटर थे जो सनातन के नाम पर बीजेपी से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी

0: बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आज तक ब्यूरो।
1: चढ़ावा चोरी का मामला महाराष्ट्र में भी गरमाया हुआ है। उद्धव गुट नागपुर में श्री राम रक्षा कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया है।
2: हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है नागपुर में 18 तारीख को जो हमारा राम रक्षा आंदोलन चलेगा, राम मंदिर के चोरी के खिलाफ, चढ़ावा चोरी के खिलाफ, लूटमार के खिलाफ। देवेंद्र जी राम भक्त है, देवेंद्र जी ने कर सेवा की है ऐसा उनका कहना है, तो उनको भी दिल को ठेस पहुंची होगी ये चोरी होने के बाद। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी चल रही है और आपके ही लोग हैं, तो आपको आंदोलन में आना होगा।
1: और अब खबर मध्य प्रदेश के, आइए करते हैं जहां यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के श्री पहले बयान पर राजनीतिक उबाल आ गया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब रामचंद्र की एक पत्नी हो सकती है तो रहीम की क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में इसी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में मध्य प्रदेश सरकार इसे विधानसभा में पेश करेगी। 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 5 दिन का सेशन है और इसी में ये पेश किया जा सकता है।
3: हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए। अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि यूसीसी समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए लाया जा रहा है।
4: यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है, इसमें ये भी अंतिम को भूलना नहीं चाहिए कि संविधान का अंग बनाया गया था जब कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का इसका इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए।
1: तो मध्य प्रदेश भी यूसीसी की राह पर निकल चुका है। मध्य प्रदेश के समान नागरिकता संहिता में क्या विशेष है जो जानकारी हमें मिली है, आइए हम आपको बताएं। इस ड्राफ्ट को बनाने में मध्य प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया, यूसीसी से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया, विवाह तलाक भरण पोषण पर प्रावधान किया गया, उत्तराधिकार दत्तक लिव इन रिलेशन पर प्रावधान है, लैंगिक समानता और मध्य प्रदेश के रीति रिवाज का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है और ये ड्राफ्ट 3 भागों में बांट दिया गया। पहले भाग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों का अध्ययन है और सारांश है। पहले भाग में 10 अध्याय शामिल किए गए हैं। दूसरे हिस्से से में यूसीसी का पूरा मसौदा है जिसमें 4 भाग, 404 धाराएं, 7 अनुसूचियां हैं। तीसरे हिस्से में जनता से प्राप्त सुझावों पर आधारित रिपोर्ट को शामिल किया गया। समिति को लगभग 9.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। तीसरे हिस्से में लिंगवार समुदायवार विश्लेषण भी शामिल किया गया। अगली खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपियों की जमानत का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने आरोपी शिवराज रघुनाथ की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि शिवराज रघुनाथ मोंटेगर साजिश में शामिल है, इसने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा। सीबीआई ने यह भी कहा कि इसके फोन से 132 क्वेश्चन मिले जिनमें से 111 प्रश्न हूबहू वही आए जो परीक्षा में आए थे। और अब खबर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ध्वस्तीकरण की। दिल्ली सरकार ने खतरनाक सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने का प्लान बनाया। 7 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए जिन्हें तोड़ा जाएगा। इन स्कूल्स की इमारत जर्जर हो चुकी है। इन स्कूलों को तोड़ने का निर्णय दिल्ली सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि ये खतरनाक हो गए थे।
5: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के तमाम स्कूलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दिया है और इन स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ 7 ऐसे स्कूल हैं सरकारी जिनको डेमोलिशन करने का भी आदेश जो है वो जारी किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जसोला के गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आप हालत देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है इसका स्ट्रक्चर लगभग 2008 के अंदर ये बना था और किस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दरारें आपको नजर आएंगी, जो दीवारों के अंदर अगर आप देखेंगे मलबा झड़ता हुआ नजर आएगा और कमोवेश हर क्लासरूम की स्थिति जो है अगर आप देखेंगे तो वो इसी तरीके की स्थिति है जब यहाँ बच्चे पढ़ते थे उनको किस तरीके से जो खतरा था वो यहाँ पर लगातार मंडरा रहा था। जो सीलिंग थी उसमें भी आपको यहाँ पर दरारें जो है वो नजर आएंगी। 4 महीने पहले दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे स्कूल का स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया, उसके बाद इसको डेंजर घोषित कर दिया गया, इस पे पोस्टर जो है वो लगा दिए गए और यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम जो 17 क्लासरूम के बच्चे थे उनको बाटला हाउस के स्कूल में जो है वो शिफ्ट किया गया है। लेकिन ऐसे दिल्ली के 7 ऐसे स्कूल हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद सरकार ने ये जाना है कि इन स्कूलों को पूरी तरीके से डेमोलिशन जो है वो किया जाए और उसके बाद इनका नया स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए। अगर आप देखेंगे कि स्कूलों की हालत कितनी खस्ता हाल में इस वक्त जो है वो आपको यहाँ पर नजर आई। अब जो स्थिति है इन स्कूलों को जो है वो फिलहाल बंद किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मलबा झड़ा हुआ हुआ है आपको यहाँ पर दीवारों से जो है वो नजर आएगा। जो बेंचेस हैं उन पर भी किस तरीके से छत का जो मलबा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और ये तमाम जो स्कूल है वो गार्डर पर जो है वो बने हुए थे। कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है लेंटर जो होता है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, गार्डर पर ये थे और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पहली बार इस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया और इन स्कूलों को डेंजर घोषित करा गया है और अब इन स्कूलों की फिर से रिनोवेशन और पूरी तरीके से नए सिरे से इन स्कूलों को जो है।
1: मुंबई का जुहू बीच चर्चा में है। वीडियो में जुहू बीच पर कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। बीएमसी के कर्मचारी मशीनों की मदद से कचरे को हटा रहे हैं। बीएमसी टीमें कचरा उठाती हैं और अगले दिन फिर वहां कचरे का ढेर लग जाता है। इतना अधिक कचरा बीच पर कैसे पहुंच रहा है? क्या ये पर्यटकों का कचरा है या फिर नालों से बहकर आ रहा है? ये एक प्रश्न है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो, इसको सुनिश्चित करें।
2: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
3: ऐसे पोस्टर्स यूपी के अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। एक पोस्टर में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव हैं, इसमें लिखा है मुलायम सरकार की असलियत। दूसरे पोस्टर में अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव की तस्वीरें हैं, इसमें लिखा गया है दिल में बाबर मुंह में राम। ऐसे पोस्टर्स लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और अयोध्या में लगाए गए हैं।
4: जैसे चुनाव नजदीक आएगा सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, प्रहर पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे।
3: इस सियासत से इतर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से बढ़ रही है। खबर है कि मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने वाले कुछ विशेष दानदाताओं के दान को ट्रस्ट वापस कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद दर्जनों दानदाताओं ने ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और अपने दान की चोरी या घोटाले का शक जाहिर किया था। कई श्रद्धालुओं का दावा था कि उनकी ओर से भेंट की गई वस्तुओं की रसीद नहीं दी गई। आरोप ये भी है कि उनकी दी गई भेंट राम मंदिर में प्रदर्शित या सुरक्षित नहीं रखी गई। अब इन वस्तुओं को लौटाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटा दिया गया है। खबर ये भी है कि चढ़ावा चोरी की जाँच के लिए गठित SIT की टीम जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

फिर से बना सकती हूँ अपनी पार्टी। परिसीमन बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस।

तैयारी। मुख्यमंत्री को मिली आयोग की रिपोर्ट, मोहन यादव ने कहा जब भगवान राम ने एक शादी की तो रहीम अलग क्यों। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को शिक्षा में भी दिखती है सांप्रदायिकता, कांग्रेस भी बुलडोजर के खिलाफ।

0: Shaw.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Soko.
3: Azam Khan ke johar par chalega bulldozer. पंद्रह दिन की मोहलत, फिर जोरदार एक्शन। चालीस में से 38 इमारतें अवैध, आजम की बढ़ी टेंशन। आजम का टूटा गुरूर, जौहर चूर चूर। सड़क पर कब्जा खारिज, आम रास्ते का लगा बोर्ड। विदेश में अखिलेश, रामपुर में बढ़ा कलेश। आजम की मनमानी भारी या 2027 की तैयारी।
4: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की बनाई यूनिवर्सिटी पर अब बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गैर कानूनी करार दे गिराने का आदेश दे दिया है। आजम खान की ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को 15 दिनों का समय दिया गया है। इन 15 दिनों में या तो वो खुद गैर कानूनी इमारतों को गिरा ले या फिर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इमारतों को गिरा देगी। 40 में से 48 इमारतों को गिराने का मतलब है यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही ध्वस्त हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने की थी, जो इस वक्त जेल में बंद है। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए का कहना है कि इन इमारतों का निर्माण बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बिना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 38 इमारतों को गिराने का आदेश उत्तर प्रदेश शहरी विकास और योजना अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत विस्तृत सुनवाई और रिकॉर्ड की जांच के बाद किया गया है। रामपुर के जो जिला मैजिस्ट्रेट है अजय कुमार द्विवेदी, उनके पास इस समय आरडीए का भी चार्ज है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना मंजूरी कराए निर्माण को लेकर पूरी सुनवाई के बाद अब इन गैर कानूनी इमारतों को गिराने का निर्णय कर लिया गया है।
5: ये कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है, इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जिस क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था उसी क्रम में उन्होंने अपने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आज दिनांक 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए आरडीए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया।
6: कितने दिन का समय अब उनको दिया गया है?
5: देखिए, जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कम से कम 15 दिन का समय जो है संस्था को दिया जाना होता है ताकि वे स्वयं से अपना जो अवैध निर्माण है उसको हटा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो तदुपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
4: तो अभी 15 दिन का समय दिया गया है, 38 इमारतें बिना मानचित्र को अथॉरिटी से पास कराए ये इमारतें बना दी गई हैं। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संघी साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन कार्यालय संस्थान कैसे जायज हो सकते हैं? ये निंदनीय है। ये बड़ा बयान इस समय जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का इस समय सामने आया है। दरअसल इस समय आजम खान तो जेल में बंद हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनकी पत्नी तजीन फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तजीन फातिमा ने कहा कि 15 दिन का जो समय दिया गया है वो कोर्ट जाएंगी या नहीं, अब इस पर उन्होंने फिलहाल नहीं कोई बयान दिया है। कहा यह जा रहा है वो फिलहाल अपने वकीलों से इसके बारे में बात करेंगी और आगे की रणनीति तय करेंगी। सुनिए, जब वो जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची तो उनका क्या कहना था, सुनिए।
0: जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया है, कुछ थोड़ा सा कुछ बताएंगे प्लीज।
7: सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है बस, और मुझे कुछ नहीं करना।
0: अरे क्या आप जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है?
7: कुछ भी नहीं, ये सब तो जी 38
8: भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती
7: है? नहीं कुछ नहीं मानती हूँ, अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
0: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
7: अभी कुछ कह नहीं सकती।
4: रामपुर में एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है रामपुर से। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। कल पारित आदेश के बाद आज रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कर्मचारी यूनिवर्सिटी में नोटिस चस्पा करने पहुंचे। आजम खान के इस विश्वविद्यालय को 15 दिन का नोटिस दिया गया है। यह कहा गया है 15 दिन में या तो वो गैर कानूनी 38 इमारतें खुद दहा दे, खुद गिरा दे, वरना 15 दिन बाद बुलडोजर वहां पर पहुंचेंगे और कार्रवाई रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम से इस भूमि को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, गैर कानूनी भूमि पर कब्जे को लेकर मामले अलग अलग चल भी रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
9: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
10: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आया?
9: भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
10: किस चीज का?
9: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
10: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
9: हाँ बस।
10: अच्छा, कहाँ से आया आप?
9: आरडीए से आए, रामपुर विकास।
4: तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने वाला जो नोटिस है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जहां कानून व्यवस्था निरंतर बनाए रखने की बात की है, वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले से ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी, एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुनिए।
11: सर, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे जब्त।
12: मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करेंगे।
13: प्रशासन ने कहा है कि वहां 40 भवनों में से 48 भवन जो है वो इलीगल है और वहां पर 20 दिन में खुद हटा लें वरना हम हटा देंगे।
14: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
13: अवैध जमीन पर है, परमिशन नहीं ली हमसे।
14: हम ये कह रहे हैं, आप क्या कोई यूनिवर्सिटी बना पाए अभी तक? और आप केवल कमियां खोज रहे हैं, ऐसे मुद्दे खोज रहे हैं जिनसे आप भगवान राम के मंदिर के लुटेरों को बचा ले जाएं, सोच रहे हैं वो बहस बंद हो जाए। तो कैसे बंद हो जाएगी? आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है और उत्पीड़न कर रही है जेल में डाल करके, ये जनता देख रही है।
15: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप कंपाउंडिंग करा दीजिए, आपको बुरा लग रहा है कि वही चला रहे यूनिवर्सिटी, अपने लोगों से यूनिवर्सिटी चलवा लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी बनने में बहुत वक्त लगा है, उसको ढाइए मत। जब आप कहते हैं कि शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का भी सपना शिक्षा को बढ़ाने का है, तो फिर आप शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर मत चलाइए। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर सिर्फ इसलिए चलेगा आपकी अदावत आजम साहब से है, तो ये मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है।
16: अच्छा, कल ही जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर जाने वाले रास्ते पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने लिख के वहां पर एक नोटिस लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया कि यह आम रास्ता है। इस घोषणा के साथ बाहर बकायदा हम आपको वो बोर्ड भी दिखा रहे हैं कि यह कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, यह आम रास्ता है। इससे पहले इस रास्ते से लोगों को जाने की इजाजत आजम खान की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं थी, और इस मामले पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है। 3.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क दरअसल जनता के पैसे से बनी है, जनता के लिए बनी है। 4 लेन की पक्की सड़क को बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए का खर्च आया, तो जनता ने यह पैसा दिया, लेकिन जनता को ही यहां पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। ये जो अब राग अलाप रहे हैं लोग कि यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी किस जमीन पर बनाई है, किसका मालिकाना हक है उस जमीन पर, कहां से किताबें लाई गई थी, और अगर इन सब में गैर कानूनी कार्रवाई हुई थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जनता का यह रास्ता है, जनता के लिए खुला होना चाहिए। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में गेट लगाकर जनता का यह रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। ये यूनिवर्सिटी आजम खान के निजी ट्रस्ट मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए बनाई गई, और इसीलिए उन्होंने अंदर जाने वाली सड़क पर सरकारी खर्च से 17 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च से सड़क बनाई गई, लेकिन दरवाजा जनता के लिए ही बंद कर दिया गया। इसके बावजूद आजम खान ने गेट बनवाकर एक सरकारी सड़क को बंद कर दिया। जिस जनता के पैसे से सड़क बनी, उसी जनता को यह सड़क इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इस सड़क को अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सरकारी पैसा दिया गया था। उस सरकार में आजम खान मंत्री थे, नंबर 2 पर वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री, शहरी विकास जैसा दमदार मंत्रालय संभाल रहे थे। सुनिए, सड़क को आम रास्ता घोषित करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने क्या कहा।
17: आम रास्ता इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो रोड अंदर जा रही है 4 लेन CC की, वो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई है। इसका निर्माण कार्य 2019 में कंप्लीट हो गया था, 2016 में वो स्वीकृत हुई थी, और स्वीकृति के उपरांत उसका 4 लेन में CC कार्य किया गया। तो वो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, तो वो आम रास्ता, जो भी लोक निर्माण की सड़क बनती है पब्लिक के लिए बनती है, आम रास्ता ही है वो सभी हमारा, इसलिए वो हमने बोर्ड लगाया कि आम रास्ता है। जब ये बनाई गई थी सड़क तो पहले से हमारी है, 2004-05 में ही बनाई गई थी, 6 में और 10 में इसमें एक बार काम हुआ था, लेकिन इसका चौड़ीकरण जो हुआ 2016 के बाद हुआ है। यूनिवर्सिटी ने अपने इसमें गेट लगा के इसे बंद कर लिया था। 2019 से कार्य पूर्ण किया गया, तभी इस पर हमने जो है इनको नोटिस जारी किए थे। नोटिस जारी करने के बाद ये हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट से वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ, फिर दोबारा हम यहाँ लोअर कोर्ट में, हाईकोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट में जाइए, SDM ने भी हमारे फेवर में आदेश दिए थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ भी हमारे फेवर में आदेश हुए थे, उसके उपरांत फिर दोबारा ये हाईकोर्ट में गए थे। तो हाईकोर्ट ने जो नीचे लोअर कोर्ट के आदेश थे उनको मानते हुए जो डैमेज का पैसा जमा करने के लिए कहा, लेकिन गेट तोड़ा जाए या अथवा ना तोड़ा जाए उस पर उन्होंने अभी स्टे दे दिया था, इसे नेक्स्ट हियरिंग में इसको देखा जाएगा।
16: तो जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवन में से 38 को ध्वस्त किया जाए क्योंकि वो गैर कानूनी है, यह आदेश दे दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, उनमें कोई तनाव ना हो, पैनिक ना हो, इसका भी इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है। प्रशासन ने छात्रों को यह बताने के लिए कि यूनिवर्सिटी बंद होने पर वो कहां एडमिशन ले सकते हैं, बकायदा प्रोफेसर वहां भेजे हैं, बकायदा कैंप लगाया है। जौहर यूनिवर्सिटी से आज तक संवाददाता आमिर खान की यह स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
18: हम इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हैं, और हम बताएं आपको कि यहाँ पे एक प्रशासन ने कल एक बोर्ड लगाया था कि ये आम रास्ता है, और ये आम रास्ता के बाद यहाँ इसका एरो जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर का इसको मार्क किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। और हम इस वक्त मौजूद की हमारी है और जौहर यूनिवर्सिटी में हम अभी बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जो 38 बिल्डिंग्स हैं उनको हम दिखाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक कैंप लगा है, छात्र छात्रा परामर्श केंद्र, मैं ये जानना, आज ये कैंप लगा है, किसने लगाया सर?
19: ये प्रशासन से ये सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद की जा रही है
18: जी।
19: तो अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर लें लोग, तो उनके लिए
18: क्या प्रशासन से सूचना मिली?
19: यही कि हमें गाइड करना है बच्चों को, एक काउंसलिंग टाइप।
18: किस तरीके की काउंसलिंग?
19: कि बच्चे और जो पढ़ रहे हैं वो किन कोर्सेज में, अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो कहाँ जा सकते हैं, जो और कॉलेजेस हैं जहाँ अवेलेबल है कोर्स वहाँ जा सकते हैं, यही।
18: तो अभी तक बच्चे छात्र आपके
19: तो अंदर चले गए हैं बच्चे, जब वापस आएंगे हमें अंदर जा करके नहीं करना है, गेट पर बच्चे आएंगे तो अगर जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कहीं तो उनको गाइड करना है।
18: ये मैं ये प्रशासन की तरफ से कैंप लगा गया है?
19: हाँ जी, ये कैंप प्रशासन की तरफ।
18: मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मौजूदगी हमारी दर्ज है और हम इस वक्त दिखाएंगे ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है और ये है ये रोड जो है अंदर तक जा रही है। ये 3.5 किलोमीटर की रोड है और यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हैं, जितने आप बड़े बड़े ब्लॉक्स देख रहे हैं वह ब्लॉक ए ब्लॉक बी ये सारे जो हैं जो 38 भवनों में से ये सारे भवनों में आ रहा है।
16: इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल हम आपको सरहद पार लिए चलते हैं। पाकिस्तान से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आटा खत्म होने वाला है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान का अब सबसे महत्वपूर्ण समझा जाने वाला पंजाब सूबा, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यही होता है। इसी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए गेहूं की सप्लाई रोक दी गई है। इससे इस्लामाबादी नहीं बल्कि इस्लामाबाद से सटे रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, जनरल हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान की आर्मी का, वहां भी आटे की कमी हो गई है। रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज रहती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक बोरी आटे के लिए वहां भीख मांग रहे हैं लोग, क्योंकि अब वहां आटा खत्म होने वाला है। और ये जो कबूलनामा है ना, ये पाकिस्तान के आटा मिल एसोसिएशन का है, जिसने कहा है कि 45 आटा मिलों में से 40 से ज्यादा में गेहूं का जो स्टॉक है वो खत्म होने की कगार पर आ गया है। आटा मिलों के संगठन ने गेहूं की भारी किल्लत और कालाबाजारी की वजह से कीमतों में जबरदस्त उछाल की चेतावनी दी है और इन सब के पीछे पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सरकार है। और आप वो सोचिए कि इस पंजाब सूबे की सरकार की जो कमान है वो मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के हाथ में है। आरोप यह है कि पंजाब सूबे की जो सरकार है उसने बिना लिखित आदेश के गेहूं का परमिट ही रोक दिया है, यानी उसकी मर्जी के बिना, मरियम नवाज की सरकार की मर्जी के बिना गेहूं की एक भी बोरी पंजाब सूबे में बाहर नहीं निकल सकती। हैरत की बात यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ये भी पाकिस्तान के पंजाब सूबे में है, वहां भी गेहूं की सप्लाई अब रोक दी गई है और आटा मिल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। पंजाब सूबे की जो सरकार है उसकी ओर से अचानक परमिट रोकने से करीब 8,000 टन गेहूं की सप्लाई इस समय रुकी हुई है। मिल मालिकों के मुताबिक पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, जो फ्लावर मिल एसोसिएशन है, उसने इसे मरियम नवाज सरकार का मिसमैनेजमेंट बताया है। सुनिए इस मुद्दे पर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एसोसिएशन ने क्या क्या खुलासा किया कि पाकिस्तान के भीतर ही न केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आटा नहीं पहुंच पा रहा है, वहां ब्लॉकेड हो गया है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में ही ब्लॉकेड हो गया है। पहले एक सूबे से दूसरे सूबे तक गेहूं नहीं जाने दिया जा रहा था, अब तो एक शहर से दूसरे शहर गेहूं नहीं जाने दिया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, लोग भीख मांग रहे हैं, एक एक किलो आटे के लिए लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। सुनिए,
20: सबसे ज्यादा पैदावार वाले सूबे ने सब मुल्क के लिए गंदम बंद की है। उसकी वजीर इत्तलात कहती है कि प्रायोरिटी पंजाब है। ये मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट है। मुल्क में गंदम के रेट बढ़ क्यों रहे हैं? इस जुलाई में गंदम के रेटों में बढ़ाई क्यों आई है? पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट ने एक अलग तरीका अपनाया हुआ है। गुज़श्ता अगस्त से लेकर के आज तक बैन अल-सूबाई पाबंदी लगा दी गई है। एक सूबे से दूसरे सूबे गंदम नहीं जा सकती। चेक पोस्ट क्रॉस करे तो 5,000 से 3,000 रुपए बोरी महंगी जाती है। अटक के इस साइड वही बोरी जो है वो 4,000 रुपए सस्ती हो जाती है। उसने पूरी सुबह के लिए गंदम बंद कर दी है। जब ये बंद करेगी तो मेरे आप तरफ से एक सवाल है कि क्या डिमांड और सप्लाई पूरे मुल्क में इक्वल होगी? क्या पूरे मुल्क में आप ये सवाल हम पेट्रोल मिनिस्टर से भी करते हैं। जब सबसे ज्यादा पैदावार वाले सूबे ने सब मुल्क के लिए गंदम बंद की है, उसकी वजीर इत्तलात कहती है कि प्रायोरिटी पंजाब है। ये सारी चीजें बताती हैं कि मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट है और खास तौर पर पंजाब का किरदार गंदम के हवाले से ये जो है बाकी सूबों के हक में बिल्कुल नाजायज है। जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक अनार्की की जो सूरत हाल बनती है रेट्स के हवाले से, डिमांड और सप्लाई के हवाले से, ये उसकी वजह बनती है।
16: कहते हैं जैसी नियत वैसी बरकत, और धूर्त पाकिस्तान अब अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बड़ी खबर इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान की सेना, दोनों के खिलाफ पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आवाम ने करो या मरो का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ के गले पर एक तरह से तलवार लटका दी है। साफ साफ कह दिया है कि 21 जुलाई आखिरी तारीख है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई से पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। जी हां, मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने वाले हजारों लाखों पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो लॉन्ग मार्च को भले ही 21 जुलाई तक उन्होंने टाल दिया हो, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में गुस्सा इस समय चरम पर है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर हजारों महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे डटे हुए हैं। धरना जारी है और ये गुस्सा यूं ही नहीं भड़का है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पुलिस ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इंटरनेट बंद किया, रास्ते रोके, राशन तक की सप्लाई काटी और जब बात नहीं बनी तो आवाम पर गोलियां बरसा दी। रावलाकोट में हिंसक झड़पों में JAAC के 7 कार्यकर्ता समेत करीब 28 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हालात इतने बेकाबू है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो कश्मीरियों से बात तक नहीं करते, अब यह कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे और बात मानी जाएगी। इसके बाद उमर नजीर कश्मीरी समेत JAAC के नेता इस बात पर राजी हुए कि सरकार को 21 जुलाई तक का आखिरी मौका दिया जाएगा। प्रशासन ने वादे किए, बहुत किए, केस वापस लेने का भरोसा भी दिया, सुरक्षा बलों को पीछे हटाने की बात भी की, लेकिन जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जो आवाम है, अब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के झूठे वादों पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और दुनिया भर में पाकिस्तान के दूतावासों के बाहर कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना का वो जो खौफनाक दमनकारी चेहरा है वो अब दुनिया के सामने आ गया है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में ही 28 लोग मारे जा चुके हैं, 7 तो केवल कल मारे गए थे। और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: Chogan Perfumes, the French edition for him.
23: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasion.
24: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
25: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
24: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
25: Remember, around here, we use the F Word,
24: never the S Word.
23: The S Word, available now on TuneIn, wherever you get your podcasts. And on the S Word YouTube channel.
21: And her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा क्यों रहे हो, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगला हफ्ता ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिकी सेना ईरान के पावर प्लांट और बड़े पुलों को निशाना बनाएगी। मतलब यही है कि ईरान में ऑपरेशन ब्लैक आउट को हरी झंडी दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के पुलों को उड़ाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। हम उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। समुद्र किनारे जो कुछ भी उनके पास है हम उसे निशाना बना रहे हैं। हुर्मुज हर हाल में खुला रहेगा क्योंकि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इन लोगों से सिर्फ ताकत के जरिए ही बातचीत की जा सकती है और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। हमने वही किया है। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि मैं खुद ये ना कह दूं कि अब ये काफी है। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले जारी रखे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हुर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

ना हो जाए फिर से बना सकती हूँ पार्टी। परिसीमन बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को शिक्षा में भी दिखती है सांप्रदायिकता, कांग्रेस भी बुलडोजर के खिलाफ।

0: ईरान पर अब आग बबूला हुए ट्रंप। क्या खार्ग और हॉर्मुज पर कब्जे के लिए शुरू होगा सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। टॉप कमांडर्स के साथ ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग। ईरान के उन ठिकानों पर बमबारी की तैयारी जहां आज तक अमेरिका नहीं पहुंचा। पिकेक्स माउंटेन को उड़ाने का महाप्लान। क्या व्हाइट हाउस ईरान में जमीनी जंग की पटकथा लिख चुका है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कंट्रोल के लिए चाहिए हजारों सैनिक और महीनों का वक्त। क्या ट्रंप लेने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा रिस्क। अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर ईरान का बंदर अब्बास। कमांड सेंटर से लेकर एयर डिफेंस और ड्रोन साइट्स तबाह। ईरान का खौफनाक पलटवार। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात। बाब अल मंदेब को भी बंद करने की तैयारी। अगर कूटनीति फेल हुई तो दुनिया देखेगी विनाशकारी महायुद्ध।
1: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला और एक ग्राउंड असॉल्ट यानी जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ड्रोन का तांडव, समुद्र से लेकर आकाश तक दहकती बारूद की लपटें केवल एक ओर इशारा कर रही हैं। दुनिया अब एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर आके खड़ी हो गई है जहां पर वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अमेरिका से खबर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अब बुरी तरह से आग बबूला है। उनको लग रहा है कि ईरान उनका मजाक उड़ा रहा है। टॉप कमांडर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की, लेकिन कुछ जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है। और अब खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिकी सेना एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, ईरान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। यह हॉर्मुज के इलाके से होकर खर्ग आइलैंड तक यानी दक्षिणी ईरान का वो जो पूरा तटीय इलाका है उस पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है या कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी फौज जमीनी जंग की तैयारी में है और पेंटागन की 7 घंटे मिसाइल, एक बहुत लंबी एक मिसाइल वेव अटैक्स हुए ईरान पर पिछले 7 घंटों में। ईरान का जो सबसे महत्वपूर्ण एक हार्बर भी है, बेस भी है, बंदर अब्बास। बंदर अब्बास से लेकर सिरिक तक 7 घंटे में पूरे दक्षिणी ईरान के कोस्टल बेल्ट को हिलाकर रख दिया। लेकिन ईरान भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी तैयारी थी, उसके पास उसको अंदेशा था कि अमेरिका अगला वार जो करेगा वो हॉर्मुज स्ट्रेट में पूरे दक्षिणी ईरान पर करेगा। और इसीलिए ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार करना शुरू किया। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों ने ताबड़तोड़ हमले किए और अमेरिका का एक सुपर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो भी भारी दबाव में आ गया। आसमान में अमेरिका के जो रीपर ड्रोन है और ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, कई ड्रोन्स को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक अब दुनिया के लिए बंद रहेगा जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों पर समर्पण नहीं कर देता, उन शर्तों को मान नहीं लेता। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस ने अब चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति फेल हुई, और यह साफ नजर आ रहा है कि कूटनीति से समाधान फिलहाल नहीं निकल पा रहा है, तो अब महायुद्ध होगा। और इस महायुद्ध का संकट केवल इस क्षेत्र पर नहीं, पूरी दुनिया में इसका संकट फैल जाएगा। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में घुसकर तबाही का एक नया मंजर लिखने वाले हैं। ऐसी तबाही जो आज तक किसी ने ईरान में नहीं देखी, क्योंकि इस वक्त की जो सबसे बड़ी, सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली खबर है वो समंदर से लेकर ईरान के शहरों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर दिखा रही है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के लिए यानी महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पिछले 7 घंटों से अमेरिका की मिसाइलें लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ बरस रही हैं। वेव आफ्टर वेव ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान पर हुई। ईरान का जो पूरा एयर डिफेंस

अच्छा जॉर्डन, यहां के अल सोल्टी एयरबेस पर ईरान ने वो चोट की है जो पेंटागन को कई सालों तक याद रहेगी। अमेरिका का सबसे गुप्त मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल डिपो यहां जलकर खाक हो गया है। यह दिखाता है कि ईरान के पास कितनी पुख्ता इंटेलिजेंस है। दूसरा मोर्चा कुवैत, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, वार्निंग रेडार ईरान के सुसाइड ड्रोन्स ने उसे अंधा कर दिया है, यानी रेडार पर इतने ड्रोन आके गिरे कि रेडार ध्वस्त हो गया। कुवैत भले ही 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को गिराने का दावा कर रहा है, लेकिन आईआरजीसी ने साफ कर दिया कि अमेरिकी फौजियों को उनके बैरिक्स में ही निशाना बनाया जा रहा है और अब कुवैत के पास ऐसे ड्रोन नहीं बचे जो अमेरिका की रक्षा कर सके या अमेरिकी ठिकानों की रक्षा कर सके। लेकिन जो सबसे खौफनाक तस्वीर इस समय सामने आ रही है वो बहरीन से आ रही है। जी हां, बहरीन जो अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट का सबसे बड़ा गढ़ है, मुख्यालय है। यहां पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आया। मिसाइलों रोकने के चक्कर में खुद अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन की जमीन पर गिरी और वहां तबाही मची। धमाके का ये जो वीडियो सामने आया है इसको गौर से देखिए। इसे देखकर पेंटागन ने बकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग की। यह हमला नहीं, यह अमेरिका के खिलाफ ईरान का वो खुला अल्टीमेट वॉर है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। सुनिए। ईरान झुका नहीं है, ईरान पलटवार कर रहा है और जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग का बटन दबा ही दिया या आदेश दे ही दिया तो खाड़ी के समंदर से लेकर पूरे मध्य पूर्व की धरती तक तबाही जबरदस्त होने का अंदेशा है और ऐसी तबाही जिसका अंदाजा लगाना इस समय मुश्किल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, डरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप कमांडर्स के साथ सिचुएशन रूम में मीटिंग कर चुके हैं। खाड़ी के सबसे संवेदनशील रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खर्ग द्वीप पर कब्जे का ब्लूप्रिंट, उस पर इस समय चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। यह देखा जा रहा है कि क्या अमेरिका की जो मेरीन फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड असॉल्ट टीम्स हैं, जो एम्फीबियस असॉल्ट टीम्स हैं, क्या वो खर्ग आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकती हैं। यह जमीनी जंग अमेरिका के लिए कोई केकवॉक नहीं होगा, यानी आसान नहीं होगा। अगर अमेरिकी ग्राउंड असॉल्ट बोट्स वहां पर आती भी हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स वहां आते भी हैं, तो फिर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड अगर उस दिशा में आगे बढ़ेगा तो ईरान के पास अभी भी मिसाइलों के जखीरे हैं, वो कामिकाजी ड्रोन हैं, वो शाहिद ड्रोन हैं, जो अपने ही इलाके में अमेरिका के सैनिकों को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आखिर होगा क्या, ये हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशंस किए तो इन ग्राउंड ऑपरेशंस का अंजाम क्या होगा, ये आप देखें। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस का जो खतरा है, इसके लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा सैनिक अभी तैनात करने पड़ेंगे, क्योंकि न केवल वो सैनिक जो पहले असॉल्ट में अंदर जाएंगे बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए और सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा और विमानों को लाना पड़ेगा जो एक तरह से उनके लिए हवाई सुरक्षा घेरा बनाए, उनके लिए रसद सामग्री, उनका रीइंफोर्समेंट, उनके लिए अस्पताल, ये सब लाना होगा। महीनों तक का इसमें समय लगेगा और अमेरिका की फौज लंबे समय के लिए फंस जाएगी। इराक में फंसी थी तो 2 दशक लग गए थे, अफगानिस्तान में फंसी तो 2 दशक लग गए और हर जगह से अमेरिका के सैनिकों को फिर निकलकर भागना ही पड़ा। लेकिन तो हुई पहली बात, एस्कॉर्ट करने वाली नौसेना पर मिसाइल और ड्रोन से, और अब तो अनमैंड सी वेसल और सब सरफेस वेसल यानी मानव रहित लड़ाकू बोट, उससे ईरान हमला कर सकता है कि उस पे कोई सिपाही नहीं होगा। एक के बाद एक छोटी छोटी कई बोट्स आएंगी, विस्फोटकों से लदी बोट आएंगी और वो जहाजों में जाके भिड़ जाएंगी। ऐसे में जहाजों को बहुत नुकसान है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आप जानते हैं कितना सकरा है। खर्ग होर्मुज पर कब्जे के दौरान भारी जानमाल का नुकसान
अमेरिका को हो सकता है, और यह अमेरिका का भी आकलन है कि यह आसानी से नहीं हो पाएगा, चाहे उसके असॉल्ट शिप्स के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स जाएं, क्लोज एयर सपोर्ट विमान जाएं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक फौज है, लेकिन वो 33 किलोमीटर लंबा जो सकरा रास्ता है उसे पार करने में सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हर तरफ ईरान

मजबूत है। फिर ये जो पिकैक्स माउंटेन है, पिकैक्स माउंटेन पर हमले के बाद भी कामयाबी पर संदेह, क्योंकि ईरान के पास तो उसके पास 47 साल थे तैयारी करने के लिए, और 47 साल में उसने इतने अंडरग्राउंड बंकर वहां पहाड़ों में समुद्र के किनारे ऐसे अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, वहां पर इतनी मिसाइलें लाद रखी हैं कि आप कुछ मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय भी कर दे, बाकी मिसाइल लॉन्चर और आ जाते हैं और उससे वो पलटवार कर सकता है। तो ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा इस समय अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। फिर पावर प्लांट ब्रिज तबाह करने से जो क्षेत्रीय जंग है वो और भड़केगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ईरान बोलेगा आबेल मुझे मारो, खुद कुछ नहीं करेगा। वो पूरे मध्य पूर्व में, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, हर देश पर वो पलटवार कर रहा है, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। वो देश अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। ये सबसे बड़ी समस्या इस समय है, और समस्या केवल इन देशों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे ठप पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान के पास केवल एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ट्रंप कार्ड नहीं है। बाबल मंदब को भी ईरान बंद कर सकता है। यमन में जो हूती विद्रोही हैं, वो भी एक बहुत सकरा रास्ता है, तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का चोक पॉइंट बंद हो जाएगा, दूसरा बाबल मंदब का जो स्वेज कैनाल से फिर अटलांटिक ओशन की तरफ रास्ता जाता है, अटलांटिक महासागर की ओर अरब सागर से रास्ता, वो भी अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद, बाबल मंदब भी बंद, कूटनीति फेल हुई तो महायुद्ध, एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, और ऐसे में खतरा पूरी दुनिया पर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अफ्रीका की अर्थव्यवस्था, पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया, ये दो रास्ते बंद होने से अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और इसीलिए अमेरिका को यह सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई लंबी रणनीति है, या फिर वो ईरान को झुकाने के चक्कर में पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएंगे। ये इस समय सबसे बड़ी समस्या इस समय है। ये सारी की सारी लड़ाई जो है ये हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर है। लेकिन एक बात आप सोचिए, 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने पहली बार बमबारी की थी, उससे पहले हॉर्मूज का रास्ता खुला था, तब वो ईरान के कब्जे में नहीं था, हालांकि ईरान उसकी धमकी जरूर देता था, लेकिन खुला था वो रास्ता। कल से अमेरिका ने एक बार फिर हॉर्मूज की नाकेबंदी शुरू कर दी। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान की माली हालत को, आर्थिक हालत को लेकर बेहद चिंता में है, कुछ लोग अब ईरान में इसे ईरान के राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं। और तेहरान से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بسیتیم
0: ایک انتریم سمجھوتے کے ذریعے اس سمدری مارک کو کھولا جانا تھا، लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनी के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: ما هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو۔ دشکوں کے پرتیبندھوں اور سنگھرشوں سے جوج رہی ایران کی بیمار ارتھ ویوستھا کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے ہیں۔ آج تک بیو
3: और अब एक खबर जो अमेरिका से आ रही है, एक ऐसी तस्वीर जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हवा में सुपरफास्ट रफ्तार, कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट और समंदर किनारे मची खलबली। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये फ्लोरिडा के पेंसकोला बीच की तस्वीर है जहां का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसे देखकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। अमेरिकी नौसेना का सबसे मशहूर ब्लू एंजल्स फाइटर जेट अचानक आसमान से नीचे आता है और बीच पर मौज मस्ती कर रही भीड़ के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर निकलता है। रफ्तार इतनी तूफानी कि जेट की हवा के दबाव से पर्यटकों के टेंट और छाते तिनके की तरह हवा में उड़ते नजर आए। एक पल के लिए तो लोग सहम गए, लेकिन इस हैरतअंगेज नजारा उसको देखने के लिए लोगों ने इसे कैमरे पर बकायदा कैद किया। रोमांच भी इतना कि अब इस मामले पर पूरा विवाद हो गया है। अमेरिकी नौसेना ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दे दिए। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete in association with
5: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of.
6: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
7: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires,
6: more top sports.
8: And he's gonna go. There's the tying goal.
6: And everything in between.
8: This game is over.
6: Upgrade now for the premium listening experience.
4: Sanitary Solutions.
9: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
10: आज तक मीडिया जिंदाबाद। 50,000 युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
11: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
9: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
1: How they looked after game one.
2: I mean, they were frustrated.
0: The Daily.
3: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब
5: अयोध्या वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
6: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे ईष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत SIT गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए। ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए। मैं ये चाहता हूं, ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: एक और झटका। अब राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा। ममता की दो टुक, जिसे जाना हो 21 जुलाई तक चला जाए, फिर से बना सकती हूं पार्टी। परिसीमन बिल पर खरगे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर भड़के अखिलेश। कहा, बीजेपी को शिक्षा में दिखती है सांप्रदायिकता, कांग्रेस भी खिलाफ। ২০২৭ गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। गांधीनगर के प्रदेश दफ्तर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी दिग्गजों के साथ करेंगे मंथन। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत पर फिर किया वार, तेहरान की धमकी, अगर बुनियादी इमारतों पर हुई बमबारी तो खाड़ी देशों में मचेगी तबाही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आने वाले सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 19 दिन के सत्र में 16 बैठकें होंगी और इसी की तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जोरदार चल रही है। कल और आज बीजेपी की बैठकें होती रही और आज ही कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक टीम ने भी बैठक कर डाली। कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि एक तो वो परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करेगी और दूसरे बाकी दलों को भी विरोध करने के लिए बनाएगी, उन सबसे संपर्क बनाए रखेगी। सरकार किसी दूसरे कानून में भी संशोधन प्रस्ताव लाती है तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही पेपर लीक से लेकर इथेनॉल तक के मुद्दों को सदन में उठाएगी तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी भी विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा होगा। बाकी नौकरी, रोजगार, महंगाई, विदेश नीति तो विपक्ष के मुद्दे है ही। तो विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने अपना रणनीति का खुलासा कर दिया है, लेकिन आधे विपक्ष और पूरे सत्ता पक्ष की स्ट्रेटेजी का अभी कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। संकेत जो मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि सरकार फिर से परिसीमन बिल से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल ला सकती है और इसके लिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ भी काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि डीएमके से कांग्रेस की बेवफाई, टीएमसी में टूट और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट के बाद ऐसे माहौल बना गया है कि सरकार लोकसभा में 360 के जादुई आंकड़े तक आराम से पहुंच सकती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या इस मानसून सत्र में सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने में कामयाब हो पाएगी। इस बार का सत्र इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए भी कैसे चुनौती साबित हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही आपको वो जादुई आंकड़ा भी बताएंगे जिसके हासिल होते ही देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। इसीलिए यह रिपोर्ट भी देख लेते हैं।

0: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस के पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठक के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं, परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। इनमें परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर पिछले सत्र में सरकार हार चुकी है। इस बार अब एक देश एक चुनाव विधेयक की भी चर्चा है, उसके लिए भी संविधान संशोधन करना होगा जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है वो फिर से सरकार को हराएगी।
1: कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे, और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे।
0: कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में आ गए। डीएमके कांग्रेस के साथ अब सदन में बैठना नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले ने तो ये तक कह दिया कि जब विधेयक आएगा तब पार्टी अपना रुख साफ करेगी।
2: जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे ऐसा हमने किया कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया इसलिए वो बिल तो गिर गया।
0: शरद पवार की पार्टी के इस रुख को बीजेपी सरकार के समर्थन वाला रुख मान रही है और कांग्रेस विरोध का।
3: सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने कहा, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे।
1: सुप्रिया सुले ने खंडन किया है, जो खबर चलाए गए थे सुप्रिया सुले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है।
0: लेकिन सरकार ने बिल का विरोध कर रहे दलों की चिंताओं के निपटारे की दिशा में काम किया है। जहाँ पिछले सत्र में बिल पर चर्चा हो रही थी तो संज्ञान में आए विरोध के मुद्दे अब सुलझाए गए हैं। मसलन स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीटें हो जाएंगी। सरकार ने कह दिया कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर SC/ST की महिलाओं के लिए पहले से तय आनुपातिक कोटा सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन तमाम उपायों के बावजूद सरकार को आखिरकार सदन में गणित के सहारे रहना होगा, और गणित कुछ ऐसा है कि लोकसभा की 543 सीट में फिलहाल 540 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 360 वोट चाहिए। सरकार के पास 293 सांसद पहले से हैं। इस बीच TMC से टूटे 20, उद्धव से टूटे 6 सांसदों के साथ 319 संख्या हो जाती है। इसके बाद सरकार की नजर विपक्षी दलों के सांसदों की मैनेजमेंट पर है। इसमें DMK की चिंताओं के निराकरण के बाद सरकार को अब बड़ा समर्थन हासिल होने की उम्मीद है। सियासी संकेतों के आधार पर देखा जाए तो NDA के 319 की ताकत के साथ DMK के 22, YSR के 4, शरद पवार के 8 और एक निर्दलीय के साथ ये ताकत 354 तक पहुंचती दिखती है। फिर भी सरकार को 6 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि JMM के 3, VCK के 2, MDMK के 1, RLP के 1, निर्दलीय 3, यानी करीब 10 सांसदों के समर्थन का इंतजाम सरकार कर सकती है। और इन तमाम राजनीतिक गणित के बीच पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी और महाराष्ट्र के CM फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है। फिर संसद सत्र शुरू होने के बाद 21 जुलाई को NDA संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: तो सबसे बड़ा मुद्दा इस डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल का हो चुका है और आज की स्थिति में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं परिसीमन बिल के चक्कर में इंडिया अलायंस का ही परिसीमन ना हो जाए। कि इसकी क्या भूमिका है, पहले क्या भूमिका थी, उस बात को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन और भी चर्चा बाकी है क्योंकि अब सोमवार के बाद इस बारे में फैसला होगा कि आखिरकार कौन कहां खड़ा है। चर्चा करेंगे हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस पर अपनी भूमिका रखने की कोशिश की थी। महेश टप्पा से राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी से। सुप्रिया सुले हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुकी है, ट्वीट के जरिए भी उन्होंने कहा है कि अभी तक इस पर हमारा फैसला होना बाकी है, लेकिन क्या भूमिका है उनकी, उस पर उनसे भी सवाल पूछेंगे। सुशीबेन शाह शिवसेना की तरफ से चर्चा में शामिल हो रही है। दरअसल शिवसेना ने 6 सांसद क्या तोड़े, तृणमूल कांग्रेस के भीतर क्या टूट हुई, उसके बाद 360 का आंकड़ा रीचेबल नजर आ रहा है। रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ में आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या परिसीमन बिल के पास होने की कितनी आशंका है? मानसून सत्र में सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने में क्या कामयाब हो पाएगी? जिस तरीके से ये इस पर चर्चा चल रही है, क्या परिसीमन विधेयक पास कराने में सरकार कामयाब हो पाएगी? दूसरा सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि इंडिया अलायंस के भीतर क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल है। इसीलिए इस बार के मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन की एकता की अग्नि परीक्षा क्या होगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार कह रहे हैं कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या सचमुच में एकता इस पर अग्नि परीक्षा हो सकती है, क्या इसका परिसीमन होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा अहम सवाल कि इस पूरे मामले को लेकर पेपर लीक, चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे क्या विपक्ष के तरफ से उठाए जाएंगे और इसको लेकर क्या एकजुट होकर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा, यह भी एक चर्चा का मुद्दा रहेगा। लेकिन बहस में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने परिसीमन बिल पेश करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि सरकार फिर से परिसीमन बिल लाने वाली है, लेकिन इससे पहले संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और बिल को पेश करने से पहले विस्तार से अध्ययन के लिए समय दिया जाए। हालांकि एक सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को प्रस्तावित है, लेकिन खड़गे का कहना है कि स्पेशल बैठक सिर्फ और सिर्फ परिसीमन बिल के लिए बुलाई जाए। इससे पहले जब परिसीमन बिल लाया गया था तब उसमें यह कहा गया था कि 850 संसद की संख्या की जाएगी यानी लोकसभा की संख्या, लेकिन राज्यों का रिप्रेजेंटेशन 50% से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। अब कुछ दल खास करके डीएमके और एनसीपी एसपी इस बात की मांग कर रहे हैं। तो जो प्रस्ताव बदल किए गए हैं, क्या यह बदलाव वाला बिल चर्चा में लाया जाएगा, और यह बिल अगर लाने वाली है तो उसके लिए संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की यह भूमिका है। अतुल लंडे पाटिल, इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की यह चिट्ठी, क्या आपको शक है कि जो डीएमके या फिर एनसीपी एसपी मांग कर रही है उस तरीके से प्रस्तावित बिल लाया जाएगा बदलाव करके और इंडिया अलायंस में ही परिसीमन हो जाएगा, और इसीलिए आप चाहते हैं कि पहले इस पर सर्वदलीय बैठक बुला के चर्चा की जाए?
5: देखिए साहिल, हम लोग लोकतंत्र में है और हमारा लोकतंत्र जो है बड़ा सुदृढ़ लोकतंत्र रहा है आज तक, तो फिर सर्वदलीय बैठक कर चर्चा करने में तकलीफ क्या है? अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, सारे दल जो चुनाव लड़ते हैं, हार जीत वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि चुनाव होना और निष्पक्षता से चुनाव होना। चुनाव तो निष्पक्षता से होते नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव जो पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख देगा, रिप्रेजेंटेशन तय होगा, जिसका बेसिस पॉपुलेशन होगा, क्या जनसंख्या के आधार पर होगा, किस आधार पर होगा, किन राज्यों को क्या नुकसान हो सकता है, किन राज्यों को फायदा पहुंचेगा या पहुंचाया जा रहा है, इतनी सारी चर्चा अगर हो जाती है और देश के हित में अगर एक कंकरेंस हो जाता है, सबका मेल बढ़ जाता है, तो तकलीफ क्या है? किस बात से डरती है सरकार विपक्षी दलों से बात करने, सर्वदलीय बैठक लेकर बात करने से सरकार हिचकिचाती क्यों है? यहीं पर कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कुछ न कुछ जो है दाल में काला है, और कुछ न कुछ जो है जो कहा डीएमके ने तो यह बिल को जलाया है। दक्षिणी राज्यों का कोई भी नेता इस बिल को मानेगा ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है, क्योंकि ये तो सजा होगी कि हमने अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया हमारा। एक ग्लेरिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि जो पर कैपिटा इनकम है वो छोड़ दो, हम तो 142 नंबर पे, लेकिन केरला का, तमिलनाडु का ये 6500 के आसपास है पर कैपिटा इनकम, और उत्तर प्रदेश का 1400 है। तो क्या इसकी सजा दोगे कि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की है, नियंत्रित की है? इसकी सजा दोगे कि उन्होंने तरक्की की है? इसकी सजा दोगे कि वहां पर ज्यादा इनकम है इसलिए उनका उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में कम कर दोगे? तो ये बात गलत होगी अगर बात यही सही होगी कि पर्याप्त समय सब
4: प्रेम शुक्ला जी के पास ये सवाल ले जाने से पहले लोंडे पाटिल जरा एक बात साफ कर दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात को लेकर है? कांग्रेस पार्टी का विरोध किस बात को लेकर है? क्योंकि सरकार उस वक्त भी तैयार थी, मुझे याद है कि अमित शाह जब सदन में भाषण कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अभी हम बदलाव करके लेके आते हैं, जो 50% में कहां लिखा है आप पूछ रहे थे, हम डालकर लेकर आते हैं 50% बढ़ा देंगे। अगर 50% वाला मामला उसमें इंक्लूड किया जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी?
5: नहीं, देखिए एक बदलाव कर दिया आपने, बाकी वेरिएबल्स जो है उसमें क्या बदलाव होगा क्या बदलाव नहीं होगा तो लीडरशिप तय करेगी, इंडायलेंस की सारी लीडरशिप कांग्रेस के साथ बैठेगी और तय करेगी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट बिल है उस बिल को जिस तरह से लाया गया है और जिस तरह से पारित करने की कोशिश की गई है, तो आप पार्लियामेंट में बात करते हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करने में तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत क्या है, किस बात का डर है और दिक्कत किस बात की है?
4: प्रेम शुक्ला जी,
5: यहां सारी बातें हो जाएगी, पार्लियामेंट में भी आ जाएगा।
4: जवाब दीजिए।
6: जी साहिल जी, नहीं दिक्कत कहां है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी सर्वदलीय बैठक बुलाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करती। ये कोई आपातकाल लादने वाली कांग्रेस थोड़े है कि संसदीय व्यवस्था को भंग करके आपातकाल लाद दिया जाए, रात में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिया जाए, ये काम करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त संवैधानिक लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखती है और आदरणीय अमित शाह जी ने पिछले सत्र में ही यह स्पष्टता से कहा था कि हर राज्य में संसद लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते रहे। तो अगर हर राज्य में 50% निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें किसी राज्य पर अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो जब किसी राज्य पर अन्याय हो ही नहीं रहा तो मुद्दा क्या है? जो आपने पूछा आदरणीय अतुल लोंडे पाटिल जी से कि मुद्दा क्या है, तो उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको विरोध के लिए विरोध करना है। तो कुछ लोगों ने लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था को विरोध के लिए विरोध करने का मंच माना है तो विरोध के लिए विरोध करते रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक दोनों पर जो है दोनों को जो है पारित करवाना यह हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हम महिलाओं को न्याय
4: संकल्प आपका भी संकल्प किस लिए
6: ही रहेंगे और परिसीमन के माध्यम से
4: नहीं प्रेम शुक्ला जी
6: महिलाओं को न्याय दिलाने
4: प्रेम शुक्ला जी आपका संकल्प किस चीज के लिए? ये तो महिलाओं का संकल्प तो 2023 में पूरा हो गया,
6: महिलाओं को न्याय दिलाने का
4: 2023 में आपका महिलाओं का संकल्प पूरा हो गया।
6: हम चूंकि सीटों की संख्या
4: महिलाओं को अधिकार देने का संकल्प तो 2023 में पूरा हो चुका
6: है,
4: हम पहले ही आपकी वाहवाही कर चुके हैं 2023 में।
6: वही मैं कह रहा हूं
4: आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी, हम वाहवाही कर चुके हैं आपकी।
6: अच्छा कि आपने वाहवाही कर दिया आपकी, अच्छा कि आपने वाहवाही किया उसके लिए आभार आपका। लेकिन महिलाओं की सीटों की संख्या भी बढ़े, पुरुषों की सीटों की संख्या भी बढ़े, यह भी हमारा संकल्प है। तो सीटों की संख्या जो है
4: दो चीजें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जयराम रमेश इस बारे में ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जयराम रमेश के तरफ से दो चीजें कही गई। एक उन्होंने कहा कि एक खतरनाक परिसीमन बिल लाया जा रहा है, खतरनाक शब्द का इस्तेमाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, खतरनाक
6: कैसे,
4: कुछ लोगों को तोड़कर संविधान का अपमान कर
6: चालाकी
4: से 360 का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब उनका यह है आपकी सहयोगी सुशीबेन शाह की पार्टी 6 लोगों को तोड़ लेती है, बाकी जो एनसीपी एसपी के लोग हैं उनकी भूमिका अब क्या है वो संदेह के घेरे में आ गई है कहीं ना कहीं।
6: तो कुटिल
4: नीति से चालाकी से 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश हो रही है, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
5: मुझे जवाब देना है साहिल।
6: नहीं साहिल जी कृपा करके मुझे बताइए,
4: पहले प्रेम शुक्ला जी,
6: साहिल जी कृपा करके मुझे बताइए,
4: प्रेम शुक्ला जी,
6: साहिल जी मुझे कृपा करके बताइएगा कि श्रीमान नरसिंह राव ने जो है अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उन अविश्वास प्रस्ताव को अन्य दलों का समर्थन लेकर उसको परास्त किया तो कुटिल नीति थी उनकी? संसदीय लोकतंत्र की हत्या थी, परमाणु परीक्षण पर जो है परमाणु समझौते पर, परमाणु समझौते
4: हत्या थी, मैं कह रहा हूँ
6: 2008 में।
4: आपने मुझे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, हत्या थी।
6: कैसे हत्या थी?
4: जेएमएम घुसकांड को लेकर जिस तरीके से मीडिया ने नरसिंह राव सरकार को सवाल पूछे थे, आप सही कह रहे हैं,
6: रिश्वत कांड तो हत्या है,
4: हत्या थी,
6: रिश्वत नहीं, रिश्वत
4: हत्या थी,
6: रिश्वत कांड तो हत्या है, रिश्वत कांड। हाँ, तो कांग्रेस हत्यारी ये मान रहे ना, कांग्रेस हत्यारी ये मान रहे ना, इसी तरह से 2008 में
4: थी हत्या थी,
6: समझौते पर। अरे सुनिए ना, आगे कभी सुन लीजिए, आगे कभी सुन लीजिए भाई साहब। परमाणु समझौता 2008 में होना था, साम्यवादियों ने, वाम मोर्चा ने समर्थन वापस ले लिया, समाजवादी पार्टी का ये समर्थन लेकर आए, सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाकर अमर सिंह ने तहलका नाम की पत्रिका को बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा कि सीबीआई का डंडा दिखाकर समाजवादी पार्टी का समर्थन ले लिया परमाणु समझौते पर, तो यह तो हत्या ही थी। तो इस तरह की हत्याएं करने का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हत्या नहीं करेगी।
4: पुराने इतिहास की किताब लेकर बैठे हुए प्रेम शुक्ला जी, दोपहर का सामना में वो जब लिखते थे, वो पुराने इतिहास की पूरी किताब लेकर वो बैठे हुए हैं और एक एक पन्ना खोलकर आपको दिखा रहे हैं। जरा आप मुझे बता दीजिएगा, जयराम रमेश के आरोप क्या थे आज के, स्पेसिफिक आरोप बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ा सके चर्चा। अतुल लोंडे पाटिल,
5: नहीं पहले, सबसे पहले बात तो जो भ्रमित किया जा रहा है कि महिला आरक्षण नहीं है, तो महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, एकमत से, सर्वमत से पारित हो चुका है, और 545 में आप 181 महिलाओं को दे दो, इसके लिए पूरा पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस का है। तो ये भ्रमित करने और झूठ बोलने का काम आप छोड़ दो। अब दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने तो कहा आपने 2011 का जनसंख्या का आधार लेके आप 50% बढ़ाने की बात करते हो, जिसमें 50% दिया नहीं था, समानता से सभी राज्यों में 50% बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ वहां लिखा नहीं था, तो ये आपने जो है ये गुमराह करने की कोशिश की। तीसरी बात, आपने जो जेरीमेंडरिंग आसाम में किया है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को डालकर आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, वो तो ऐसी जेरीमेंडरिंग है कि दुनिया में ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज कहीं नहीं है, वो भी आपने किया है। तो कौन हत्या करता है कौन नहीं करता है वो तो सीधा स्पष्ट तरीके से दिखता है। और रही बात कि आपने कहा था कि हत्या की वगैरह वगैरह, 750 किसानों की हत्या होने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि नहीं देने वाले लोग हमको न सिखाए, हमने जो न्यूक्लियर डील की थी वो देश के हित में थी, आप देश को विभाजन करने के बाद में सपोर्ट मांगने की कोशिश करते हो और उसमें तोड़फोड़ करते हो, हमने सपोर्ट लिया था संविधानिक व्यवस्था के तहत सपोर्ट लिया था। मुझे नहीं पता कि ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर पूरी की पूरी पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी में डाल देना, अपनी पार्टी में ले लेना, ये तो 70 साल में कभी नहीं हुआ। और इमरजेंसी कम से कम संविधान के तहत आई थी, 352 आर्टिकल के तहत आई थी, आपने तो इस तरह का आपातकाल लगा दिया है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, कोई बोलने की कोशिश करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह का आपातकाल 2014 से आया ही है, और ये मैं नहीं, ये तो अडवाणी जी ने खुद कहा है,
6: कैबिनेट में प्रस्ताव तक नहीं आया था।
5: तो आप जो कर रहे हैं संविधान की हत्या, ये सब देख रहा है,
6: गजब संविधान की व्याख्या है।
5: अगर न्यूक्लियर डील देश के हित में नहीं थी तो
6: 2014 संविधान की,
5: और अभी तक वो डील क्यों नहीं हुआ बताओ,
6: आपातकाल
5: क्या किया वो आपने अब तक बताया नहीं है। तो देश के हित में बात करना,
4: कौन है आज की स्थिति में, जरा एक मिनट
5: करना, और वो भी संविधान।
4: ओके, देखिए महेश तपा से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि किसी भी सूरत में परिसीमन बिल का वो विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है, हमने सुप्रिया सुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है, और वो ये कह रही है कि हम देखेंगे कि संशोधित प्रस्ताव क्या लाया जाता है और उसके आधार पर हमारी भूमिका है वो तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरह साफ भूमिका क्या एनसीपी एसपी की तरफ से आ पाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं समर्थन करने के मूड में हैं यहां पर, अगर 50% वाला मुद्दा ऐड किया जाता है तो।
7: इसके पहले जब पार्लियामेंट में पिछले सत्र में जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, तब खड़गे जी के लीडरशिप में एक लेटर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखा गया था, उसमें यह कहा गया कि सबको आप एक साथ बुलाइए, आप सबको अलग अलग बुला रहे हैं, किसी के अगर में धमकी मंत्र दे रहे हैं, किसी को चेतावनी दे रहे हैं, किसी को और कुछ रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं हमको, वी डोंट नो ऑफ दिस, बट एक ही हमारा कंटेंशन था कि सारा इंडिया अलायंस ब्लॉक जो है सबको एक साथ बुलाइए, जो भी आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए वर्सेस नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये एक सादी सी मांग है। और इंडिया अलायंस से महाराष्ट्र का नहीं, इंडिया अलायंस में केरला भी है, इंडिया अलायंस में तमिलनाडु भी है, इंडिया अलायंस में आंध्र प्रदेश।
4: इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या महेश तपा से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी क्या स्पेसिफिक बताओ।
7: सीट्स मतलब उत्तर उत्तर के राज्यों के कंपैरिजन में दक्षिण के राज्यों को भी उतनी सीटें मिलनी चाहिए जितनी उनकी लोकसंख्या है या जितना उनका उनकी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये पुराने बिल में कहीं नहीं हो रहा था, हालांकि
4: तो सरकार तो कह चुकी है ना पिछली बार भी महेश, पिछली बार अमित शाह ने लोकसभा के भीतर जवाब देते समय इस बात का जिक्र किया, अगर आपको चाहिए तो मैं अभी हम लोग 50% डाल देते हैं, 50% सीटें महाराष्ट्र में बढ़ेगी तो महाराष्ट्र की 48 की 72 हो जाएगी, उतनी ही सीटें तमिलनाडु में बढ़ेंगी 39 की सीटें 59 हो जाएगी, उतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी 80 की सीटें 120 हो जाएगी, 50% से बढ़ जाएगी, आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे ना महेश तपा से अगर वैसा करती है सरकार तो।
7: जरूर बोला है लेकिन बिल के अंदर भी प्रस्ताव आना चाहिए और बिल में प्रस्ताव आने के बाद व्यापक चर्चा होगी ना इसके ऊपर, इंडिया अलायंस के ऊपर व्यापक चर्चा होगी। और इसीलिए खड़गे जी के नेतृत्व में एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा कि पूरे इंडिया
4: अलायंस। मैं एक बार फिर पूछता हूँ महेश तपा से, एक बार फिर पूछता हूँ अगर बिल में ये प्रस्ताव लाया जाता है जो आप कह रहे हैं, अगर बिल में ये प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या एनसीपी एसपी इस बिल के समर्थन में खड़ी होगी, स्पेसिफिक पूछ रहा हूं मैं।
7: सबसे पहले जो भी प्रस्ताव आएगा वो इंडिया अलायंस के ब्लॉक के सामने रखा जाएगा, वहां पे हमारी सर्वोच्च नेता जो है सुप्रिया सुले जी अपनी भूमिका रखेंगी, उन्होंने किस प्रकार से इसमें क्या दुरुस्ती।
4: नहीं अतुल लोंडे पाटिल देखिए, ये आप कांग्रेस पार्टी साफ शब्दों में कह रही है, महेश एक बार फिर सुन लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी आज जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसी भी सूरत में, शब्दों का चयन देखिएगा, किसी भी सूरत में परिसीमन बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। क्या एनसीपी एसपी भी यह कहती है कि किसी भी सूरत में परिसीमन बिल का एनसीपी एसपी विरोध करेगी, उसके खिलाफ खड़ी होगी कि नहीं होगी, स्पेसिफिक बताइए महेश तपा से।
7: पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि हम उसको स्टडी करेंगे और अपनी भूमिका रखेंगे।
4: कंफ्यूजन है कि नहीं है, देखिए ये
7: कंफ्यूजन नहीं है,
4: इंडिया अलायंस का परिसीमन इस तरीके से हो रहा है, कंफ्यूजन है।
7: कांग्रेस ने अपनी भूमिका
4: रखी है, महेश एक मिनट, मैं एक बार फिर अतुल लोंडे जयराम रमेश ने क्या कहा, किसी भी सूरत में परिसीमन बिल का विरोध होगा कि नहीं होगा।
5: देखिए साहिल, इसमें सिर्फ 50% बढ़ाने की बात नहीं, इसमें जेरीमेंडरिंग की भी बात है। आप आसाम का उदाहरण दुनिया के सामने रखिए ना, आज तक के माध्यम से एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा लीजिए,
4: अरे बाकी डिस्कशन होगा, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, रीकन्फर्मेशन चाहता हूं अतुल, मैं रीकन्फर्मेशन चाहता हूं, किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी का परिसीमन को विरोध है कि नहीं है।
5: बिल्कुल परिसीमन को विरोध है, ये बात सामने रखी है, लेकिन आप सर्वदलीय बैठक
4: बस खत्म हो गई बात,
5: बिल रख रहे हैं।
4: आशुतोष आपने सुना,
5: आप चर्चा से भागते क्यों,
4: ठीक है आशुतोष आपने सुना, आपको डिस्क्रिपेंसी नजर नहीं आ रही है इसमें, इंडिया अलायंस के भीतर सीधी सीधी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है इसमें।
8: जी बिल्कुल साहिल, जो बात आप कह रहे हैं इसमें एक साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक तरीके का मतभेद है, और अगर आपने सुप्रिया सुले का वो बयान दिखा होगा जो दो दिन पहले उन्होंने दिया था, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर 50% का फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही किसी भी सूरत में हम इसको पास नहीं होने देंगे। तो दोनों के बीच में मतभेद तो स्पष्ट है, और अगर मतभेद है तो ठीक है, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उनके बीच मतभेद संभव हो सकता है, लेकिन दो चीजें मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, अगर पुराना बिल ही इस संसद के अंदर आता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड, खासतौर विपक्षी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो उसका विरोध करेंगे, और अगर विरोध करेंगे तो सरकार को उस बिल को पास कराना मुश्किल हो पाएगा। दूसरा, अब जो परिसीमन बिल पर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का औचित्य क्या है, क्या वो बिल आपने देखा है, क्या मैंने देखा है, क्या अतुल लौंडे पाटिल, महेश तापा से प्रेम शुक्ला जी या हमारे मित्र रजत सेठी या सुशी बेन ने देखा है, किसी ने नहीं देखा उस बिल को। तो अगर बिल सामने होगा तो जो जो जिसे कहते ना कि डेविल लाइज इन डिटेल्स, तो जब तक उस बिल को पढ़ के समझ के कॉमा फुल स्टॉप के हिसाब से देखकर अगर चर्चा होगी तो बेहतर चर्चा होगी। सिर्फ सिद्धांत के तौर पर अगर आप पूछेंगे
4: आशुतोष जी,
8: परिसीमन बिल। जी
4: आशुतोष जी, बड़ी दिलचस्प बात यह है, मैं फर्क देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अप्रैल महीने में जब यह बिल लोकसभा के भीतर लाया गया था, मैंने सारे भाषण एक बार फिर सुने। उन भाषणों में जिस तरीके की क्लियर भूमिका सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा ली गई थी, जिन्होंने इसका विरोध किया था और जिसके वजह से 2/3 बहुमत सरकार को नहीं मिल पाया था, और उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि सरकार सत्ता पर रहने के लिए परिसीमन कराना चाहती है, पूरी जो उसकी सीमाएं हैं वो बदलकर इस तरीके से उसमें बदलाव लाना चाहती है, जिसका जिक्र अतुल लोंडे पाटिल कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, वो परिसीमन के जरिए सरकार में रहने की कोशिश कर रही है सरकार, यही बात उन्होंने कही थी। अब अचानक ये मुद्दा कहां से आ गया, जब कहने लगे कि आप 50% वाला प्रस्ताव बिल में लाइए, उसके बाद हम इस पर सोचेंगे। ये फर्क तो आ गया है ना, ये डिस्क्रिपेंसी तो आ गई है ना, कहीं ना कहीं किसी ने नहीं देखा है बिल, लेकिन भूमिका सॉफ्ट हो गई है। डीएमके की भूमिका सॉफ्ट नजर आ रही है, एनसीपी एसपी की भूमिका सॉफ्ट नजर आ रही है।
8: साहिल, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भूमिका सॉफ्ट क्यों हुई है वो भी तो समझना पड़ेगा। आज की तारीख में एमके स्टालिन डीएमके की सरकार वहां पे नहीं है, अब उनको अपनी पार्टी को बचाने का भी एक संकट हो सकता है, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को अपनी पार्टी बचाने का संकट है। लेकिन क्या डीएमके, अगर उसमें 50% का फॉर्मूला नहीं आता है तो क्या डीएमके उस परिसीमन बिल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी, उसमें मुझे संदेह है। क्या दक्षिण के बाकी जो जो संगठन है क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें मुझे संदेह है, क्योंकि उस पर उनका विरोध बिल्कुल साफ है कि पॉपुलेशन इंक्रीज के आधार पे अगर आप करेंगे परिसीमन तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा और उत्तर के राज्यों को फायदा होगा। तो ये जो दक्षिण और उत्तर की लड़ाई है वो 50% के फॉर्मूले पर नहीं है, और वो बात कहते रहेंगे 50%।
4: पॉपुलेशन की बात तो सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है ना कि पॉपुलेशन की बात ना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 50% बढ़ा देंगे सीटें एक साथ बढ़ा देंगे, और वही बात वो बिल में लाने की तैयारी में रखे हुए हैं। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख तो क्लियर है कि हम किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में डीएमके और एनसीपी एसपी जैसी पार्टी अलग तरीके से सोच रही है, यही तो मुद्दा यहां पर। और एक बार आपने जिक्र किया है तो मैं जरा नंबर्स दिखा देता हूं ताकि रजत सेठी के पास भी जाया जाए इसको लेकर। देखिए, 319 की ताकत तक अभी एनडीए पहुंच चुकी है, जरा स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले 298 वोट्स सरकार को मिल पाए थे। अब उसमें कई कारण है कि कई लोग 319 कैसे हो गए, तो उसमें टूटकर शिवसेना यूबीटी के 6 लोग सुशीबेन शाह की पार्टी में चले गए, 20 टीएमसी के लोग टूटे एनसीपीआई में चले गए, 319 उससे बढ़ गए। लेकिन उसके बावजूद भी 22 डीएमके के विधायक, एक बार फिर दिखाइए, डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4, एनसीपी एसपी के 8, हो सकता है कि अगर 50% मुद्दा होता है तो चले जाएंगे, निर्दलीय 1, ये सारे पकड़ ले तो 354 तक पहुंच जाता है आंकड़ा, यानी 10 अभी भी कम है। तो ये 10 कहां से आ सकते हैं, तो वो आंकड़े भी देख लीजिएगा जरा, जिसमें जेएमएम के 3 है, वीसीके के 2 है, एमडीएमके के 1 है, आरएलपी का 1 और निर्दलीय 3, ये भी यहां पर लगे हुए हैं कि इनका क्या होगा। कई लोगों की भूमिका अभी तक क्लियर नहीं है। रजत सेठी, कितना मुश्किल है 360 तक पहुंचना, थोड़ा जुगाड़ तोड़फोड़ से, थोड़ा जुगाड़ सॉफ्ट, क्या बिल पर सॉफ्ट होने से, इस तरीके से ही हो रहा है ना?
9: नहीं बिल्कुल साहिल जी, जो फसाद है वो तो बिल है, लेकिन अंदर अंदर जो रस्साकसी चल रही है वो विपक्ष तो यही सोच रहा है कि उसकी एकता कितनी कायम रह सकती है इस आने वाले सत्र में, कि इंडिया जो गठबंधन है उसका उसका अंतिम संस्कार इस सेशन में हो जाएगा। ये दो तीन चीजें होंगी, तो ये रियल जो राजनीति चल रही है वो इन्हीं विषयों पे चल रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर है, जो प्रीटेक्स्ट है वो प्रीटेक्स्ट आपका बिल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एनसीपी का रवैया है शरद पवार पार्टी का, काफी संभावना है जेएमएम के साथ, ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज भी ब्रेक करी है कि डीएमके, जेएमएम और एनसीपी एसपी, अगर ये 3 बड़ी पार्टियां आ जाती हैं तो 360 बहुत मुश्किल नहीं है। और इसीलिए देखिए, ये जो कांग्रेस
4: तो राज्यसभा चुनाव में भी दिख गया था
9: जी, और ये जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो विरोध ही करेंगे, तो उनको बिल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये जो लेटर लिखे जा रहे हैं कि सबको बुलाइए, उस सबको इसलिए बुलाइए कम से कम कहीं ना कहीं एक एकता बनी रहे, थ्योरेटिकली सही लेकिन इंडिया अलायंस की कोई ना कोई एकता बनी रहे, उसको बचाने की कवायद है, बिल में क्या है इसको समझने की कवायद नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस को तो किनारे करके उनसे तो एंगेज ही नहीं करेगी सरकार।
4: आप मुझे समझाइए, ये रवैया क्यों चेंज हुआ है, ऐसा क्या हुआ है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक ऐसा क्या बदला है विपक्षी लोग पार्टियों में
9: बंगाल
4: कि अचानक चेंज ऑफ हार्ट यहां पर नजर आ रहा है? बंगाल
9: नहीं, देखिए
4: नहीं, बंगाल के नतीजे या बंगाल के नतीजों के बाद जो हुआ वो नहीं, बंगाल के नतीजे या बंगाल के नतीजों के बाद जो टीएमसी के साथ हुआ, शिवसेना यूबीटी के साथ जो हुआ वो क्या बदलाव क्या हुआ?
9: इसीलिए मैंने बंगाल बोला और उसके तहत जितनी भी चीजें हुई हैं परम्यूटेशंस सब चीजों की मैं बात कर रहा हूँ।
4: दो ऑप्शन और दिया मैंने उसके बाद, उसके दो ऑप्शन और दिया मैंने बाद में।
9: आपकी बात सही है, मुझे लगता है दोनों ऑप्शन ही ठीक है। जिस तरह से राजनीतिक दलों की जो महत्वाकांक्षा है और जो जमीन से आवाजें उठ रही हैं वो नेता इग्नोर नहीं कर पा रहे। आज शरद पवार जी इग्नोर नहीं कर सकते कि उनके जो आठ सात आठ सांसद हैं वो क्या बोल रहे हैं, पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वो भी लगे हुए हैं और वो सिग्नल देना चाहते हैं कि मैं सक्रिय हूं और मैं सोच रहा हूं आपके भविष्य के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आइसोलेट करके बाकी हर गट से आपकी एनडीए संवाद करेगी, उनको सेम प्लेन में लाने की कोशिश भी करेगी।
4: नहीं तो जिम्मेदार कौन है रजत? जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस पार्टी या सरकार का तोड़फोड़ का रवैया, जिम्मेदार कौन है इसके लिए?
9: देखिए देखिए कांग्रेस की भूमिका नहीं है ऐसा तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। जो उन्होंने हश्र तमिलनाडु में किया उसमें कई दलों को लगता होगा कि ये कल कब क्या हो जाए कांग्रेस का, किसी को कोई भरोसा है इस पार्टी पे। तो यहीं से जाके जब
4: देखिए अतुल शुरुआत आपके तरफ से हुई है
9: तो कैसे होगा?
4: आपने डीएमके के साथ जो धोखा किया ना उसके बाद सरकार को समझ में आया कि 22 सांसदों का ब्लॉक एक साथ मिल सकता है और उसके बाद उन्होंने बाकी सब मतलब शिवसेना को काम पर लगा दिया, टीएमसी में थोड़ा सा ये कर दिया उन्होंने वो सारी चीजें। अतुल लोंडे आप बोलिए, उसके बाद सुशीबेन शाह के पास चलूंगा मैं। चलिए
10: नहीं, ये जो रजत सेठी है इन्होंने बिल देखा है क्या, विश्लेषण करने बैठ गए, बिल देखा है नया बिल कुछ आया? वो
4: धोखा किया ना उसके बाद सरकार को समझ में आया कि 22 सांसदों का ब्लॉक एक साथ मिल सकता है और उसके बाद उन्होंने बाकी सब मतलब शिवसेना को काम पर लगा दिया, टीएमसी में थोड़ा सा ये कर दिया उन्होंने वो सारी चीजें। अतुल लोंडे आप बोलिए, उसके बाद सुशीबेन शाह के पास चलूंगा मैं। चलिए
10: नहीं, ये जो रजत सेठी है इन्होंने बिल देखा है क्या, विश्लेषण करने बैठ गए, बिल देखा है नया बिल कुछ आया वो देखा है? आसाम में जाके देखा है उन्होंने जेरीमेंडरिंग कैसा किया उन्होंने? वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मालूम है चाटुकारिता करता है इंसान। पहले सुन लो मेरी बातें, आपने देखा है आसाम में कैसा जेरीमेंडरिंग किया? क्या नया बिल आया है? क्या नया बिल आया है क्या? क्या नया बिल आया है क्या?
9: आपने मुझसे प्रश्न
10: नया बिल आया है क्या? नया बिल आया है क्या? देखा है आपने नया बिल क्या है?
9: नया
4: बिल आया है देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा। एक मिनट जरा शांत करिए, एक मिनट अतुल लोंडे प्लीज टिप्पणी मत करिएगा, एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा प्लीज, एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा। स्पेसिफिक सवाल था, स्पेसिफिक जवाब है। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, शुरुआत कहां से हुई, डीएमके के साथ जो आपने धोखा किया उसके बाद सरकार को लगा कि अरे 22 लोग तो टूट रहे इंडिया गठबंधन से और फिर बाद में उनका काम शुरू हो गया।
10: जवाब देता हूं ना मैं,
4: इतना छिंदे काम पर लग गए वहां पर काकुली घोष दस्तीदार काम पर,
10: तो
4: उसका जवाब दीजिए ना। रजत सेठी ने अपनी भूमिका रखी है इस पे, उसका जवाब दीजिए।
10: मैं ऐसा तमिलनाडु में मैंडेट के खिलाफ जाके बीजेपी जो कर रहा था, बीजेपी को रोकने के लिए हमने विजय को साथ दिया। तो ये करेंगे तो वो सब सही है, ये
4: 22 लोग टूट गए ना आपसे उसके चक्कर में,
10: कोई एकनाथ शिंदे जी ने तोड़े है क्या? वो सुनिए, वो तो बिल के वक्त दिखाई देगा क्योंकि जो भी साउथ का जो प्रेजेंट बिल है, नया बिल तो किसी को पता नहीं है। आसाम में जिस तरह का जेरीमेंडरिंग किया है उसका अगर कोई सपोर्ट करता होगा तो विश्लेषण होगा नहीं, फिर वो तो सपोर्ट होगा बीजेपी का सीधा सीधा। आसाम में जिस तरह से जेरीमेंडरिंग किया उसका किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया वहां पर, संविधान का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी बात कोई नहीं करेगा। तो ये स्पष्ट तरीके से हम ये बात करेंगे, तो बात
4: संविधान का अंतिम संस्कार हो गया। आज कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से कलंकित तरीकों से दो तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश हो रही है और उसमें आप भी शामिल है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी।
11: अतुल भाई इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, लेट अस स्टिक टू द फैक्ट्स। और साहिल भाई मैं इतना बात कहना चाहूंगी, आप तोड़ दिया, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतुल भाई अभी 40 मिनट बार एक में महिला है, जरा बोलने दीजिए। और एक बार मैं और बता दूं आपको अतुल भाई, दैट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब तक परिसीमन नहीं होता है कभी पारित नहीं होगा, ये फैक्ट है, हम सभी को जानना चाहिए, मानना भी चाहिए। और इसलिए इतने सालों से
10: वुमेन्स बिल पास हो गया,
11: समझ लीजिए आपके पास
10: बिल
11: पारित करने के लिए ना तो नंबर्स है ना
10: वुमेन बिल पास हो चुका है 545 में 103 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
11: अतुल भाई मुझे आप इतने बार बोले,
10: हमने बोलने
11: दीजिए,
2: महिलाओं को
10: ये आपकी गलत जानकारी है सुशी बेन,
2: अरे
10: ये आपकी गलत जानकारी है।
2: बोलना तो
10: नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ।
2: करेक्ट नहीं हो नहीं सकता
8: अरे अतुल एक मिनट,
10: नहीं मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा
8: हूँ। अतुल जी एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए पहले, उनकी भूमिका तो रखने दीजिए प्लीज।
2: एग्जैक्टली अतुल भाई सुनिए ना भाई, एक महिला
8: सुशी
2: अतुल भाई, हम यहाँ से आज तक पर पहुंचे हैं, लेकिन इधर से आज तक से हमें पार्लियामेंट में जाने के लिए महिला रिजर्वेशन चाहिए ही, नहीं तो महिलाएं पहुंच नहीं पाएगी। और क्यों नहीं पहुंच पाएंगी, कि जो करंट बिल है, जैसा ये बिल है जैसा आप बता रहे 2023 का, वो कभी पारित नहीं होगा। आपके अगाड़ी बिगाड़ी के इंडी गठबंधन के लोग भी नहीं वोट करेंगे उसके तहत में। परिसीमन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल साथ में चलेंगे। आपकी नेता
8: प्रियंका जी
2: कहती हैं एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक वोट, और वो उसको उसका सम्मान हमें रखना चाहिए, और इसीलिए परिसीमन होना बिल्कुल जरूरी है।
8: एक करेक्शन कर दूं सुशी बहन, 2023 पे ये बिल पारित हो चुका है, कभी पारित नहीं होगा मत पता, ये वो पारित हो चुका है,
2: हो चुका है,
8: पारित हो चुका है,
2: लेकिन
8: 2023 पे पारित हो चुका है।
2: नहीं नहीं पारित हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये जो ये परिसीमन उसके साथ चलते वुमेन रिजर्वेशन बिल अकॉर्डिंग टू मी आर क्लोजली कनेक्टेड। अरे भाई अतुल भाई, हमारा मानना है ना भाई, हम गलत हो सकते हैं लेकिन मेरा मानना बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो अभी मसूदा आएगा, जो ड्राफ्ट बिल आएगा 50% का जो मसूदा है, 50% में जिस प्रकार से हर स्टेट का आज रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में वो रहेगा, शायद थोड़ा फार बढ़ेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? आपका रिजर्वेशन एससी एसटी का अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया कि वो भी रहेगा, जो भी संविधान में आज की तारीख में रिजर्वेशन है वो भी वो ही रिजर्वेशन महिला आरक्षण में रहेगा। इसलिए मैं मानती हूँ सारे लोग हमसे जुड़े,
8: आशुतोष जिम्मेदार कौन इसके लिए,
2: जोड़ने की बात
8: 360 कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि कलंकित तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच में जो डिवोर्स हुआ वहीं से तो शुरुआत नहीं हुई इस पूरे मामले की, जब सरकार को समझ में आ गया कि इट इज रीचेबल?
2: बिल्कुल विश्वास नहीं आपका किसी का, नहीं
8: बिल्कुल साहिल, अभी भी अभी भी
2: नहीं, मुझे
8: साहिल अभी भी डीएमके के लिए इस बिल को पुराने फॉर्म में स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनकी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। अब उनको तमिलनाडु के अंदर अपनी राजनीति को बचाने का संकट है, क्या वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेगी? अगर वो आना चाहेगी तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो विजय की पॉलिटिक्स है वो फिर हमेशा के लिए एक तरीके से उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो इतना आसान नहीं उनके लिए कि वो फॉरन आके वो इस बिल को स्वीकार कर। हाँ, अगर उसमें 50% का फॉर्मूला आता है तब जरूर डीएमके के लिए एक रास्ता बनता है और तब वो जरूर इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। मैं अभी भी इस बात पर पूरी तरीके से कायम
10: हूं, तो
8: जब तक नया बिल नहीं आता है और उस नए बिल में 50% का फॉर्मूला नहीं आता है तब तक ये खेल अभी भी पूरी तरीके से खुला हुआ।

0: महिलाओं को उनके अधिकारों से सशक्त तौर पर समर्थ कराने का कोई भी जो कदम है वो संवैधानिक लोकतंत्र के मार्ग से निश्चित तौर पर उसका क्रियान्वयन करेंगे। आदरणीय
1: थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमें जो करना होगा
1: जो भी
0: संवैधानिक
1: करना पड़े,
0: लोकतांत्रिक मार्ग से उन सारे
1: जो जरूरी
0: शस्त्रों
1: है,
0: का सदुपयोग करेंगे। संवैधानिक लोकतांत्रिक, संवैधानिक लोकतांत्रिक, हम कोई जो है आपातकाल लादने वाला काम नहीं
1: बिल्कुल
0: करते। हम आपातकाल को संवैधानिक कहने का कुकृत्य नहीं कर सकते। हम नोटों के बदले
1: आशुतोष,
0: वोट लेने का
1: आशुतोष,
0: कुकर्म नहीं कर सकते कि
1: देखिए
0: संसद में वोट
1: लोकतांत्रिक
0: उड़ाए
1: तरीके
0: जाए।
1: से हो रहा है सब कुछ। 20 सेकंड
0: नहीं,
1: आखिर के आशुतोष।
2: आपातकाल भी लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से ही हुआ था। बाकायदा संविधान में इस बात का प्रोविजन था कि कैसे आपातकाल लगाया जा सकता है। तो
0: कैबिनेट में
2: आपने
0: प्रस्ताव
2: मिसेस
0: तक
2: गांधी
0: नहीं
2: जो
0: आया था
2: संविधान जो
0: भाई,
2: लेकर आई थी वो असंवैधानिक नहीं
0: कैबिनेट में
2: था।
0: प्रस्ताव तक नहीं आया था।
2: नहीं, वो
1: चलिए खैर, फिलहाल
2: प्रिंसिपल
1: ये
2: जी,
1: बात तो ठीक
0: हाँ
1: है, ये बात तो ठीक है। 19 तारीख को एक
0: कैबिनेट में
1: सर्वदलीय बैठक होगी, हालांकि उसमें परिसीमन को लेकर चर्चा होगी नहीं होगी अभी नहीं कह सकते हम। और जो संशोधित प्रस्ताव है वो भी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका आगाज कांग्रेस पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है। कई मुद्दे इस संसद के अधिवेशन में उठाए जाएंगे, उसमें परिसीमन के मुद्दे पर दरअसल इंडिया अलायंस के सामने चुनौती होगी कि क्या वो एक साथ रह पाएंगे, उस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
3: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबा केसरी
2: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर
3: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
2: हैट्रिक का दावा
3: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी
2: विश्वास पूरा
3: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।

0: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।
1: हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर, आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस के पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठक के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं, परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। इनमें परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पर पिछले सत्र में सरकार हार चुकी है। इस बार अब एक देश एक चुनाव विधेयक की भी चर्चा है, उसके लिए भी संविधान संशोधन करना होगा जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है वो फिर से सरकार को हराएगी।
1: कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे, और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे।
0: कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में आ गए। डीएमके कांग्रेस के साथ अब सदन में बैठना नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले ने तो ये तक कह दिया कि जब विधेयक आएगा तब पार्टी अपना रुख साफ करेगी।
2: तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे ऐसा हमने किया कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया इसलिए वो बिल तो गिर गया।
0: लेकिन तमाम उपायों के बावजूद सरकार को आखिरकार सदन में गणित के सहारे रहना होगा, और गणित कुछ ऐसा है कि लोकसभा की 543 सीट में फिलहाल 540 सांसद हैं, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 360 वोट चाहिए, सरकार के पास 293 सांसद पहले से हैं, इस बीच टीएमसी से टूटे 20, उद्धव से टूटे 6 सांसदों के साथ 319 संख्या हो जाती है। इसके बाद सरकार की नजर विपक्षी दलों के सांसदों की मैनेजमेंट पर है। इसमें डीएमके की चिंताओं के निराकरण के बाद सरकार को अब बड़ा समर्थन हासिल होने की उम्मीद है। सियासी संकेतों के आधार पर देखा जाए तो एनडीए के 319 की ताकत के साथ डीएमके के 22, वाईएसआर के 4, शरद पवार के 8 और एक निर्दलीय के साथ ये ताकत 354 तक पहुंचती दिखती है। फिर भी सरकार को 6 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उम्मीद जताई जा रही है कि जेएमएम के 3, वीसीके के 2, एमडीएमके के 1, आरएलपी के 1 और निर्दलीय 3, यानी करीब 10 सांसदों के समर्थन का इंतजाम सरकार कर सकती है। और इन तमाम राजनीतिक गणित के बीच पिछले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री योगी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है। फिर संसद सत्र शुरू होने के बाद 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक। मसलन स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीटें हो जाएंगी। सरकार ने कह दिया कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर एससी एसटी की महिलाओं के लिए पहले से तय आनुपातिक कोटा सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। शरद पवार की पार्टी के इस रुख को बीजेपी सरकार के समर्थन वाला रुख मान रही है और कांग्रेस विरोध का।
3: सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने कहा, मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे।
1: सुप्रिया सुले ने खंडन किया है, जो खबर चलाए गए थे सुप्रिया सुले जी ने उसका खंडन किया है, विस्तार से खंडन किया है।
0: लेकिन सरकार ने बिल का विरोध कर रहे दलों की चिंताओं के निपटारे की दिशा में काम किया। जहां पिछले सत्र में बिल पर चर्चा हो रही थी तो संज्ञान में आए विरोध के मुद्दे अब सुलझाए गए हैं। सरकार में
1: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अल्लाह बोल के साथ, देखते रहिए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा, ममता की दो टूक, जिसे जाना हो 21 जुलाई तक चला जाए, फिर से बना सकती हूं पार्टी। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर भड़के अखिलेश, कहा बीजेपी को शिक्षा में भी दिखती है सांप्रदायिकता, कांग्रेस भी खिलाफ। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़, कई लोगों के घायल होने की खबर, पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश। शहबाज और मुनीर के खिलाफ पीओके में बगावत तेज, हालात पर काबू के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के 8,000 अतिरिक्त जवान तैनात, रावलाकोट में सेना ने पहुंचाए भारी हथियार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: अच्छा कोई काम नहीं कर सकता। डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
1: शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर सिर्फ इसलिए चले कि आपकी अदावत आजम साहब से है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है। इस बात को सोच करके कि ये मुसलमान का इशू है, ये मुसलमान का इशू नहीं है। एक विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जा रहा है 38-40 में से 38 भवनों को।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाए?
3: कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। योगी का बुलडोजर आजम। आज हमने ये विषय इसीलिए उठाया क्योंकि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का काउंटडाउन शुरू हो गया। अगर जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों पर बुलडोजर चल गया तो ये सियासी तौर पर अहम योगी सरकार के दौरान की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई के तौर पर सामने आएगा। इन भवनों का नक्शा पास नहीं होने की वजह से इन्हें अवैध बताया गया है और रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया। इस कार्रवाई को अखिलेश यादव ने शिक्षा का सांप्रदायिककरण करार दिया। उधर आज ही खबर आई है कि अखिलेश यादव सितंबर से उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा पर निकलेंगे जिसकी शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से होगी। अखिलेश इन दिनों सनातनी समाजवाद का नारा दे रहे हैं और इसी बीच जब आजम खान के ड्रीम पर बुलडोजर की तैयारी है तो AIMIM के नेता आजम खान जैसे मुस्लिम नेता का साथ छोड़ने का आरोप लगाकर अखिलेश पर सवाल भी उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आजम की ड्रीम पर बुलडोजर से 27 की राह निकलने वाली है? आजम के जौहर पर बुलडोजर 2027 की टक्कर, यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए।
1: उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा थी। आज अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा बन गई है। रामपुर के जिला प्रशासन ने बुधवार को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध करार देकर उन्हें गिराने का रास्ता साफ किया है। नोटिस मिलने के 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी ने खुद इमारतें नहीं गिराई तो योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर पहुंच जाएगा। यह सवाल आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलने की नौबत का ही नहीं है, सवाल खुद आजम खान की शख्सियत है और बदल गई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। बीते कई वर्षों में कई बार आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का नोटिस मिलने की खबर पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा है, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे?
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
1: जौहर यूनिवर्सिटी के जिन 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण होना है उनका नक्शा पास नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी है पहले वो जगह जिला पंचायत के अधीन थी जिससे दो भवनों का नक्शा पास हुआ था। 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद अब RDA ने नियमों के हवाले से कार्रवाई की बात की है। इस बीच 2016-17 में सरकारी फंड से यूनिवर्सिटी में बनी 4 लेन की सड़क को PWD विभाग ने आम रास्ता घोषित कर दिया है। सड़क पर यूनिवर्सिटी के निजी इस्तेमाल के मसले पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उधर आजम खान के खिलाफ अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ सरकार बल्कि अखिलेश यादव को भी घेरा।
3: जो अखिलेश यादव राम मंदिर के विषय में 28 दिन में 29 ट्वीट करते हैं, 14 प्रेस वार्ता करते हैं, मस्जिद मदरसा खानका पर टारगेट किया गया, एक ट्वीट एक आंदोलन इनके विधायक और इनके द्वारा नहीं किया गया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कारोबार पे हमले हुए और तमाम इश्यूज, वक्फ का इश्यूज आया, कभी भी ये मुसलमानों के विषय पे बात नहीं करते क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
1: जुलाई 2024 में आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट के हिस्से पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब 2 साल बाद जौहर यूनिवर्सिटी का नंबर आ गया।
4: आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे।
5: मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
1: गुरुवार को आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंची थी। उन्होंने अपने अगले कदम पर कोई संकेत नहीं दिया।
6: 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकती।
0: हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान AIMIM की तरफ से और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के रूप से हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे मैं सवाल जानना चाहती हूं, क्योंकि कानून है या राजनीतिक प्रतिशोध है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। और एक जानकारी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही साझा की जा रही है वो ये कि भले ही आज रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस और उसके आगे वो कार्रवाई है, लेकिन जिस समय ये इमारतें बनी थी उस समय ये विकास प्राधिकरण आपका था नहीं, तो उसके दायरे में आज कैसे, क्या रिट्रोस्पेक्टिव किसी तरीके से इसमें कोई एक्शन लेकर आप लोग आज उसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बोलना चाहते हैं? गौरव भाटिया जी,
7: देखिए श्वेता जी, सबसे पहले कानून की बात होनी चाहिए। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी जानी ही जाती है जंगल राज के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अनियमितताओं के लिए, किसानों की जमीन हड़पने के लिए, और मुर्गी और बकरी को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग, उसको भी ये कब्जा लेते हैं, वक्फ की जमीन भी कब्जा लेते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपने मुझसे एक प्रश्न किया, बहुत ही वाजिब प्रश्न है, मुझे उत्तर देना चाहिए, मैं आपको पहले उत्तर दे देता हूं। देखिए, आपने सही कहा, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बाद में आई, इससे पहले जो जमीनें होती थी तो जो जिला पंचायत होती थी उससे आप अनुमति लेते हैं, मंजूरी लेते हैं, फिर आप भवन इमारत वहां खड़ी करते हैं। 40 में से दो इमारतों की इन्होंने अनुमति ली और जिला पंचायत से ली, तो ठीक है। अगर ये तर्क है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बाद में आई, तो जिस तरह से दो इमारतों की आपने अनुमति ली, बाकी 38 की भी ले लेते, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गई तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का कर्तव्य है श्वेता जी, कल को हमारे बच्चे वहां पढ़ाई करते हुए अगर कोई इमारत गिर जाए और किसी बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाए, मुझे आप बताइए क्या ये टूटी साइकिल वाले गैर जिम्मेदार लोग उसकी जिम्मेदारी लेंगे? हर कोई और सही तरीके में पूछेगा सरकार से कि ठीक है, एक गलत तरीके से अवैध निर्माण हुआ, उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, अब जो ये कार्रवाई हो रही है ये स्थापित करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सबको जवाबदेही देनी होगी। दूसरी बात, कानून देखिए क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी, एक 4 किलोमीटर की सड़क बनाई गई PWD द्वारा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री आजम खां थे, इसमें PWD ने सरकारी धन का इस्तेमाल किया, 17 करोड़ रुपए खर्च हुए। जैसे ही ये रोड बनी, आपको मालूम है, इस रोड को बंद कर दिया गया आम जनता के लिए। अब उसको खुलवाने का काम भी जो बोर्ड आप दिखा रहे हम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आजम खान खुद इस ट्रस्ट में आजीवन सदस्य, वो खुद एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने ही ट्रस्ट के लिए कैसे फाइल पे हस्ताक्षर कर सकता है, निर्णय ले सकता है? क्या ये गलत नहीं है? हाईकोर्ट ने क्या कहा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। जब ये मामला हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट ने जो कहा, मैं एक पैराग्राफ में एक पंक्ति पढ़ता हूं। इस मामले में मंत्रिमंडल मंत्री को भली भांति पता था कि उनके परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट और स्कूल को ही अनुदान का मुख्य लाभ मिलेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग रखने के बजाय उन्होंने न केवल ये सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई कि अनुसंधान संस्था उनके अपने ट्रस्ट को पट्टे पर दिया जाए, बल्कि उन शर्तों पर भी जो उन्होंने स्वयं तय की थी, और उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर करी कि आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर किस तरह से वक्त की, किस तरह से किसानों की जमीन हड़पी है, और 17 करोड़ का एक जो सरकारी वहां पे बिल्डिंग थी उसकी 10,000 रुपए कीमत लगाई, और लिखा क्या, ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये आपने जो है गलत इस्तेमाल किया है अपनी शक्तियों का। अब आप मुझे बताइए, अगर इनको कुछ लगता है गलत हो रहा है, आजम खान तो जेल भी रहे हैं, उच्च न्यायालय जाएं, सर्वोच्च न्यायालय जाएं और ये बिल्कुल स्थापित कर दें कि ये गलत कार्रवाई हो रही है।
0: अमित जी, ये क्या ये बात गलत है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर जमीनें हड़पने के आरोप लगे थे, चाहे किसानों की जमीन हो, सरकारी विभागों की जमीन हो, शत्रु संपत्ति हो, और मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जौहर यूनिवर्सिटी की 3.24 एकड़ जमीन की लीज थी उससे रद्द करने को सही ठहराया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा था अक्टूबर में, तो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द करने के खिलाफ दखल से इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर इसे क्यों हम राजनीतिक रूप दें?
8: देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि बुलडोजर की कार्रवाई तो बिल्कुल गलत थी, आपको चाहिए कि एक दिन डायनामाइट लगा के पूरे विश्वविद्यालय को आप ऐसे पलट दीजिए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की उनको बहुत शांति मिल जाए। आप आइए, जिला पंचायत को जो भवन का नक्शों का जो अधिकार मिला वो 2017 के बाद मिला। जाहिर सी बात है कि जब यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर 90% बन गया था तो जिला पंचायतों को नक्शे का अधिकार नहीं था। आरडीए बाद में बना। अब आरडीए कह रहा है कि जो 40 में से 38 भवन है जहां पे 2500 बच्चे पढ़ते हैं, जिस जौहर विश्वविद्यालय को मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने आजम खान साहब के ख्वाब को उन्होंने पूरा किया, मेरे नेता मानी अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उस पूरे विश्वविद्यालय को कि माइनॉरिटी के लोग और एक फ्रीडम स्ट्रगल का हीरो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे एक विश्वविद्यालय बन जाए, तो अगर 50% मुसलमान उसमें पढ़ जाए, माइनॉरिटी पढ़ जाए, तो गौरव भाटिया जी की पार्टी को दिक्कत क्या है? लेकिन मसला यह है कि चाहे वो दलित होंगे उत्तर प्रदेश में या ब्राह्मण्स होंगे, उनके होटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कोई उनके ऊपर केस होगा तो आप इंटायर खानदान से, आप जिसको एक फिल्म आई थी ना सबका बदला लेगा तेरा फैजल, तो फैजल जो है ये गोरखपुर के पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से, दलितों से, मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। और हम साफ कहना चाहते हैं 6 महीने के बाद बहुत लंबा समय नहीं है, हम आदरणीय गौरव भाटिया जी के जरिए कहलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, गोरखपुर के एक एक मठ का कागज पत्र अपना ठीक कर लीजिए, अपनी बिल्डिंगों का नक्शा से लेकर मानचित्र से लेकर जिला पंचायत से लेकर गोरखपुर अथॉरिटी से लेकर सारे कागजात आप पूरे कर लीजिए। जो कुछ आप आज मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सिखा रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं हम उससे कुछ भी थोड़ा भी कम रियायत नहीं करेंगे। लेकिन जब पंचायत और आरडीए को अधिकारी नहीं है उस पर कोई डिमोलिशन की कार्रवाई का, तो वो कैसे?
0: आप केवल ये राजनीतिक
8: अथॉरिटी के अंदर में डीएम
0: राजनीतिक बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है?
8: मैं आपसे सीधे से कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बदले की कार्रवाई, उन्हें ब्राह्मण दिख जाए, मुसलमान दिख जाए, दलित दिख जाए, बैकवर्ड
0: नहीं, नहीं मैं ये पूछ रही हूं कि जौहर
8: तो उन्हें लगता है कि उन्हें नेस्त नाबूद कर दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो,
0: जो अदालत की तो तरफ जो भी जो फैसला आया और अब जो जौहर विश्वविद्यालय को लेकर है उसके साथ आप गोरखनाथ पीठ को क्यों रख रहे हैं? आप गोरखपुर में ये क्या धमकी, चेतावनी किस रूप में समझें कि वहां के पेपर दुरुस्त कर लें?
8: मैं बहुत साफ, मैं कोई इसमें कोई लाग लपेट मैं नहीं कर रहा हूं।
0: अच्छा,
8: जो भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है समाजवादी पार्टी को उसके लिए कल तैयार रहे
7: समाजवादी,
8: भारतीय जनता पार्टी का एमएलए तैयार रहे, इनका एमपी तैयार रहे, इनका मिनिस्टर तैयार रहे। लखनऊ के अंदर 90% बिल्डिंगे अनाधिकृत है, मानचित्र नहीं है। गौरव भाटिया जी लखनऊ के रहने वाले हैं, पूछ के बताएं कि कितनी बिल्डिंगे आपने गिरवाई, क्योंकि वो आजम खान साहब का ख्वाब था। आजम साहब, एक मुसलमान ने विश्वविद्यालय के बारे में कैसे सोच लिया? बिल्डर बन जाओ, क्रिमिनल बन जाओ, लेकिन शिक्षा कैसे देना चाहते हो? यही बात सबसे ज्यादा टीस आजम साहब के खिलाफ हुई। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है, आखिरी बात मैं 10 सेकंड में कह रहा हूं, अखिलेश जी का साफ कहना है 2027 के बाद जौहर विश्वविद्यालय को दोबारा समाजवादी सरकार में खड़ा किया जाएगा। अगर 10,000 करोड़ रुपया भी लगाना पड़ा उस विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए, तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई समाजवादी सरकार में होगी।
0: ठीक है गौरव भाटिया जी, या तो 30 सेकंड में अभी रिबटल या फिर आपको मालूम है कि अभी और आरोप आ रहे हैं, एक साथ आप सबका जवाब देना चाहेंगे।
7: मैं 30 सेकंड में ही रिबटल दे देता हूं, क्रम बना रहेगा, 30 सेकंड लूंगा फिर दोबारा आप आ जाइएगा। देखिए, पहला सवाल मैंने बताया, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग किया गया, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा, मैंने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है सरकारी रुपए से जो सड़क बनी वो जनता के लिए बंद क्यों गई, की गई, अब खुलवाई गई है, कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक नोटिस भी दी गई थी और कहा गया था जवाब दीजिए, कागज दिखाइए, अनुमति किससे ली आपने, जिला पंचायत से ली या रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जब इनको जवाब देना था तो कोई जवाब नहीं दिया, तो तो श्वेता जी क्यों ऐसा हुआ? और देखिए आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके शिक्षा की बात करी है, मैं आपको दिखाता हूं, अब तो इनको शिक्षा याद आ रही है, ये आज तक की खबर है। सपा की सरकार थी, बरेली में छेड़छाड़ के डर से 100 लड़कियों ने जाना छोड़ दिया स्कूल, कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ने, ये हज हाउस बनाया था 250 करोड़ रुपए में सामने है, हाँ। तब स्कूल कॉलेज बना लेते। तीसरा, कब्रिस्तान के लिए हाँ। इन्होंने 1300 करोड़ रुपया दिया, तब इनको शिक्षा की याद नहीं आई, लेकिन आज ये कहते मुसलमान। अरे भाई, अगर कोई भी गलत गतिविधि करेगा जो कानून संगत नहीं होगी तो कार्रवाई तो होगी। धन्यवाद।
0: ठीक है, वारिस पठान जी, यहां पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए इतना कर रही है, आपकी पार्टी कह रही है कि आजम खान की बात है, अखिलेश यादव तो यहां रथ यात्रा में इस समय मशगूल लग रहे हैं, उसकी तैयारी में मशगूल लग रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? और एक तरफ एक पार्टी राजनीतिक रंग दे रही है, आप लोग कम्युनल रंग क्यों दे रहे हैं अब इसको?
9: देखिए श्वेता जी, बीजेपी मुसलमान विरुद्ध थी, मुसलमानों से नफरत करती थी, करती है और आगे करती रहेगी, तो पूरा देश जानता है। लेकिन बीजेपी छात्राओं से, विश्वविद्यालयों से, शिक्षकों से नफरत करती है इतनी सारी, ये आज पूरे देश ने देख लिया ना। ये छात्राओं का सवाल है, यूनिवर्सिटी का सवाल है, भारत पढ़ेगा तभी तो भारत आगे बढ़ेगा ना। आप यूनिवर्सिटी का अगर आपको लग रहा है इलीगल अतिक्रमण, तो आप 40 में से 38 आप जो भवन है उसको गिरा देंगे, गिराने से आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए बहुत से, मैं एडवोकेट भी हूं श्वेता जी, बहुत से राज्यों के अंदर कानून होते रेगुलराइजेशन के, कंपाउंडिंग के, अगर आपको लगता है लीगल अतिक्रमण है आप उनको अलाउड कर ले, रेगुलराइजेशन कर जाए, वो पैसा भरे या जो भी उसका वो होता है वो भर के उसको रेगुलराइज करे, लेकिन आपको बुलडोजर ही क्यों चला के सब कुछ गिराना है? ये यूनिवर्सिटी को गिराना एक बहुत ही गंदी और सबसे बड़ी गिरी हुई हरकत है। ये समझ में, कोई पोलिटिकल हिसाब से इसको नहीं बोल रहा हूं, इसको आप स्टूडेंट के ध्यान से देखिए, स्टूडेंट की जिंदगी से देखिए, स्टूडेंट के करियर से, भविष्य के साथ इसकी आप तुलना करेंगे तो आपको शौक हो जाएंगे कि किसी देश में कहीं पर भी कहीं यूनिवर्सिटी को या स्कूल को नहीं तोड़ा जाता, नहीं बुलडोज किया जाता। बात नंबर दो यहां पर यह, अब क्यों तोड़ने की समय आया, क्यों बुलडोजर चलाने की बात करें? इनको नाम से नफरत है ना, कि इसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, नाम बदल दीजिए। और मैं तो आज सोच रहा था कि भाजपा के तमाम मंत्री, बड़े बड़े प्रवक्ता जो लोग हैं, सॉरी मैं आज ये सोच रहा था कि समाजवादी के जितने भी बड़े बड़े मंत्री प्रवक्ता है ये सब तो धरना आंदोलन करने बैठ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी को इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन बाद में मेरे को ख्याल आया नहीं, ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जिसने बनाया उसके साथ उसका सरनेम है खान। अगर सोचिए श्वेता जी, किसी यादव ने इस तरह की यूनिवर्सिटी बना दिया होता ना तो कुछ नहीं, अभी तक सब रस्ते के ऊपर उतर जाते, अखिलेश ने जो राम जो ट्रस्ट का जो चंदा चोरी का विषय था उस पर 20 ट्वीट कर दिए थे, अब तक अखिलेश जी कम से कम इसके ऊपर 40 ट्वीट कर दिए होते, लेकिन नहीं, वो तो अभी बाहर है और ये टाइम ही ऐसा चुना है कि वो बाहर है, इस टाइम पे कर दो ताकि मेरा हाथ ऊपर हो जाए, मुझे कुछ देखे, देश देख रहा है, यूपी की जनता देख रही है, यूपी का माइनॉरिटी देख रहा है, यूपी का मुसलमान देख रहा है, यूपी का छात्रा सब देख रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये
0: बीजेपी जमीन पर वहां पर
9: ठोक डालूंगा, ये
0: डिमोलिशन, तमाम चीज आजम खान की और इस यूनिवर्सिटी के हक के लिए।
9: हम तो जो स्टूडेंट के अधिकार है, देखिए यहाँ पे सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है श्वेता जी, आप पहले इसको ध्यान में रखिए, सवाल है छात्राओं का, सवाल है एजुकेशन का, सवाल है शिक्षकों का, सवाल है हमारे स्टूडेंट के आगे के भविष्य का, ये स्टडी की बात है। इसमें मैं तो समझता हूं कि जितने यहां पे बैठे सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी छोड़ के एक साथ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को आप बुलडोज नहीं कर सकते, तकरीबन 2500 से 3000 स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं, आपको क्या नफरत है उनसे? और क्या पूरे लखनऊ के अंदर अभी बताया उन्होंने भी, जो लखनऊ में रहते हैं गौरव भी वहीं पे रहते हैं, 90% जो जगह है टोटल इलीगल अतिक्रमण है, क्या उनको तोड़ देंगे? जो डीएम बोल रहे हैं, डीएम की ऑफिस के बारे में सुन रहा हूं कि वो भी इलीगल जगहों के ऊपर बनी हुई है, तो वहां पे बुलडोजर चला देंगे क्या? लेकिन आपको छात्राओं के भविष्य के ऊपर क्यों बुलडोजर चलाना है? मेरा सवाल साफ है बीजेपी से, ये छात्राओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। नीट में भी आपने 22 लाख छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 12 से 13 छात्र ने आत्महत्या कर ली, महाराष्ट्र में टीईटी के वक्त में आपने छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
0: चूंकि एक शैक्षिक संस्थान है, क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकल सकता है? गौरव जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी पहले आप ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस समय सोच रही है कि इस पूरे, क्योंकि एक एक नोटिस का भी समय दिया गया है इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। क्या आप स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप ये सोच रहे हैं कि कानूनी रास्ता लेकर उसको किसी तरीके से रोका जाए, या फिर जो वारिस पठान कह रहे हैं कि क्यों नहीं जमीन पर उतरकर एक आंदोलन खड़ा किया जाए?
10: श्वेता, हम सबके बारे में सोच रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आपने सारे ऑप्शन बताए और बगैर किसी लाग लपेट के बताए। हमने सारे ऑप्शंस करेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी की एक भी इमारत को, एक भी ईंट को गिरने नहीं देंगे। ये बहुत साफ सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर में भी लूट करनी है और शिक्षा के मंदिर में भी लूट करनी है। राम मंदिर में चढ़ावे में लूट करनी है और शिक्षा के मंदिर में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक जितने गरीब बच्चे हैं उनके साथ भी इनको लूट करनी है, क्योंकि विश्व गुरु को विश्वविद्यालय पसंद नहीं है। आपको एक बात और मैं बताता हूं, बड़ी मार्के की बात है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, लगभग लोग बता रहे हैं कि 19,000 से ज्यादा स्कूल, 5,000 स्कूल तो एक बार बंद किए हैं, 5,000 स्कूल बंद कर दिए एक बार, और शायद 9,000 स्कूल के आसपास और समायोजन किया है, तो 14,000 स्कूल के आसपास इन्होंने बंद किए। और एक शख्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं। क्यों भाई, आपको छात्रों से क्या पढ़ते हुए लोग आपको खराब लगते हैं? ये आप पढ़ते हुए छात्रों का भविष्य आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप ये मौलाना क्या नाम जौहर की यूनिवर्सिटी का नाम और आजम खान के नाम से इतनी चिढ़ है कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग गए? नीट में 22 लाख बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं और मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लाखों बच्चों का और हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे दो तीन चीजें छोटी छोटी सी बताना चाह रहा हूं कि सरकारी स्कूल बंद करने वाले यूनिवर्सिटी भी बंद करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना श्वेता निर्माण की रेखा नहीं है, इनमें विध्वंस की रेखा है। लखनऊ में एक पूरा का पूरा अकबर नगर उजाड़ दिया इन्होंने, पूरा का पूरा, जिसमें दो मंदिर गिराए, एक मस्जिद गिराई, एक मस्जिद का पूरा लाइव शो चलाया और मेरे ख्याल से दो या चार मंदिर गिराए, उसका लाइव शो इन लोगों ने नहीं चलाया, क्योंकि गिराना इनका काम है। आप गिराते जाइए, हम बनाते जाएंगे। हम तो कहते हैं अभी गौरव भाटिया जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भाई जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आप है। आजम खान से दुश्मनी करो, चिढ़ करो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन देश के बच्चों से चिढ़ करोगे, देश की यूनिवर्सिटी से चिढ़ करोगे तो निश्चित तौर पर जनता भी करारा जवाब देगी और कांग्रेस भी करारा जवाब देगी।
0: पर इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी बातें सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमीक जमाई जी से मैं ये सवाल जरूर जानना चाहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप अवैध जमीन पर वो करें, और अगर अदालतों ने कहा है तो मैं वाकई समझना चाहूंगी और हमारे दर्शक समझना चाहेंगे आपसे कि वो जमीन और वहां पर निर्माण वैध था या अवैध था। लेकिन पहले गौरव भाटिया जी, आप अपना जवाब दे दीजिए।
7: धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम के प्रवक्ता को सुन रहा था। मैंने उच्च न्यायालय का एक आदेश पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि तब के जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे उन्होंने अपने को फायदा पहुंचाने के लिए फाइलों पे हस्ताक्षर किए और निर्णय लिया। एआईएमआईएम ने भी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करी, कांग्रेस ने भी नहीं करी। मैंने बताया 17 करोड़ में सरकारी जमीन पे सरकारी खर्चे से एक रोड बनी जिसे बंद कर दिया, इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। मैंने बताया बरेली की बच्चियों ने स्कूल जाना समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद कर दिया क्योंकि लड़के छेड़ते थे, डरती थी, इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। इसीलिए कांग्रेस का यह हश्र है, 403 में 2 सीटों पे है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 1200 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए, 200-250 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए, और बरेली की बच्चियां पढ़े ना, इसी तरह से बाकी जिलों में भी हाल था। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो बेसिक एजुकेशन है उसमें 2 करोड़ हमारे जो छात्र हैं उन्होंने नामांकन करके जो है पढ़ना शुरू किया है। यह है स्कूल चलो अभियान, मुफ्त किताबें देंगे, बस्ते देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, जूते देंगे, ये भी हमने शुरू किया है। 77 हमने गर्ल्स हॉस्टल खोले हैं, करीब 700 हमने नए हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोले हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज चर्चा का विषय ये नहीं है, चर्चा का विषय ये है कोई केवल अपने आप को मुसलमान कह के विक्टिम कार्ड खेले और गैर कानूनी काम करे, किसानों की जमीन पे कब्जा करे, न्यायालय कहे खाली कराओ, सरकार अपना काम करे, तो ये आके कहते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को। इस पे हमें कोई उत्तर नहीं मिला है और ये चिंता का सबब है। और मैं एक दलित, इन्होंने शब्द कहा तो मैं जरूर उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर दलितों से इतना प्यार आपको है तो आजम खान ने दलितों की और किसानों की जमीन हड़पी है, 14 FIR है, नंबर दे दूंगा। बताइए आजम खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम जो है आरक्षण होता है, लेकिन कोई आरक्षण दलित के लिए नहीं है। और जौहर यूनिवर्सिटी में श्वेता जी आरक्षण है 50% मुसलमानों के लिए, खत्म कर दीजिए। और दलितों की बात करिए, पिछड़े वर्ग की बात करिए, वो नहीं करेंगे। ये जो दोहरी राजनीति है, इसी वजह से जनता ने इन्हें सेवा करने का मौका नहीं दिया। 10 साल से समाजवादी पार्टी भी चुनाव जीत नहीं पाई।
0: जनता के पास वापस आवेदन पहुंचने वाला है राजनेताओं का। लेकिन अमित जमे जी, आपसे पहले रोहित सिंह भी चुकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से रोहित जी आपसे मैं समझ लेना चाहती हूँ कि क्या इसकी पोलिटिकल टाइमिंग पर भी सवाल उठना चाहिए।
11: देखिए, राजनीतिक टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा ये जनता तय करेगी। आदरणीय श्वेता जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जिस प्रकार से हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए बात किया, डायनामाइट से उड़ाने की बात की, यह प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिस प्रकार से चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी यूपी को डिस्टर्ब कर रहे थे, आज भी समाजवादी पार्टी की वही मंशा है। दूसरा प्रमुख बात, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने धमकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सनातन धर्मावलंबियों को कहा कि चिंता मत कीजिए, हम सरकार में अगर आ गए, जो आना इनको नहीं है, तो गोरखनाथ मंदिर के सभी आश्रम को हम लोग ठीक कर देंगे। इनको पता होना चाहिए गोरखनाथ मंदिर में जो परंपरा है वो त्रेता काल की है। आप गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में बोलकर इस देश और दुनिया के सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं, समाज और सनातन आपको माफ नहीं करेगा। अब आइए आजम खान साहब के अलजौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। क्रिमिनल्स के राइफल बंदूक 47 और 56 के प्रभाव पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में दलितों और पिछड़ों के जमीन पर जबरन कब्जा करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पवित्र धरती पर जो विश्वविद्यालय बनाया, अगर उसमें अवैध कागज पर बिल्डिंगें बनी हैं तो गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? निश्चित गिरेंगी। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधान के आधार पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा प्रमुख बात, जब काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा था तो कई मंदिरों को वहां से विस्थापित किया गया और एक बड़ा परिसर के निर्माण के लिए त्याग करना पड़ा, किसी ने चू नहीं कसा। उस समय समाप्तवादी पार्टी के अगुआ और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साहेबजादे कहां थे? मौलाना अखिलेशुद्दीन साहब, आज उनके दल के लोगों का छाती
0: काशी वाला, काशी के समय तो काफी काफी हंगामा हुआ था इस बात पर।
11: आजम खान साहब जेल में सड़ रहे हैं।
0: हाँ, नहीं
11: नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर। आदरणीय श्वेता जी, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, 20 सेकंड और दीजिए,
0: ठीक है,
11: ज्यादा समय नहीं लूंगा। आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, समाजवादी, आजम खान जेल में सड़ रहे हैं, पूरा परिवार छाती पीट रहा है, कुंभ की धरती पर और माघ की धरती पर अखिलेश यादव।
0: और दूसरी चीज है कि ये मौलाना अखिलेशुद्दीन टाइप की चीजें मत बोलिए।
11: और वैसे वैसे
0: थोड़ा रोहित जी देखिए, एक चर्चा है और विनम्रता के साथ मर्यादा में रहकर बातचीत होनी चाहिए। ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं वहां तक सही है, लेकिन शब्दों के चयन पे थोड़ा सा सोच लीजिए। अमित जमे जी, ये बताइए कि एक तो जो गौरव भाटिया ने आपके ऊपर आपसे वो तमाम सवाल पूछे हैं, उसके साथ हम बात आजम खान की कर रहे हैं। मतलब 16 मामलों में फैसला आया उनके ऊपर जो रहे, उसमें 8 में दोषी पाए गए, 8 में छूटे। ऐसा नहीं है कि कोई हम समाज सेवी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, जिन्होंने वो निर्माण करवाया, जिसके सामने जो सड़क है उसको लेकर आज तक विवाद यहां पर बना हुआ है। मैं इस बात को लेकर जरूर है कि ठीक है, क्या एक शैक्षिक संस्थान है, क्या किसी विकल्प पर सोचना चाहिए, सीधे क्या आपको बुलडोजर भेजना चाहिए या बुलडोजर का नोटिस, ये सारी चीजें परिचर्चा में हो सकती हैं। लेकिन क्यों अवैध निर्माण, क्यों अगर 2 इमारतों के लिए आप इजाजत ले सकते हैं, बाकी जो इमारतें हैं वहां पर खड़ी हुई अगर अवैध हो तो क्या यूं ही छोड़ दिया जाए?
12: श्वेता जी, मैं 2 बहुत छोटी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आजम खान साहब की जौहर यूनिवर्सिटी बनी तब जिला पंचायत को अधिकार नहीं था नक्शा पास करने का। RDA बना 2017 के बहुत बाद में जाकर, तो जाहिर सी बात है तब तो नक्शे का कोई प्रोविजन नहीं था। इस तरह से मैंने कहा कि लखनऊ में 90% भवनों के नक्शे नहीं है। रामपुर का डीएम का बंगला जहां से आदेश पारित हो रहा है मुरादाबाद होते हुए, उसका भी बंगला नक्शा पारित नहीं है। तो हमारा यह कहना है कि देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम पिछड़े लोग, दलित लोग, मुसलमान, हम हजारों साल से ये अपमानित जो शब्द है ना, ये जो जोकर बैठे हैं हमारे भाटिया जी के साथ जो कोई आए हुए हैं, रोहित सिंह साहब हैं, अरे तुम चोर चोरकटो, तुम्हें तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाओ। रामधन चोरी हुआ,
13: अमित जमे जी,
12: रामधन किसी रजनी ने चोरी नहीं किया,
13: जैसे उनको मैंने शब्द की मर्यादा,
12: तुम्हारी हिम्मत नहीं है,
13: चिरकुट जैसे शब्द
12: नहीं है रामधन पे सवाल करने का। मेरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी, अरे हम पिछड़े लोग, हम जानते हैं क्या समझते हो, हम पिछड़े लोग यादव समाज के बारे में, तुम्हारे जैसे जातिवादी गिरोह के लोग, तुम नाज़ी लोग क्या समझते हो, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि तुम जोकर हमारे पिछड़े समाज से आए हुए देश के दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री को माननीय अखिलेश जी को क्या समझ।
7: ये चर्चा का स्तर
13: होगा, रोहित जी, अमित जमे जी, हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। अमित जमे जी, आप इस बात का स्पष्टीकरण दें, अवैध है तो क्यों ना उस पर कार्रवाई।
12: 20 सेकंड, देखिए मैं 20 सेकंड दीजिए। मैंने इसलिए जिम्मेदारी से कहा है कि बार बार बुलडोजर नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डायनामाइट से उड़वा दें, कि उन्हें शिक्षा का मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें 2500 बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए। यही हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी, आजम साहब के ऊपर दबाव पड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, कई सौ नई पार्टी बना लीजिए और अखिलेश यादव जी को बर्बाद कर दीजिए, यह भी ऑफर आजम खान साहब के पास आया था, लेकिन आजम खान साहब ने कश्ती नहीं बदली,
13: बीजेपी की तरफ से ऑफर
12: नहीं किया गृहमंत्री अमित शाह के सामने।
13: अच्छा,
12: लेकिन क्योंकि असम का मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया, सुवेंदु अधिकारी ने सरेंडर कर दिया, वो जो प्रफुल्ल पटेल थे जिनको जेल भेज रहे थे गृहमंत्री जी, चक्की पीसिंग वाले वो जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, आजम खान साहब ने समझौता नहीं किया, इसलिए उनको निपटाने का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा। हमें इसको कहने में कोई लाग लपेट नहीं है, हमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जो आप हमें सिखा रहे हो,
7: चलिए
12: मैं दोबारा से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, याद रखो 6 महीने के बाद जो आपने समाजवादियों को सिखाया है, बुलडोजर का रुख किधर होगा, ड्राइवर कहां जाएगा, ये मां को सरकार
13: ने बताया। ये जो धमकी दे रहे हैं आप उसको सुन नहीं रहे हैं गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर 2027 के बाद कहां होने वाला है, आप समझ लीजिए अगर अभी नहीं संभले।
7: श्वेता जी, देखिए कभी कोई गली का गुंडा चिरकुट आता है, धमकी देता है, तो उससे दरोगा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी जैसी भाषा है वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हैट्रिक लगाएंगे, कोई नहीं है जो रोक सके भाजपा की सरकार दोबारा बनने से उत्तर प्रदेश में। और बुलडोजर न्याय का प्रतीक भी है, कानून का प्रतीक भी है, अगर वो माफियाओं पे चलता है, अतिक्रमण करने वालों पे चलता है, लेकिन उस बुलडोजर को चलाने के लिए सत्यता की शक्ति हाथों में होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी में है, अखिलेश यादव में नहीं है। और मैं बताऊं आपको कैसे गलत जो आप जानकारी दी जाती है,
12: दिमाग है।
7: अभी आपके शो पे कहा, सपा के बीच में ना बोले, श्वेता जी बीच में ना बोले प्लीज, देखिए हल्की ऊंची घटिया चर्चा क्यों हो, मैं तो अपनी बात इंतजार किया, बोलना चाहता हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता जनता को। प्लीज श्वेता जी आप आइए, उनको चुप कराइए।
13: नहीं नहीं आप बोलिए,
7: मुझे अपना वक्तव्य पूरा,
13: उन्होंने एक लाइन बोला फिर चुप हो गए,
7: यही उचित, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद श्वेता जी, इन्होंने एक गलत बात बोली, इन्होंने कहा जिला पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है अनुमति देने का। मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए, जो 2 अनुमति मिली जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं जो है गठित हुई थी, वो जो जिला पंचायत थी उसी ने दी, तो जब 2 की दे सकता है तो बाकी 38 की भी दे सकता है, जो उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि गलत इन्होंने किया है। दूसरी बात देखिए, इसका नक्शा पास नहीं है, 80% ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नक्शा पास नहीं है, तो कानून में एक बात कही जाती है, 2 रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, 2 गलत चीजें एक सही नहीं बना सकती। सब पे कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, लेकिन आपको तर्क ये देने हैं कि आपने न्याय संगत काम किया है जो इस चर्चा में नहीं आया है। तीसरी बात, देखिए बच्चों की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को है, योगी आदित्यनाथ जी को है। मैं आपको प्रमाण दे के बताता हूं, जब ये मामला आजम खां का लीज कैंसिल हुई और सुप्रीम कोर्ट में आया तो 300 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ये बोला गया इनकी तरफ से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा सर्वोच्च न्यायालय से हम इनकी जिम्मेदारी लेंगे, हम इनको दूसरे स्कूलों में भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 300 बच्चे अशिक्षित रह जाए और ये पढ़ाई ना कर पाए। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहे डायनामाइट लगा दो डायनामाइट लगा दो, भाई याद करिए विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अतीक अहमद के लिए कहा, मुख्तार अंसारी के लिए कहा, रोया कौन था मालूम है? अखिलेश यादव, उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहते कैसे मिट्टी में मिला दोगे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे।
14: मेरे
7: ये फर्क है, जनता को भाता है कानून का राज और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाए यही उचित है। देखिए ये सब
13: अभी जब ही अपनी बात रखें,
7: भाषा का उपयोग जब ये करते
14: श्वेता जी, मैं श्वेता जी
7: हाँ बस
14: श्वेता जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ,
7: गौरव
14: भाटिया जी
7: बकवास कर रहे हैं, ये सब अखिलेश यादव से कहिएगा।
14: गौरव भाटिया जी सुनिए आप, गौरव भाटिया जी
7: प्रमाण दे देते
14: मुझको आगे सिखाते हैं कि कैसा आदर्श होना चाहिए। आप किस तरह की घटिया घटिया लो लेवल की स्तर की डिबेट गौरव भाटिया जी आप करते हो, अखिलेशुद्दीन जैसा शब्द आप जैसे लोग इस्तेमाल करते हो, मैं अब आगे कुछ आगे पीछे नहीं लगना
7: चाहता,
14: सिंपली इतना कह रहा हूँ 2017 के बाद
7: मैंने कहा नहीं सॉरी,
14: जौहर विश्वविद्यालय को
7: आपकी याददाश्त पे
13: वो शब्द विश्वविद्यालय को रोहित जी की तरफ से कहा गया था और उनको उसी समय हमने मना किया। सुरेंद्र राजपूत जी जी
7: इनको याद ही
13: नहीं, गौरव भाटिया जी ने नहीं कहा था, वो रोहित सिंह ने जो हमारे पैनल पर है जिनको उसी समय हमने कहा कि इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग,
14: ठीक है
13: आप 50 वीडियो आपने कहा
14: मैं निकलवा दूं,
13: अब उनके पुराने वीडियोस मुझे नहीं मालूम। अमीक जामे जी हम आज इस पैनल की बात कर रहे हैं, वारिस पठान जी सबसे पहले तो आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों की बात वहां पर नहीं कर रही है जब गौरव भाटिया बार बार आरोप समाजवादी पार्टी पर यही लगा रहे हैं?
9: देखिए मैं दोनों बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स से देश नहीं चलेगा। और आपको शर्म आनी चाहिए, आप क्या बोलते हो हमने माफिया के अड्डों को उड़ा दिया बुलडोजर से, आप यूनिवर्सिटी की तुलना माफियाओं के अड्डों से कर रहे हो, हमने माफिया को उड़ा दिया, आप एक छात्रा की तुलना माफिया के साथ कर रहे हो, ये देश का छात्र देश का शिक्षक कभी नहीं भूलेगा आपकी बातों को। और बात नंबर दो, देखिए बराबर बात है श्वेता जी, हमने तो पहले भी कहा था आज भी बोलो, समाजवादी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट ले, लेकिन उनके हक की आवाज कभी नहीं करते ये लोग। आज मैं तो सोच रहा था कि अगर ये समाजवादी पार्टी वाले सबके सब रस्ते पे उतर जाते, सब धरना आंदोलन करते तो काम होता उनका, क्योंकि बाद में पता चला कि नाम तो मौलाना मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी और उसके जो बनाया उसका नाम है खान, तो नहीं उतरेंगे ये लोग। अगर वाकई में यादव कोई किया होता तो अब तक सब उतरते ना, तो ये तो देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और योगी जी तो हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते ही है, वो तो सबको पता ही है। अब सॉफ्ट हिंदुत्व में इनका ये कि मुसलमान का हम वोट लेंगे, वो हमारे बाप की जागी है, मगर हम करेंगे कुछ नहीं, मुसलमानों को धक्के देके स्टेज से उतार देंगे, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं होने देंगे, वो सब चलेगा। और कहा हम आगे चुनाव लड़ने के लिए तो हम पे इल्जाम लगा देंगे कि MIIM तो बी टीम है डी टीम है, अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुसलमानों की दलितों की माइनॉरिटी की हक की आवाज हम उठाते थे उठाते रहेंगे। और अब यूपी का भी मुसलमान जाग चुका है, अब दरी नहीं बिठाएगा, अब दरी नहीं बिछाएगा कोई। अब हमने कहा ना, अब देखिए क्या होगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे, हमको ऐसे लेके जेड टीम नाम बोला, हमने कहा अलायंस माने

0: दिया कि 38 बिल्डिंगों को तोड़े। ये तो उन विदेशी आक्रांताओं की तरीके से हो गए हैं श्वेता, जिन लोगों ने क्या नाम पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, वो तो विदेशी यवन थे, विदेशी आक्रांता थे। ये देशी आतंकवादी हैं या देशी आक्रांता हैं मुझे नहीं पता, ये इनको जरूर बताना होगा कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने का कौन सा मैंडेट इनको मिला हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई गलत है, थोड़ी बहुत नक्शे की गलती है, उसको कंपाउंडिंग से दूर कर दीजिए। आपको नाम से चिढ़ है, नाम आप बदलने की बात कर लीजिए। आपको काम से चिढ़ है तो भी बताइए, लेकिन देश के बच्चों का भविष्य आप बना तो सकते नहीं। 19,000 स्कूल आपने बंद कर दिए, देश में लाखों स्कूल बंद कर दिए, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं। आप रामपुर में 10 यूनिवर्सिटी बना दीजिए ना सरकारी, भाजपा बता दे पिछले 9 साल में यूपी में और पूरे देश में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनी है। बनने की बात नहीं है, बिगाड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं।
1: क्या छात्रों के हित में, क्या छात्रों के हित में वहां पर सरकार सोच सकती है कि वहां पर जो इमारत है उसको लेकर एक फैसला कुछ और लिया जाए?
2: श्वेता जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, सरकार हमेशा वो फैसला लेती है जो प्रदेश के हित में हो, जनता के हित में हो और छात्रों के हित में हो। लेकिन देखिए, कानूनी जानकारी कम होने के नाते क्या क्या बोल जाते हैं।
0: और आपने यूनिवर्सिटी दोनों
2: अगर
0: को एक साथ जोड़
2: अवैध निर्माण हुआ है और अनुमति नहीं ली गई है, बीच में ना बोले प्लीज।
1: पर गौरव जी दोनों चीज का जवाब दीजिए, जो वो कह रहे हैं ना, उन दोनों चीजों का जवाब दीजिए। एक, क्या ये ऐसा हो सकता है? दूसरा ये कि कोर्ट ने तो नहीं कहा कि डिमोलिश किया जाए, ये दोनों का जवाब आप दें जी।
2: मैं उत्तर दे रहा हूँ श्वेता जी, बिल्कुल मेरी तो जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो क्या हम भी नहीं देंगे? हम देंगे। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो कानून के हिसाब से उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, नोटिस दिया जाता है और बताया जाता है जवाब दो। जो मैंने आपको बताया कि 29 जून को दिया गया, जवाब नहीं दिया, आगे की कार्रवाई होती है कि उसको ध्वस्त किया जाए, डेमोलिश किया जाए। जो इलीगल ऑक्यूपेंट होता है या गलत निर्माण करवाता है वो कोर्ट जाता है और कोर्ट रोक लगाता है कि अभी तोड़ा नहीं जाए। इस मुकदमे में कोई रोक नहीं लगी है। अब जब रोक नहीं लगी है तो स्वाभाविक है कानून के तहत एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन हो रहा है। तभी मैंने कहा अगर आपको चिंता है आप हाईकोर्ट से आदेश लाइए कि रोक लगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे कंपाउंडिंग, तो मैं इनको बता दूं इसी एक्ट का बीच में ना
0: इसी एक्ट में एक प्रावधान है। आपने आज तक अपने चैनल के करोड़ों दर्शकों को बरगलाया क्यों?
2: देखिए श्वेता जी, ये गलत बात
0: सर, नहीं
2: ये हल्की चर्चा
1: है, वो ऐड कर रहे हैं ना सवाल, ये बता दीजिए।
0: और इस तरीके से झूठ बोल रहे
1: सुरेंद्र राजपूत, वो कंपाउंडिंग के सवाल पर बोल रहे हैं।
2: मैं चीखम चिल्ली करने नहीं आया, अगर आप नहीं सुनना चाहते आप चिल्लाते रहिए। कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडिंग पे आते हैं, सेक्शन 31 और सेक्शन 32 है इस एक्ट का। श्वेता जी, कंपाउंडिंग जो है ना, आप ये डिस्क्रिशन होता है अथॉरिटी का और आवेदन दिया जाता है उस व्यक्ति द्वारा जिसने अवैध निर्माण कराया है। तो अगर ऐसा कोई आपने आवेदन दिया नहीं, उसके बाद भी अथॉरिटी तय करेगी समय आने पे, तो जब समय आएगा तो करेगी। लेकिन जजमेंट्स हैं कि अगर इलीगल निर्माण बहुत ज्यादा है, या मैंने कहा कल को बच्चों की जान को खतरा हो, बिल्डिंग गिर जाए, तो कौन जिम्मेदारी
1: ठीक है? अमित जमी जी,
2: अथॉरिटी अपने
1: छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ। अदालत जाएंगे आप लोग, आंदोलन करेंगे, क्या प्लान है आगे?
3: बहुत छोटा सा। मैंने आपसे बहुत साफ कहा, पहली बात तो यह है कि बच्चों की जिंदगी का अगर इतना खतरा है, जो बच्चे लखनऊ में मारे गए अग्निकांड में, उस बिल्डिंग का डेमोलिशन क्यों नहीं हुआ, इनसे पूछ लीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का वो मामला जो रामपुर पब्लिक स्कूल का था, आपने पूरे देश के सामने आज तक के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करते हुए आपने कहा कि वो यूनिवर्सिटी का मामला था। पहले तो माफी मांगिए आज तक से, श्वेता जी से और पूरे देश से, जो आपने मिसलीड किया पूरे यूनिवर्सिटी और रामपुर स्कूल के मामले को। अरे आप वकील हो यार,
1: इस मामले में आप लोग अदालत जा रहे हैं?
2: झूठ बोल रहे हैं,
1: मिस गाइड कर आगे डेमोलिशन के खिलाफ
2: माफी मांगो।
1: पहले माफी मांगो,
2: नहीं किया वो, मेरे आदेश हाथ में है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं,
3: रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले को
2: लैंड था
3: आपने विश्वविद्यालय से जोड़ के बताया
2: कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बच्चे 300 पढ़ रहे थे, हमने
1: जिम्मेदारी। चलिए, इस जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए हल्ला बोल में एक ब्रेक का वक्त हो चला है। देश और

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: गारंटीड रिटर्न्स है ना। गारंटीड रिटर्न्स तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना। अर्ज किया है पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
5: वाह वाह वाह वाह।
4: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
6: समझ कर इन्वेस्ट कर।
7: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
16: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
20: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
21: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
19: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
22: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
23: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
24: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए, घुमाने की आदत छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आज तक वर्टिकल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा थी।
1: अपने
0: आज अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सियासत का मुद्दा बन गई है। रामपुर के जिला प्रशासन ने बुधवार को जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध करार देकर उन्हें गिराने का रास्ता साफ किया है। नोटिस मिलने के 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी ने खुद इमारतें नहीं गिराई तो योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर पहुंच जाएगा। यह सवाल आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलने की नौबत का ही नहीं है, सवाल खुद आजम खान की शख्सियत है और बदल गई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। बीते कई वर्षों में कई बार आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का नोटिस मिलने की खबर पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढाएगी, जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे?
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: जौहर यूनिवर्सिटी के जिन 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण होना है उनका नक्शा पास नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी है पहले वो जगह जिला पंचायत के अधीन थी जिससे दो भवनों का नक्शा पास हुआ था। 2024 में रामपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद अब RDA ने नियमों के हवाले से कार्रवाई की बात की है। इस बीच 2016-17 में सरकारी फंड से यूनिवर्सिटी में बनी 4 लेन की सड़क को PWD विभाग ने आम रास्ता घोषित कर दिया है। सड़क पर यूनिवर्सिटी के निजी इस्तेमाल के मसले पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उधर आजम खान के खिलाफ अब तक की इस सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ सरकार बल्कि अखिलेश यादव को भी घेरा।
3: जो अखिलेश यादव राम मंदिर के विषय में 28 दिन में 29 ट्वीट करते हैं, 14 प्रेस वार्ता करते हैं, मस्जिद मदरसा खानकाह पर टारगेट किया गया, एक ट्वीट एक आंदोलन इनके विधायक और इनके द्वारा नहीं किया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, कारोबार पे हमले हुए और तमाम इश्यूज, वक्फ का इश्यूज आया, कभी भी ये मुसलमानों के विषय पे बात नहीं करते क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं।
0: जुलाई 2024 में आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट के हिस्से पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब 2 साल बाद जौहर यूनिवर्सिटी का नंबर आ गया।
4: सर, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे जमीन।
5: मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
0: गुरुवार को आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंची थी। उन्होंने अपने अगले कदम पर कोई संकेत नहीं दिया।
6: 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकती।
5: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
2: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।

0: हल्ला बोला आप देख रहे थे इस मुद्दे पर कि आजम खान की बनाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध अब बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। आपने अलग अलग राजनीतिक प्रवक्ताओं को सुना, अभी के लिए इतना ही। आगे 7 बजे की खबरों के साथ मारिया शकील हाजिर होंगी, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

शुक्रिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डीलिमिटेशन बिल पर पीएम को खड़गे ने लिखा लेटर, ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। टीएमसी को एक बड़ा झटका, कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, ममता का बयान, जिसको जाना है वो जाए, फिर बना सकती हूं पार्टी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर सियासत, अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हल्ला, कांग्रेस ने भी किया विरोध। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात, दम घुटने से एक भक्त की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। शहबाज और मुनीर के खिलाफ पीओके में बगावत तेज, हालात पर काबू के लिए पाकिस्तान रेंजर्स तैनात, रावलकोट में सेना की बड़ी तैयारी।

0: शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुरी में इस समय तेज बारिश हो रही है, इसके बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा रूट पर मौजूद हैं।
1: में धक्का धुकी में हम लोग भी थे, तो हम लोग तो चले गए 3 जन घर होटल में, मगर वहां से फिर यहां से फोन किया कि आपका परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी से आइए इमरजेंसी में। अब ये क्या हुआ है नहीं मालूम हमको, ये भी हम लोग के साथ ये भी भर्ती थे, पैर में लगा हुआ है इनको भी, बाकी हम 3 आदमी सिर्फ निकल के चले गए, बाकी कितना का चोट लगा नहीं मालूम। हम लोग 250 आदमी आए हुए।
0: तापस सेन गुप्ता हमें हालात बताएंगे। तापस बताइए, वहां पर अभी क्या हो रहा है, क्या है स्थिति?
2: देखिए, फिलहाल जो रथ यात्रा है उसके इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वो अभी भी जाम है, कई लाखों की तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं वहां पर। लेकिन जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है कि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनमें से 40 से अधिक लोग को अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी तक औपचारिक रूप से एक शख्स की मृत्यु बताई जा रही है और पूरे इलाके का जायजा इस समय सरकारी रूप से अधिकारियों की तरफ से लिया जा रहा है। पिछले साल हमें पता है गुंडीचा में इसी तरह का एक भगदड़ की स्थिति बनी थी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और इस बार सिंह द्वार के पास यह घटना हुई है। हालांकि हर मुमकिन जो अरेंजमेंट से उसे रखा गया था, 33 से ज्यादा इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स बनाए गए थे कि अगर 2025 जैसी स्थिति पैदा होती है तो जल्द से जल्द लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। और माना जा रहा है कि इस वजह से जो लोगों को इवैक्यूएट करना वहां से जल्द मुमकिन हो पाया है। लेकिन फिलहाल सरकारी तौर पर यह बताया जा रहा है कि एक शख्स की मृत्यु हुई है और इसको पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय एक इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किया गया है। फिलहाल जो स्थिति है, 40 लोग अस्पताल में भर्ती है और इस पूरे मामले को लेकर सरकारी तौर पर एक रिव्यू किया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई और इतने सारे इंतजाम रखने के बावजूद ये घटना किस तरह हुई, इस बारे में भी चर्चे जोरों के हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी भी लाखों की तादाद में लोग रथ के पास मौजूद हैं और उन्हें धीरे धीरे जो सेफ पैसेज करके उन्हें वहां से निकालने की जो कोशिश है वो धीरे धीरे श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद वहां से निकालने की जो
0: तैयारी के बावजूद इस घटना का होना सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन तापस आप बता रहे हैं कि 40 लोग घायल हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है वो भी दम घुटने से। ये तस्वीरें लाइव आ रही हैं पुरी से, जहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। अब बात जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे विवाद की। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिन में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत हो रही है।
3: रामपुर में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की यह इमारत चंद रोज की मेहमान है। इस विश्वविद्यालय के परिसर में कुल 40 इमारतें बनी हैं, जिनमें से 38 को प्रशासन ने अवैध करार दिया है, यानी इन 38 इमारतों पर बुलडोजर चलेगा।
4: पूरे प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
3: कल ही जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर जाने वाले रास्ते को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया गया जिसमें ये लिखा गया कि ये आम रास्ता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी जाएगी तो यहाँ पढ़ने वाले 3000 छात्रों का क्या होगा? छात्र पैनिक न करें, इसलिए यूनिवर्सिटी के गेट पर काउंसलर बिठाए गए हैं।
5: यही कि हमें गाइड करना है बच्चों को, काउंसलिंग टाइप।
6: किस तरीके की काउंसलिंग?
5: ये बच्चे और जो पढ़ रहे हैं वो किन कोर्सेज में, अगर ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो कहाँ जा सकते हैं? जो और कॉलेजेस हैं जहाँ अवेलेबल है कोर्स, वहाँ जा सकते हैं। यही
3: आजम खान के परिवार को नोटिस दिया जा चुका है। 15 दिन का समय दिया गया है कि वो खुद ही अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दें। नोटिस के बाद आज आजम खान की पत्नी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची।
7: सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है। बस और मुझे कुछ नहीं करना। 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
8: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
7: अभी कुछ कह नहीं सकती।
3: अब इस पूरे मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। सरकार कह रही है कि कानून का कोड़ा चला है और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ ढहाना जानती है, बनाना नहीं।
9: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते।
11: जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है।
3: सवाल यह है कि आजम खान क्या ऊपरी अदालत का रुख करेंगे या अवैध इमारतों को खुद ढहाएंगे। रामपुर से आमिर खान के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अब बात चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत की। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा करेंगे। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।

0: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
1: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
0: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
2: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
0: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है।
4: कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
0: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
5: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
0: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
6: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
0: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
6: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
0: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
7: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
8: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
0: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां ममता बैनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं।
0: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई हैं।
9: देख लो, 8 जून एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাঙ্কস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
0: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
10: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
9: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
0: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
9: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
11: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
0: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
3: अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए जो आयोग गठित किया था, उसने अपनी रिपोर्ट सीएम मोहन यादव को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इसी मॉनसून सत्र में एमपी सरकार इसे विधानसभा में पेश कर सकती है। इस बीच मोहन यादव के यूसीसी पर दिए गए एक बयान ने सियासत को राज्य में तेज कर दिया है।
12: हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग, हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग, लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहने भी हमारी बहने, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर, आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं।
13: यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है, इसमें ये भी अपने को भूलना नहीं चाहिए कि इसे संविधान का अंग बनाया गया था जब कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए।
3: और अब बात बाजार की। क्या है शेयर बाजार का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का रेट, आइए देखते हैं।
14: कारोबार के दौरान मिले जुले माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स महज एक अंक बढ़कर 77,187 और निफ्टी 6 अंक टूटकर 24,073 पर बंद हुआ। सेंसेक्स को आईटी शेयरों में हुई खरीदारी का सहारा मिला, जबकि वित्तीय और बीमा शेयरों में कमजोरी के चलते निफ्टी दबाव में रहा। शेयर बाजार के मिश्रित रुख के बीच रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 96.36 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी आज गिरावट का रुख रहा और सोना 195 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 141,713 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 1,226 रुपए टूटकर 2,18,485 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई।
3: अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुका है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जिसके साथ ही अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन के साथ होगा।
15: मेसी में हो गया है अर्जेंटीना। आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा है। यह खुशी इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पचासी मिनट तक हार की कगार पर खड़ी टीम ने मैच के आखिरी 7 मिनट में ऐसी वापसी की जिसने फिर दुनिया को दिखा दिया अर्जेंटीना क्यों है चैंपियन टीम। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में एंथोनी गार्डन के गोल से बढ़त बनाई। 85वें मिनट तक अर्जेंटीना 0-1 से पीछे था, लेकिन फिर शुरू हुआ मेसी मैजिक। लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल उन्हीं की शानदार असिस्ट से आए। पहले 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा और फिर इंजरी टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल करके इंग्लैंड के सपनों को तोड़ दिया। जैसे ही अंतिम सीटी बजी, अर्जेंटीना में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। इस जीत के साथ अर्जेंटीना 7वीं बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना स्पेन से होगा। वहीं इंग्लैंड का 1966 के बाद पहली बार फाइनल खेलने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अब तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना फ्रांस से होगा। एक बार फिर साबित हुआ कि जब मैदान पर मेसी होते हैं तो आखिरी मिनट तक मुकाबला खत्म नहीं माना जाता। अब दुनिया की निगाहें विश्व कप फाइनल पर टिकी हैं। जहां अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल के सबसे बड़े ताज की जंग होगी। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात खाड़ी देशों में जारी तनाव की, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका के ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से अब दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी कर रहे हैं।
14: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई।
3: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
19: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
20: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
19: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
21: You're listening to MSNBC.
19: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
22: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
5: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
4: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
6: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
7: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: पापा।
13: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
13: छक्का?
14: सब कैशलेस हो गया है।
13: हाँ,
15: ला भाई मेरा बैट।
16: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
15: चार्ज हुआ यार।
17: बैट किसका है?
18: टाटा AIG है तो भरोसा है।
19: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
20: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
21: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
22: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
23: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
24: वी आर ओवर जिमी।
25: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: वी आर ओवर जिमी।
12: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: महाराष्ट्र की सियासत में इंडिया गठबंधन को फिर से करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी ने खुला ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल का शरद पवार की एनसीपी समर्थन करेगी।
1: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented?
0: इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एनसीपी शरद चंद्र पवार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों के पक्ष में खड़ी है। अगर शरद पवार की पार्टी की ताकत देखी जाए तो लोकसभा में 8 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायक हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 MLC हैं। सुप्रिया सुले के ऐलान के बाद परिसीमन जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीतिक संदेश जाता दिखाई दे रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें बिल का समर्थन करना पड़ रहा है, वरना विरोध करने पर TMC जैसा हाल होना तय है।
2: उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए वो अगर करते हैं समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को।
0: परसीमन का मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। दक्षिण भारत के कई दल आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर अपनी आशंकाएं जता चुके हैं। ऐसे माहौल में शरद पवार गुट का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभाव रखने वाली इस पार्टी का ये रुख संसद के भीतर होने वाली बहस को नई दिशा दे सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

डिलिमिटेशन बिल पर प्रधानमंत्री को खड़गे ने लिखा लेटर, ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। टीएमसी को एक और झटका, कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, ममता का बयान, जिसको जाना है वो जाए, फिर बना सकती हूं पार्टी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर सियासत, अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हल्ला, कांग्रेस ने भी किया विरोध। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात, दम घुटने से एक भक्त की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। शहबाज और मुनीर के खिलाफ पीओके में बगावत तेज, हालात पर काबू के लिए पाकिस्तान रेंजर्स तैनात, रवाला कोर्ट में सेना की बड़ी तैयारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं विक्रांत। बात कर रात की है। कल रात दुनिया की सांसें रुक गई थी। ऐसा लगा मेसी का जादू नहीं चलेगा, ऐसा लगा अर्जेंटीना इंग्लैंड से हार जाएगा और वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर आए वो सात मिनट जिसमें दुनिया ने एक बार फिर मेसी मैजिक देखा। वो सात मिनट जहां पर अर्जेंटीना ने ताबड़तोड़ दो गोल किए और पूरी दुनिया अब एक बार फिर एक ही सुर में एक बात कह रही है कि लियोनेल मेसी से बड़ा खिलाड़ी इस फुटबॉल ने, इस खेल ने देखा नहीं। मेसी अब वहां पहुंच गए हैं जहां पर ना सिर्फ वो गोल कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया की इस बहस को भी खत्म कर दिया है कि फुटबॉल का गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। इस वर्ल्ड कप में मेसी ने एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी टीम को जीत दिलाई, तब जब उनकी टीम बुरी तरह पिछड़ रही थी, जब वो हार रही थी। कल रात भी ऐसा ही हुआ। अचानक से 85 मिनट के बाद मेसी के दो असिस्ट यानी कि उन सात मिनट में दो गोल और अर्जेंटीना इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए। मेसी दरअसल वर्ल्ड कप के अब तक के ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं, 21 गोल हैं उनके। काफू के बाद वो तीन वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। लेकिन अगर अर्जेंटीना फाइनल में जीतती है तो वो लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाले लियोनेल मेसी 18वें खिलाड़ी होंगे। अब तक लगातार दो बार वर्ल्ड कप ब्राजील के 14 और इटली के 3 खिलाड़ियों ने ही जीता है। लियोनेल मेसी कैसे फुटबॉल का नया इतिहास रच रहे हैं, हमारी विशेष की पहली रिपोर्ट में देखते हैं।
1: मेसी, ओह इंग्लैंड आर इन ट्रबल एंड मेबी थ्रू लाउटारो मार्टिनेज दे आर गोइंग आउट इन द सेमीफाइनल स्टेज। इट्स बीन हेडर आफ्टर हेडर आफ्टर हेडर आर गोइंग टू द 2026 फाइनल। मेसी इंस्पायर्ड द कमबैक। England scored first as they did in 2018 when they lost to Croatia 2-1. Enzo Fernandez equalized here.
2: Messi, the GOAT, greatest of all time, football का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पुर्तगाल का रोनाल्डो पीछे रह गया, फ्रांस का किलियन एम्बापे भी बाहर हो गया, इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगम भी छूट गए, नॉर्वे का हालैंड भी हार कर बाहर हो गया, बस रह गया तो सिर्फ अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। मेसी फुटबॉल का वो जादुई खिलाड़ी है जिसने बीती रात पूरी दुनिया में न जाने कितने लोगों को जगा कर रखा। सेमीफाइनल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में था लेकिन लोग सिर्फ मेसी के लिए जगे हुए थे, मेसी का मैजिक देखना चाहते थे। 85 मिनट तक तो लगा कि अर्जेंटीना अब हार गई। ये अर्जेंटीना के एक न्यूज रूम की तस्वीरें हैं। जैसे ही टीम 1-0 से पीछे चल रही थी तो मायूसी छा गई, यही हाल पूरे अर्जेंटीना में था। लेकिन उसके बाद मेसी के असिस्ट पर एंजो फर्नांडिस ने पहला गोल किया और जब लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा और पेनल्टी शूट आउट भी हो सकता है, लेकिन ठीक 7 मिनट के बाद मेसी ने एक और शानदार असिस्ट किया और लोरेटो मार्टिनेज ने कोई गलती नहीं की, हेडर सीधा गोल के अंदर और अर्जेंटीना 2-1 से आगे। देखिए कैसे अर्जेंटीना का जो न्यूज रूम मायूस था उसमें सेलिब्रेशन शुरू हुआ।

और यही हाल पूरे अर्जेंटीना का है। ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की तस्वीरें हैं, जहां पूरी रात ऐसे ही सेलिब्रेशन चलते रहे। ब्यूनस आयर्स का यही स्क्वायर पहले बिल्कुल खाली था, क्योंकि उनकी टीम हार रही थी। और देखिए, जैसे ही अर्जेंटीना की जीत हुई, कैसे लोग आते गए, हजारों लोग जमा हो गए। मेस्सी के फैंस पूरी दुनिया में जहां भी हैं, ऐसे ही जश्न चल रहा है। अर्जेंटीना में तो मेस्सी गॉड है। मेस्सी की बड़ी सी मूर्ति लगी है और उसके सामने आतिशबाजी हो रही है। पूरा अर्जेंटीना ऐसे ही कल से जश्न में डूबा हुआ है। अकेले मेस्सी ने कैसे पूरे इंग्लैंड का सपना तोड़ा है, इसकी गवाही इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स दे रहे हैं। इंग्लैंड के अखबारों में लियोनेल मेस्सी छाए हुए हैं। पहले पेज पर ही इंग्लैंड की हार और मेस्सी की जीत की बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी है। मिरर ने लिखा है शैटर्ड, डेली मेल ने लिखा है सपना टूट गया, गार्डियन ने लिखा है

0: तक भी।
1: गौर फरमाइए कि अर्जेंटीना ने कई मैचों में वापसी की है और स्पेन ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल खाया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेसी ने फुटबॉल को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये लियोनेल मेसी का जलवा है कि हिंदुस्तान में भी लोग आधी रात को जागकर सिर्फ मेसी की वजह से वर्ल्ड कप देख रहे थे। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि मेसी 10 साल पहले फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेसी से ज्यादा अर्जेंटीना के लोगों को उन पर भरोसा था। बात 2016 की है, जब मेसी ने रिटायरमेंट लिया तो अर्जेंटीना के लोगों ने एक कैंपेन चलाया और उन्हें अपना रिटायरमेंट वापस लेने को मजबूर किया, और नतीजा देखिए कि मेसी अर्जेंटीना को चौथा वर्ल्ड कप दिलाने को तैयार बैठे।
2: July 19 को जब न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में लियोनेल मेसी स्पेन के सामने होंगे तो फुटबॉल प्रेमियों के लिए वो एकदम अनोखा क्षण होगा। ये बताने से पहले आप जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मेसी बहुत यंग है और एक छोटे से बच्चे को बाथटब में नहला रहे हैं। असल में ये एक फोटोशूट था जो स्पेन में ही हो रहा था कई साल पहले। मेसी स्पेन में बार्सिलोना के लिए खेलते थे और ये छोटा सा बच्चा था लेमी यमाल। वही लेमी यमाल जो बस कुछ ही महीनों का था और मेसी की गोद में था, वो अब फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हीं मेसी के सामने होगा। लेमी यमाल 19 साल के हो चुके हैं और स्पेन के शानदार फॉरवर्ड हैं। उसी पोजीशन पर खेलते हैं जिस पर मेसी खेलते हैं। लेमी यमाल को स्पेन का भविष्य बताया जा रहा है। 19 जुलाई को यमाल मेसी के सामने होंगे। निश्चित तौर पर यमाल के भी आइडल मेसी ही हैं। वही मेसी जो अपनी एक पूरी हो चुकी कहानी को और ज्यादा परफेक्ट कर रहे हैं। 4 साल पहले जब लियोनेल मेसी ने अपने देश को वर्ल्ड कप जितवाया तो लगा कि यह सब एक हैप्पी एंडिंग हो गई है, एक महान खिलाड़ी का महान सपना पूरा हो गया। लगा कि मेसी की कहानी पूरी हो गई, अब उस पर कोई बायोपिक बनेगी, लेकिन मेसी की कहानी अधूरी थी। मेसी 2022 में 35 साल के थे, अब 39 साल के हैं और अर्जेंटीना को दूसरा वर्ल्ड कप दिलाने की दहलीज पर खड़े हैं, अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने से बस एक कदम दूर। मेसी फुटबॉल की दुनिया के वो महान जादूगर हैं जो 13 साल की उम्र में स्पेन चले गए थे। विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से खेलने के लिए बार्सिलोना में मेसी ने बहुत से नए रिकॉर्ड गढ़े। वो तब भी अपने वक्त के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते थे।
1: देखे ना, बात तकदीर लिखने वाले की होती है, क्योंकि 2016 में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, वापिस आए, एक वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं और हो सकता है कि रविवार एक और वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के नाम हो। कल रात उन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड ने 55 मिनट में एक गोल कर दिया था। उस वक्त तक अर्जेंटीना ढीला ढाला खेल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से मेसी और अर्जेंटीना के बाकी खिलाड़ियों ने वक्त को समझा। 85 और उसके बाद 92 मिनट में 2 गोल करके अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। फाइनल स्पेन के खिलाफ।
3: मेसी में हो गया है अर्जेंटीना। आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा है। यह खुशी इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पचासी मिनट तक हार की कगार पर खड़ी टीम ने मैच के आखिरी 7 मिनट में ऐसी वापसी की जिसने फिर दुनिया को दिखा दिया अर्जेंटीना क्यों है चैंपियन टीम। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में एंथोनी गार्डन के गोल से बढ़त बनाई। 85वें मिनट तक अर्जेंटीना 0-1 से पीछे था, लेकिन फिर शुरू हुआ मेसी मैजिक। लियोनेल मेसी भले ही गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल उन्हीं की शानदार असिस्ट से आए। पहले 85वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने बराबरी का गोल दागा और फिर इंजरी टाइम में लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल करके इंग्लैंड के

0: सपनों को तोड़ दिया। जैसे ही अंतिम सीटी बजी, अर्जेंटीना में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। इस जीत के साथ अर्जेंटीना सातवीं बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया। अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना स्पेन से होगा। वहीं इंग्लैंड का 1966 के बाद पहली बार फाइनल खेलने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अब तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना फ्रांस से होगा। एक बार फिर साबित हुआ कि जब मैदान पर मेसी होते हैं तो आखिरी मिनट तक मुकाबला खत्म नहीं माना जाता। अब दुनिया की निगाहें विश्व कप फाइनल पर टिकी हैं। जहां अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल के सबसे बड़े ताज की जंग होगी। आज तक ब्यूरो।
1: फुटबॉल के खेल को द ब्यूटीफुल गेम कहा जाता है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और हिंदुस्तान इस वक्त अर्जेंटीना को सपोर्ट करेगा फाइनल में। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, ये फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान है और स्पेन में भी लियोनल मेसी के ज्यादा फैंस होंगे क्योंकि वो ज्यादातर करियर अपना एफसी बार्सिलोना के लिए खेले हैं और वहां पर तो बच्चा बच्चा मेसी की जर्सी पहनता है। लेकिन उस दिन क्या वो मेसी के साथ होंगे या फिर अपने मुल्क स्पेन के साथ होंगे, हमारी रहेगी नजर। फिलहाल इजाजत दीजिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
5: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: इस बार इंडिया गठबंधन में बहुत टूट फूट हो गई है, आपकी शक्ति काफी कम हुई है। अहम बिल अगर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के आते हैं, तो फिर कैसे इंडिया गठबंधन डील करेगी इसको?
8: देखिए, आरक्षण बिल पर हम समर्थन दे चुके हैं, पर महिला आरक्षण बिल के नाम पर अगर संविधान तोड़ा जाएगा, लोकतंत्र जिस तरह से स्वरूप बनाया जाएगा, परसीबन का मेरा इशारा है, सीटों के नंबर पर मेरा इशारा है, तब भी विरोध किया था, अब भी विरोध करेंगे। तब भी हमारा बहुमत था, आज की तारीख में भी हमारा बहुमत, आने तो दीजिए उसको, भरपूर विरोध होगा।
7: सुप्रिया सुले ने इंडिकेशन दिया है कि एनसीपी एसपी भी सरकार का समर्थन कर सकती है अगर डिलिमिटेशन में 50% का इजाफा सभी राज्यों को दिया जाए।
8: देखिए, सुप्रिया का बयान मैंने सुना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने कहा वो आ जाए, हम उसे देखें। पिछली बार तो धोखा किया था, अमित शाह जी बोल गए कि 50% हम बढ़ाएंगे, और जब ड्राफ्ट देखा गया तो उसमें था ही नहीं। तो उसने कहा पहले लेके आए, तब हम अपने विचार रखेंगे। उसने कहा मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे। आज मैं सुबह का बयान सुप्रिया का बता रहा हूँ।
7: सर, सोनम वांगचुक के अनशन का जो 19वां दिन है, वो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि लार्ज हार्टेडनेस दिखाएं और उनके मुद्दों को भी अकोमोडेट करे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन।
8: देखिए, वो बाद में आए, राहुल गांधी पहला आदमी है जिसने पूरी ताकत के साथ, जब ये पेपर लीक आउट हो रहे थे तो वो टकराया है सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो इस मुद्दे पे, जहां जनहित का मुद्दा है, छात्रों के हित के मुद्दा है, हम पहले से आवाज उठा रहे, आज उनकी भी आवाज उठ रही। मैं तुमसे अपील करूंगा कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है मोदी की, तो यहाँ अनशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जन आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से बनाए, और इस सरकार को किस तरह हम अवदस कर सकें लोकतांत्रिक ढंग से, उस पर विचार करें। और उन्हें चाहिए था कि सबसे बड़े दल कांग्रेस से विचार विमर्श करके तब कदम उठाते। खैर, नैतिक रूप से हम उनका समर्थन करते हैं, और ये मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा था, कांग्रेस का मुद्दा था।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: परिसीमन बिल पर खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। मॉनसून सत्र के लिए सरकार भी बना रही है रणनीति, कल राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक, अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज रहेंगे मौजूद। ममता को लगा एक और झटका, अब राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा, ममता की दो टूक, जिसे जाना हो 21 जुलाई तक चला जाए, फिर से बना सकती हूं पार्टी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद के बयान पर बवाल, संस्कृत को बताया विदेशी भाषा, बीजेपी और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे हालात, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत, भारी भीड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबकी निगाहें इस समय देश की राजधानी दिल्ली पर लगी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही दिल्ली में मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मानसून जिसने बीच में ब्रेक लिया वो फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। कुछ इसी तरह देश की राजनीति भी है, जहां संसद में 3 महीने पहले विपक्षी एकता से नंबर गेम में हारने वाली सरकार अब अगले हफ्ते शुरू होने वाले मानसून सत्र में नए नंबर गेम की रफ्तार से सबको चौंकाने वाली है, जिसके लिए उठापटक और बैठक दोनों हो चुकी है। कल रात दिल्ली में 135 मिनट चली बैठक में सिर्फ संसद के मानसून सत्र में परिसीमन बिल पर विपक्षी सांसदों से मिलने वाले समर्थन की सियासत का फैसला ही तय नहीं हुआ, बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम संसद में सारे बड़े बिल और आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल तक सब कुछ फाइनल हो चुका है।
1: गुरुवार सुबह करीब 3:45 पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सपरिवार आरती करते हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा से पहले उनकी मंगला आरती करने के लिए अमित शाह देर रात दिल्ली से 1,000 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचे, क्योंकि उससे पहले बुधवार रात 8:30 गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास पर एक अहम बैठक करने पहुंचते हैं, जहां प्रधानमंत्री के सामने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद होते हैं। 4 लोगों के बीच करीब 2 घंटे 15 मिनट तक मीटिंग चलती है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ये वो बैठक है जिसमें पिछले कई दिनों से पार्टी, सरकार, संगठन और संसद सत्र को लेकर चले मंथन पर फाइनल बात हुई। इसी बैठक में 18 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा उसको पूरा करने की रणनीति पर भी मुहर लगी है।
2: सिर्फ वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने यह बात 17 अप्रैल को पूरे देश से 2029 में ही महिला आरक्षण लागू कराने वाले संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में विपक्ष के विरोध के आगे पास न होने के बाद कही थी, जब विपक्ष को लगा कि वो सरकार को हरा सकते हैं।
3: ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है।
4: ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है।
1: लेकिन राहुल गांधी के बयान के 88 दिन बाद प्रधानमंत्री आवास पर होती बैठक ने तय कर दिया कि जो बात नरेंद्र मोदी कह चुके हैं अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है।
2: हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे।
1: जिस मौके की बात प्रधानमंत्री ने पहले कही उसी को लेकर बैठक पर बैठक होती आई, जहां सब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोचते रहे, वहां फिलहाल विस्तार की बात थोड़ी पीछे हो गई। सारी रणनीति मानसून सत्र को लेकर फिलहाल बनी है, जहां 14 जुलाई की रात गृह मंत्री अमित शाह एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी में शामिल हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद से मिलते हैं, और उसी दिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल मुलाकात करते हैं। इसके बाद ही पवार की पार्टी के सुर सरकार के साथ मिलने की खबरें आईं, हालांकि बाद में पवार की पार्टी किंतु परंतु करने लगी। इन सब के बाद जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुधवार की रात 135 मिनट तक चलती है, तो मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित रुख और संसद में पेश किए जाने वाले बिलों पर विस्तार से मंथन होता है। इसी बैठक में तय होता है कि आगे परिसीमन बिल, 2029 से महिला आरक्षण लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और पीएम सीएम के जेल जाने पर कुर्सी से हटाने वाला संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। दावा है कि कौन सरकार में रहेगा और कौन संगठन में, इसकी भी चर्चा पूरी हो चुकी है। बीएल संतोष की इस बैठक में मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, जिन्हें अध्यक्ष पद संभालते हुए 6 महीने हो चुके हैं।
0: अब दावा है कि सरकार को उन बिलों पर आगे बढ़ने की ताकत विपक्ष में बिखरे तार की वजह से मिली है, जिन बिल पर 2/3 बहुमत तक जरूरी है। अमित शाह की रणनीति से इस वक्त सरकार मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में पहले की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि 4 महीने पहले सरकार को नंबर की लड़ाई में रोक लेने वाला विपक्ष अब कमजोर दिख रहा है। जहां आज कांग्रेस की संसदीय दल की रणनीतिक बैठक में सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तो चुन लिए गए, लेकिन सवाल है कि जहां 2/3 बहुमत के करीब सरकार खड़ी दिखने लगी है, क्या वहां परिसीमन बिल से पहले विपक्ष की एकता का ही परिसीमन हो गया है, जिसकी वजह से अमित शाह की रणनीति को माना जा रहा है।
1: गुरुवार सुबह 10 जनपथ पर जब कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक बैठक 1.5 घंटे तक चलती है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए जयराम रमेश एक बात पर जोर देते हैं।
5: संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और राज्यसभा में लाएं वो 2/3 बहुमत मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत लोकसभा में काफी दूर है, और मुझे नहीं दिखता कि उनको 2/3 बहुमत मिलेगा।
1: कांग्रेस के इस बयान से लगता है कि कांग्रेस मानकर चल रही है कि राज्यसभा में मोदी सरकार आसानी से 2/3 बहुमत तक पहुंच जाएगी। इसका आंकड़ा बताएं उससे पहले इस तस्वीर पर गौर करिए। 3 महीने पहले की बात है, अप्रैल महीने में टीएमसी से राज्यसभा की सांसद बनी कोयल मलिक ने अब इस्तीफा दे दिया, तो क्या ये भी अब सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश बराई की तरह बीजेपी में शामिल होकर फिर राज्यसभा में तुरंत बीजेपी की तरफ से पहुंचेंगी? जहां अभी राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है, 2/3 का आंकड़ा 164, और अभी ऊपरी सदन में एनडीए की कुल ताकत 153, जिसमें नॉमिनेटेड 7 और 3 निर्दलीय सांसद शामिल हैं, यानी 2/3 बहुमत के आंकड़े से 11 सांसद कम। इनमें से वाईएसआर के 4 सांसद अप्रैल में परसीमन बिल पर एनडीए का साथ दे चुके हैं, यानी मोटा मोटा 2/3 के नंबर गेम से 7 सांसद एनडीए दूर है। अब एनडीए की नजर डीएमके के 8, बीजेडी के 5, बीआरएस के 3, एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद पर टिकी है। अगर इनका समर्थन एनडीए को मिल जाता है तो राज्यसभा में आसानी से 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। सबकी नजर इस वक्त सबसे ज्यादा स्टालिन और उनकी पार्टी पर लगी है, क्योंकि राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों जगह स्टालिन का समर्थन बीजेपी को एक झटके में 2/3 तक पहुंचा सकता है।
5: उन्हीं पार्टी से हमारा भी संपर्क है, जो पार्टियों के साथ गृह मंत्री चाहते हैं कि वो पार्टी उनको समर्थन करें, उन्होंने 16 और 17 तारीख को परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट दिया था, और बड़े उत्साहजनक तरीके से उन्होंने वोट किया। इस बीच पिछले 2 महीने में मुझे ऐसा नहीं दिखता कुछ हुआ है कि अचानक डीएमके की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा के बीच में कुछ मिलन होने की संभावना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा।
1: असल में डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस के पाला बदलने के बाद ही नाराज होकर संसद में इंडिया गठबंधन से अपनी सीट अलग कर चुकी है। वहीं डीएमके और उस जैसे बिल का विरोध करने वाले दूसरे दलों को साधने में शाह पहले से जुटे रहे, जैसे स्टालिन बिल की कॉपियां जला रहे थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर भारत में ज्यादा और दक्षिण भारत में कम सीट होगी, वहां सरकार ने उनको भरोसा दे दिया कि हर राज्य में 50% सीट बढ़ेगी। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा नई सीटों में जाति गणना के हिसाब से आरक्षण मिले। सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण के भीतर SC/ST की महिलाओं के लिए पहले से तय अनुपातिक कोटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसी के साथ एक एक करके सदे हुए कदम से सरकार चलती आई है, जहां सांसद विपक्ष के जुड़ते रहे, सरकार की ताकत बढ़ती रही।
6: मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी, और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है, सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा।
7: मॉनसून सत्र फ्रूटफुल रहेगा सर? मॉनसून सत्र अच्छा रहेगा?
6: मानसून सत्र तो अच्छा ही है, मानसून अच्छा, आज बारिश गिरा है, अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली में।
1: इसी के साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा,
2: वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे,
1: वो वक्त अब आने जा रहा है। यूं तो एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं, लेकिन अप्रैल में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, इसी को आधार माने उसके बाद टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई पार्टी बनाकर समर्थन दे चुके हैं। उद्धव गुट से 6 सांसद शिवसेना में आ चुके हैं, अब पवार की पार्टी के 8 सांसद भी साथ दे और अगर 22 सांसद डीएमके के भी जुड़ जाते हैं तो 360 यानी 2/3 नंबर से एनडीए सिर्फ 6 सांसद दूर होगी। ऐसी स्थिति में कुछ छोटे दल गैर हाजिर हो जाए तो बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा, सरकार अपने मकसद में कामयाब होगी।
5: 320 तक पहुंच गए हैं पर और लंबा सफर है 2/3 बहुमत के लिए। हमारा मकसद क्या है, उनको 2/3 बहुमत नहीं मिलना, और अब तक मैं कह सकता हूं जो गैप है वो एक आंकड़े का गैप नहीं है, 2 आंकड़े का गैप है, काफी काफी भारी गैप है, छोटा गैप नहीं है।
7: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, अंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented is still a question mark.
1: इसीलिए माना जा रहा है कि इस मानसून सत्र में अप्रैल की उस हार का हिसाब बराबर कर लिया जाएगा जिसका गुणा गणित 2/3 के करीब पहुंच चुका है। बैठक करके आगे की रणनीति को अमलीजामा पहनाने का रास्ता भी दिखने लगा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सुबह 11 बजे बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे। तो मानसून सत्र से ठीक पहले जिस तरह की गहमा गहमी चल रही है इस समय और जिस तरीके से परिसीमन और महिला बिल को लेकर चर्चा भी शुरू है, पीयूष से हम समझते हैं। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष, सरकार 360 के कितने करीब जा सकती है, ये तो लगातार इतने दिनों से चर्चा का विषय रहा, किस तरीके से सांसद टूट टूट कर एनडीए के समर्थन में आते रहे। लेकिन अब जो कल राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होने वाली है, मुख्य बिंदु उसके क्या?
8: देखिए श्वेता, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉनसून सत्र आने वाला है और मॉनसून सत्र से पहले एनडीए की क्या रणनीति होगी उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो शामिल होने वाले हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिस्टर किरण रिजिजू, जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी होंगे, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो मंत्री वो होंगे और साथ ही टीडीपी से राम मोहन नायडू होंगे। अब इस बैठक में जो सरकार है वो दरअसल इस चीज पर मंथन करने जा रही है कि कैसे मानसून सत्र को इस बार संचालित किया जाए। इसी बैठक के बाद श्वेता ऑल पार्टी मीटिंग 19 तारीख को यानी संडे को बुलाई गई है और उसके बाद अगले दिन जब मानसून सत्र होगा उसके बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी होने वाली है। तो लगातार बैठकों का दौर होने वाला है और ये बैठकों का दौर तब हो रहा है श्वेता जब इस बार जो सरकार है एनडीए वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। हमने अगर हम गणित की बात करें तो और एनसीपीएसपी को भी हटा दिया जाए तो इस वक्त एनडीए के पास अगर समर्थन की बात करें तो 340 सांसदों का समर्थन आ चुका है। इसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से बाकी दलों से बात करके और समर्थन
1: बाकी दलों की, चूंकि आपने बात की है पीयूष, आप रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर हम इससे जुड़ी हुई बता दें। एक तरफ तो शरद पवार की पार्टी के रूप की बात हुई रही थी लेकिन इस वक्त सबकी नजर डीएमके पर लगी है जिसके लोकसभा में 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 8 सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार डीएमके परिसीमन पर बिल पेश होने के बाद अपना रुख तय करेगी। खबर आई है कि डीएमके ने परिसीमन के मुद्दे पर फैसला टाल दिया है, आज ही सांसदों की बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि बिल पेश होने पर ही इस पर फैसला डीएमके में लिया जाएगा। पीयूष, ये इस खबर को किस रूप में देखा जाए?
8: देखिए श्वेता, हमारी कुछ दिनों पहले एक बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे बात हुई तो हम ये समझना भी चाह रहे थे कि किस तरह से सरकार डीएमके से बात कर रही थी। उस वक्त ये बात साफ कर दी गई थी उस नेता के द्वारा कि आप डीएमके हर उस फैसले के खिलाफ जाएगी जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी और हर उस फैसले का समर्थन करेगी जिसकी खिलाफत कांग्रेस पार्टी करेगी। तो एक चीज साफ है कि जब बिल दिया जाएगा कॉपी बांटी जाएगी और डीएमके को बताया जाएगा कि उनकी सीट दक्षिण भारत में सीट तमिलनाडु की ज्यादा बढ़ रही है तो जरूर इसमें हम देख सकते हैं कि डीएमके से समर्थन करें। लेकिन अभी फैसला इससे टाला गया क्योंकि वो देखना चाहते हैं जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था कि क्या 50% तक सीटें इन राज्यों में बढ़ रही है या नहीं। सबसे बड़ी चिंता डीएमके की ये थी श्रोता कि उनकी सीटें घटा दी जाएंगी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। लेकिन अब अगर सरकार फ्रेश ड्राफ्ट में ये चीज ऐड कर देती है कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ जाएगी तो डीएमके की सीट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 39 से बढ़कर 69 तक पहुंच सकती है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा जरूर जो है डीएमके को हो सकता है। सीटें बढ़ सकती है, 50% सीटें बढ़ती है तो उसके बाद डीएमके इस पर कुछ फैसला करेगा।
0: शुक्रिया पीयूष। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अब इसमें बहुत अहम बात यह है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से भी हर राज्य में कम से कम 50% सीट बढ़ने की बात और अब डीएमके का भी रुख वैसा ही कि आबादी नहीं बल्कि हर राज्य के लिए समानता हो। लेकिन देखना है कि सरकार आगे इस पर क्या करती है। पर अब हम उत्तर प्रदेश की खबर से खबरदार करते हैं जहां अब तक अवैध निर्माण या अपराध से अर्जित आय या अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहा तो अखिलेश यादव पीडीए पर बुलडोजर चलने की बात कहकर सवाल उठाते रहे। लेकिन क्या अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा तो अखिलेश याद के लिए सियासी चक्रव्यूह होगा? सवाल की वजह आजम खान है जिनका नाम लेकर पहले ओवैसी और इमरान मसूद लगातार अखिलेश यादव को घेरते रहे ये कहकर कि आजम के मुद्दे पर खुलकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोलते हैं। तो अब जबकि 15 दिन में बुलडोजर चलने की चेतावनी दी गई है तो क्या जेल में बंद आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश जमीन पर उतरेंगे?
9: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
10: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
9: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
11: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
9: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
12: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
9: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके, क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आया?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आया?
4: अच्छा,
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, जिसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहां पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूं और आपको कोशिश करता हूं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस कीजिए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नजारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है। तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया। लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: क्या जिस बात का दुनिया को डर था वो होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के इरादे ईरान के खार द्वीप पर हमले करके कब्जा करने में है। रिपोर्ट तो यहां तक है कि वो ईरान में सेना उतारने तक पर विचार कर रहे हैं। ईरान के बिजली घर और ब्रिज को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती को लाल सागर बंद करने के लिए कहा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने हूती से कहा है कि अगर अमेरिका उसके बिजली घर को निशाना बनाए तो फिर वो लाल सागर के समुद्री रास्ते को बंद कर दे। हॉर्मुज पहले से बंद है, अगर लाल सागर भी बंद हो जाता है तो फिर तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आर्थिक सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता।
0: अमेरिका के लिए ईरान ने इस बार ईंट का जवाब पत्थर सोच रखा है, लेकिन अब उसकी तरफ से धमकी दी गई वो खबरदार करने वाली है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो वो खाड़ी देशों के सभी अहम बुनियादी ढांचे तोड़ देगा। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान, बहरीन, कतर जैसे खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाकर दे रहा है, लेकिन उसका अगला कदम दुनिया को बहुत महंगा पड़ सकता है। भले ही अमेरिका ईरान की नाकाबंदी करके जंग में अपना पलड़ा भारी होता बता रहा हो, लेकिन जंग में ईरान अब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिससे दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है। कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल के पार हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान का ट्रंप कार्ड है तो वैसे ही ताकतवर हथियार बाब अल मंदेब कॉरिडोर है, जिसे ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए बंद कर सकता है। तो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से परेशान ईरान खबरदार कर रहा है कि वो लाल सागर को अगला फ्लैश पॉइंट यानी तनावपूर्ण इलाका बना सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह दुनिया का बड़ा कारोबारी रास्ता है। बाब अल मंदेब कॉरिडोर को बंद करने का काम यमन में ईरान का सहयोगी हूथी कर सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह लाल सागर का बाब अल मंदेब कॉरिडोर भी बंद हो गया तो दुनिया भर में गैस तेल की सप्लाई और कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। यानी जो कारोबार और तेल गैस की सप्लाई लाल सागर से हो रही है, अगर वो भी ठप हो गई तो फिर तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, जिससे दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज नहीं खुलवा सके, ईरान उन पर दबाव बढ़ाने के लिए बाब अल मंदेब कॉरिडोर को भी बंद करवा सकता है, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप पर और दबाव बढ़ेगा।
11: We've cut down their capability very substantially, but they, you know, they're going to fight for a while. Our military has done a fantastic job. And, you know, the bottom line, though, and I say it to everybody, and I say it as much as you want to listen, Iran will not have a nuclear weapon.
0: Hormuz khulwane aur Iran ko jhukane ke liye Amerika ne 7 ghante tak Iran par मिसाइलों की बारिश की, उसके एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी कर दिए। ईरान के सबसे बड़े पोर्ट सिटी बंदर अब्बास से लेकर रणनीतिक ग्रेटर तोनब द्वीप तक कमांड सेंटर्स और मिसाइल डिपो को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। खार्क द्वीप की तरफ बढ़ते तेल टैंकर को अमेरिकी मिसाइलों ने समंदर के बीचों बीच फूंक दिया, लेकिन ईरान पर फर्क नहीं पड़ा और आसमान में उसने अमेरिका के सबसे आधुनिक MQ-9A रीपर ड्रोन को मार गिराया। चिंता की बात यह कि ईरान की तरह यमन के हुती भी धमकी दे रहे हैं, जिससे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। ईरान युद्ध के बाद तेल के दाम $125 प्रति बैरल तक गए। इससे ही दुनिया भर में हाहाकार मच गया, गैस तेल की किल्लत हो गई, दुनिया भर के कारोबार प्रभावित हुए। अब अगर तेल के दाम $200 प्रति बैरल पहुंच गए तो फिर इससे दुनिया में महंगाई की सुनामी आ सकती है, जिससे भारत भी प्रभावित होगा।
12: देखिए, महंगाई का पूरा असर दो चीजों पे आ रहा है, एक तो महंगा तेल और गिरता हुआ रुपया। हमारे जो तेल आयात हो रहा है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, मतलब हमें ज्यादा रुपए दे के तेल खरीदना पड़ रहा है। और तेल के साथ साथ बाकी जो हम चीजें इम्पोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, चाहे वो केमिकल्स हो, बाकी प्रोडक्ट्स हो, उन सबके दाम बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर तो कुल मिला के अगर देखें तो महंगाई भी अभी आने वाले समय में बढ़ सकती है, और कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि तेल के दाम कहाँ जाते हैं और रुपया कितना गिरता है।
0: बाबल मंदेव स्ट्रेट हॉर्मुज की तरह से एक चोक पॉइंट है। ये जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ये भी बंद होता है तो फिर तेल के दाम में भारी उछाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी चपेट में अमेरिकी जनता भी आएगी, भले ही ट्रंप चाहे जो कहे।
13: We had a deal yesterday or the day before yesterday, it was all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like, and they're wired differently, and we're not going to put up with it.
0: सवाल है कि क्या इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान युद्ध में सेना उतारने जा रहे हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने टॉप कमांडर्स के साथ सिचुएशन मीटिंग कर ली है और खाड़ी के सबसे संवेदनशील रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्क द्वीप पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। लेकिन ये जमीनी जंग अमेरिका के लिए आसान रहने वाली नहीं है।
14: What the president has done, I think very, very capably, is said, we're going to use military force in this situation when it's connected to something we're trying to achieve. So if you shoot at ships, we're going to shoot at the facilities at which you used to shoot at the ships.
0: अमेरिका को समझौते के लिए झुकाने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान की सड़कों पर लगे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर संदेश दे रहे हैं कि ईरान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसे में एकजुट ईरान से निपटना अमेरिका के लिए वियतनाम और इराक से भी ज्यादा बुरा सपना साबित हो सकता है।
10: लाल सागर में इससे पहले भी हूती ने हमले किए हैं, इसलिए उसके लिए बाब अल मंदेब को बंद करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक दो जहाज पर हमले से बाकी के जहाज डर से रुक जाएंगे, जैसा हॉर्मुज में हुआ, जहां अमेरिकी नाकेबंदी भी उसकी सेना ईरान के हमले को रोक पाने में नाकाम रही। बाब अल मंदेब अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जिससे ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक बन जाता है। ये रास्ता स्विज नहर के साउथ एंट्री गेट के तौर पर भी काम करता है। अगर ये भी बंद हो गया तो फिर इससे दुनिया में कारोबार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। समुद्री रास्ते जंग में अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान से सबक लेकर यूक्रेन इस वक्त रूस के हॉर्मुज को बंद करने में जुटा है। यूक्रेन की कोशिश रूस के लिए जरूरी समुद्री रास्ते को रोककर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है। इसके लिए यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, जिसके जवाब में रूस कीव समेत यूक्रेन पर खतरनाक हमले कर रहा है।
0: अमेरिका से जंग में ईरान ने दुनिया को बता दिया कि उसकी असली ताकत एटम बम नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तेल का वो समुद्री रास्ता जिसे जब चाहे बंद करके वो अमेरिका तक को समझौते के लिए मजबूर कर सकता है। ईरान से सीखकर यूक्रेन भी अब रूस के अहम समुद्री रास्ते को बंद करने में जुट गया है। अरोस सागर में रूस के जहाजों और बंदरगाहों पर हमले सारी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है, क्योंकि अगर यह और बढ़े तो दुनिया में तेल और गेहूं दोनों की किल्लत हो सकती है। यही वजह है यूक्रेन पूरी ताकत से रूस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ठप कर उसका गला घोटने पर आमादा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जंग अब काले सागर में लड़ी जा रही है। समुद्री रास्ते अब जंग का नया हथियार बन गए हैं। तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाकर यूक्रेन रूस में तेल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगवा चुका है। जेलेंस्की भी अपने ड्रोन के दम पर खुलकर इतराते हैं।
15: Would you go to Moscow?
16: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
0: लेकिन जेलेंस्की की नजर रूस के गेहूं की निर्यात पर है, जिसकी सप्लाई बंद होने पर दुनिया में अनाज की किल्लत हो सकती है। रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन ब्लैक सी तक पुतिन की पकड़ कमजोर करने से जुड़ा बड़ा मिशन अंजाम दे रहा है, जिसे कीव पर रूस के लगातार होते खतरनाक हमलों की वजह माना जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन प्रोग्राम ने सारा खेल बदल दिया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ड्रोवडी ने दावा किया कि कीव ने पिछले 9 दिन में ही अजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया है। बुधवार को ही ब्लैक सी में 20 रूसी जहाजों को मारने का दावा यूक्रेन ने किया, जिसमें 17 तेल और 2 गैस के टैंकर हैं। यूक्रेन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अजोव सागर बरसों तक कीव की पहुंच से दूर था। इसी वजह से रूस बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले और दक्षिणी रूस के बड़े बंदरगाहों से दुनिया में अपना गेहूं और तेल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि रूस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है? अजोव सागर से रूस अपना माल काले सागर तक भेजता है, जहां से दुनिया भर में सप्लाई होती है। यूक्रेन रूस के अजोव सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहा है। इस वजह से अजोव सागर के कोनों पर मौजूद 2 अहम रास्तों को बंद करना पड़ा। डॉन अजोव चैनल, जो सागर के अंदरूनी जलमार्गों से जोड़ता है, और केर्च स्ट्रेट, जो इसे काला सागर से जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रीमिया को भी जोड़ने वाला यह अहम रास्ता है। मतलब यहाँ अगर आवाजाही रुकी तो फिर क्रीमिया में सब कुछ ठप पड़ जाएगा, रूस का कंट्रोल कमजोर होगा। यहाँ पर यूक्रेन के हमले बहुत अहम है, जो बताता है कि प्रतिबंध वाले ईंधन को ले जाने वाले रूस के शैडो फ्लीट पर हमले से यूक्रेन आगे बढ़ाया है। अजोव सागर की नाकेबंदी का असर रूस के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां से रूस का गेहूं और सूरजमुखी का तेल दुनिया भर में जाता है। अगर यहां से सप्लाई रुकी तो फिर दुनिया में इसकी किल्लत तय है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश है, जहां दुनिया के गेहूं निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा पैदा होता है। और रूस की दिक्कत ये कि अजोव सागर से उसका 1/4 गेहूं निर्यात होता आया है। इस तरह गेहूं के बाजार के लिए ब्लैक सी का महत्व वैसा ही है जैसे कच्चे तेल के मार्केट के लिए फारस की खाड़ी का। ग्लोबल मार्केट में गेहूं सप्लाई करने वाला ब्लैक सी सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर हालात यहां ऐसे ही बने रहे तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है, जो पहले ही अपनी तेल रिफाइनरियों पर हमले से सख्ते में है।
10: अब आपको एक अहम खबर बिहार से बता देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से उसके नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
17: आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है।
10: अब बात राजस्थान के चारा घोटाले की। वो राज्य जहां गो सेवा के लिए देश का पहला गोपालन मंत्रालय बना, लेकिन अशोक गहलोत सरकार में गायों के चारा पानी के लिए मिलने वाले बजट में भी जमकर भ्रष्टाचार होने का खुलासा हुआ है। गायों के चारे के पैसे खाने के लिए कहीं बिना गाय के ही कागजों में गौशाला खोल लिए गए तो कहीं मरी हुई गायों को जिंदा दिखाकर पैसे उठाए जाते रहे। ऑडिट में घोटाला सामने आने के बाद अब सरकार ने रिकवरी के आदेश दिए हैं।
0: शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है जिसकी सेवा से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन राजस्थान में उसी गाय के नाम पर 57 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप सामने आया। राजस्थान के महालेखाकार की जांच से पता चला कि राज्य की 38 गौशालाओं में साल 2022 से 2024 के बीच गो अनुदान घोटाला हुआ। जो गाय मर चुकी थी या फिर गौशाला में मौजूद तक नहीं थी, उनके नाम पर भी चारा पानी का सरकारी अनुदान हजम कर लिया गया। जांच में सामने आया कि राजस्थान की 38 गौशालाओं में 1,31,000 गोवंश ज्यादा दिखाकर करोड़ों रुपए का अनुदान अपनी जेब में रख लिया गया। सबसे बड़ा घोटाला भरतपुर और डींग जिले की 6 गौशालाओं में हुआ। शिवब्रज कामद सुरभि वन शोध संस्थान गौशाला में 16,36,00,000 रुपए सरकारी पैसा डकारा गया। आज तक की टीम ने इन सभी गौशालाओं में जाकर इनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग गौशाला छोड़कर भाग गए। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
18: कुल गौशालाएं अपने डीग और भरतपुर जिले में मिलाकर 21 हैं, जिनमें से 17 अनुदानित गौशालाएं हैं और 4 गैर अनुदानित हैं, जिनमें 100 से कम गोवंश है, इसलिए उनको अभी अनुदानित किया है। जैसा मुझे बताया गया है, अभी कोई कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कुछ गौशालाओं पर अनियमित भुगतान की बात आई थी और कुछ अखबार में भी कल मैंने पढ़ा था, तो उनके जैसा बताया गया है कि विभाग से उसमें भी उनको नोटिस जारी करवा दिए गए और उसकी वसूली की कार्रवाई की है।
0: रिपोर्ट में जयपुर की पिंजरा पोल गौशाला पर करीब 1,81,00,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान ले लेने का आरोप है। हिंगोनिया गौशाला को भी करीब 1,41,00,000 रुपए से ज्यादा सरकार से मिले। जब आज तक संवाददाता शरद कुमार ने गौशाला संचालक से बात की तो उन्होंने टैग पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, जिम्मेदारी से हाथ खड़े करने लगे।
19: नोटिस विभागीय गलती के कारण हमें दिया गया है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहीं भी हमें दायित्व नहीं ठहराया इसका। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में उनसे ये सवाल किया है कि ये पेमेंट ज्यादा किया गया है आपके।

0: 2,200 रुपए का अनुदान लिया। जंज विकास संस्थान की गौशाला ने 12,07,800 रुपए का। लखा गांव में चलने वाली रत्ता बाबा गौशाला विकास संस्थान में 6,48,000 रुपए का बिना गाय का भुगतान ले लिया। चांदन के मंगोलिया की ढाणी की अमन गौशाला में पिछले साल 204 गोवंश के लिए 7,02,000 रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि यहां गोवंश था ही नहीं। इसी तरह जयसुराड़ा की गुल रोशन गौशाला में 11,61,000 रुपए का अनुदान ले लिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि यह सारा खेल गोपालन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद अब जैसलमेर की सभी फर्जी गौशालाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि गोपालन विभाग ने 38 गौशालाओं से कुल 57,36,00,000 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए हैं।
1: जहाँ तक ऑडिट की बात है तो एजी ऑडिट ने कोई जैसे रिकवरी निकाली है तो उसको एजी ऑडिट ही तय करेगी। जैसे हमारे विभाग से संबंध में कोई मामला नहीं है, ये एजी ऑडिट का मामला है। जो भारत सरकार की ऑडिट होती है ना, उसमें जैसे ऐसा मामला है तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई जो नियमानुसार जो काम हो वो करे, नियम से हट करके कोई काम नहीं करे। एजी ऑडिट अपना काम करेगी और जो नियम में होगा वो काम होगा।
2: अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखा, हकीकत में खाली मैदान मिला था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते मिले हैं, कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करने वालों ने निकाल लिया।
0: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
3: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या है फिर?
4: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
3: कॉलेज नहीं है? कभी था?
4: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
3: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
4: हाँ।
0: इसी खाली मैदान के बगल में बगला मुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगला मुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
3: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगुलामुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगुलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगुलामुखी कॉलेज चालू है?
4: ये नहीं है, बंद है।
3: ये बंद है?
4: हाँ, कोरोना से।
3: कोरोना से बंद है?
4: हाँ।
3: मतलब 2020 में आया था कोरोना और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए
4: और का, जब से बंद है।
3: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
4: नहीं आता।
0: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही? केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
5: हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए।
6: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
0: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: पापा।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
8: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
9: ओले बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
14: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
20: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
21: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
19: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
22: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
5: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा, ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
6: अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब अयोध्या, वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है।
7: बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे ईष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत SIT गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए। ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो, ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए, मैं ये चाहता हूं। ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई। और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है, कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। क्या इस देश में अब गैर मुस्लिमों को भी जबरदस्ती कलमा याद करना होगा? हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास के हिंदू बच्चे को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा रटने का फरमान सुना दिया गया। विवाद के बाद स्कूल इसे गलती बता रहा है, लेकिन सवाल है कि ये कैसी गलती है जो बार बार होती है। बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। कभी मुरादाबाद में जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप लगता है, तो कभी मीरा भयंदर में कलमा न जानने पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन वारदातों के डर से अब लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को कलमा आता है, तो फिर गैर मुसलमानों को इसे रटाने का ये फितूर क्यों? इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने और अपनी दुकान चलाने के लिए अब देवी देवताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जरजीश अंसारी ने सुर्खियों में आने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया और गीता के श्लोकों का बेहद बेतुका और गलत संदर्भ पेश कर दिया। सवाल यह है कि आजकल मौलाना हो या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, आखिर धर्म के नाम पर विवाद फैलाकर लाइक्स और व्यूज बटोरने की होड़ क्यों लगी? इसके बाद आपको तस्लीमा नसरीन पर हमारे विश्लेषण का दूसरा भाग दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनके बांग्लादेश छोड़ने का क्या कारण था। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर हिंदुओं के कत्ल पर कट्टरपंथियों को लज्जा कब आएगी। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे रात में पड़ने वाली भयंकर गर्मी ने लोगों की कई घंटों की नींद छीन ली। लेकिन आज का हमारा पहला विश्लेषण हैदराबाद की एक घटना से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा याद करने के लिए कहा गया। जिस कॉपी में यह होमवर्क लिखा गया, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है रीड कलमा 1 और 2, यानी कलमा 1 और 2 पढ़ें। आगे लिखा है रीड फातिहा, यानी फातिहा पढ़ें। कलमा इस्लाम में आस्था की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ मानी जाती है, जबकि फातिहा कुरान का पहला अध्याय है, जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे को यह होमवर्क करने के लिए दिया गया, वो एक हिंदू परिवार से आता है और इस परिवार का आरोप है कि स्कूल ने इससे पहले भी एक बार होमवर्क डायरी में कलमा याद करने के लिए लिखा था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया और एक हिंदू बच्चे को कलमा क्यों याद कराया जा रहा था। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह सिर्फ गलती से हुआ है और क्योंकि स्कूल में मुस्लिम छात्रों के लिए इस्लामिक स्टडीज की भी पढ़ाई होती है और उन्हें कलमा याद करने का होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि यहां एक भूल से यही होमवर्क इस 6 साल के हिंदू बच्चे को भी दे दिया गया। लेकिन शिकायत करने वाला हिंदू परिवार इन दावों को गलत बता रहा है। परिवार का कहना है कि जब पहले भी उन्होंने इस होमवर्क को लेकर शिकायत की थी, तब भी स्कूल ने इसे सामान्य बताया था। स्कूल का कहना था कि ऐसा होमवर्क सभी छात्रों को दिया जाता है और क्योंकि इस स्कूल में मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए गैर मुस्लिम छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ना सिखाया जा रहा था। यानी इसे ऐसे समझिए कि स्कूल में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक थे, इसीलिए आरोप है कि हिंदू छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस प्राइवेट स्कूल ने शेख आयशा परवीन नाम की आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन यह मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। सवाल उठ रहा है कि देश में कलमा पढ़ने या कलमा याद करने या कलमा पढ़कर सुनाने की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं और आखिर हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय के लोग कलमा क्यों याद करें। पिछले हफ्ते 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू महिला ने भी यही आरोप लगाए थे कि उससे धर्मांतरण के लिए जबरन कलमा पढ़वाया गया। उससे पहले जून के महीने में उत्तर प्रदेश के शामली में कई दुकानों पर ऐसी फुटबॉल बेची जा रही थी जिन पर कलमा अंकित किया गया था। अप्रैल महीने में मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर इसीलिए चाकू से हमला कर दिया था क्योंकि वो कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, हिंदू थे। और ऐसी घटनाओं की यह सूची यही खत्म नहीं होती। इसी साल 1 जनवरी को गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल पर यह आरोप लगा कि वहां गैर मुस्लिम छात्रों से नमाज और कलमा पढ़वाई जा रही है। और इससे पहले पिछले साल जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी आतंकवादियों ने कलमा न पढ़ने पर 25 हिंदू पर्यटकों की उनका धर्म पूछ पूछ कर हत्या कर दी थी। और यकीन मानिए, ये घटनाएं हमारे समाज को अब डरा रही। उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में जब मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में कलमा नहीं पढ़ने पर दो सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला हुआ, तब हमारे देश में गूगल पर लोग ये सर्च कर रहे थे कि कलमा को कैसे पढ़ा जाता है। उस वक्त पर गूगल पर कलमा का सर्च इंटरेस्ट 85 हो गया था। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, इससे पहले जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ था, तब भी गूगल पर भारत में कलमा का सर्च इंटरेस्ट 100 पहुंच गया था, जो सबसे ज्यादा होता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि जान बचाने के लिए उन्हें कलमा पढ़ना जरूर आना चाहिए। कलमा इस्लाम में पढ़ी जाने वाली कुछ खास पंक्तियां होती हैं जो किसी मुस्लिम के विश्वास को मजबूत करती हैं। आमतौर पर इन्हें 6 कलमे कहा जाता है और इनका आधार कुरान और हदीस से लिया गया है, और मदरसों में बच्चों को इन्हें याद कराया जाता है ताकि वो इस्लाम के मूल सिद्धांत को समझ सके। यानी कलमा पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह को मान लेना, और मुसलमान आमतौर पर इसे नमाज के बाद पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जो कलमा अल्लाह को मानने के लिए बनाया गया, उसे लेकर पूरे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? और वो भी तब जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान इस कलमे को पढ़ना जानते हैं। पूरी दुनिया में 25% आबादी यानी 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी 98% से ज्यादा को कलमा पढ़ना आता है। प्यू रिसर्च के अनुसार मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के 98%, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 95% और सेंट्रल एशिया के 99% मुसलमान कलमा पढ़ना जानते हैं। जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों में से 98% मुसलमानों को कलमा पढ़ना आता है, तो फिर बाकी के गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और आखिर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हैदराबाद के जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम है। मुसलमान 50.5%, हिंदू 46.9%, और यही कारण है कि अब बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज हैदराबाद एयरपोर्ट से पार्टी नेता माधवी लता जब इस स्कूल के लिए रवाना हो रही थी, तब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और इस दौरान इस स्कूल के बाहर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए,
1: I'm here detained at the airport with the police force.

0: రీడ్ రీడ్ ఇగో డేట్ ఈరోజుదే డేట్ ఇది ఈరోజుదే ఇక్కడ రాసింది. మళ్ళా నేను మొత్తం డైరీ మొత్తం చెక్ చేసిన చెక్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇది ఒకటి కనిపించింది. ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. రీడ్ ఏ 1 2 కల్మ అని చెప్పేసి ఇంకా
1: एक छोटा इशू हो गया हमारे पास. एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज को बड़ी कर दिए टीचर.
2: आज मुद्दा सिर्फ हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती क्यों हैं. और जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे वो मौलाना और धर्मगुरु हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए या कहिए कि वायरल होने के लिए विवादित तरकीन और भ्रमित करने वाली बातें कहते हैं. जैसे आज उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जीश अंसारी ने झारखंड में एक विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ऐसा उन्होंने कहा. यही नहीं, अपने इस गलत और बेतुके बयान को साबित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का सहारा लिया और ये कहा कि गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का निर्देश देते हैं. अब बड़ी बात यह है कि जब जर्जीश अंसारी यह गलत दावा करते हैं तो वहां तालियां बजती हैं, यानी लोग इसे सहजता से स्वीकार कर रहे होते हैं और ये मान रहे होते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं.
3: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे. यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए. योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह. जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो. योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सतत मात्मानम, पूरे शरीर का योग करो. यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए. आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा.
2: मौलाना जर्जीश अंसारी झूठ बोलने, मनगढ़ंत दावे करने, काल्पनिक कहानियां बनाने और लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए मशहूर हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जिसके लिए उन पर FIR भी दर्ज हो गई. श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया, वो श्लोक कहीं से भी इस्लाम धर्म और नमाज का उल्लेख नहीं करता. ये श्लोक तो ये कहता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे शांति से बैठकर अपने मन को काबू में करना चाहिए, ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए और उसे लालच, इच्छाओं और संग्रह करने की आदत से दूर रहना चाहिए. लेकिन जर्जीश अंसारी ने योग, ध्यान, आत्मचिंतन का अर्थ नमाज बना दिया. और क्यों बना दिया, उसका कारण बहुत स्पष्ट है. मौलाना की भेष में नजर आने वाले ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो अपनी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स चाहते हैं और जर्जीश अंसारी का भी यही काम रहा. जर्जीश अंसारी भी मौलाना कम और एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपने अलग अलग चैनल बनाए हुए हैं. इनमें एक यूट्यूब चैनल का नाम है जर्जीश अंसारी ऑफिशियल और इसके 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और इसके 9,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं. ये सब्सक्राइबर्स लाखों में इसीलिए हैं क्योंकि जर्जीश अंसारी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें इस्लाम धर्म से बताने के लिए नए नए वीडियो बनाते हैं और बाद में जब इनकी चर्चा होती है तो इनकी दुकान चल पड़ती है. ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जो वायरल होने के लिए या सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चुनिंदा और भी लोग अपनाते हैं. उदाहरण के लिए हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मंच से यह कहा कि मौजूदा सरकार सीता के पति का नाम लेती है लेकिन नीता के पति का काम करती है. आप खुद सोचिए, क्या सरकार की आलोचना के लिए हिंदू देवी देवताओं को इसमें घसीटना और उन पर ऐसे चुटकुले बनाना सही हो सकता है? हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वायरल होने के लिए या क्लिकबेट के लिए इतने निम्न स्तर पर जाना ठीक नहीं हो सकता. कड़वा सच यही है कि आजकल इस तरह के जितने भी बयान दिए जाते हैं उनके पीछे बड़ा मकसद है, सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना। और ये सिर्फ जगजीश अंसारी जैसे लोग या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का एक नया बयान आया है, जिसमें वो नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि संस्कृत विदेशी भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है।
4: जहां तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये जरूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम खत्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी जुबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम खत्म नहीं होने।
2: सोचिए, हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति को लेकर ये सारे बयान उस भारत में दिए जा रहे हैं जहां कुछ लोग अब हिंदुओं को असहनशील और असहिष्णु बताने लगे हैं। और बात सिर्फ इन बयानों की भी नहीं है, आज से पूरे देश में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसके लिए यह माना जाता है कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। और इससे पहले परंपरा के अनुसार डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाती है, और ये वो परंपराएं हैं जो सदियों से हो रही हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, और इनमें भी जौनपुर के इन दृश्यों को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर भगवान जगन्नाथ के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं।
5: जय जगन्नाथ,

0: पूरा विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन लोगों ने बताया कि अब जगन्नाथ जी प्रभु पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि परसों सुबह जगन्नाथ महाप्रभु को शाही खिचड़ी का भोग लगेगा, फिर शाम के समय उनका रथ यात्रा सुसज्जित कर दिया जाएगा और बड़ी धूमधाम से, पर उसके बाद से वो अपने रथ पे बैठ के अपने भैया बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ पूरे शहर में भ्रमण के निकलेंगे। तो आप लोग भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। जय जगन्नाथ।
1: ये परंपराएं और मान्यताएं लगभग हर धर्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सवाल हिंदू धर्म की मान्यताओं पर उठाए जाते हैं, और ये भी तब होता है जब सवाल उठाने वाले कई लोग इनके पीछे की मान्यताओं और आस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। आज यही देखकर हमने तय किया कि हम इन लोगों का ज्ञानवर्धन करें और ये बताएं कि क्यों भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा के साथ इतनी पवित्र मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ओडिशा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष रूप माना जाता है। उनकी वार्षिक रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडचा मंदिर जाते हैं, और इसकी पूरी परंपरा कई चरणों में होती है। इनमें रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक बड़ा अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है, फिर उन्हें 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, और मान्यता है कि इसी स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि ये समझिए कि भगवान जगन्नाथ जो हैं, उनकी मानव लीला की चर्चा होती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मानव लीला के कारण ही उनका चाहे पहनावा हो, उनकी चाहे यह बीमारी हो, जो मौसम बदलने पर 108 घड़ों के स्नान के कारण अचानक बिगड़ जाती है। यह घटना यह भी बताती है कि भगवान इंसानों में से ही एक हैं और वो सबके आदर्श हैं। अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ के 15 दिन तक दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्वारंटीन में जाते हैं वो। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान इन दिनों में विश्राम करते हैं और तब वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है, और मान्यता है कि इस दिन भगवान फिर से युवा नए रूप में दिखाई देते हैं स्वस्थ होकर। इसके तुरंत बाद रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, 3 किलोमीटर दूर गुंडचा मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां वो लगभग 7 दिन रहते हैं, और यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब गुंडचा मंदिर चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नाराज होती है, और इसके बाद 5वें दिन वो उन्हें खोजने आती है, और इसे हेरा पंचमी कहा जाता है। लगभग 7 दिन बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं, और इसे बहुधा यात्रा कहते हैं, और ये पूरी यात्रा कई संदेश देती है। इसमें जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये अवसर याद दिलाने का होता है कि भगवान केवल मंदिर के अंदर सीमित नहीं, बल्कि अपने भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं। दूसरा, जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं, यानी ये रथ यात्रा ये बताती है कि भगवान को खोजने के लिए हमेशा कठिन साधना जरूरी नहीं, भगवान अपने भक्तों तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, और भक्ति केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, भगवान और लोगों के बीच आस्था का संबंध सबसे बड़ा है, और ये रथ यात्रा उसी का एक आधार है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बिना जाने समझे इस रथ यात्रा की परंपराओं पर भी सवाल उठाने लगते हैं।

खैर, अब तक आपने जो देखा वो हमारे अपने देश भारत में हुआ, उस भारत में जिसे कई लोग इसे फैशनेबल मानते हैं कि भारत को असहनशील कहें। लेकिन असहनशीलता होती क्या है और किसी देश में अल्पसंख्यक कैसे खतरे में आते हैं, उसे आज आप हमारे अगले विश्लेषण से समझिए। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही है। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे। और ये पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे और यह उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे, सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। ये परिवार पहले बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में रहता था और ये वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मयमनसिंह जिले से थी और वो बताती हैं कि ये हिंदू परिवार बहुत पहले मयमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और इस घटना के बाद ये हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। ये सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा। लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया। और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। ये वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूक नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हो
बेवजह चिल्ला रहे हैं। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती हैं कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थी, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुसाए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है, तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए, यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए, ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं, और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि क्या चीन में भगवानों से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की पूजा करना अनिवार्य हो गया है। ये सवाल टेलीग्राफ की उस रिपोर्ट के बाद पूछा जा रहा है जिसका शीर्षक है क्रिश्चियंस आर डिसअपीयरिंग फॉर वर्शिपिंग अ गॉड अदर देन शी, यानी शी जिनपिंग के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा करने वाले ईसाई अब चीन में गायब किए जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा चाहती है कि उसके लोगों की सर्वोच्च निष्ठा पार्टी और शी जिनपिंग के प्रति हो, न कि किसी स्वतंत्र धार्मिक संस्था या धर्म के प्रति। इस बात को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं जो द ऑस्ट्रेलियन नाम के एक अखबार में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह बताया गया था कि चीन में जिन चर्चेज को सरकार ने खुद मान्यता दी है उनमें ईसा मसीह के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई जाती है, और ये चीन की एक राष्ट्रीय नीति के तहत होता है। इसे सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन कहते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसका उद्देश्य था चीन में सभी धर्मों को कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप बनाना, यानी धर्म तो होगा लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा से बड़ा नहीं माना जाएगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि चीन आधिकारिक रूप से 5 धर्मों को मान्यता देता है। इनमें बौद्ध धर्म है, ताओ धर्म है, इस्लाम धर्म है, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है और कैथोलिक ईसाई है। लेकिन इसी के साथ चीन की सरकार ने इन सभी धर्मों के आधिकारिक धार्मिक संस्थाएं बना दी है। जैसे ईसाइयों के लिए 2 सरकारी चर्च हैं, एक को 3 सेल्फ पेट्रियोटिक मूवमेंट कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए होता है, और दूसरे को चाइनीज पेट्रियोटिक कैथोलिक एसोसिएशन कहते हैं जो कैथोलिक ईसाइयों के लिए होता है, और इन चर्च पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। जैसे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के गीत गाए जाते हैं, उनके प्रति निष्ठा दिखाई जाती है, कई जगहों पर चर्च के अंदर शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई जाती है, और धार्मिक शिक्षा भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होती है। अब क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये चर्च सरकारी नियंत्रण के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर जैसे लगते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड चर्च चलाते हैं। ये वो चर्च होते हैं जो बिना सरकार की अनुमति के घरों, किराए के कमरों या छोटे समूहों में चलाए जा रहे हैं, और इन्हें कुछ लोग हाउस चर्चेस भी कहते हैं, यानी जिन लोगों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाले सरकारी चर्चों में जाने की इच्छा नहीं होती वो लोग ऐसे अंडरग्राउंड चर्च में प्रार्थना करते हैं, जबकि चीन के कानून के अनुसार ये गैर कानूनी है। चाइना एड नाम की संस्था कहती है कि ऐसे अंडरग्राउंड चर्च चलाने के लिए अब तक 10,000 लोग पिछले 10 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं, और इन्हीं गिरफ्तार हुए लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिन ईसाइयों ने ईसा मसीह के साथ शी जिनपिंग की पूजा नहीं की उन्हें गायब कर दिया गया। हालांकि चीन की सरकार इस पूरे विवाद पर कुछ और कहती है। उनका कहना है कि चीन में धार्मिक मामलों का संचालन कानून के अनुसार किया जाता है, जिसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन कहना सही नहीं हो सकता। अब इस खबर का एक पहलू यह है कि चीन में ईसा मसीह से पहले कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति ज्यादा निष्ठावान होना जरूरी होता है, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि क्या चीन एक नास्तिक देश बन गया है। इस सवाल को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि चीन में हमेशा से धार्मिक मामलों का संचालन कानून के हिसाब से नहीं होता था। एक समय चीन ऐसा देश था जहां हजारों वर्षों तक धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं समाज का आधार थी। बौद्ध मंदिरों में पूजा होती थी, ताओ धर्म की परंपरा जीवित थी, कन्फ्यूशियस यानी कन्फ्यूशनिज्म की शिक्षाएं
समाज और शासन का मार्गदर्शन करती थी। और बाद में ईसाई धर्म भी चीन में फैल गया, कई चर्च स्थापित हुए। यानी एक सदी पहले तक चीन नास्तिक देश नहीं था, उल्टा साल 1912 तक चीन पर चिंग राजवंश का शासन था। ये वही राजवंश था जो मैंडेट ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के आदेश से चलता था, और उस राजवंश में धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन 1912 में जब चिंग राजवंश समाप्त हुआ और उसके बाद चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब सब कुछ बदल गया। उस वक्त चीन की नई सरकार उसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहती थी, जिसके कारण वहां धीरे धीरे धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ। इनमें भी साल 1917 एक नया मोड़ लेकर आया। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, लेनिन के नेतृत्व में वहां कम्युनिस्ट सरकार बनी, और बाद में कम्युनिस्ट सरकार का यही प्रभाव चीन तक पहुंचा, जिससे चीन में दो बड़ी राजनीतिक ताकतें उभरी। इनमें एक को कुओमिंतांग कहा गया, जो वहां की राष्ट्रवादी पार्टी थी, दूसरे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो वामपंथ विचारधारा से प्रेरित था। इन दोनों राजनीतिक ताकतों के लंबे गृह युद्ध की शुरुआत हुई, और साल 1949 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माओ त्से-तुंग की जीत हुई। माओ उस वक्त केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि नास्तिक विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवाद के अनुसार वो भी धर्म को अक्सर जनता के लिए अफीम की तरह मानते थे, और ये कहते थे कि धर्म लोगों को वास्तविक सामाजिक समस्याओं से दूर रखता है। माओ ने इसी सोच को अपनाया, चीन का सर्वोच्च नेता बनने के लिए धर्म का प्रभाव कम करना शुरू किया। इसके लिए साल 1966 में सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसमें माओ ने कम्युनिस्ट विचारधारा को चीन की नई आत्मा बना दिया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद वहां नास्तिक विचार को और भी आगे बढ़ाया गया। 1982 में चीन ने नया संविधान बनाया, जिसमें यह लिखा गया कि लोगों को धार्मिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन साथ ही यह भी व्यवस्था रहेगी कि धार्मिक गतिविधियां कानून और राज्य के नियंत्रण के अधीन हो। यानी लोगों का धर्म तो होगा, लेकिन वो धर्म कानून से बड़ा नहीं होगा, और कानून के द्वारा ही धर्म का संचालन होगा। और तब से लेकर आज तक इन कानूनों पर दुनिया में बहस छिड़ती है। ये कहा जाता है कि चीन नास्तिक देश बन गया है। इसके पीछे ये आंकड़े भी हैं जो चीन की सरकार ने खुद जारी किए हैं। चीन में सबसे ज्यादा 31.8% लोग खुद को एग्नोस्टिक मानते हैं। ये वो लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार करते हैं न ही नकारते हैं। फिर 30.8% लोग चाइनीज फोक रिलीजन को मानते हैं, जो चीन की पारंपरिक आस्थाओं या धर्मों का समूह है। फिर 16.6% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, 7.4% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 6.8% लोग खुद को नास्तिक कहते हैं, और 1.8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन इन धर्मों को मानने से पहले चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखना जरूरी होता है, और यह व्यवस्था भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों से बहुत अलग है। हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगी होती है, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सोचिए, फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता पर इतनी बहस छिड़ती है, और भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या होता है उसे आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया, और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है।

अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी, इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं, आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं, इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की GDP से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका ये कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है।

पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग यानी हमारे वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों में कुछ ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ ने समय से पहले रिटायरमेंट ली है। जिन वैज्ञानिकों ने इसरो को अलविदा कहा वो गगनयान, चंद्रयान 4 जैसे कई अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों द्वारा इसरो छोड़ना सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अचानक से इसरो से जाने का मतलब है देश के सम्मान से जुड़े अहम स्पेस मिशन में रुकावट पैदा होना। सूत्रों के अनुसार अभी तक करीब 120 वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इसरो छोड़ा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के करीब 80 वैज्ञानिक और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 20 वैज्ञानिकों ने इसरो से खुद को अलग किया। इसके अलावा अहम स्पेस मिशन से जुड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी इसरो छोड़ दिया। जैसे LVM3 रॉकेट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद को अलग कर लिया है। LVM3 इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी भरकम ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। आप सोचिए कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी अपने पद को छोड़ दिया है। स्पेडेक्स दरअसल इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तकनीकी मिशन है। इसका मकसद अंतरिक्ष में दो उपग्रहों की ऑटोमेटिक डॉकिंग और अनडॉकिंग यानी अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ना और अलग करना है। ये तकनीक गगनयान मिशन जो भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी है और इसके अलावा ये अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी भारतीय महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी है। यही नहीं, चंद्रयान 3 से जुड़े रहे युवा वैज्ञानिकों ने भी इस्तीफा दिया है जो चंद्रयान 4 मिशन के लिए काम कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ने का मतलब है कि इन सभी मिशन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब से महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा या VRS लेने की अपील को आसानी से मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी एक तरह से वैज्ञानिकों को जाने से रोका जाएगा। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इस्तीफे और VRS से जुड़े मामले अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखेगा और वही फैसला लेगा। दो दिन पहले DOS ने एक पत्र लिखकर सभी स्पेस सेंटर्स को इसकी जानकारी दे दी है और ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बड़े स्पेस मिशन से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत भरना बहुत मुश्किल है। 2012 से 2024 के बीच करीब 700 कर्मचारियों ने अलग अलग कारणों से इसरो छोड़ी। फिलहाल इसरो भी करीब 1050 नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सवाल यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह है स्पेस स्टार्टअप्स। सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष मिशन से जुड़े इसरो के ये वैज्ञानिक देश में खुलने वाले नए स्पेस स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया था और फिर 2023 में सरकार इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी लेकर आ गई थी। इसका मकसद था प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस मिशन में अपनी भागीदारी दें। इस वक्त भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं जिनमें करीब 4,815 करोड़ रुपए निवेश हो चुका है। अकेले 2025 में 1,445 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, यानी अंतरिक्ष में नई उड़ान के लिए अब प्राइवेट खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अच्छे ऑफर्स और सुविधाओं के नाम पर वो इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को अपने यहां हायर कर रहे हों। इस वक्त देश में एक SUV कार सड़क पर चल रहे सामान्य लोगों के लिए डर का सबब बन गई है और वो है थार। हालांकि ये डर केवल कार से भी नहीं है बल्कि इस कार को चलाने वाले लोगों की मानसिकता से। गुरुग्राम के सेक्टर 67 की एक सोसाइटी का मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से थार और उसके सवार दोनों को चर्चा में ला दिया है। इसी सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला पार्किंग में सो रही थी, उसकी एक थार सवार ने गाड़ी को बैक करते वक्त कुचल दिया। इस हादसे में जमीन पर सो रही महिला को गंभीर चोटें आईं। थार सवार ने जब देखा कि महिला को उसने कुचल दिया है तो उसने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। जैसे ही महिला की मौत की खबर थार सवार को मिली, उसने उसका शव अस्पताल से लिया, सीधे सोसाइटी की उसी जगह पर लाकर रख दिया जहां पर वो सो रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए कि एक थार सवार ने पहले गाड़ी से एक महिला को कुचला, फिर उसे अस्पताल ले गया, जब देखा कि पीड़ित की मौत हो गई तो शव वापस लाकर वहीं पर रख दिया जहां कुचला गया था उसे। समझ नहीं आता आखिर यह किस तरह की संवेदनहीनता है। अभी कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के वसंत कुंज में एक थार सवार

ध्यान कीजिए, 19 साल पुरानी इस तस्वीर में मेसी उस खिलाड़ी को अपनी गोद में लेकर नहला रहे हैं जिससे वो इस वीकेंड वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए भिड़ने जा रहे हैं। और ये बच्चा और कोई नहीं, स्पेन में जो आज 19 साल का फुटबॉलर यमीन यामाल है। ये घटना 2007 की है, तब स्पेन के बार्सिलोना में यूनिसेफ का एक चैरिटी कैलेंडर था, उसके लिए फोटोशूट होना था। उस वक्त मेसी एक उभरते हुए स्टार थे, 40 साल की उनकी उम्र थी और लमीन यामाल के परिवार ने एक लकी ड्रॉ जीता था। इसके तहत इस 5 महीने के बच्चे को बार्सिलोना के किसी खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलना था। अब किस्मत का खेल देखिए, तब सब इससे अनजान थे, लमीन यामाल को मेसी के साथ फोटोशूट का मौका मिल गया। उस वक्त मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे। इस तस्वीर में 20 साल के मेसी लमीन यामाल को प्यार से नहलाते, तौलियों में लपेटते नजर आ रहे हैं। किसने सोचा होगा उस वक्त कि ये बच्चा एक दिन फीफा के फाइनल में मेसी के सामने ही चुनौती बनकर खड़ा होगा। और खास बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी बार्सिलोना की मशहूर लमासिया एकेडमी से निकले हैं। आज लोग कह रहे हैं कि 2007 में अनजाने में ही सही मेसी ने इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया था। आज 19 साल बाद वही 5 महीने का बच्चा स्पेन की टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर, मेसी के लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के सपने के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया है। एक तरफ लोगों की नजरें रविवार को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल पर हैं, दूसरी तरफ चर्चा इंग्लैंड अर्जेंटीना के बीच हुए सेमीफाइनल की है। इस मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद आखिर में अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा तो दिया, लेकिन मैच की आखिरी विसल बजते ही जो कुछ हुआ उसने 44 साल पुराने जख्मों को हरा कर दिया। जीत के जश्न के बीच अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और फैंस ने एक बैनर लहराया, इस पर लिखा था ला मालविना सन अर्जेंटीनास। इसका मतलब होता है फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना का है। अब हम मौसम में आए ऐसे बदलावों की बात करेंगे जिसने जलवायु परिवर्तन की चर्चाओं को केवल किताबी नहीं रहने दिया है। भारत में मॉनसून की स्थिति देखिए, आधा जुलाई बीत चुका और उत्तर भारत में अभी तक सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। यूरोप में तो बुरा हाल है, वहां तो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जून से लेकर अब तक यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की वजह से यूके और यूरोप में अब तक 14,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें फ्रांस में 2,000 से ज्यादा, बेल्जियम में 1740, जर्मनी में 6,800, नेदरलैंड्स में 480, स्पेन में 810 और यूके में 2,200 लोगों की मौत हुई है। यूरोप के देशों में तापमान 37 से 43 डिग्री तक जा रहा है, जो सामान्य स्थिति नहीं है। आमतौर पर वहां तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर दुनिया भर के एनजीओ अब मैदान में उतर आए हैं। ये एनजीओ लोगों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन पर जागरूक कर रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में ग्रीन पीस नाम के एनजीओ ने बर्फ के पुतले लगाकर लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण कम करने और जंगलों के संरक्षण को लेकर अभियान चलाता है। रोम के कोलोसियम के पास इस एनजीओ ने इंसानी रूप के बर्फ के पुतले लगाए जो इस भीषण गर्मी में धीरे धीरे पिघल रहे थे। इस प्रदर्शन के जरिए इटली के लोगों को भीषण गर्मी से बचने के उपाय भी बताए गए और लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक भी किया गया। इटली में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है और हालात ठीक नहीं है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होता, लेकिन सच यह है कि हम अलग अलग तरह से इससे प्रभावित होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तेजी से बदल रही जलवायु और गर्मी ने हमारी नींदें उड़ा दी। अमेरिका की क्लाइमेट सेंट्रल नाम की संस्था ने एक नई स्टडी की है। इसमें पता चला कि रात के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से आम लोग हर साल 65 से 93 घंटे तक की नींद खो रहे हैं। यह स्टडी भारत के 100 से ज्यादा शहरों पर की गई थी। इस स्टडी के अनुसार चेन्नई के लोगों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ के लोग औसतन हर साल 93 घंटे कम सोते हैं। इसके अलावा मुंबई के लोग सालाना औसतन 84 घंटे, कोलकाता के लोग 80 घंटे की नींद खो रहे हैं। इसके अलावा अन्य शहरों की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। साल 2020 से 25 के बीच इन शहरों में एक औसत व्यक्ति ने
हर साल लगभग

0: 56 घंटे की नींद रात के अधिक तापमान की वजह से खोई है। आमतौर पर रात का तापमान दिन की तुलना में कम होता है। दिन भर जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद रात में सोता है, कम तापमान उसकी नींद को बेहतर बनाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिन भर तपे इंसानी शरीर को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। इसी वजह से नींद की क्वालिटी में गिरावट आई है और नींद उड़ी उड़ी सी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ, देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Tune In has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
4: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
3: to live sports action.
5: To the near side corner, to wrap around, he scores!
3: And your favorite music.
6: You and I stargazing.
3: Tune In has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play Tune In.
7: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
8: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
9: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
7: मतलब
9: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
7: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
9: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
13: आगे आगे,
14: अरे उधर
13: उधर,
14: करेक्ट करेक्ट,
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
1: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
3: राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। असली बात यह है कि लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे, 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मॉनसून सत्र से पहले मूसलाधार राजनीति, कल राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की। पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी कल करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं पंजाब के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है राजनीति, सपा और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही परिणाम। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाया बॉम्ब तो रोक देना बाब अल मंदीप का रास्ता। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 233 पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया, श्रेयस ने सबसे ज्यादा 66, कोहली ने बनाए 65 रन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक, क्यों उत्तर प्रदेश में रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, हमारे तीन सवाल हैं। पहला सवाल ये कि इस यूनिवर्सिटी को आजम खान ने बनवाया और आजम खान यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष और चांसलर भी हैं, तो क्या राजनीतिक रंजिश इस यूनिवर्सिटी के दुश्मन बन गई? दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई प्रशासन नक्शा पास न होने के कारण यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाना चाहता है? और तीसरा सवाल वो ये कि अगर यूनिवर्सिटी को डहा दिया गया तो उसमें पढ़ने वाले 3000 छात्रों का क्या होगा? तो आज हम इन तीनों सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे आजम खान की यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के एक समय में राजनीतिक मुद्दा हुआ करती थी और अब 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ये यूनिवर्सिटी राजनीतिक मुद्दा क्यों बनी हुई?
1: आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, 15 दिन का अल्टीमेटम। यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें जमींदोज होंगी, नोटिस आ गया है। यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के नक्शे नहीं पास, इसलिए गिर रही है गाज। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी, यूपी में सियासत भारी। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर कौन कौन से विवाद हैं, अब क्या होगा? यूपी के रामपुर शहर से 12 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र सिंघनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है।
2: अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
3: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
2: भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
3: किस चीज का?
2: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
3: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
2: हाँ बस।
3: अच्छा, कहाँ से आए आप?
2: आरडीओ से आए, रामपुर विधानसभा।
1: प्रशासन और रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यूनिवर्सिटी को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी इन आलीशान इमारतों को गिरा ले, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
4: कुछ नहीं मानती हूँ, अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
5: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
4: अभी कुछ कह नहीं सकती।
1: आपको बता दें कि रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है। जांच में पाया गया है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास है, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर अली विश्वविद्यालय मामले में गहन जांच के बाद 38 अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। प्राधिकरण ने क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून 2026 को यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस दिया था। 29 जून 2026 को ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद अली को भी नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दिया गया था।
6: जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र दो ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है।
7: सर, टोटल कितने भवन
6: है? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से दो का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया है।
1: इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया। और अब पीडब्ल्यूडी ने वोट लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
7: आम रास्ता इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो रोड अंदर जा रही है फोर लेन सीसी की, वो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की गई, तो वो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, तो वो आम रास्ता, जो भी लोक निर्माण की सड़क बनती है पब्लिक के लिए बनती है, आम रास्ता ही है वो सभी हमारा, इसलिए वो हमने बोर्ड लगाया कि आम रास्ता है।
5: यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर इसके है ना,
7: यूनिवर्सिटी के गेट के
5: गेट के ऊपर
7: रोड
5: के गेट जो बंद है, जो गेट लगा है
7: जो गेट बंद है कि वो गेट रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इस पर ही हमारा नोटिस गया था हटाने के लिए, उस पर स्टे है कि गेट रहना है या नहीं रहना है। रोड पर कोई स्टे नहीं, रोड तो लोक निर्माण विभाग की सरकारी रोड है।
5: मतलब आप कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की रोड नहीं है?
7: नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है जी।
5: तो क्या और बोर्ड भी पीडब्ल्यूडी विभाग में बनवाए हैं जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर लगे?
7: हाँ, अभी हमने बाहर एक बोर्ड आज लगा, बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा एक बोर्ड लगवा पाए, कल हम इसके गेट के अंदर जो हमारी सड़क जगह जगह जहाँ हमें लगता है वहाँ इस पर हम अपने 2-3 बोर्ड 4 बोर्ड और लगवाएंगे, जिसमें यही रहेगा कि आम रास्ता पब्लिक आ जा सकती है।
5: जैसे गेट यूनिवर्सिटी का बंद है और जैसे आम रास्ता है तो गेट खुलेगा?
7: बिल्कुल खुलेगा, अगर वो खोलने में आनाकानी करेंगे गेट को तो फिर हम पुलिस प्रशासन की मदद से जो उसको खुलवाएंगे।
0: अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल उठाते आए हैं और अब आजम खान की यूनिवर्सिटी की बारी आई तो क्या अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए उतरेंगे? प्रशासन ने आजम खान की यूनिवर्सिटी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है तो उत्तर प्रदेश में तगड़ी राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी पर सिर्फ राजनीतिक चढ़ाई है या फिर आजम खान की इस ड्रीम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, जिसका नुकसान उसे अब उठाना पड़ रहा है। दिखाएं आपको।
1: जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाने का नोटिस निकला तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? निंदनीय।
8: ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है, तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
9: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं। शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर सिर्फ इसलिए चलेगा आपकी अदावत आजम साहब से है तो ये मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है।
10: वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाति नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, 6-6 फ्लोर, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
11: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: यहाँ सवाल आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाने की नौबत का नहीं है। सवाल ये है कि एक बार फिर से ये यूनिवर्सिटी सियासत की धुरी पर क्यों आई है। पहले आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में वर्तमान में 3000 से अधिक छात्र हैं। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कानून, मानविकी और चिकित्सा विज्ञान सहित 90 से अधिक यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। बात बुलडोजर की आई तो छात्रों के भविष्य की भी आई है।
12: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। मैंने 2022 में यहाँ एडमिशन लिया है, 2026 में यानी कि मैं पास आउट हुई हूँ। अभी अब मैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेने आई हूँ। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इसे मतलब तोड़े नहीं, इस पे कोई कार्यवाही नहीं हो। ये टैक्स में यूनिवर्सिटी है, अगर हम दूर जाएं तो हमारे पेरेंट्स को भी परेशानी होगी और पेरेंट्स भी नहीं भेज सकते हैं दूर। तो
1: छात्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चलाया जाए। आपको बता दें कि आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष और चांसलर थे। फिलहाल तो ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से आजम खान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन चांसलर अब भी बने हुए हैं। बड़ी बात यह भी है कि 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी के दीप मुलायम सिंह यादव के जरिए रखे जाने से लेकर अब तक ये यूनिवर्सिटी जमीन अधिग्रहण, अवैध निर्माण, सरकारी धन के उपयोग और शत्रु संपत्ति जैसे गंभीर मामलों को लेकर लगातार बड़े विवादों में रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जब आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तहत इस यूनिवर्सिटी की रूपरेखा रखी, तभी से स्थानीय स्तर पर जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद साल 2012-2013 में इसे पूर्ण विश्वविद्यालय और अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने को लेकर भी प्रशासनिक और राजनीतिक खींचतान हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद यूनिवर्सिटी की जमीनों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई। लगभग 26 स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया था। इस मामले में प्रशासन ने आजम खान को भू माफिया तक घोषित कर दिया। ईडी ने यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग और गलत तरीके से जमीन ट्रस्ट के नाम करने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया।
13: एक जमाना था जब आजम खान बदजुबानी करके, कट्टरवादी बयान दे करके, मजहबी तुष्टीकरण करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजहबी गोलबंदी किया करते थे। तब इतना रसूख आजम खान का था कि अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी जमीनें तक काबिज कर बैठे थे। लेकिन आज आजम खान के दिन खराब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है, इसलिए आजम को अलग थलग छोड़ दिया है और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टीकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं झोंक पाएगी।
1: जौहर यूनिवर्सिटी की मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में दावा किया जाता है कि इसमें 40,000 से अधिक किताबें हैं, तो इंटरनेट सुविधा से लैस 170 से अधिक नोट्स वाली 5 कंप्यूटर लैब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, विशाल सभागार, एक कृषि प्रायोगिक पार्क, 2 विशाल कैंटीन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुविधा है। लेकिन कथित तौर पर विवादों की बुनियाद पर खड़ी हुई इस जौहर यूनिवर्सिटी में अब मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक को छोड़कर 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कौन कौन सी इमारतें हैं जहां बुलडोजर चलाने का नोटिस आ चुका है, आइए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आमिर खान आपके लिए लेकर आए।
5: हम इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हैं और हम बताएं आपको कि यहाँ पे एक प्रशासन ने कल एक बोर्ड लगाया था कि ये आम रास्ता है, और ये आम रास्ता के बाद यहाँ इसका एरो जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर का इसको मार्क किया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये जा रहा है, जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर। और हम इस वक्त मौजूदगी हमारी है और जौहर यूनिवर्सिटी में हम अभी बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जो 38 बिल्डिंग्स हैं उनको हम दिखाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक कैंप लगा है, छात्र छात्रा परामर्श केंद्र, क्यों लगा है, किसकी तरफ से लगा है, ये पूरी हम अभी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आज ये कैंप लगा है, किसने लगाया सर?
14: ये प्रशासन से ये सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद की जा रही है,
15: तो अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड कर ले लोग तो उनके लिए।
16: आपको क्या प्रशासन से सूचना मिली?
15: यही कि हमें गाइड करना है बच्चों को, एक काउंसलिंग टाइप।
16: किस तरीके की काउंसलिंग?
15: कि बच्चे और जो पढ़ रहे हैं वो किन कोर्सेज में, अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी तो कहाँ जा सकते हैं, जो और कॉलेजेस हैं जहाँ अवेलेबल है कोर्स वहाँ जा सकते हैं। यही
5: शुक्रिया रिजवी साहब। तो मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहाँ एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का कि या तो खुद जो है इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा। हम इस वक्त
0: और अब खबर जहरीले मौलाना के भड़काऊ टेप की। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना जर्जस अंसारी ने एक बार फिर से भगवा ब्रिगेड को भड़काने वाला बयान दिया है। मौलाना अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को इस्लाम धर्म से जोड़ दिया और भगवत गीता के एक श्लोक को तोड़ मरोड़ कर दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना अंसारी यही नहीं रुके, यह भी कहा कि भगवान श्री राम भी इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर की गई मौलाना अंसारी की टिप्पणी के बाद साधु संतों के गुस्से का आलम कुछ ऐसा है कि वो सातवें आसमान पर है। हिंदू संगठन हिंदू धर्मगुरुओं की मांग है कि भड़काऊ मौलाना अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, मौलाना अंसारी को जेल भेजा जाए, क्योंकि मौलाना अंसारी की टिप्पणी हिंदू धर्म पर सीधा सीधा हमला है।
17: कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
18: मौलाना जर्जिस अंसारी ने फिर उगला जहर।
19: यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए।
18: श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी।
19: कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
18: श्री राम को बताया इस्लाम धर्म का प्रचारक।
20: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है।
18: मौलाना के विवादित बयान पर मचा बवाल।
21: मौलाना जर्जिस होश में आओ,
22: होश में आओ।
18: हिंदुओं के देवताओं पर टिप्पणी से टेंशन।
23: एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे।
24: मौलाना जर्जिस ने बड़े ही अभद्र तरीके से हमारे भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी की है।
25: एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।
18: जहरीले मौलाना का भड़काऊ टेप ऑन है।
26: आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय।
18: ये है मौलाना जर्जिस अंसारी। ये वही मौलाना जर्जिस है जो अपने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहता है। खुद को कभी इस्लामिक स्कॉलर बताता है तो कभी धर्म गुरु। देश के अलग अलग हिस्सों में मौलाना की तकरीरें होती हैं।
27: दुनिया थक चुकी है।
18: लेकिन जर्जिस अंसारी की असल पहचान एक भड़काऊ मौलाना की है। ऐसा क्यों? जर्जिस के नए भड़काऊ टेप को सुनकर आप समझ जाएंगे।
19: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युजीत सतत मात्मानं। पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा।
2: ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
18: इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म नहीं है। मौलाना हिंदू संतों से लेकर हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
3: मौलाना जर्जिस मुर्दाबाद,
4: हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए बयान दिया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, 5 बार के नमाजी थे, ये सिर्फ उस अंसारी के मानसिक दिवालियेपन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में श्री योगी जी से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं।
23: एक मौलाना कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे, वो 5 वक्त की नमाज किया करते थे। अरे मौलाना, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले हुए थे, जहां मुस्लिम का एक तिनका भी नहीं था, मुस्लिम का नामो निशान नहीं था।
18: बताया जा रहा है कि मौलाना जर्जिस का विवादित बयान 23 जून का है। झारखंड में एक तकरीर के दौरान मौलाना ने कृष्ण और राम को लेकर झूठा दावा किया था। बड़ी बात यह है कि अपने झूठे दावे को सही ठहराने के लिए मौलाना ने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक का गलत अर्थ पेश किया। जैसे ही मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लखनऊ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ तहरीर दी है। मांग यही है कि भड़काऊ मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।
6: मौलाना जर्जिस होश में आओ, इस तरीके के नारेबाजी हिंदू संगठन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ACP ऑफिस है हजरतगंज, वहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर मांगा जा रहा है कि मौलाना जर्जिस को खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू संगठन का मानना है कि होश में आओ, चूँकि जो भी किया गया उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर सारे जो हिंदू संगठन के लोग वो पहुँच गए हैं और इसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कार्रवाई हो, नहीं तो रुकेंगे नहीं। अखिलेश यादव को भी ये कर रहे हैं। आप तो बताइए क्या मांग है आपकी।
7: तो हम चाहते हैं प्रार्थना पत्र लेके आज लगे कोतवाली आए, इस पे कार्रवाई करी,
6: FIR नहीं तो
7: अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो योगी जी हम आपके दरवाजे आएंगे।
18: मतलब साफ है कि मौलाना की टिप्पणी पर हिंदू संगठन के साथ साथ संत समाज के लोग भड़के हुए हैं। कुछ साधु संत यही मानते हैं कि मौलाना जर्जिस अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, ऐसे में उसे या तो इलाज की जरूरत है या फिर पाकिस्तान भेजने की। विवाद बढ़ा तो अयोध्या के संत विष्णु दास ने मौलाना जर्जिस की जीभ काटने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया।
8: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देश द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए, पाकिस्तान में रखना चाहिए।
18: ना तो मौलाना के बयान को सही ठहराया जा सकता है और न ही संत की तरफ से घोषित किए गए इनाम को। आपको बता दें कि चंद महीने पहले भी मौलाना जर्जिस के एक बयान पर खूब बवाल मचा था। तब मौलाना ने बाबरी मस्जिद और उत्तर प्रदेश को लेकर विवादित बयान दिया था।
19: हम उसको बाबरी मस्जिद
18: भड़काऊ बयानबाजी से लेकर रेप के आरोपों में मौलाना जेल की हवा खा चुका है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज तक ब्यूरो।
9: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे युद्ध का नया हथियार, समुद्र से हाहाकार। आप देखते रहिए दस्तक।
22: प्रेजेंटेड बाय
1: पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
10: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
14: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
13: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
16: You're listening to MSNBC.
13: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
1: सवारी सो कुडो
22: एयू करंट अकाउंट के साथ में
28: सोच बदलो और बैंक भी
29: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
30: पापा सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
31: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
30: छक्का
31: सब कैशलेस हो गया
30: है हां ओ ला भाई मेरा बैट
31: वो अभी तो ठीक हुआ तू
30: बिलोटे चार्ज हुआ यार
31: ला बैट किसका है
32: टाटा AIG है तो भरोसा है
33: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाह वाह वाह वाह।
2: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
6: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
16: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
17: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
15: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: YouTube पे अब देखिए आज तक वर्टिकल। अरे भाई फिर घुमा रहे हैं, छोड़ दीजिए घुमाने की आदत। आज तक वर्टिकल

0: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। होर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीजफायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनके सैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक से कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वे ठीक से पेश आए। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर इस जंग का अंत कब होगा? आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से। और अब खबर युद्ध के उस नए हथियार की, जिसने समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय रास्तों को लेकर हाहाकार मचा रखा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी हमलों के बाद हॉर्मुज से तेल गैस टैंकर्स की आवाजाही करीब करीब ठप पड़ी है। अब यूक्रेन ने भी ईरान के हॉर्मुज मॉडल को हथियार बनाकर रूस के खिलाफ एक बड़ा हमला बोल दिया। अजोव सागर में यूक्रेन अपने ड्रोन से जहाजों को निशाना बना रहा है, हमला कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हॉर्मुज में ईरान कर रहा है। यूक्रेन के हमलों के चलते रूस को अपने जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। तो क्या समुद्री रास्ते अब युद्ध का सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं?

0: हुर्मुज को कंट्रोल करके ईरान कर रहा दादागिरी। अब यूक्रेन ने एजोव सागर को बना दिया हुर्मुज। इधर ट्रंप बुरे फंसे, उधर पुतिन का हाल बेहाल। जंग जीतने के वास्ते रोके समुद्र वाले रास्ते। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। युद्ध का नया हथियार, समंदर से मचा हाहाकार। हुर्मुज को कंट्रोल करके ईरान ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस को दबा रखा है। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद हुर्मुज पर ईरान की इजाजत के बिना आवाजाही शुरू नहीं हुई है। बीते 5 दिनों से ईरान पर अमेरिकी सेना की भीषण बमबारी जारी है, लेकिन हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या लगातार कम हो रही है। ईरान ने दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई चेन को बंधक बना रखा है, तो वहीं ईरान की हुर्मुज वाली रणनीति को अब रूस के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। एजोव सागर में यूक्रेन की सेना ने बीते 9 दिनों में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया है। अब तक रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के साथ साथ अपना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए करता था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद इस रूट से रूस को जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। मतलब यही है कि युद्ध के इस काल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते ही सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं। ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद ट्रंप हुर्मुज को नहीं खुलवा सके, तो पुतिन भी एजोव सागर में यूक्रेन के हमलों को पूरी तरह रोकने में नाकाम हैं। तो क्या अब ईरान अमेरिका युद्ध और यूक्रेन रूस युद्ध में हार जीत का फैसला समंदर से होगा? आज हुर्मुज पर बिछाए गए ईरान के चक्रव्यूह को भेदना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से पार पाने के लिए ट्रंप ईरान के एटमी सेंटर, पुल और पावर प्लांट को निशाना बना सकते हैं।
1: But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
0: ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि हुर्मुज खुला हुआ है, लेकिन आंकड़े ट्रंप के दावों को झूठा साबित करने के लिए काफी हैं। आंकड़ों को देखें तो बीते दिन सिर्फ 9 जहाजों ने हुर्मुज को पार किया, जबकि मंगलवार को यह आंकड़ा 13 का था। युद्ध से पहले रोजाना औसतन 130 जहाज बेरोक टोक हुर्मुज को पार करते थे, लेकिन 17 जून को शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत के बावजूद 24 जून को रिकॉर्ड 72 जहाजों ने हुर्मुज पार किया था। लेकिन इसके बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। ट्रंप यही ऐलान कर चुके हैं कि हुर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का नियंत्रण होगा। हम उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। समुद्र किनारे जो कुछ भी उनके पास है, हम उसे निशाना बना रहे हैं। हुर्मुज हर हाल में खुला रहेगा, क्योंकि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इन लोगों से सिर्फ ताकत के जरिए ही बातचीत की जा सकती है, और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। हमने वही किया है। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि मैं खुद ये ना कह दूं कि अब ये काफी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हुर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने बीते मंगलवार को सेना के टॉप अफसरों के साथ सैन्य विकल्पों पर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान सैन्य अफसरों की तरफ से ट्रंप के सामने ग्राउंड ऑपरेशन का विकल्प भी रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र खार द्वीप पर कब्जा करने के साथ साथ पिकैक्स माउंटेन में अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पर हमले को लेकर चर्चा हुई थी। पिकैक्स माउंटेन ईरान का एक परमाणु सेंटर है, जिसे अमेरिका ने अभी तक निशाना नहीं बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप को 3 अहम सैन्य विकल्प सुझाए गए। पहला विकल्प, हवाई हमलों को और तेज करना। दूसरा विकल्प, हुर्मुज के पास स्थित ईरानी द्वीपों पर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए कब्जा करना। तीसरा विकल्प, पिकैक्स माउंटेन के नीचे मौजूद ईरान के एटमी सेंटर पर बमबारी करना।
2: Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
3: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
2: I will.
3: Let them know we're coming, okay? There's not a damn thing they can do about it. All right. Thank you, sir.
0: इधर ईरान के खिलाफ ट्रंप जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने हुर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की नई रणनीति यही है कि अगर अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान में जमीनी ऑपरेशन हुआ या फिर परमाणु सेंटर या फिर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो रेड सी को बंद करवा देगा। ईरान ने यमन के हुती को अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है, मतलब इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को अब हुती निशाना बनाएंगे। हुती की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने रेड सी में जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बाब अल मंदेब के पास यमन के हुदैदा और अदन की खाड़ी के ऊपर स्थित पहाड़ी इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। अब वो सिर्फ ईरान की तरफ से हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में ईरानी सेना ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो सरप्राइज गिफ्ट तैयार है। ईरान की सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी हमले जारी रहे तो तेहरान की और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ सहयोग और भाईचारे के संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान का पड़ोसी देशों के साथ कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन सशस्त्र बल ईरान की सुरक्षा हितों और गरिमा की रक्षा को अपना प्राथमिक मिशन मानते हैं। ऐसे में संप्रभुता को बचाने के लिए ईरानी सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दुस्साहस और शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर अड़े रहते हैं तो उन्हें ईरानी सेना के सरप्राइज अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल बाब अल मंदेब से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 5% और कुल एलएनजी व्यापार का लगभग 8-10% हिस्सा होकर गुजरता है। ये फारस की खाड़ी से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाले ऊर्जा जहाजों के लिए एक अहम समुद्री रूट है। मतलब यही है कि ईरान पहले ही दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई को अपने कंट्रोल में कर चुका है। अगर बाब अल मंदेब में भी हुती के हमले शुरू हुए तो दुनिया की करीब 30-35% तेल और गैस की सप्लाई चेन को ईरान ब्लॉक कर सकता है। ईरान ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये भी धमकी दी है कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो मिडल ईस्ट के बुनियादी ढांचों पर कहर टूटना तय है। अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो तेहरान मिडल ईस्ट में बचे हुए सभी बुनियादी ढांचों पर हमला करेगा। ईरान के संयम के चलते अब तक जो कुछ भी बरकरार रहा है, मतलब मिडल ईस्ट के सभी बुनियादी ढांचे, ईरानी सेना के शक्तिशाली प्रहारों के नीचे कुचले जाएंगे। ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हुर्मुज में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। अब सवाल यही है कि क्या ईरान की धमकी के बाद भी ट्रंप अगले कुछ घंटों में पावर प्लांट या परमाणु सेंटर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के सामने अपनी धमकी के साथ एक ऑफर भी रखा है। देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बातचीत भी जरूरी है और इसे आत्मसमर्पण नहीं माना जाना चाहिए। ईरान को अमेरिका के हमलों का सैन्य जवाब देने के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी रखने चाहिए। सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों के बीच तालमेल होना चाहिए। हमें न युद्ध से डरना चाहिए और न ही बातचीत से। युद्ध और बातचीत दोनों ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा के अलग अलग तरीके हैं। अब देखना यही है कि अगले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका का ये युद्ध हुर्मुज के बाद रेड सी तक फैलता है या फिर दोनों मुल्कों के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आज तक ब्यूरो।
4: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से छिड़ चुका है। जिस तरह से हॉर्मुज में पिछले दिनों जहाजों पर हमले हुए, दुनिया में एक बार फिर से तेल गैस पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आए। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार बनाया तो अब रूस और यूक्रेन के बीच 4.5 वर्ष से चल रहे युद्ध में यूक्रेन रूस के हॉर्मुज यानी कि अजोव सागर में उसको टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस को अजोव सागर के महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपने जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। ये वही रास्ता है जो रूस को ब्लैक सी और दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे अब यूक्रेन ने रूस की लाइफलाइन पर अटैक किया है।
0: कैसे यूक्रेन ने बंद किया रूस का हॉर्मुज। क्या यूक्रेन पुतिन का ट्रंप जैसा हाल कर देगा।

जिस युद्ध में दोनों देशों के लाखों सैनिक घायल और मौत के मुंह में समा गए, जिस युद्ध के कारण हजारों आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिस युद्ध के चलते यूक्रेन से करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के ऊंचे ढांचे को भारी नुकसान हुआ, रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, आज की तारीख में जैसे यूक्रेन को नई ताकत मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों का नहीं रहा, अब सस्ते ड्रोन उन प्रोजेक्ट्स को भी हिला रहे हैं जिन्हें बनाने में रूस को करीब 300 साल लगे थे। जिस जलमार्ग को कभी रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत की भीड़ माना जाता था, आज वही कुछ दिनों के ड्रोन हमलों से रुकता नजर आ रहा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस को अजोव सागर से जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि रूस के ट्रेड और दुनिया के अनाज बाजार पर भी पड़ सकता है। अजोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाले केच स्ट्रेट को बंद करना पड़ा है। ये 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह समझ सकते हैं, जिस पर कब्जा कर ईरान ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। 2003 में यूक्रेन और रूस ने इस समुद्री क्षेत्र को साझा इस्तेमाल करने का समझौता किया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने इस समझौते का कई बार उल्लंघन किया। अजोव सागर लंबे समय तक यूक्रेन की पहुंच से बाहर रहा है। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए करता था, लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए हैं और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोगदी ने दावा किया है कि पिछले 9 दिनों में एजोव सागर में रूस के 116 जहाजों को निशाना बनाया गया है। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकरों और युद्ध पोतों तक सीमित थे, लेकिन अब हमलों का दायरा बढ़ गया है। लगातार हमलों के बाद रूस ने डॉन एजोव चैनल और केच स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोक दी है। सैटेलाइट तस्वीरों और जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट के मुताबिक इन दोनों रास्तों के दोनों ओर बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर सिर्फ रूस के तेल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, इससे गेहूं, सूरजमुखी के तेल और दूसरे कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है जिन पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लागू नहीं है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि यूक्रेन के हमलों का मकसद क्रीमिया को रूस की सप्लाई लाइन से अलग करना और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल और अनाज के निर्यात को बाधित करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अकेले रूस से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के करीब 25% गेहूं का निर्यात एजोव सागर के रास्ते होता है। अगर ये संकट जारी रहा तो रूस को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। एजोव सागर में संकट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के वायदा भाव भी बढ़ने लगे हैं। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने गेहूं का निर्यात ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि निर्यात के सबसे व्यस्त मौसम में दूसरे बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरा भार संभाल सके। यूक्रेन का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ जहाज डुबोना नहीं है, वो रूस की पूरी सप्लाई चेन काटना चाहता है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों और क्रीमिया को जोड़ने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तभी से रूस अजोव सागर का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, ईंधन और दूसरे सैन्य सामान की आवाजाही के लिए कर रहा है। अब यूक्रेन उसी लाइफलाइन पर हमला कर रहा है। आकार में छोटा होने के बावजूद एजोव सागर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। सोवियत काल में विकसित हुई नदियों और नहरों का विशाल नेटवर्क इसी समुद्री मार्ग से जोड़ता है। इसके जरिए दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, सूरजमुखी का तेल, इस्पात और अन्य सामान पहले ब्लैक सी और फिर दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया जाता है।

0: आज तक ब्यूरो।
1: आइए हम आपको हमारी संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। प्रणय, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और अब यूक्रेन ने जिस तरह से अजोव सागर में प्रणय रूस के जहाजों पर हमले शुरू किए, ये युद्ध का कौन सा नया मॉडल है?
2: देखिए सईद, ये सारा मामला भूगोल की पहेली से जुड़ा हुआ है और जब भी जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि भूगोल पर तर्क वितर्क नहीं किए जाते, उसे बस स्वीकार किया जाता है और उसके अनुसार बर्ताव किया जाता है। और अगर आप देखें तो बीते 4 महीनों में अमेरिका हजारों टन लाखों टन गोला बारूद ईरान में झोंक चुका है, लेकिन अभी तक ईरान को झोंका नहीं पाया है। अगर आप रूस और यूक्रेन की जंग को देखें तो उसमें भी भूगोल ही सबसे बड़ा कारण है और उसी के कारण अभी तक ये 4 साल से जंग चल रही है। आप देखिए कि ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भूगोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत न केवल अमेरिका की पूरी दुनिया को दिखाई, वहां जो टैंकर वॉर चल रहा है उसी के टेम्पलेट का इस्तेमाल अब यूक्रेन अजोव सागर के अंदर करने की तैयारी कर रहा है। और ये अजोव का इलाका जहां पर यूक्रेनी ड्रोन रूसी जहाजों की आवाजाही के लिए एक नया काल नया संकट बन रहे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस का भूगोल कुछ इस तरीके का है कि उसका जो उत्तरी इलाका है, उसके जो उत्तरी पोर्ट है, वो सर्दियों के मौसम में जम जाते हैं। इसलिए उसके लिए अजोव सागर और उसके रास्ते ब्लैक सी और काला सागर के रास्ते मेडिटेरेनियन सी का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, उसके जहाजों के लिए बहुत जरूरी है, उसके समुद्री कारोबार के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि यूक्रेन उनको निशाना बना रहा है, यानी लगभग वैसे ही दांव का इस्तेमाल कर रहा है जो ईरान चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसी टेम्पलेट उसी प्लेबुक का इस्तेमाल अब यूक्रेन कर रहा है रूस को झुकाने के लिए, जहां वो भूगोल के सहारे जो रूस की कमजोरियां हैं उसकी नस दबाने की कोशिश कर रहा है।
1: बहुत धन्यवाद प्रणय। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर इस समय आ रही है, एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। पेपर लीक होने के बाद 21 जून को री एग्जाम हुआ। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त रूप से टॉपर रहे हैं। दोनों ने 715 नंबर प्राप्त किए हैं। आर्यन गुप्ता, पांशुल बंसल और इन दोनों बच्चों ने टॉप किया है, ज्वाइंट टॉपर्स ये दोनों रहे हैं। 21 जून को जो पेपर हुआ था नीट यूजी का, उससे पहले पेपर लीक हुआ था। लगभग 20 लाख छात्र जो थे उन्होंने री एग्जाम दिया था। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: EU सोच बदलो और बैंक भी।
10: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
11: We are over, Jimmy.
12: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें।
3: भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है। तो ये नकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: No.
1: Oh, no.
2: Welcome to Get Real.
0: I got something to say.
2: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
1: Oh, my God.
0: It's got to be deliciously desperate.
1: Why do these girls forgive him?
3: Well, she has a soft spot for troubled men.
0: Boo bloody hoo.
2: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
1: Love runs deeper than we know.
2: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. Aap apna dekh lo.
6: पाकिस्तान सरकार की हवा हवाई बातें चलती रहेंगी। शहबाज और उनकी हुकूमत अपने अवाम को बातों में घुमाकर समझाते रहेंगे, शांत कराते रहेंगे, लेकिन कब तक? आटा, जिससे 2 जून की रोटी मिल जाती है, पाकिस्तान में उस आटे का भाव आसमान छू रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के हवा हवाई वादों के उलट वहाँ संकट बेहिसाब बढ़ा है। स्थिति यह है कि संकट के बादल अब इस्लामाबाद तक मंडरा रहे हैं। हालात ये हैं कि मार्केट में आटे की कमी पड़ती जा रही है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहरों में लोगों को आटे दाल का भाव अब पता चल रहा है। संकट कितना गहरा है, इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 15 किलो आटे का पैकेट अब 2500 रुपए पाकिस्तानी रुपए तक मिल रहा है। मतलब 1 किलो आटे का भाव हो चुका है करीब 160 रुपए किलो। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये भाव सामान्य आटे का है। अगर चक्की का आटा खाना हो तो पाकिस्तान के लोगों को करीब 180 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सामान्य आटे से बनी एक रोटी की कीमत भी करीब 25 रुपए में बिक रही है। आटे की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ आवाम शहबाज सरकार से सवाल पूछ रही है कि कब तक ऐसे हालात से जूझना पड़ेगा। पंजाब और कश्मीर की सरहद पर ट्रक रोक दिए गए, गेहूं की सप्लाई बंद हो गई, तो इस्लामाबाद बिलबिला उठा। पाकिस्तान में आम आदमी की थाली से रोटी गायब है, आटा मिलों से गेहूं गायब, युवकों के हिस्से का रोजगार गायब, कहीं बिजली आफत तो कहीं बत्ती गुल। ऊपर से महंगाई की जबरदस्त मार की वजह से पाकिस्तान की आवाम परेशान हो उठी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की आवाम महंगाई, रोजगार और ऐसे ही कुछ मांगों को लेकर शहबाज सरकार से टकराव के मूड में है। एक दिन पहले ही हजारों हजार की संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च भी किया। सवाल वहां की हुकूमत से है कि आखिर ऐसी हालत क्यों? ऐसे विरोध प्रदर्शन के बीच अब आटा संकट से पसीना छूट रहा है। संकट इस कदर है कि कब बाजार से आटा गायब ही हो जाए तो कोई नहीं जानता। इस्लामाबाद के आटा मिलों तक गेहूं की सप्लाई पूरी तरह ठप है, लिहाजा गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है। असर ये कि कई आटा मिल बंद हो चुके हैं और जो चल भी रहे हैं वो बंद होने की कगार पर है। हर कोई आटे और गेहूं के संकट को लेकर पाकिस्तान में सवाल पूछ रहा है, लेकिन हुक्मरान चुप्पी साधे बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: आइसकबर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मानसून सत्र से पहले मूसलाधार सियासत, कल राजनाथ के घर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी है चिट्ठी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा की जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, सपा और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना, बाब अल मंदेव का रास्ता।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फरीदाबाद के करीब एक नहर से दो लाशें मिलती हैं, एक लड़की की लाश और एक लड़के की लाश। दोनों के हाथ एक दूसरे से डेटा केबल से बंधे हुए थे। नहर किनारे ही एक कार खड़ी थी और कार के अंदर खून से सना एक हथौड़ा रखा हुआ था। और बस यहीं आकर मामला उलझ जाता है कि क्या उन दोनों ने खुदकुशी की या फिर दोनों को मारकर नहर में फेंक दिया गया।
1: ये एक नहर की तस्वीर है और ये है इस नहर के किनारे बोट पर पड़ी लड़का लड़की की दो लाशें। मामला दिल्ली के करीब फरीदाबाद का है। इन लाशों की तस्वीर तो हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते, लेकिन दोनों ही लाशों की एक खास बात आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, लड़का और लड़की की कलाइयां एक दूसरे से कसकर बंधी हुई हैं, शायद किसी डेटा केबल से। और इस तस्वीर को देखकर ही ये लगता है कि शायद दोनों ने एक राय होकर अपने अपने हाथ एक दूसरे से बांधकर पानी में छलांग लगाई है, ताकि दोनों साथ साथ पानी में डूबें और दोनों की मौत साथ साथ हो। लेकिन फरीदाबाद पुलिस अभी इस डबल सुइसाइड मिस्ट्री को सॉल्व करती, तब तक उसकी नजर मौका वारदात पर खड़ी इस ब्लैक कलर की किया सोनेट कार पर पड़ती है। और कार के अंदर उसे जो कुछ दिखता है वो इस केस को सिर के बल खड़ा कर देता है। कार में दो मोबाइल फोन के साथ साथ खून से सना हुआ एक हथौड़ा भी है। पता चलता है कि ये कार पानी में डूबकर मरने वाली इस लड़की की ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये मामला डबल सुइसाइड का है, तो फिर कार में पड़े खून से सने उस हथौड़े का क्या कनेक्शन है? तो यही इस डबल डेथ की असली मिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मिस्ट्री को सुलझाने की ओर आगे बढ़ें, आइए जल्दी से उस लड़की के पति को सुन लेते हैं, जिसकी लाश किसी और लड़के के साथ नहर से बरामद हुई है।
2: कि एक्चुअली ना, मेरी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, ये फ्रीलांसर है।
3: अरे आ गया।
2: तो इसने नियर बाय जिम स्टार्ट किया, मुझे बता कर कि भाई जिम करना है मुझे, ठीक है। वहाँ ये गए, वहाँ इन्होंने जिम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के ने हाय हेलो चालू करी और उसके बाद बातचीत करनी चालू करी। डेली रात में परेशान करने लगा, मेरी वाइफ ने रोका, वो नहीं मानी। नहीं मानने के बाद उसके बाद जब वो नहीं माना तो उसने क्या बोलते हैं, परेशान करना चालू करा।
3: कब से परेशान कर रहा था?
2: समथिंग दो ढाई महीने से।
4: सर क्या नाम था?
2: उसको रोका भी गया था और उसकी ना महिला थाने में कंप्लेन भी करी थी 16 सेक्टर में।
3: आप लोगों ने लड़का पक्ष से बातचीत नहीं की?
2: नहीं, एक्चुअली जब थाने में महिला थाने में कंप्लेन करी थी तो भाई और उसकी मम्मी आए थे, समझाया था। समझाने के बाद उसकी मम्मी ने माफ़ी मांगी थी मेरी वाइफ से कि बेटा अभी आगे से गलती नहीं करेगा, और अगर आगे ये करता है गलतियां तो मैं आज तेरे साथ चल के कंप्लेन करवाऊंगी इसकी थाने में।
1: तो आपने शिवम को सुना, और शिवम की माने तो ये मामला एक तरफा इश्क का है, और इसी एक तरफा इश्क में उसकी बीवी रश्मि की जान चली गई। शिवम की माने तो रोज की तरह वो 11 जुलाई को भी अपनी ड्यूटी पर गुरुग्राम गया था, लेकिन इस बीच उसे अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली और वो मौके पर पहुंचा। शिवम की माने तो उसे ये पता नहीं था कि उसकी बीवी घर से बाहर है, क्योंकि उसके घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में उसे अपनी कार नजर आ रही थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को लेकर निश्चिंत था। लेकिन अब ये कहानी सामने आ गई। पेशे से मेकओवर आर्टिस्ट 31 साल की रश्मि करीब ढाई महीने से अपने घर के पास एक जिम में वर्कआउट करने जाया करती थी, और आकाश उर्फ अक्कू नाम के एक लड़के से उसी जिम में उसकी मुलाकात हुई। अक्कू एक जिम ट्रेनर था। इसके बाद उसने रश्मि का पीछा करना शुरू कर दिया। खबर होने पर रश्मि के घर वालों ने अक्कू की शिकायत पुलिस से की, और तब अक्कू के घर वालों ने रश्मि से माफी भी मांगी थी, लेकिन बाद में वो फिर से अपनी हरकतें दोहराने लगा।
2: ये एक्चुअली जैसे मेरी वाइफ निकली कहीं तो ये पीछे पीछे बाइक से, गाड़ी के आगे बाइक लगा देना, परेशान करना, मैं भी चलूंगा, जबरदस्ती बैठ जाना गाड़ी में, मतलब बिल्कुल ही टॉर्चर कर रखा था। बहुत
3: क्या नाम था? कभी आपकी वाइफ ने आपसे नहीं बताया मुझे कोई लड़का परेशान करता है इस तरीके की बात?
2: सर मुझे जब पता लगा था तो हमने कंप्लेन करी थी महिला थाने में, उन्होंने बोला था कि बेटा अगर ये नहीं मानता है समझाने के बाद तो इसके खिलाफ। युवक का अक्कू नाम था।
4: कहां का रहने वाला था ये?
2: एतमादपुर गांव।
5: कुछ दिन पहले आपके मकान पे गया था?
2: हाँ जी, ये इसने एक्चुअली ड्रिंक कर रखी थी, मुझे उसी दिन पता लगा था इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये घर पे आ गया था, तो घर में कैमरे लगे थे सीसीटीवी जिसमें कि ये दिख गया बाहर।
3: पूरा नाम क्या था लड़के का?
2: मुझे अक्कू नाम पता है, बाकी पूरा नाम।
5: वाइफ के टच में कैसे आया ये? मतलब
2: ये एक्चुअली जिम करते थे तो वहाँ पे लड़के ने हाय हेलो चालू करी और जैसे फोन रखा रहता है जिम में, तो जैसे अब फोन में किसी का भी फोन आता है तो नंबर दिख ही जाता है, ऑलमोस्ट फोटो भी दिख जाता है
3: जी।
2: मेरा फोन अगर आता है तो मेरी वाइफ और मेरा फोटो लगा हुआ है
3: जी।
2: तो शायद उस बिहार पे उसने नंबर देखा और वो अपने दिमाग में डाल के। और
1: शिवम की माने तो यहाँ तक तो मामले का एक एक सच उसे पता था, लेकिन इसके बाद जिस तरह उसकी बीवी और अक्कू की मौत हुई उसके रहस्य से वो भी हैरान है। लेकिन ये तो शिवम का बयान है। शिवम के बयान से अलग रश्मि की कार में मौजूद खून से सना हथौड़ा और खुद अक्कू के घर वालों का बयान कुछ और ही कहानी कहता है, क्योंकि अक्कू के घर वालों का कहना है कि ये मामला सुसाइड का नहीं बल्कि कत्ल का है और महिला के पति यानी शिवम ने ही अक्कू की हत्या करवाई।
6: ये मर्डर का मामला सर।
5: किसने किसका मर्डर किया है?
6: अब होगी ना कोई साजिश बनाई होगी, अभी तो खुलासा हुआ नहीं है।
5: अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? भाई था आपका?
6: मेरा साला था।
5: क्या नाम था?
6: आकाश। मीडिया में देख के गए थे हम तो, जो बता रहे थे कि वहाँ पे पुल के पास में वो दो मिले तो इसके लोकेशन से गए थे हम तो। हाँ जी,
7: तो अब एक पार्टी जैसे सामने वाली जो पार्टी है जो लड़की पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई जो है बीच में उसके लेना देना नहीं है, तो आप लोगों का क्या कहना
6: है? ये गलत है, मर्डर करा है इसके पति की जो शादी का तो
7: क्या नाम है शेखर जी? क्या लगता था आपको? आपका
8: हमारा साला लगता था,
7: साला लगता था। क्या कहना है आपको?
8: जब कसूर नहीं है इनकी, सारी की सारी साजिश है। चार गाड़ी ने चार चक्कर मारे थी।
7: अच्छा,
8: गई थी फिर वापिस आई है, फिर गई है, फिर वापिस आई है, फिर वो क्या नाम लड़का बैठाया है, बैठा के इनकी कहाँ पे इनकी प्लानिंग थी, कहाँ पे ये वहाँ पे या मिली भगत थी जहाँ पे इनको जगह दी गई है।
1: असल में पानी से निकाले गए रश्मि और अक्कू दोनों की लाशों पर चोट के निशान हैं। ऐसे में रश्मि और अक्कू के घर वाले एक दूसरे पर दोनों की हत्या करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अक्कू के जीजा का साफ साफ कहना है कि जिस तरह की चोट अक्कू के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर है उन्हें देखकर ये साफ है कि उस पर हमला किया गया है, क्योंकि ऐसी चोट इंसान खुद को तो किसी हाल में नहीं पहुंचा सकता। घर वालों की माने तो इस कत्ल में अकेले रश्मि का पति शिवम ही नहीं बल्कि कम से कम 7 से 8 लोग शामिल हो सकते हैं।
5: जिस तरीके से दोनों के हाथ बंधे हुए उस तरीके से आपको क्या लगता है?
8: बिल्कुल सरासर मर्डर लगता है। सबसे मेन बात कि लड़के पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है ना, वो देख के लग नहीं सकता कि कोई भी आदमी अपना अपना इस तरीके से प्रहार कर ले।
5: अच्छा,
8: वो एक नहीं कम से कम 7-8 जने या हो सके उससे भी ज्यादा हो।
1: अक्कू के घर वालों का तो यहाँ तक कहना है कि लड़की के साथ मिलकर ही उसके घर वालों ने पहले अक्कू को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर लाश नहर में फेंक दी। उन्हें शक है कि अक्कू की हत्या कहीं और हुई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को यहाँ नहर में डाल दिया गया।
8: 10 बंदे जहाँ गाड़ी गई है, जहाँ से ये क्या नाम लड़की उठा के लेके गई है, कहाँ तक गाड़ी गई है वहाँ तक छानबीन होनी चाहिए। गाड़ी गई है क्या नाम पलवल की तरफ को, मुंह है इसका फरीदाबाद की तरफ को, जितना खून जितना प्रेजेंट में इसका ब्लड बह रहा है उतना प्रेजेंट में वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कहीं से और से लाश गेर के लाई गई है, वहाँ पर डब करी गई है।
9: जो अभी तक जानकारी मिली है, पुलिस ने जब इन दोनों बॉडीज को रिकवर किया तो इन दोनों के हाथ बंधे हुए थे, यानी कि जो लड़का है आकाश उसका बायां हाथ और जो लड़की है उसका दायां हाथ, दोनों एक डेटा केबल से बंधे हुए थे। और बताएं कि जब ये वहां पहुंचे तो एक किया की सोनेट गाड़ी में पहुंचे थे। आगरा कैनाल के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहां उन्होंने जो पुलिस ने उनकी गाड़ी बरामद की थी। और इस मामले में जब ये पूरा हादसा हुआ यानी कि 11 जुलाई को, तब दोनों पक्षों ने यानी कि जो लड़की पक्ष है, महिला पक्ष है, और जो युवक पक्ष है, दोनों के परिजनों एक दूसरे पर आरोप लगाया था।
1: हालांकि नहर से जिस तरह दोनों की हाथ बंधी हुई लाश मिली है उससे फरीदाबाद पुलिस भी इसे फौरी तौर पर सुसाइड का केस मानकर चल रही है।
10: ये 11 तारीख को शाम के समय नहर के अंदर गिर गए थे। इस बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा अपनी रेगुलर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, आसपास से इनके वारिसानों को पता किया, गाड़ी से भी इसके संपर्क से इनके परिजनों का पता किया गया। उसके बाद कल टीम द्वारा हमारी तलाश करने पर लड़का और लड़की दोनों मिल गए थे। जो लड़का और लड़की ने आपस में हाथ बंधे हुए थे, एक एक हाथ दोनों का बंधा हुआ था, जिसको मौका से डेड बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीकेएस फरीदाबाद रखवाया गया। जो प्रथम दृष्टि से माल पूछताछ पे संपर्क आया कि जो लड़का आकाश है वो किसी जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था और वहीं पर ये लड़की जो रश्मि उर्फ रजनी है वो भी 2-3 साल से वहाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए आती थी। इन लोगों के आपसी तालमेल तो बोलचाल तो था ही, पर अभी फिलहाल ये है कि भी इन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, इसके लिए तफ्तीश तस्दीक जा
11: सर लड़का
10: जारी।
1: लेकिन जब दोनों ही लाशों पर लगी चोट की बात आती है तो फिर पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कहती है।
12: वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी तीसरे बंदे ने उन दोनों के सिर पे हथौड़ा मार के उनकी हत्या की और फिर उनको नहर में फेंका है।
10: सर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है अभी, पर फिलहाल पीएमआर की रिपोर्ट और जो इनके कॉल डिटेल हैं, सीडीआर हैं और जो जहां पर ये लोग आपस में प्रैक्टिस के लिए आते थे उन मालिकों को भी शामिल अनुसंधान करना जरूरी है जब हम इस बारे में कुछ बता पाए।
12: चोट दोनों को लगी थी, दोनों के सिर पे लगी हुई है या एक के लगी हुई है?
10: सर ये नहर से निकाली हुई डेड बॉडी है
12: जी सर।
10: इसके संबंध में ज्यादातर डॉक्टर पीएमआर ही बता पाएंगे, पीएमआर डॉक्टर भी बता पाएंगे कि चोट दोनों के है एक के है।
1: फिलहाल पुलिस मामले की जांच तो कर रही है लेकिन कार में मिले हथौड़े, लाशों पर लगी चोट और दोनों के बंधे हाथ ने डबल डेथ की इस मिस्ट्री को उलझा दिया है। सचिन गौड़, फरीदाबाद आज तक।
0: जयपुर की 24 साल की कानून की स्टूडेंट आयुषी, जिस पर अपनी ही मां के कत्ल का इल्जाम है, ने दावा किया है कि उसके पिता की मौत के लिए उसकी मां जिम्मेदार है। आयुषी का कहना है कि उसकी मां की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई और इसीलिए वो अपनी मां से नफरत करती थी। हालांकि जयपुर पुलिस आयुषी के इस दावे की जांच कर रही है।
1: महज 24 साल की उम्र में आयुषी ने अपनी मां के कत्ल की ऐसी साजिश रची जिसने बड़े से बड़े शातिर दिमाग को भी पीछे छोड़ दिया। बताया गया कि वुड बी लॉयर आयुषी ने अपनी मां का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मां की जगह सरकारी नौकरी पाना चाहती थी। लेकिन क्या वजह इतनी भर है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस अब इस सवाल पर उलझ गई है। पिछले दिनों इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने भी उससे सवाल जवाब किया था लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के बाद उसने अपना मुंह कुछ ऐसे सिल लिया कि मानो इसके आगे उसे कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया। मगर पुलिस हिरासत में आयुषी ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है और अगर आयुषी के इस खुलासे पर यकीन करें तो मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि सालों साल एक बेटी के तौर पर मां के खिलाफ उसके सीने में पल रही नफरत का है। आयुषी ने पुलिस हिरासत में न सिर्फ मां के कत्ल की बात कबूल की है बल्कि ये भी बताया है कि उसने ये साजिश नौकरी या संपत्ति की लालच में नहीं बल्कि मां के खिलाफ गुस्से की वजह से रची, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी मां का जो रूप देखा उसने उसके मन में मां को लेकर जो छवि बनाई वो बेहद नकारात्मक थी। तो क्या मां से नफरत ही थी कत्ल की असली वजह? पुलिस को आयुषी के मोबाइल से मिले कई वीडियो, वीडियो में वशिष्ठ परिवार की चौंकाने वाली तस्वीरें, वीडियो में पति को पीटती दिख रही हैं आयुषी की मां। मां के रवैये से आयुषी के मन में पल रही थी नफरत। पिता की संपत्ति से मां को दूर रखना चाहती थी आयुषी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने आयुषी के मोबाइल फोन की जांच की तो आयुषी ने खुद ही अपने फोन में मौजूद कुछ ऐसे वीडियोस पुलिस अधिकारियों को दिखाए जो हैरान करने वाले थे। इन वीडियोस में आयुषी की मां कथित तौर पर आयुषी के पिता यानी अपने ही पति के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही थी और आयुषी का कहना था कि ऐसा कोई एक बार नहीं बल्कि अक्सर हुआ करता था। आयुषी के मुताबिक उसकी मां ने उसके पिता विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा को कुछ इतना परेशान किया कि उन्हें पहले ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर उनकी जान ही चली गई। यहां तक कि मां के जुल्म से बचाने के लिए वो अपने पिता को घर से निकालकर कहीं और ले गई और वहीं से अपने पिता का इलाज कराती रही। आयुषी ने बताया कि घर में उसकी मां नीरज शर्मा के रवैये की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं था। आयुषी ने पुलिस से कहा है कि वो अपने पिता की नौकरी और संपत्ति सब कुछ सिर्फ इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि जिस माँ की वजह से उसके पिता की मौत हो गई, उस माँ को उसके पिता की दौलत का कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए जब से माँ ने पिता की मौत के बाद उनकी जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल की, वो उसी दिन से अपनी माँ से वो नौकरी छीन लेना चाहती थी। आयुषी ने बताया कि वो अपने परिवार में अपनी माँ की जगह दादी की बात ही ज्यादा मानती थी और अपने चचेरे भाई बलराम को अपने गार्जियन यानी अभिभावक के तौर पर देखती थी। चूंकि माँ नीरज शर्मा का व्यवहार किसी के प्रति भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसके ताऊ के परिवार के लोग भी उसकी माँ के कत्ल की साजिश में शामिल हो गए। लेकिन ये तो रही आयुषी की दलील। आयुषी और उसके चचेरे भाई बलराम को लेकर आयुषी के मामा ने जो दावा किया है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। और इस दावे के मुताबिक आयुषी का रिश्ता अपने चचेरे भाई बलराम के साथ कोई भाई बहन का नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। मामा की माने तो बलराम के साथ आयुषी सिर्फ रिश्ते में नहीं थी बल्कि बलराम के पास शायद कोई ऐसा वीडियो भी है जिसकी बदौलत वो आयुषी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब परिवार के अंदर ही उठ रही इन आवाजों के बाद कत्ल के इस मामले की जांच का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। इससे पहले आयुषी के मामा ने उस पर अपने पिता के कत्ल का भी इल्जाम लगाया था और पुलिस से साल भर पहले हुए उसके पिता के मौत के मामले की जांच करने की मांग की थी।
11: आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की हत्या की है।
13: पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा।
1: आपने आयुषी के मामा को सुना, अगर ये सच है तो ये सचमुच डरावना है। अभी तक तो दिल दिमाग यही मानने को तैयार नहीं था कि 24 साल की ये बेटी सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ का कत्ल कर सकती है। अब ऊपर से कोई कैसे यकीन करे कि 24 साल की यही बेटी माँ से पहले अपने बाप का भी कत्ल कर चुकी है। यानी अगर ये सच है तो ये वो बेटी है जिसने एक साल के अंदर अपने माँ बाप दोनों को मार डाला और ये उसी आयुषी के मामा हैं, राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस को एक ऐसी शिकायत सौंपी है जो झकझोर देने वाली है। राकेश कुमार शर्मा ने जयपुर पुलिस से कहा है कि उनकी भांजी ने अपनी मां से पहले अपने पिता का भी कत्ल किया है। अगर पुलिस इसकी जांच करे तो सच सामने आ जाएगा।
13: तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए, 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में, और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है।
1: तो सुना आपने, आयुषी के मामा कह रहे हैं कि एक साल पहले आयुषी ने अपने पिता विजय शर्मा को मार डाला था। दरअसल विजय शर्मा की मौत 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। 2024 में विजय शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तब उन्हें जयपुर के नामचीन सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिसंबर 2024 में विजय शर्मा ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए थे लेकिन तब भी वो बेड रेस्ट पर ही थे। तभी दिसंबर 2024 में ही घर आने के कुछ दिन बाद आयुषी और उसका कजन बलराम विजय शर्मा को ये कहकर घर से ले गए कि किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें भर्ती करेंगे और वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगले 3 महीने तक विजय शर्मा का कोई पता नहीं चला। जब भी आयुषी की मां नीरज शर्मा उससे पूछती तो वो कहती कि उसने उन्हें एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कर रखा है और वो ठीक हो रहे हैं। बार बार माँ नीरज शर्मा के पूछने पर एक दिन आयुषी ने कहा कि पापा निविक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। ये सुनकर जब आयुषी की माँ और मामा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक विजय शर्मा के फेफड़ों में पानी भर चुका था और 90% ऑर्गन फेल हो चुके थे।
13: तो जो मेरे जीजाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए, 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
1: जैसे ही मामा और माँ अस्पताल पहुँचे उसी दिन आयुषी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती अपने पिता को जबरदस्ती घर ले आई। 21 अप्रैल 2025 को आयुषी अपने पापा विजय शर्मा को घर लाई थी और ठीक उसी दिन घर पर ही विजय शर्मा की मौत हो गई। विजय शर्मा की मौत के बाद आनंद फानन में आयुषी और उसका कजन बलराम उनकी लाश को गांव ले गए और अंतिम संस्कार भी कर दिया, यानी विजय शर्मा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। हालांकि तब तक घर वाले यही मान रहे थे कि शायद मौत बीमारी की वजह से हुई, लेकिन आयुषी के हाव भाव को देखकर मामा को तभी से उस पर शक होना शुरू हो गया था। लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक बेटी यूं अपने पिता का कत्ल भी कर सकती है। लेकिन जब 3 जुलाई को सड़क हादसे में नीरज शर्मा की मौत हुई और फिर पता चला कि वो हादसा नहीं कत्ल है और ये कत्ल खुद आयुषी ने करा है, तब मामा को यकीन हो गया कि 1 साल पहले अस्पताल से बिल्कुल ठीक ठाक घर लौटे उनके जीजा यानी आयुषी के पिता का 90% ऑर्गन फेल होना भी कत्ल की एक साजिश थी।
13: 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निविक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में, और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है।
1: आयुषी के मामा के मुताबिक जब अप्रैल 2025 में आयुषी के पिता विजय शर्मा की मौत हुई थी तब आयुषी ने पिता की जगह अनुकंपा पर राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी के लिए अपने आप फॉर्म भी भर दिया था। लेकिन जब मामा के कहने पर आयुषी की मां ने अपने पति की जगह नौकरी कर ली तब आयुषी नाराज हो गई। बाद में वो मां से जयपुर के दोनों मकान और 5 बीघा जमीन उसके नाम करने की जिद करने लगी। आयुषी के मामा का दावा है कि उनकी बहन नीरज शर्मा की मौत से 2 दिन पहले आयुषी और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ था। तब आयुषी ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर मैं अपने बाप के फूड पाइप यानी खाने की नली को निकालकर उन्हें मार सकती हूं तो तुम क्या चीज हो। नीरज शर्मा ने यह बात अपने भाई को बताई थी। असल में विजय शर्मा और नीरज शर्मा अपने पीछे जयपुर के 2 घर के अलावा कुल 14 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए। यानी आयुषी बाप की जगह सरकारी नौकरी तो चाहती ही थी, बाप की सारी दौलत पर भी उसकी नजर थी। जयपुर पुलिस ने भी कहा है कि वो इस मामले की भी जांच करेगी। हालांकि नीरज शर्मा के मर्डर केस में आयुषी के साथ शामिल बलराम भी इस केस की जांच के दायरे में है। उस पर इस साजिश में आयुषी का साथ देने का इल्जाम है।
14: परिवादी पक्ष ने निश्चित ही एक परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं, उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है, जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
15: ये क्या परिवार दिया है, किस चीज की शिकायत?
14: जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में, जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है।
15: नहीं, ये कह रहे हैं कि उसके पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए।
14: उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु है वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी।
15: वही पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं
14: वो? यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही है कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए, और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके।
1: शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।

0: घर पर होगी एनडीए की बैठक, खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग, हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, सपा और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर एन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संसाधनों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम करेंगे। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया है, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल नीट परीक्षा के टॉपर बने हैं। और आपको बता दें कि पहली बार पेपर लीक पर हंगामे के बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी, आपको याद होगा, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। 21 जून को दोबारा से नीट की परीक्षा करवाई गई थी और उसके रिजल्ट आज घोषित किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल बाली जुड़ गए हैं। अनमोल, और क्या जानकारी है?
2: शशि, जैसे कि आप जानते हैं कि रीनीट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। अगर मैं आपको बताऊं, 11,21,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, यानी कि अब वो एमबीबीएस से लेकर आयुष, आयुष से लेकर जो और डेंटल मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उनकी जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत होगी। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इस बार देखा गया कि 715 जो टॉपर्स ने स्कोर किया है वो एक तो आर एन गुप्ता है वो पंजाब से, और वही पंशुल बंसल हरियाणा के हैं, दोनों टॉपर्स हैं। अगर बात की जाए पिछले साल के रिजल्ट से, अगर मैं इसको डिक्लेयर करूं तो पिछले साल देखा गया तो 686 नंबर जो थे टॉपर थे उन्होंने हासिल किए थे, यानी इस बार जो टॉपर थे उन्होंने ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, 700 से ज्यादा, यानी कि 715 नंबर हासिल करके दो जो विद्यार्थी हैं टॉपर हैं। और अगर मैं बात करूं तो 19 जो विद्यार्थी हैं जो नीट एस्पिरेंट हैं उन्होंने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए। और कहीं देश भर में देखा जा रहा है कि 1492 के आसपास जो विद्यार्थी हैं उन्होंने 650 से ऊपर जो नंबर है वो हासिल किए। इस बार कहा जा रहा है रिजल्ट पिछले साल से थोड़ा बेहतर आया, तकरीबन 20 लाख के आसपास जो विद्यार्थी थे रीनीट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करते हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जो नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो जाता है, राजस्थान से उसके तार जुड़ते हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म हो जाती है, कांग्रेस से लेकर और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर घेरते दिख रहे हैं। पर वही एनटीए पर एक दबाव
0: टॉपर्स के बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए।
2: अगर मैं आपको बताऊं शशि, टॉपर्स पंजाब और हरियाणा से बताया जा रहा है, दो टॉपर्स हैं जिन्होंने टॉप फर्स्ट जो पोजीशन है वो हासिल की है, 715 का उन्होंने जो है स्कोर हासिल किया है। एक विद्यार्थी का नाम तो आर एन गुप्ता है जो पंजाब से हैं, और वही दूसरे विद्यार्थी का नाम पंशुल बंसल है वो हरियाणा से है, 715। और अगर पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए टॉपर से, तो पिछले साल देखा गया जो टॉपर महेश कुमार थे राजस्थान के 2025 के, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, उनके 686 नंबर थे। तो यहीं से आप शशि समझ गई होंगी कि इस बार जो टॉपर है उनकी संख्या भी बड़ी है। पर हाँ, इस बार जो तकरीबन देखा जा रहा है कि 11 लाख के आसपास जो विद्यार्थी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी पर एक बड़ा दबाव था कि जो एकेडमिक कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो, विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, उसी को देखते हुए रीनेट एग्जामिनेशन जल्दी कराया गया और जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर कराया गया। पहले बोला गया था कि 20 जुलाई तक जो नीट के नतीजे हैं आएंगे, पर हाँ, 4 दिन पहले ही देखा गया कि 16 जुलाई यानी कि आज देर रात एनटीए ने जो नीट यूजी के नतीजे हैं वो घोषित कर दिए हैं। शशि,
0: साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए क्या साफ हुआ है कि कब से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वो समय खराब नहीं होना चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखा गया था और बहुत सारे सवाल थे और बहुत जबरदस्त हंगामा था उस लीक के बाद।
2: शशि, अब देखा जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं कुछ ही दिन बाद देखा जाएगा कि काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। जो विद्यार्थी एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं जिनका रैंक अच्छा है वो कोशिश करेंगे कि उनको सरकारी अदारों में एमबीबीएस में दाखिला मिले, और जो विद्यार्थी हैं डेंटल, आयुष और होम्योपैथी और भी जो अन्य मेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए अपनी काउंसलिंग की शुरुआत करेंगे ताकि वो अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे बढ़ सके। शशि,
0: तो आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने टॉप किया है, नीट का एग्जाम आ गया है, बहुत बहुत रिजल्ट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अनमोल। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। 2027 चुनाव विधानसभा की रणनीति पर की गई अहम बैठक। परिसीमन बिल पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, अगर विपक्ष ने परिसीमन बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन, 18 जुलाई को नागपुर में होगा कार्यक्रम और सीएम फडणवीस को भी न्योता दिया गया, संजय राउत ने जानकारी दी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने जुहू बीच का दौरा किया, वहां जमा कचरे के ढेर और चल रहे स्वच्छता अभियान का लिया जायजा। बीएमसी को कचरा हटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश। मुंबई में मैनहोल पर काम के दौरान लोगों की सुरक्षा बढ़ाने, रखरखाव मरम्मत करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा होगी और सुनिश्चित। मेयर ऋतु तावड़े का मैनहोल रेल गार्ड का प्रोजेक्ट शुरू। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक, 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गोवा में दिखाई दिया आस्था का अद्भुत नजारा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मिरामार में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मालशेज घाट पर अचानक से चली तेज हवा, वाहन चालकों की बढ़ गई थी मुश्किलें। मालशेज घाट में तेज हवाओं के झोंके से कई बाइक सवारों ने वाहनों का खो दिया था नियंत्रण, एक एक कर सड़क पर गिरने लगे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पालघर में आर्नला बीच पर बड़ा हादसा हुआ, समंदर में डूबे चार नाबालिग, दो को रेस्क्यू किया गया, दो की तलाश जारी। महाराष्ट्र के अकोला में गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 50 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के मगाठाड़े में बड़ा हादसा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग इसमें घायल। मुंबई लोकल ट्रेन के विराट चर्च गेट में खचाखच भरी लोकल की जगह को लेकर विवाद हुआ, चलती ट्रेन में दो यात्रियों के बीच जमकर चले लात घुसे। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। वडोदरा स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में भारी पड़ी, 150 मीटर तक घिसटता गया युवक, बाल बाल बचा। दूसरी तिमाही में सैमसंग ने ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। E20 की जगह प्योर पेट्रोल का विकल्प चुनने के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 को खराब मानने से इनकार करते हुए जानकारी दी। केंद्र सरकार ने डीजल और ETF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में इजाफा किया, पेट्रोल पर टैक्स न बढ़ने से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिली राहत। 15 जुलाई से भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू होने के बाद पहले ही दिन 14 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट। गोल्ड के महंगे दाम, दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज किया गया, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म पराग में श्री मुरली की एंट्री, फिल्म निर्माता ने पहली झलक भी जारी की। फिल्म ऐवान का फर्स्ट लुक जारी किया गया, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म रागनी 3 की शूटिंग शुरू हुई, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं तस्वीरें। रणबीर कपूर की रामायण को CBFC से ग्रीन सिग्नल, बिना किसी कट के पास हुई महा ट्रेलर, 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास नंदनवन में उनसे मुलाकात की है। नंदनवन में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मंगलवार रात को जयंत पाटिल के साथ दोनों ही एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता थे सीएम फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। और अब ये अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी एसपी तेजी से एनडीए में शामिल होने की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि जयंत पाटिल ने आधिकारिक रूप से कहा है कि वो शहरी विकास से जुड़े मामलों और अपने कुछ निजी कामों के सिलसिले में एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो एनसीपी के दोनों ही गुटों पर अपना अपना सियासी अस्तित्व बचाने का खतरा मंडराने लगा है। जब से एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सीएम फडणवीस से गुपचुप तरीके से मिले थे, तब से ही सुनेत्रा पवार दोनों ही नेताओं से नाराज हैं। पहले सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल पर एनडीए का साथ देने का ऐलान कर दिया था, आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन देने का संकेत दिया है। लेकिन दोनों ही एनसीपी गुट क्या एक बार फिर से मिलने वाले हैं, या फिर शरद पवार की एनसीपी एसपी में एक बार फिर से टूट होने जा रही है?

0: क्या महाराष्ट्र में फिर टूटने वाली है एनसीपी? एनसीपी के दोनों गुटों पर अस्तित्व बचाने की चुनौती। क्या सुनेत्रा पवार अपने नेताओं से हैं नाराज? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ये कोई संयोग है या शरद पवार और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच एक सोची समझी रणनीति है जिससे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय कराया जा सके। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार के एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया।
1: छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम? रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी कुछ लेटर्स शेयर हो रहे हैं मैम।
2: मैम क्लेरिफिकेशन कर दीजिए,
1: जस्ट क्लेरिफिकेशन मैम। एक छोटा सा अगर एजेंसी है मैम, अगर आप कुछ बोल पाए तो मैम प्लीज, छोटा सा मैम। बहुत सारी बातें
3: तटकरे साहब बोलने वाले हैं
1: मैम, पर आपका बनना यू आर द नेशनल प्रेसिडेंट मैम। रिफ्ट है क्या मैम? रिफ्ट है पार्टी में रिफ्ट है मैम।
0: उसके ठीक बाद इसी गर्मजोशी को आगे बढ़ाते हुए शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने अप्रत्याशित बयान देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी केंद्र के अहम परिसीमन बिल का समर्थन करने पर विचार कर रही है।
4: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल How will it be implemented is still a question.
0: सुप्रिया सुले के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन के संकेत दिए हैं।
5: 50% अगर सीटें बढ़ती है
6: सर समुद्र।
5: और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी, इंडिया ब्लॉक ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे।
0: शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने परिसीमन बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
7: पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी, ये खुद अमित भाई ने कहा है, तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी।
0: इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सके। इस समय शरद पवार के एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 एमएलसी हैं। आलाकमान ने ये भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी।
8: सही है ना दादा की एक इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें, अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है।
9: दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा

0: बेहतर मोल भाव करने की स्थिति में रहेंगे।
1: महाराष्ट्र की राजनीति का ये महासंग्राम महज एक इत्तफाक है या फिर अपने वजूद को बचाने का एक सोचा समझा मास्टर प्लान, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में अब एनसीपी के दोनों गुटों के विधायक और सांसदों को टिके रहने का भारी दबाव है और इस बीच दोनों धड़ों के मर्जर की मजबूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी की नहीं बल्कि इस चक्रव्यूह में खुद को जिंदा रखने की भी है। पल पल बदलते इस सियासी खेल पर हमारी नजरें लगातार टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
2: तो बारिश के बाद मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के विहान की मौत का मामला जबरदस्त हंगामेदार रहा। सबने सवाल उठाए। बीएमसी ने आज विपक्षी सांसदों ने अधिकारियों को क्लीन चिट देने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है, तो बीजेपी पार्षद ने जांच रिपोर्ट फाड़कर विरोध जताया। विपक्ष का आरोप यह है कि बीएमसी प्रशासन और साथ ही मेयर ऋतु तावड़े की मिलीभगत है। वहीं जुहू बीच पर कचरे का अंबार लगने पर भी सियासत तेज हो चुकी है।
0: मुंबई का जुहू बीच जो हमेशा सैलानियों से गुलजार रहता था, वही जुहू बीच इन दिनों कचरे से पटा पड़ा है। सोशल मीडिया पर जुहू बीच पर कई किलोमीटर में फैली गंदगी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हर तरफ कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन दिनों जुहू बीच जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीएमसी के कर्मचारी मशीनों की मदद से कचरा हटाने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि जुहू बीच से 10 दिनों में 1800 टन कचरा हटाया जा चुका है।
3: इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो मुंबई का जुहू बीच है। अक्सर जहां पर पर्यटक दिखाई देते हैं वो किसी नाले का स्वरूप ले चुका है। जुहू बीच पर आप देखेंगे कितना कचरा जो है वो मौजूद है, और बीएमसी का कहना है कि लगभग 180 टन कचरा जो है वो हर रोज निकाला जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड की जिस जैसा ये जो दृश्य है ये जुहू बीच पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जेसीबी यूज कर इस पूरे कचरे के ढेर को हटाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे एक तरफ पर्यटकों की भीड़ है जो लोग मुंबई घूमने आए हैं, दूसरी ओर ये कचरा जो है ये उठाया जा रहा है। और उसके बाद भी आप समुद्री तट को अगर देखेंगे तो कई जो कचरा है वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। बीएमसी में लीडर ऑफ अपोजिशन किशोरी पेडनेकर जुहू पर आई, उनका कहना था कि पास के नालों से ये जो कचरा है ये समुद्र की तरफ आकर जुहू पर आ रहा है। जुहू में भी आप बीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी विजिट हुई है।
0: इससे एक बार फिर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी सवालों के घेरे में। जुहू बीच पर कचरे से हो रही किरकिरी पर बीएमसी कह रही है ऐसा जुलाई के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश की वजह से हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे नालों से बड़ी मात्रा में बहता हुआ कचरा अरब सागर में चला गया और अब हाई टाइड के दौरान लहरों के साथ कचरा वापस समंदर किनारे आ रहा है। करीब 7 किलोमीटर लंबे जुहू बीच पर हर दिन करीब 350 मीट्रिक टन कचरा जमा हो रहा है। बीएमसी की पूर्व मेयर और विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर भी जुहू बीच का दौरा करने पहुंची, तो उन्होंने पूछा आखिर बीएमसी कर क्या रही है।
4: सोशल मीडिया यानी दखल घेतल्यानंतर, चॅनलचा यानी दखल घेतल्यानंतर हा 7 ते 8 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे, आणि जर त्या समुद्र किनारी आल्यानंतर मी त्या सोशल मीडिया आणि चॅनलच्या माध्यमातून बातमी पाहिली, जरी आम्ही विरोधात असलो तरी आमचं पण आद्य कर्तव्य आहे, मुंबईकरांचा चांगला श्वास हा आम्ही सर्वांनी मिळून दिला पाहिजे। सत्तेतले लोक सभागृहामध्ये मास्तर मास्तरनीचा रोल करतोय, परंतु मास्तर मास्तरनी सभागृहात कडाडल्या पाहिजे, ते न होता आज आपण इथे बघतोय 3 दिवस मी व्हिज्युअल बघत होती, म्हणून आज ठरवलं की आपण इथे आता व्हिजिट देऊया। आणि व्हिजिट देताना बघितलं प्रचंड नाल्यातला कचरा, तो नाल्यातला कचरा नालाच साफ नाही झाला, त्यामुळे समुद्रात गेला, तो निळा समुद्र होता तो काळा समुद्र झाला। आणि हा नाल्यातला कचरा आलेला आहे हा खाली 3-3 फूट

0: हा खाली कचरा आहे. काय शोकांतिका या महापालिकेची.
1: मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने भी जुहू बीच का दौरा किया. उन्होंने कहा कि बीएमसी अधिकारियों के साथ जुहू बीच का दौरा करके अतिरिक्त कर्मचारी और मशीनें तैनात करके जल्द से जल्द कचरा हटाने के निर्देश दिए हैं. वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड का अलर्ट है, लेकिन फिर भी दूर दूर से आए सैलानी मरीन ड्राइव पर मस्ती करने पहुंच रहे हैं. इस बीच बीएमसी और मुंबई पुलिस लोगों से समंदर से उचित दूरी पर रहने की अपील कर रही है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके. भले ही इस बार मुंबई में मॉनसून ने करीब 15 दिन की देरी से दस्तक दी थी, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते जमकर हुई बारिश के दौरान कई हादसे हो चुके हैं. बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. मुंबई में एक शख्स की खुले मेनहोल में गिरने से मौत हो चुकी है. बारिश से हुए हादसों की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी. मुंबई में बारिश की वजह से हुए हादसे में सबसे दर्दनाक मौत चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुई थी. इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि कई बच्चे घायल हुए थे. लेकिन हैरानी की बात है कि बीएमसी की जांच रिपोर्ट में सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई.
0: महापौर ने कहा था गोपनीय पत्र, एक तो गोपनीय शपथ हम नहीं लेते, तो भी आरोप किया था, तो ये गोपनीय अहवाल फूटा कैसा, उसका जवाब महापौर देना चाहिए. और जिस तरह ये संवेदनशील सब्जेक्ट था, उसका अहवाल सब किसी को भी, मुंबई का लोगों को भी मान्य नहीं, खुद को भी मान्य नहीं है, ये महापौर कह रही है. लेकिन अर्जेंट बिजनेस लाने का आज क्या ये था, क्यों लाया?
1: जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली बीएमसी कमेटी ने सिविल कोड और गार्डन डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी. साथ ही लिपापोती करते हुए साइट के पास स्टॉर्म वाटर ड्रेन के काम में लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है.
2: जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो बड़ी, हम जिसे कह सकते हैं कि वन साइडेड दिमाग में रखकर लाई है. आवश्यकता ये थी कि उस दुर्घटना के समय जो हमारे गार्डन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 2025 और इस साल जो 26 के जनवरी में जो उन्होंने पत्र दिए थे कि ये बार बार गलती हो रही है, उस पेड़ की शाखाओं को नीचे जमीन में काटा जा रहा है, आप इसे रोकिए, इसके कारण दुर्घटना हो सकती है, बावजूद उसके रोड डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं ली. आज जो घटना हुई, घटना होने के बाद में जो उसका रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार रोड के कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए की फाइन है और जो कंसल्टेंट थे उनको 2 लाख रुपए. देखिए, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है. एक निष्पाप बच्चे की, यानी स्कूल के विद्यार्थी व्यान श्रीवास्तव की, उसमें जान चली गई, हम सभी आहत है.
1: चेंबूर हादसे में अपने 11 साल के बेटे की जान गंवाने वाले विहान के पिता ने भी जांच पर सवाल उठाते हुए बीएमसी पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया.
3: रिपोर्ट में तो बहुत सारे गैप्स हैं. जो पेनल्टी दी गई है वो कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है, गलती मानी है, बट जिसने गलती करी है सब लोगों को नहीं अकाउंटेबल ठहराया गया है. उसका जो ट्रांसपेरेंसी है रिपोर्ट का, इंक्वायरी कमेटी है, उसका ही क्वेश्चन है. बीएमसी के लोग बीएमसी को ही इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट पैनल नहीं है उसमें.
4: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: और आपको बता दें कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई जा रही है। खास तौर से कल रात सेंट्रल रेलवे में बैठने को लेकर हुए विवाद में दो लोग चोटिल हुए थे, बुरी तरह से चोटें लगी थी। पिछले तीन दिन में लोकल ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर मारपीट के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इसी पर हमने बात की रेलवे के CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला से।
3: कुर्ला में एक तेज धारदार चीज से कोई दौड़ता हुआ नजर आता है, जिससे काफी कुर्ला रेलवे स्टेशन पे पैनिक हो जाता है। वहीं कल रात को अचानक से कुछ लोगों के बीच में इस तरह से मारामारी होती है कि लोगों को सरों में चोट आती है, लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ लड़ाई सीट के लिए थी। आखिर ये हो क्या रहा है, खासतौर से मुंबई की लोकल ट्रेनों में, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला जो सेंट्रल रेलवे से, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या हो रहा है ये, मतलब इतने इंसिडेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं?
4: देखिए, जो घटना, दो घटनाएं कल उजागर हुई हैं, इसमें से जो पहली घटना थी वो कुर्ला स्थानक पे एक व्यक्ति हाथ में लकड़ी की स्टिक लेके दौड़ रहा था। उस व्यक्ति को RPF के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, और जितनी प्रारंभिक जांच हुई है उसके आधार पे वो व्यक्ति मनोरुग्ध प्रतीत हो रहा है, उसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति वो प्रतीत हो रहा है। 49 साल का वो व्यक्ति है और उसके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर की गई है। इसी के साथ में दूसरी जो घटना है वो परेल से अंबरनाथ जाने वाले जो व्यक्ति है, उस ट्रेन के माल डब्बा जो है उसमें, उस माल डब्बे की इंसिडेंस है। इसमें रात में लगभग 12:30 बजे की ये इंसिडेंस है। इस इंसिडेंस में उस वक्त पे जगह की कोई कमी नहीं होती है, किंतु तीन कलीग जो कोवर्कर हैं वो साथ में बैठना चाह रहे थे, उस लिए उन्होंने उस सीट पे बैठे हुए जो व्यक्ति पहले से उस पर बैठा हुआ था उसे उठने के लिए बोला, और इसके चलते वो उसमें लड़ाई हुई, और जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसे उन व्यक्तियों ने के द्वारा मारपीट की गई। इसमें भी किसी नुकीले हथियार या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों व्यक्तियों ने जो जानकारी दी है उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने मारा उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ था और उस कड़े से उसे इंजरी हुई है। ये दोनों जो दो व्यक्ति थे, इनमें से चार में से दो व्यक्ति ठाकुरली स्टेशन पे उतर गए थे, जो दूसरे दो व्यक्ति थे उन्हें कल्याण स्टेशन पे जानकारी के आधार पे उतारा गया। उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार दिए गए और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
3: दोनों अभी अस्पताल में है, सायन अस्पताल में, लेकिन क्या स्टेबल है?
4: उनमें से जो एक व्यक्ति है वो कल्याण वाले अस्पताल में ही है। जिस व्यक्ति को सर पे चोट आई थी उस व्यक्ति को सायन अस्पताल रेफर किया गया था कि सर की जो चोट है उसकी MRI और फर्दर जांच के लिए। ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये उनकी प्रकृति पूरी तरह से स्थिर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, और इस FIR को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में, इसकी डिटेल्स हम लोगों को मिलेंगे, और हम लोग इस FIR
2: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हुती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को की देंगे सौगात। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी ट्रेन की पहली, देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल्स ट्रेन। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरो साइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। जलंधर में आज बीजेपी की रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बोले, पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा। मानसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति। आज राजनाथ सिंह के घर एनडीए की बड़ी बैठक। अमित शाह समेत सहयोगी दलों के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। पारसी मन बिल पर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। संशोधित प्रस्तावों के लिए चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की। संसद में विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस। पारसी मन बिल पर विपक्षी एकजुटता का दावा। जयराम रमेश बोले, सरकार को लोकसभा में नहीं मिलेगा दो तिहाई बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके का फैसला टल गया है। पार्टी बोली, बिल पेश होने के बाद लेंगे कोई बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का आज देहरादून में मार्च। छात्रों की गूंज, रैली में होंगे शामिल। बोले, युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से मिले जंतर मंतर पर पहुंचे। बोले, सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। संशोधन के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, युवाओं और आंदोलन और साथ ही सोनम वांगचुक की बातों को सुना जाए, वरना 3 साल के बाद आपका वही हाल होगा जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। सोनम वांगचुक से मिलकर आंदोलन का समर्थन किया। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गाजियाबाद, शामली, बिजनौर में लगभग 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। हरेला महोत्सव को लेकर प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात हुई। चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हुई। टिन्नू और मनीष यादव से जेल में हुई पूछताछ। रामपुर में आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी को शिक्षा में भी दिखती है सांप्रदायिकता। सहारनपुर में इमरान मसूद का जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई पर बड़ा बयान। बुलडोजर कार्रवाई को बताया नाइंसाफी। इमरान मसूद बोले, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ममता को लगा एक और झटका। आप राज्यसभा की सांसद कोयल मलिक ने दिया इस्तीफा। ममता की दो टूक, जिसे जाना हो 21 जुलाई तक चला जाए, फिर से बना सकती हूं पार्टी। पश्चिम बंगाल में मदरसा फंडिंग मामले को लेकर टीएमसी नेता अब्दुल्ला गाजी के घर यूपी एटीएस की रेड। कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद पर सिद्दीकुल्ला चौधरी की खुली चेतावनी। बोले, आज एयरपोर्ट परिसर में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, रोके जाने पर करेंगे शांतिपूर्ण विरोध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत के लिए जनसभा का आयोजन। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया संबोधन। संबोधन में नरोत्तम मिश्रा का दतिया पुलिस के एक्शन पर भड़के। बोले, एसपी साहब, कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज को नहीं भूला जाएगा। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। 2027 गुजरात विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। परिसीमन बिल पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, अगर विपक्ष ने परिसीमन बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें जनता के विरोध का करना पड़ेगा सामना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का राम रक्षा आंदोलन। 18 जुलाई को नागपुर में होगा कार्यक्रम और सीएम फडणवीस भी बुलाए गए। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटन ने जुहू बीच का दौरा किया। वहां जमा कचरे के ढेर और चल रहे स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। मुंबई में मैनहोल हादसे के रोकने के लिए पहल की गई। मेयर ऋतु तावड़े के कॉन्सेप्ट पर तैयार मैनहोल रेल गार्ड का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। आरजेडी नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोले, तेजस्वी यादव ने मेरी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद जावेद आजाद के बयान पर बवाल। संस्कृत को बताया विदेशी भाषा। बीजेपी और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कॉप्स का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों को सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा। अंतरिक्ष की ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार है देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1। 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के महागुण मिडॉस सोसाइटी में सुरक्षा कर्मियों का वेतन न मिलने के बाद बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गेट बंद करके जड़ा ताला निवासी परेशान हुए।
हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई नई पहल, आज से बिना जेब वाले कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर के काम करने वाले सभी कर्मचारी पुजारी और पंडित भी। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की भी जांच, लगाई जाएंगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावली सेठ मंदिर में भक्त ने चढ़ाया सोने की बनी हुई बांसुरी को, 20 लाख बताई जा रही है कीमत। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसे माहौल थे, दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत हुई, भारी भीड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर भी। पुरी रथ यात्रा हादसे पर दुख जताते हुए विपक्षी नेता बीजेडी के नवीन पटनायक ने एक शोक जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। ओडिशा के पुरी में उमड़ा आस्था का समंदर, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव। पूरी रीति रिवाज के साथ महाप्रभु रथ पर हुए थे विराजमान, इसके बाद शंकराचार्य ने तीनों ही रथों पर परिक्रमा भी की। पुरी में जोरदार बारिश के बीच आस्था भारी, भगवान तीनों ही रथों की महक छूकर ही पुण्य कमाने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे लाखों लाख श्रद्धालु। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया, बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किया था नृत्य। दिल्ली के रोहिणी में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की रौनक, 149वीं रथ यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, 55वीं रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की आरती की। धनबाद के हाइड्रोलिक रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ, हजारों श्रद्धालुओं ने खींची थी आस्था की डोर। प्रयागराज में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रथ यात्रा के दिन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोनार बांग्ला होगी इस बार की थीम। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कें और रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। महाराष्ट्र के मालशेज घाट पर अचानक से चली तेज हवाएं, वाहन चालकों की बढ़ गई थी मुश्किलें। मालशेज घाट में तेज हवाओं के झोंके से कई वाहन सवारों को मुश्किलें आईं, नियंत्रण खोया, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णागिरी जलाशय परियोजना के बांध से 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी हुई बस में आग लग गई थी, सभी को बचाया गया सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरुग्राम में ठेकेदार से रंगदारी मांगने पर मामला सामने आया, पानी के कारोबार को लेकर विवाद में गैंगस्टर कौशल चौधरी के 50-60 बदमाश 20 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे और खुलेआम धमकियां दी गई। दिल्ली के बुराड़ी में एक मकान में खून से लथपथ युवक और युवती का शव मिला, पुलिस ने बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड को गोली मारने के बाद खुद की हत्या करने की आशंका जताई। झांसी में चलती ट्रेन में महिला टीटीई पर हमला, बिना टिकट यात्री ने बाल पकड़कर मारपीट की, वीडियो वायरल। वाराणसी में इटली के पर्यटक का हाई वोल्टेज ड्रामा, घरों में घुसकर हंगामा करने पर लोगों की पिटाई कर पुलिस ने के हवाले किया गया। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई, हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। नालंदा में पुलिस वाहन ने युवक से युवक की मौत के बाद हंगामा, पथराव आगजनी के बीच पुलिस ने किया लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। एमपी के सागर में स्कूल बैग से निकला सांप, चेन खोलते ही मच गया ताड़कंप, टीचर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। निभाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार, अमेरिका कनाडा समेत कई अलग अलग देशों को बनाते थे निशाना। राजस्थान के डूंगरपुर के स्कूल में बड़ा हादसा, जर्जर इमारत के ऑफिस की अचानक से गिर गई थी छत, 2 टीचर गंभीर रूप से घायल हुए। झारखंड के लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला, 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई, गुस्साए ग्रामीणों ने वाराणसी सोनभद्र मार्ग जाम करके प्रदर्शन किया। अलवर में एक वर्कशॉप में फन फैलाकर बैठा दिखाई दिया सांप, दहशत में आ गए थे कर्मचारी। औरैया में प्राइवेट अस्पताल कर्मचारी ने यमुना नदी में लगाई थी छलांग, वीडियो पोस्ट करके स्टाफ को मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के कोला में गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख रुपए का प्रतिबंधित माल भी जब्त किया गया, मास्टरमाइंड फरार। मुंबई के मगाठाड़े में बड़ा हादसा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग इसमें घायल हुए। मुंबई लोकल ट्रेन के विराट चर्च गेट में खचाखच भरी लोकल में जगह को लेकर विवाद हुआ, चलती ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर प्रशासन ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा,
विशाखापट्टनम के समुद्र में पलट गई थी मछुआरों की नाव। हादसे के समय 9 लोग सवार थे जिसमें 7 सुरक्षित हैं, 2 की हालत गंभीर। दुल्हनिया ले आएगा ट्रेलर रिलीज किया गया, 24 जुलाई को फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म परात में श्री मुरली की एंट्री, फिल्म निर्माता ने पहली झलक को जारी किया। फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक जारी किया गया, 11 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म रागनी 3 की शूटिंग शुरू, तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं तस्वीरें। रणबीर कपूर की रामायण को CBFC ने ग्रीन सिग्नल दिया, बिना किसी कट के पास हुआ ट्रेलर। 24 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। दूसरी तिमाही में सैमसंग ने ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल को पीछे छोड़ा है, नंबर 1 पोजीशन हासिल की। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया दावा। E20 की जगह प्योर पेट्रोल का विकल्प चुनने के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 को खराब मानने से इनकार करते हुए जानकारी दी। केंद्र सरकार ने डीजल और एसटीएफ के एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में इजाफा किया, पेट्रोल पर टैक्स न बढ़ने से एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों को राहत मिलेगी। 15 जुलाई से भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू होने के बाद पहले ही दिन 14 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट। ब्रिटेन में 99% भारतीय सामानों के निर्यात पर 0 टैरिफ का असर। गोल्ड के महंगे दाम और निर्यात में सख्ती के बाद पुरानी ज्वेलरी की रिसाइकलिंग पर ज्वेलर्स का फोकस। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2.0 से भी ज्वेलरी कारोबार और अर्थव्यवस्था को फायदा। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों को लेकर जारी किए कड़े नियम, अब अधिकतम 4 साल ही मिलेगी अमेरिका में रहने की अनुमति। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, अमेरिकी मिसाइलों ने बंदर अब्बास के पास कई ठिकानों को निशाना बनाया। केशम द्वीप पर आसपास भी गिरे थे अमेरिकी प्रोजेक्टाइल। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरोजिया की जबरदस्त बमबारी की खबर, 3 लोगों की मौत हुई, इसमें कई लोग घायल हुए। रूसी सरकार का बड़ा बयान, यूक्रेन से शांति वार्ता दोबारा शुरू होने के बीच नहीं दिखी कोई संभावना। साथ ही कहा सबसे अहम बात यह कि आखिर किसके पास होगा शांति समझौते पर फैसले का अधिकार। रूस ने युद्ध के बीच यूक्रेन की राजनीति में हो रहे बड़े बदलाव और फेरबदल की बात कही। यूक्रेनी संसद ने सेरी को नियुक्त किया है यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री। यूक्रेनी रक्षा मंत्री मिखाइलो फोडोरोव को हटाने के फैसले के खिलाफ राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन। जेलेंस्की अपनी ही सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारियों में। कीव पहुंचे ब्रिटिश पीएम के स्टामर ने यूक्रेन को दिया है बड़ा तोहफा। जेलेंस्की ने मुलाकात के बाद कहा ब्रिटेन स्वीडन के साथ मिलकर यूक्रेन को 16 नए विमानों के साथ 300 मिलियन यूरो देगा। चीन पहुंचे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं ने ऊर्जा और खनिज क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इंडोनेशिया में एक द्वीप के पास डूब गई थी यात्रियों की नाव, एक शख्स की मौत, 23 लोग लापता हैं। चालक दल के साथ नाव पर सवार थे 70 लोग, 46 लोगों को बचाया गया। बाढ़ और तूफान की वजह से रूस के यूराल क्षेत्र में भारी तबाही, तेज हवाओं की वजह से गिरे थे पेड़, सैकड़ों घरों में घुस गया पानी।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। क्या इस देश में अब गैर मुस्लिमों को भी जबरदस्ती कलमा याद करना होगा? हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास के हिंदू बच्चे को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा रटने का फरमान सुना दिया गया। विवाद के बाद स्कूल इसे गलती बता रहा है, लेकिन सवाल है कि ये कैसी गलती है जो बार बार होती है। बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। कभी मुरादाबाद में जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप लगता है, तो कभी मीराभाई अंदर में कलमा न जानने पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन वारदातों के डर से अब लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को कलमा आता है, तो फिर गैर मुसलमानों को इसे रटाने का ये फितूर क्यों? इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने और अपनी दुकान चलाने के लिए अब देवी देवताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जरजीश अंसारी ने सुर्खियों में आने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया और गीता के श्लोकों का बेहद बेतुका और गलत संदर्भ पेश कर दिया। सवाल यह है कि आजकल मौलाना हो या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, आखिर धर्म के नाम पर विवाद फैलाकर लाइक्स और व्यूज बटोरने की होड़ क्यों लगी? इसके बाद आपको तस्लीमा नसरीन पर हमारे विश्लेषण का दूसरा भाग दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनके बांग्लादेश छोड़ने का क्या कारण था। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर हिंदुओं के कत्ल पर कट्टरपंथियों को लज्जा कब आएगी। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे रात में पड़ने वाली भयंकर गर्मी ने लोगों की कई घंटों की नींद छीन ली। लेकिन आज का हमारा पहला विश्लेषण हैदराबाद की एक घटना से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा याद करने के लिए कहा गया। जिस कॉपी में यह होमवर्क लिखा गया, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है रीड कलमा 1 और 2, यानी कलमा 1 और 2 पढ़ें। आगे लिखा है रीड फातिहा, यानी फातिहा पढ़ें। कलमा इस्लाम में आस्था की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ मानी जाती है, जबकि फातिहा कुरान का पहला अध्याय है, जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे को यह होमवर्क करने के लिए दिया गया, वो एक हिंदू परिवार से आता है और इस परिवार का आरोप है कि स्कूल ने इससे पहले भी एक बार होमवर्क डायरी में कलमा याद करने के लिए लिखा था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया और एक हिंदू बच्चे को कलमा क्यों याद कराया जा रहा था। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह सिर्फ गलती से हुआ है और क्योंकि स्कूल में मुस्लिम छात्रों के लिए इस्लामिक स्टडीज की भी पढ़ाई होती है और उन्हें कलमा याद करने का होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि यहां एक भूल से यही होमवर्क इस 6 साल के हिंदू बच्चे को भी दे दिया गया। लेकिन शिकायत करने वाला हिंदू परिवार इन दावों को गलत बता रहा है। परिवार का कहना है कि जब पहले भी उन्होंने इस होमवर्क को लेकर शिकायत की थी, तब भी स्कूल ने इसे सामान्य बताया था। स्कूल का कहना था कि ऐसा होमवर्क सभी छात्रों को दिया जाता है और क्योंकि इस स्कूल में मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए गैर मुस्लिम छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ना सिखाया जा रहा था। यानी इसे ऐसे समझिए कि स्कूल में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक थे, इसीलिए आरोप है कि हिंदू छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस प्राइवेट स्कूल ने शेख आयशा परवीन नाम की आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन यह मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। सवाल उठ रहा है कि देश में कलमा पढ़ने या कलमा याद करने या कलमा पढ़कर सुनाने की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं और आखिर हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय के लोग कलमा क्यों याद करें। पिछले हफ्ते 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू महिला ने भी यही आरोप लगाए थे कि उससे धर्मांतरण के लिए जबरन कलमा पढ़वाया गया। उससे पहले जून के महीने में उत्तर प्रदेश के शामली में कई दुकानों पर ऐसी फुटबॉल बेची जा रही थी जिन पर कलमा अंकित किया गया था। अप्रैल महीने में मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर इसीलिए चाकू से हमला कर दिया था क्योंकि वो कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, हिंदू थे, और ऐसी घटनाओं की यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। इसी साल 1 जनवरी को गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल पर यह आरोप लगा कि वहां गैर मुस्लिम छात्रों से नमाज और कलमा पढ़वाई जा रही है। और इससे पहले पिछले साल जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी आतंकवादियों ने कलमा न पढ़ने पर 25 हिंदू पर्यटकों की उनका धर्म पूछ पूछ कर हत्या कर दी थी। और यकीन मानिए, ये घटनाएं हमारे समाज को अब डरा रही। उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में जब मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में कलमा नहीं पढ़ने पर दो सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला हुआ, तब हमारे देश में गूगल पर लोग ये सर्च कर रहे थे कि कलमा को कैसे पढ़ा जाता है। उस वक्त पर गूगल पर कलमा का सर्च इंटरेस्ट 85 हो गया था। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, इससे पहले जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ था, तब भी गूगल पर भारत में कलमा का सर्च इंटरेस्ट 100 पहुंच गया था, जो सबसे ज्यादा होता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि जान बचाने के लिए उन्हें कलमा पढ़ना जरूर आना चाहिए। कलमा इस्लाम में पढ़ी जाने वाली कुछ खास पंक्तियां होती हैं जो किसी मुस्लिम के विश्वास को मजबूत करती हैं। आमतौर पर इन्हें 6 कलमे कहा जाता है और इनका आधार कुरान और हदीस से लिया गया है, और मदरसों में बच्चों को इन्हें याद कराया जाता है ताकि वो इस्लाम के मूल सिद्धांत को समझ सके। यानी कलमा पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह को मान लेना, और मुसलमान आमतौर पर इसे नमाज के बाद पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जो कलमा अल्लाह को मानने के लिए बनाया गया, उसे लेकर पूरे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? और वो भी तब जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान इस कलमे को पढ़ना जानते हैं। पूरी दुनिया में 25% आबादी यानी 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी 98% से ज्यादा को कलमा पढ़ना आता है। प्यू रिसर्च के अनुसार मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के 98%, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 95% और सेंट्रल एशिया के 99% मुसलमान कलमा पढ़ना जानते हैं। जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों में से 98% मुसलमानों को कलमा पढ़ना आता है, तो फिर बाकी के गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और आखिर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हैदराबाद के जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम है। मुसलमान 50.5% है, हिंदू 46.9%, और यही कारण है कि अब बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज हैदराबाद एयरपोर्ट से पार्टी नेता माधवी लता जब इस स्कूल के लिए रवाना हो रही थी, तब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और इस दौरान इस स्कूल के बाहर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए,
1: I'm here detained at the airport with the police force.

0: రీడ్ రీడ్ ఇగో డేట్ ఈరోజుదే డేట్ ఇది ఈరోజుదే ఇక్కడ రాసింది. మళ్ళా నేను మొత్తం డైరీ మొత్తం చెక్ చేసిన చెక్ చేసి మళ్ళీ నాకు ఇది ఒకటి కనిపించింది. ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. రీడ్ ఏ 1 2 కలమ అని చెప్పేసి ఇంకా
1: एक छोटा इशू हो गया हमारे पास. एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज को बड़ी कर दिए टीचर.
2: आज मुद्दा सिर्फ हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती क्यों हैं. और जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे वो मौलाना और धर्मगुरु हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए या कहिए कि वायरल होने के लिए विवादित तरकीन और भ्रमित करने वाली बातें कहते हैं. जैसे आज उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जीश अंसारी ने झारखंड में एक विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था ऐसा उन्होंने कहा. यही नहीं, अपने इस गलत और बेतुके बयान को साबित करने के लिए उन्होंने श्रीमद भगवद गीता के एक श्लोक का सहारा लिया और ये कहा कि गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का निर्देश देते हैं. अब बड़ी बात यह है कि जब जर्जीश अंसारी यह गलत दावा करते हैं तो वहां तालियां बजती हैं, यानी लोग इसे सहजता से स्वीकार कर रहे होते हैं और ये मान रहे होते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं.
3: हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे. यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए. योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह. जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो. योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सतत मात्मानं, पूरे शरीर का योग करो. यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए. आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा.
2: मौलाना जर्जीश अंसारी झूठ बोलने, मनगढ़ंत दावे करने, काल्पनिक कहानियां बनाने और लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए मशहूर हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जिसके लिए उन पर FIR भी दर्ज हो गई. श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया, वो श्लोक कहीं से भी इस्लाम धर्म और नमाज का उल्लेख नहीं करता. ये श्लोक तो ये कहता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे शांति से बैठकर अपने मन को काबू में करना चाहिए, ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए और उसे लालच, इच्छाओं और संग्रह करने की आदत से दूर रहना चाहिए. लेकिन जर्जीश अंसारी ने योग, ध्यान, आत्मचिंतन का अर्थ नमाज बना दिया. और क्यों बना दिया, उसका कारण बहुत स्पष्ट है. मौलाना की भेष में नजर आने वाले ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो अपनी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स चाहते हैं और जर्जीश अंसारी का भी यही काम रहा. जर्जीश अंसारी भी मौलाना कम और एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हैं जिन्होंने यूट्यूब पर और इसके 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और इसके 9,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं. ये सब्सक्राइबर्स लाखों में इसीलिए हैं क्योंकि जर्जीश अंसारी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें इस्लाम धर्म से बताने के लिए नए नए वीडियो बनाते हैं और बाद में जब इनकी चर्चा होती है तो इनकी दुकान चल पड़ती है. ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जो वायरल होने के लिए या सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चुनिंदा और भी लोग अपनाते हैं. उदाहरण के लिए हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मंच से ये कहा कि मौजूदा सरकार सीता के पति का नाम लेती है लेकिन नीता के पति का काम करती है. आप खुद सोचिए, क्या सरकार की आलोचना के लिए हिंदू देवी देवताओं को इसमें घसीटना और उन पर ऐसे चुटकुले बनाना सही हो सकता है? हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वायरल होने के लिए या क्लिकबेट के लिए इतने निम्न स्तर पर जाना ठीक नहीं हो सकता. कड़वा सच यही है कि आजकल इस तरह के जितने भी बयान दिए जाते हैं उनके पीछे बड़ा मकसद है, सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना और ये सिर्फ जगजीश अंसारी जैसे लोग या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का एक नया बयान आया है, जिसमें वो नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि संस्कृत विदेशी भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है।
4: जहां तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये जरूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम खत्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी जुबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम खत्म नहीं होने।
2: सोचिए, हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति को लेकर ये सारे बयान उस भारत में दिए जा रहे हैं जहां कुछ लोग अब हिंदुओं को असहनशील और असहिष्णु बताने लगे हैं। और बात सिर्फ इन बयानों की भी नहीं है, आज से पूरे देश में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसके लिए यह माना जाता है कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और इससे पहले परंपरा के अनुसार डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाती है। और ये वो परंपराएं हैं जो सदियों से हो रही हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इनमें भी जौनपुर के इन दृश्यों को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर भगवान जगन्नाथ के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं।
5: जय जगन्नाथ,

0: और उन लोगों ने बताया कि अब जगन्नाथ जी प्रभु पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि परसों सुबह जगन्नाथ महाप्रभु को शाही खिचड़ी का भोग लगेगा, फिर शाम के समय उनका रथ यात्रा सुसज्जित कर दिया जाएगा और बड़ी धूमधाम से, पर उसके बाद वो अपने रथ पे बैठ के अपने भैया बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ पूरे शहर में भ्रमण के निकलेंगे। तो आप लोग भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। जय जगन्नाथ।
1: ये परंपराएं और मान्यताएं लगभग हर धर्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सवाल हिंदू धर्म की मान्यताओं पर उठाए जाते हैं, और ये भी तब होता है जब सवाल उठाने वाले कई लोग इनके पीछे की मान्यताओं और आस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। आज यही देखकर हमने तय किया कि हम इन लोगों का ज्ञानवर्धन करें और ये बताएं कि क्यों भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा के साथ इतनी पवित्र मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ओडिशा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष रूप माना जाता है। उनकी वार्षिक रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडचा मंदिर जाते हैं, और इसकी पूरी परंपरा कई चरणों में होती है। इनमें रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक बड़ा अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है, फिर उन्हें 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, और मान्यता है कि इसी स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि ये समझिए कि भगवान जगन्नाथ जो हैं, उनकी मानव लीला की चर्चा होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मानव लीला के कारण ही उनका चाहे पहनावा हो, उनकी चाहे यह बीमारी हो, जो मौसम बदलने पर 108 घड़ों के स्नान के कारण अचानक बिगड़ जाती है। यह घटना यह भी बताती है कि भगवान इंसानों में से ही एक हैं और वो सबके आदर्श हैं। अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ के 15 दिन तक दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्वारंटीन में जाते हैं वो। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान इन दिनों में विश्राम करते हैं और तब वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है, और मान्यता है कि इस दिन भगवान फिर से युवा नए रूप में दिखाई देते हैं स्वस्थ होकर। इसके तुरंत बाद रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, 3 किलोमीटर दूर गुंडचा मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां वो लगभग 7 दिन रहते हैं, और यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब गुंडचा मंदिर चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नाराज होती है, और इसके बाद 5वें दिन वो उन्हें खोजने आती है, और इसे हेरा पंचमी कहा जाता है। लगभग 7 दिन बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं, और इसे बहुधा यात्रा कहते हैं, और ये पूरी यात्रा कई संदेश देती है। इसमें जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये अवसर याद दिलाने का होता है कि भगवान केवल मंदिर के अंदर सीमित नहीं, बल्कि अपने भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं। दूसरा, जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं, यानी ये रथ यात्रा ये बताती है कि भगवान को खोजने के लिए हमेशा कठिन साधना जरूरी नहीं, भगवान अपने भक्तों तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, और भक्ति केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, भगवान और लोगों के बीच आस्था का संबंध सबसे बड़ा है, और ये रथ यात्रा उसी का एक आधार है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बिना जाने समझे इस रथ यात्रा की परंपराओं पर भी सवाल उठाने लगते हैं।

खैर अब तक आपने जो देखा वो हमारे अपने देश भारत में हुआ, उस भारत में जिसे कई लोग इसे फैशनेबल मानते हैं कि भारत को असहनशील कहें। लेकिन असहनशीलता होती क्या है और किसी देश में अल्पसंख्यक कैसे खतरे में आते हैं, उसे आज आप हमारे अगले विश्लेषण से समझिए। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही है। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे। और ये पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी से बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे और ये उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे, सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। ये परिवार पहले बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में रहता था और ये वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मयमनसिंह जिले से थी और वो बताती हैं कि ये हिंदू परिवार बहुत पहले मयमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और इस घटना के बाद ये हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। ये सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया। और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। ये वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूख नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हो
बेवजह चिल्ला रहे हैं। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती हैं कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थी, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुसाए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है, तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए, यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए, ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं, और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि क्या चीन में भगवानों से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की पूजा करना अनिवार्य हो गया है। ये सवाल टेलीग्राफ की उस रिपोर्ट के बाद पूछा जा रहा है जिसका शीर्षक है क्रिश्चियंस आर डिसअपीयरिंग फॉर वर्शिपिंग अ गॉड अदर देन शी, यानी शी जिनपिंग के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा करने वाले ईसाई अब चीन में गायब किए जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा चाहती है कि उसके लोगों की सर्वोच्च निष्ठा पार्टी और शी जिनपिंग के प्रति हो, न कि किसी स्वतंत्र धार्मिक संस्था या धर्म के प्रति। इस बात को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं जो द ऑस्ट्रेलियन नाम के एक अखबार में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह बताया गया था कि चीन में जिन चर्चेस को सरकार ने खुद मान्यता दी है उनमें ईसा मसीह के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई जाती है, और यह चीन की एक राष्ट्रीय नीति के तहत होता है। इसे सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन कहते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसका उद्देश्य था चीन में सभी धर्मों को कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप बनाना, यानी धर्म तो होगा लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा से बड़ा नहीं माना जाएगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि चीन आधिकारिक रूप से 5 धर्मों को मान्यता देता है। इनमें बौद्ध धर्म है, ताओ धर्म है, इस्लाम धर्म है, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है और कैथोलिक ईसाई है। लेकिन इसी के साथ चीन की सरकार ने इन सभी धर्मों के आधिकारिक धार्मिक संस्थाएं बना दी हैं। जैसे ईसाइयों के लिए 2 सरकारी चर्च हैं, एक को 3 सेल्फ पेट्रियोटिक मूवमेंट कहते हैं जो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए होता है, और दूसरे को चाइनीज पेट्रियोटिक कैथोलिक एसोसिएशन कहते हैं जो कैथोलिक ईसाइयों के लिए होता है, और इन चर्च पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। जैसे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के गीत गाए जाते हैं, उनके प्रति निष्ठा दिखाई जाती है, कई जगहों पर चर्च के अंदर शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई जाती है, और धार्मिक शिक्षा भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होती है। अब क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये चर्च सरकारी नियंत्रण के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर जैसे लगते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड चर्च चलाते हैं। ये वो चर्च होते हैं जो बिना सरकार की अनुमति के घरों, किराए के कमरों या छोटे समूहों में चलाए जा रहे हैं, और इन्हें कुछ लोग हाउस चर्चेस भी कहते हैं, यानी जिन लोगों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाले सरकारी चर्चों में जाने की इच्छा नहीं होती वो लोग ऐसे अंडरग्राउंड चर्च में प्रार्थना करते हैं, जबकि चीन के कानून के अनुसार ये गैर

यह गैर कानूनी है। चाइना एड नाम की संस्था कहती है कि ऐसे अंडरग्राउंड चर्च चलाने के लिए अब तक 10,000 लोग पिछले 10 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं, और इन्हीं गिरफ्तार हुए लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिन ईसाइयों ने ईसा मसीह के साथ शी जिनपिंग की पूजा नहीं की उन्हें गायब कर दिया गया। हालांकि चीन की सरकार इस पूरे विवाद पर कुछ और कहती है। उनका कहना है कि चीन में धार्मिक मामलों का संचालन कानून के अनुसार किया जाता है, जिसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन कहना सही नहीं हो सकता। अब इस खबर का एक पहलू यह है कि चीन में ईसा मसीह से पहले कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति ज्यादा निष्ठावान होना जरूरी होता है, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि क्या चीन एक नास्तिक देश बन गया है। इस सवाल को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि चीन में हमेशा से धार्मिक मामलों का संचालन कानून के हिसाब से नहीं होता था। एक समय चीन ऐसा देश था जहां हजारों वर्षों तक धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं समाज का आधार थी। बौद्ध मंदिरों में पूजा होती थी, ताओ धर्म की परंपरा जीवित थी, कन्फ्यूशियस यानी कन्फ्यूशनिज्म की शिक्षाएं समाज और शासन का मार्गदर्शन करती थी, और बाद में ईसाई धर्म भी चीन में फैल गया, कई चर्च स्थापित हुए। यानी एक सदी पहले तक चीन नास्तिक देश नहीं था, उल्टा साल 1912 तक चीन पर चिंग राजवंश का शासन था। ये वही राजवंश था जो मैंडेट ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के आदेश से चलता था, और उस राजवंश में धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन 1912 में जब चिंग राजवंश समाप्त हुआ और उसके बाद चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब सब कुछ बदल गया। उस वक्त चीन की नई सरकार उसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहती थी, जिसके कारण वहां धीरे धीरे धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ। इनमें भी साल 1917 एक नया मोड़ लेकर आया। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, लेनिन के नेतृत्व में वहां कम्युनिस्ट सरकार बनी, और बाद में कम्युनिस्ट सरकार का यही प्रभाव चीन तक पहुंचा, जिससे चीन में दो बड़ी राजनीतिक ताकतें उभरी। इनमें एक को कुओमिंतांग कहा गया, जो वहां की राष्ट्रवादी पार्टी थी, दूसरे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो वामपंथ विचारधारा से प्रेरित था। इन दोनों राजनीतिक ताकतों के लंबे गृह युद्ध की शुरुआत हुई, और साल 1949 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माओ त्से-तुंग की जीत हुई। माओ उस वक्त केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि नास्तिक विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवाद के अनुसार वो भी धर्म को अक्सर जनता के लिए अफीम की तरह मानते थे, और ये कहते थे कि धर्म लोगों को वास्तविक सामाजिक समस्याओं से दूर रखता है। माओ ने इसी सोच को अपनाया, चीन का सर्वोच्च नेता बनने के लिए धर्म का प्रभाव कम करना शुरू किया। इसके लिए साल 1966 में सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसमें माओ ने कम्युनिस्ट विचारधारा को चीन की नई आत्मा बना दिया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद वहां नास्तिक विचार को और भी आगे बढ़ाया गया। 1982 में चीन ने नया संविधान बनाया, जिसमें यह लिखा गया कि लोगों को धार्मिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन साथ ही यह भी व्यवस्था रहेगी कि धार्मिक गतिविधियां कानून और राज्य के नियंत्रण के अधीन हो। यानी लोगों का धर्म तो होगा, लेकिन वो धर्म कानून से बड़ा नहीं होगा, और कानून के द्वारा ही धर्म का संचालन होगा। और तब से लेकर आज तक इन कानूनों पर दुनिया में बहस छिड़ती है। ये कहा जाता है कि चीन नास्तिक देश बन गया है। इसके पीछे ये आंकड़े भी हैं जो चीन की सरकार ने खुद जारी किए हैं। चीन में सबसे ज्यादा 31.8% लोग खुद को एग्नोस्टिक मानते हैं। ये वो लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार करते हैं न ही नकारते हैं। फिर 30.8% लोग चाइनीज फोक रिलीजन को मानते हैं, जो चीन की पारंपरिक आस्थाओं या धर्मों का समूह है। फिर 16.6% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, 7.4% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 6.8% लोग खुद को नास्तिक कहते हैं, और 1.8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन इन धर्मों को मानने से पहले चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखना जरूरी होता है, और ये व्यवस्था भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों से बहुत अलग है। हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगी होती है, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सोचिए, फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता पर इतनी बहस छिड़ती है, और भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या होता है उसे आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया, और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है।
अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि

अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं, और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है।

अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों खासकर अलकायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी, इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं, आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं, इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की GDP से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका ये कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है।

0: पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग यानी हमारे वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों में कुछ ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ ने समय से पहले रिटायरमेंट ली है। जिन वैज्ञानिकों ने इसरो को अलविदा कहा वो गगनयान, चंद्रयान 4 जैसे कई अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों द्वारा इसरो छोड़ना सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अचानक से इसरो से जाने का मतलब है देश के सम्मान से जुड़े अहम स्पेस मिशन में रुकावट पैदा होना। सूत्रों के अनुसार अभी तक करीब 120 वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इसरो छोड़ा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के करीब 80 वैज्ञानिक और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 20 वैज्ञानिकों ने इसरो से खुद को अलग किया है। इसके अलावा अहम स्पेस मिशन से जुड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी इसरो छोड़ दिया है। जैसे LVM-3 रॉकेट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद को अलग कर लिया है। LVM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी भरकम ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। आप सोचिए कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी अपने पद को छोड़ दिया है। स्पेडेक्स दरअसल इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तकनीकी मिशन है। इसका मकसद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की ऑटोमेटिक डॉकिंग और अनडॉकिंग यानी अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना और अलग करना है। ये तकनीक गगनयान मिशन जो भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी है और इसके अलावा ये अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी भारतीय महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी है। यही नहीं, चंद्रयान 3 से जुड़े रहे युवा वैज्ञानिकों ने भी इस्तीफा दिया है जो चंद्रयान 4 मिशन के लिए काम कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ने का मतलब है कि इन सभी मिशन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब से महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा या वीआरएस लेने की अपील को आसानी से मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी एक तरह से वैज्ञानिकों को जाने से रोका जाएगा। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इस्तीफे और वीआरएस से जुड़े मामले अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखेगा और वही फैसला लेगा। 2 दिन पहले DOS ने एक पत्र लिखकर सभी स्पेस सेंटर्स को इसकी जानकारी दे दी है और ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बड़े स्पेस मिशन से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत भरना बहुत मुश्किल है। 2012 से 2024 के बीच करीब 700 कर्मचारियों ने अलग अलग कारणों से इसरो छोड़ी। फिलहाल इसरो भी करीब 1050 नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सवाल यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह है स्पेस स्टार्टअप्स। सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष मिशन से जुड़े इसरो के ये वैज्ञानिक देश में खुलने वाले नए स्पेस स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया था और फिर 2023 में सरकार इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी लेकर आ गई थी। इसका मकसद था प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस मिशन में अपनी भागीदारी दें। इस वक्त भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं जिनमें करीब 4,815 करोड़ रुपए निवेश हो चुका है। अकेले 2025 में 1,445 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, यानी अंतरिक्ष में नई उड़ान के लिए अब प्राइवेट खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अच्छे ऑफर्स और सुविधाओं के नाम पर वो इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को अपने यहां हायर कर रहे हो। इस वक्त देश में एक SUV कार सड़क पर चल रहे सामान्य लोगों के लिए डर का सबब बन गई है और वो है थार। हालांकि ये डर केवल कार से भी नहीं है बल्कि इस कार को चलाने वाले लोगों की मानसिकता से। गुरुग्राम के सेक्टर 67 की एक सोसाइटी का मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से थार और उसके सवार दोनों को चर्चा में ला दिया। इसी सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला पार्किंग में सो रही थी, उसकी एक थार सवार ने गाड़ी को बैक करते वक्त कुचल दिया। इस हादसे में जमीन पर सो रही महिला को गंभीर चोटें आईं। थार सवार ने जब देखा कि महिला को उसने कुचल दिया है तो उसने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। जैसे ही महिला की मौत की खबर थार सवार को मिली, उसने उसका शव अस्पताल से लिया, सीधे सोसाइटी की उसी जगह पर लाकर रख दिया जहां पर वो सो रही थी। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए कि एक थार सवार ने पहले गाड़ी से एक महिला को कुचला, फिर उसे अस्पताल ले गया, जब देखा कि पीड़ित की मौत हो गई तो शव वापस लाकर वहीं पर रख दिया जहां कुचला गया था उसे। समझ नहीं आता आखिर यह किस तरह की संवेदनहीनता है। अभी कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के वसंत कुंज में एक थार सवार लड़के ने 34 साल के सार्थक मट्टू को कुचल दिया था। इस हादसे में सार्थक की मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी एक 30 साल का युवक था जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और इसी दौरान उसने सार्थक मट्टू पर गाड़ी चढ़ा दी। पिछले कुछ समय में थार चलाने वालों ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और स्टंटबाजी के जो गदर मचाया है वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें इस गाड़ी के ड्राइवर्स ने ट्रैफिक नियम तो तोड़े ही, लोगों को थार से कुचला भी। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी दबंग पहचान बनाने के लिए भी थार से जोखिम भरे स्टंट करने से बाज नहीं आते। फिलहाल थार एक ऐसी गाड़ी बन गई है जो दबंगई का स्टेटस सिंबल है। थार एक एसयूवी गाड़ी है। एसयूवी की बढ़ती डिमांड को लेकर साल 2023 में एक स्टडी आई थी, उसमें एसयूवी मालिकों से पूछा गया था कि उन्होंने किन मापदंडों पर एसयूवी खरीदी। स्टडी में पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि उनकी एसयूवी उनका स्टेटस सिंबल है, कुछ ने कहा एसयूवी से उन्हें तेज रफ्तार में कार चलाने का आत्मविश्वास मिलता है, कुछ ने कहा उनकी एसयूवी सड़क पर उन्हें प्रभावशाली होने का एहसास कराती है, कुछ ने कहा कि एसयूवी से चलने पर उनको छोटी गाड़ियां कमतर लगती हैं, और यही नहीं कुछ ने यह भी कहा कि एसयूवी चलाने पर उन्हें जोखिम उठाने का मन करता है। हालांकि यहां सिर्फ एक कार मॉडल की बात नहीं हो रही बल्कि यह स्टडी हर एसयूवी कार ओनर्स से जुड़ी थी। सोचने वाली बात यह है कि थार जैसी एसयूवी गाड़ियों में बैठते ही कार चालकों का रोड सेंस बदल जाता है और शायद इसीलिए अक्सर थार चलाने वाले यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, अन्य लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कहते हैं वक्त से बड़ा कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता। न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने जा रहा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल सिर्फ अर्जेंटीना और स्पेन का मुकाबला नहीं बल्कि ये फुटबॉल के दो दौर, दो पीढ़ियों और एक ऐतिहासिक संयोग की दास्तान है। एक तरफ है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी, दूसरी तरफ 19 साल के वंडरकिड लामिन यमाल। फीफा वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 19 साल पुरानी इस तस्वीर में मेसी उस खिलाड़ी को अपनी गोद में लेकर नहला रहे हैं जिससे वो इस वीकेंड वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए भिड़ने जा रहे हैं, और ये बच्चा और कोई नहीं स्पेन में जो आज 19 साल का फुटबॉलर लामिन यमाल है। ये घटना 2007 की है, तब स्पेन के बार्सिलोना में यूनिसेफ का एक चैरिटी कैलेंडर था, उसके लिए फोटोशूट होना था। उस वक्त मेसी एक उभरते हुए स्टार थे, 40 साल की उनकी उम्र थी और लामिन यमाल के परिवार ने एक लकी ड्रॉ जीता था। इसके तहत इस 5 महीने के बच्चे को बार्सिलोना के किसी खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलना था। अब किस्मत का खेल देखिए, तब सब इससे अनजान थे, लामिन यमाल को मेसी के साथ फोटोशूट का मौका मिल गया। उस वक्त मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे। इस तस्वीर में 20 साल के मेसी लामिन यमाल को प्यार से नहलाते, तौलियों में लपेटते नजर आ रहे हैं। किसने सोचा होगा उस वक्त कि यह बच्चा एक दिन फीफा के फाइनल में मेसी के सामने ही चुनौती बनकर खड़ा होगा। और खास बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी बार्सिलोना की मशहूर लमासिया अकेडमी से निकले हैं। आज लोग कह रहे हैं कि 2007 में अनजाने में ही सही मेसी ने इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया था। आज 19 साल बाद वही 5 महीने का बच्चा स्पेन की टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर मेसी के लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के सपने के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया है। एक तरफ लोगों की नजरें रविवार को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल पर हैं, दूसरी तरफ चर्चा इंग्लैंड अर्जेंटीना के बीच हुए सेमीफाइनल की है। इस मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद आखिर में अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा तो दिया लेकिन मैच की आखिरी विसल बजते ही जो कुछ हुआ उसने 44 साल पुराने जख्मों को हरा कर दिया। जीत के जश्न के बीच अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और फैंस ने एक बैनर लहराया, इस पर लिखा था ला मालविना सन अर्जेंटीनास। इसका मतलब होता है फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना का है। अब हम मौसम में आए ऐसे बदलावों की बात करेंगे जिसने जलवायु परिवर्तन की चर्चाओं को केवल किताबी नहीं रहने दिया है। भारत में मॉनसून की स्थिति देखिए, आधा जुलाई बीत चुका और उत्तर भारत में अभी तक सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। यूरोप में तो बुरा हाल है, वहां तो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जून से लेकर अब तक यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की वजह से यूके और यूरोप में अब तक 14,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें फ्रांस में 2000 से ज्यादा, बेल्जियम में 1740, जर्मनी में 6800, नेदरलैंड्स में 480, स्पेन में 810 और यूके में 2200 लोगों की मौत हुई है। यूरोप के देशों में तापमान 37 से 43 डिग्री तक जा रहा है, जो सामान्य स्थिति नहीं है। आमतौर पर वहां तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर दुनिया भर के एनजीओ अब मैदान में उतर आए हैं। ये एनजीओ लोगों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन पर जागरूक कर रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में ग्रीन पीस नाम के एनजीओ ने बर्फ के पुतले लगाकर लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण कम करने और जंगलों के संरक्षण को लेकर अभियान चलाता है। रोम के कोलोसियम के पास इस एनजीओ ने इंसानी रूप के बर्फ के पुतले लगाए जो इस भीषण गर्मी में धीरे धीरे पिघल रहे थे। इस प्रदर्शन के जरिए इटली के लोगों को भीषण गर्मी से बचने के उपाय भी बताए गए और लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक भी किया गया। इटली में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है और हालात ठीक नहीं है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होता, लेकिन सच यह है कि हम अलग अलग तरह से इससे प्रभावित होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तेजी से बदल रही जलवायु और गर्मी ने हमारी नींदें उड़ा दी। अमेरिका की क्लाइमेट सेंट्रल नाम की संस्था ने एक नई स्टडी की है। इसमें पता चला कि रात के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से आम लोग हर साल 65 से 93 घंटे तक की नींद खो रहे हैं। यह स्टडी भारत के 100 से ज्यादा शहरों पर की गई थी। इस स्टडी के अनुसार चेन्नई के लोगों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ के लोग औसतन हर साल 93 घंटे कम सोते हैं। इसके अलावा मुंबई के लोग सालाना औसतन 84 घंटे, कोलकाता के लोग 80 घंटे की नींद खो रहे हैं। इसके अलावा अन्य शहरों की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। साल 2020 से 25 के बीच इन शहरों में एक औसत व्यक्ति ने हर साल लगभग 56 घंटे की नींद रात के अधिक तापमान की वजह से खोई है। आमतौर पर रात का तापमान दिन की तुलना में कम होता है। दिन भर जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद रात में सोता है, कम तापमान उसकी नींद को बेहतर बनाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिन भर तपे इंसानी शरीर को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। इसी वजह से नींद की क्वालिटी में गिरावट आई है और नींद उड़ी उड़ी सी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
1: बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ, वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
2: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
3: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है। एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे। आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
2: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा, अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
4: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
2: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
5: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है, और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
2: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आया?
0: अच्छा, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, यहाँ एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नजारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ये देखिए।
15: यकीन ना है योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
19: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
20: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय जमीन के और उन जमीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
21: ये तो खेती है साहब, श्री राम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
20: कॉलेज नहीं है? कभी था?
21: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
20: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
21: हाँ।
19: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
20: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
21: जी नहीं है, बंद है।
20: बंद है?
21: हाँ, कोरोना से।
20: कोरोना से बंद है?
21: हाँ।
20: मतलब 2020 में आया था कोरोना। हाँ। और 2021 में दूसरी लहर। हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
21: और का, जब से बंद है।
20: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
21: नहीं आता।
20: कोई बस आती हो?
21: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
20: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
21: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
19: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रवीश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहाँ सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
20: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमिसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमिसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमिसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था।
1: क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
2: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है इसी की मीटिंग उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
22: असल में एक खेल है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
23: जो शासन के मापदंड हैं बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं।
24: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
22: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
10: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
25: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और कीश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
10: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: मानसून सत्र से पहले मूसलाधार सियासत, आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया? अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघन खेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
4: आरडीए से आए हैं, रामपुर विकास।
5: अच्छा, क्या
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया।
9: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे, तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
10: जो यूनिवर्सिटी की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया। लेकिन असली शंका तो सियासत पर है, जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
11: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
12: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
13: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
12: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
14: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाई।
12: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
11: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
15: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
12: मिलिए मौलाना जर्जे संसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ये देखिए।
16: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
12: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है ये भी देखिए।
17: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
12: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है इसका इतिहास गवाह है, लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
17: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है।

0: जब मौलाना ने विवाद भड़का कर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
1: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
2: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
0: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
0: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
4: देख लो, आरक जून एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোন একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগে ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
0: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
5: जो सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
6: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
0: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
4: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরী করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
7: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
0: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिक बराय और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
3: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
8: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
9: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देख

0: तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
1: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
0: कॉलेज नहीं है कभी? कभी था?
1: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
0: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
1: हाँ।
2: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
0: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
1: ये नहीं है, बंद है।
0: ये बंद है?
1: हाँ, कोरोना से।
0: कोरोना से बंद है?
1: हाँ।
0: मतलब 2020 में आया था कोरोना, और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए
1: और का, जब से बंद है।
0: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
0: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
0: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
2: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
0: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है, और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
3: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
2: असल में एक खेल है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
4: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है, और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
5: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
2: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है, तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
7: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी, लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
6: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
2: You're listening to CNBC.
3: This is 80s hits, exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
4: Keep it on smooth jazz.
5: This is Roots Reggae,
6: exclusively on TuneIn.
7: This is Classic Hip Hop,
8: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love, anytime you want.
9: उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद और इसकी पहली गूंज पंचायत आज तक के मंच पर।
10: इस बार एक नया रिकॉर्ड टूटने वाला है और
9: हैट्रिक का दावा।
10: पहली बार कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट करेगी।
9: विश्वास पूरा।
10: प्रतिष्ठित चैनल आज तक के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूँ, विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को केवल डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरा कर सकती है।
9: चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक मंच पंचायत आज तक, जहां गूंजती है उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली हुंकार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: विचार सियासत। आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली। कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत। एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट। 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर। 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति। हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है। एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे। आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके, क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, तो कहाँ से आया?
4: आरडी से आए, रामपुर विकास।
5: अच्छा, क्या
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वही यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगढ़ में पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा, जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे। लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय समीकरण गांठने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं झोंक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना आए, योगी जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, आड़क जन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোন একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जो सत्यनाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
11: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
19: काजी मिथ्या कथा बोले चातुरी करार क्यों चेष्टा करबेन ना, जादेर जेते हय जान, जा पड़े थाकबे सेटाई आमार सोनार खनि। আমি 2004 একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
11: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
22: वहां जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
11: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
10: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
23: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
24: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहां से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं। लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
1: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
24: कॉलेज नहीं है कभी? कभी था?
1: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
24: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
1: हाँ।
0: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
24: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
1: ये नहीं है, बंद है।
24: ये बंद है?
1: हाँ, कोरोना से।
24: कोरोना से बंद है?
1: हाँ।
24: मतलब 2020 में आया था कोरोना? हाँ। और 2021 में दूसरी लहर? हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
1: और का, जब से बंद है।
24: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
24: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
24: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
0: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
24: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
2: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
0: असल में एक खेल है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
3: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है, और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए।
4: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
0: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है, तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
10: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
5: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और कीश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
10: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بسیتی
0: एक अंतरिम समझौते के जरिए इस समुद्री मार्ग को खोला जाना था, लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनी के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: ما هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو. दशकों के प्रतिबंधों और संघर्षों से जूझ रही ईरान की बीमार अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हुती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहां की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके, क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
4: अच्छा,
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया। लेकिन असली शंका तो सियासत पर है, जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना है योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है। ये कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,

0: सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई हैं।
1: देखलाम आरेक जन एमपी चलचित्र शिल्पी भालो शिल्पी ताके आमी सम्मान करी तिनी गेछेन बीजेपी कोनो एकटा नेतार साथे मीटिंग करे रिजाइन करते। आमी आपनादेर ज्ञातार्थे बोली उनी आगे इमेल पाठिएछिलेन এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছে।
0: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
2: सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
3: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
0: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
1: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
0: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
4: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
0: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
5: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
6: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है, तो गलती आपकी नहीं।
7: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
8: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
7: कॉलेज नहीं है? कभी था?
8: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
7: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
8: हाँ।
6: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
7: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
8: जी नहीं है, बंद है।
7: ये बंद है?
8: हाँ, कोरोना से।
7: कोरोना से बंद है?
8: हाँ।

0: मतलब 2020 में आया था कोरोना, और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए।
1: और कहा, जब से बंद है।
0: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
0: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
0: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
2: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
0: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है, और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमिसिस नहीं है, और साथ ही में इसी प्रीमिसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
3: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
2: असल में एक खेल है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
4: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है, और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
5: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
2: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है, तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
7: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी, लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
6: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक, खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है, आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहां की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: सर, मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
4: आरडीएस आए, रामपुर विकास।
5: अच्छा, क्या
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद जो इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वही यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जे संसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, 8 जन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোন একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
11: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
19: काजी मिथ्या कथा बोले चातुरी करार क्यों चेष्टा करबेन ना, जादेर जेते हय जान, जा पड़े থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
11: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
22: वहां जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
11: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में 4th नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
10: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
23: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है, तो गलती आपकी नहीं।
24: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहां से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं। लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
1: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
24: कॉलेज नहीं है? कभी था?
1: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मैं कॉलेज नहीं है।
24: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
1: हाँ।
0: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है। यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
24: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है। यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
1: ये नहीं है, बंद है।
24: ये बंद है?
1: हाँ, कोरोना से।
24: कोरोना से बंद है?
1: हाँ।
24: मतलब 2020 में आया था कोरोना। हाँ। और 2021 में दूसरी लहर। हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
1: और का, जब से बंद है।
24: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
24: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
24: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
0: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
24: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
2: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
0: असल में एक खेल है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
3: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है, और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
4: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
0: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है, तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
10: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
5: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
10: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: मानसून सत्र से पहले मूसलाधार सियासत, आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई। आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया? अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूं और बार बार कहता हूं, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघन खेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
4: आरडीए से आए हैं, रामपुर विकास।
5: अच्छा, क्या
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो यूनिवर्सिटी की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया। लेकिन असली शंका तो सियासत पर है, जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाई।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जे संसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन न आए, योगी यो जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता, एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रूपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, 8 जन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
11: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
19: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
11: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
22: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
11: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में 4th नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना

0: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
1: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
2: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय जमीन के और उन जमीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
3: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
2: कॉलेज नहीं है? कभी था?
3: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
2: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
3: हाँ।
1: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
2: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
3: ये नहीं है, बंद है।
2: ये बंद है?
3: हाँ, कोरोना से।
2: कोरोना से बंद है?
3: हाँ।
2: मतलब 2020 में आया था कोरोना। हाँ। और 2021 में दूसरी लहर। हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
3: और का, जब से बंद है।
2: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
3: नहीं आता।
2: कोई बस आती हो?
3: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
2: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
3: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है। एक
1: आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रवीश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे, यहाँ सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
2: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
4: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
1: असल में एक खेल है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
5: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन

0: 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
1: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
2: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
3: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार पांचवें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
4: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी, लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th Fleet Base को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
3: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: मानसून सत्र से पहले मूसलाधार सियासत, आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहां की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से दावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: सर, मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
0: क्या 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें,
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, यहाँ एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, इसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो रजिस्ट्री की नहीं है पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज में पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण गांठने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जे संसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, आड़क जन एमपी, চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোন একটা নেতার সাথে মিটিং করে ডিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার্ট যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं। और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
11: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
19: काजी मिथ्या कथा बोले चातुरी करार क्यों चेष्टा करबेन ना, जादेर जेते हय जान, जा पड़े থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
11: টিএমসি সে ইস্তিফে কে বীচ কোয়েল মালিক কি বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব সে মুলাকাত কে খবরো নে উনকে বিজেপি মে শামিল হোনে কি আটকলে তেজ কর দি হ্যায়।
22: वहां जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता है, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं?
11: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
10: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
23: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा। कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है, तो गलती आपकी नहीं।
24: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
1: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
24: कॉलेज नहीं है? कभी था?
1: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
24: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
1: हाँ।
0: इसी खाली मैदान के बगल में बगला मुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगला मुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
24: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगला मुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगला मुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगला मुखी कॉलेज चालू है?
1: ये नहीं है, बंद है।
24: ये बंद है?
1: हाँ, कोरोना से।
24: कोरोना से बंद है?
1: हाँ।
24: मतलब 2020 में आया था कोरोना, और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए
1: और का, जब से बंद है।
24: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
24: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
24: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
0: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगला मुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे, यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला, ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
24: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमिसिस नहीं है, और साथ ही में इसी प्रीमिसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
2: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
0: असल में एक खेल है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है, और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
3: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है, और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोल कर बैठे हुए।
4: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
0: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
10: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
5: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
10: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हुती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खान का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खान हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम ये निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया न ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके, क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंघन खेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
4: आरडीए से आए हैं, रामपुर विकास।
5: अच्छा, क्या
0: 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं कर, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 28 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 28 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया।
7: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, जहां एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, जिसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका आरडी की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर आरडी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता बता दिया है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यह सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
9: जो यूनिवर्सिटी की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीकरण भी पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी की सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक इसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया। लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
10: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
11: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
12: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
11: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
13: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
11: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
10: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
14: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
11: मिलिए मौलाना जर्जे संसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
15: यकीन ना है योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
11: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
16: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
11: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
16: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है,
11: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
17: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
18: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
11: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
11: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई है।
19: देख लो, 8 जन एमपी চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাংকস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছেন।
11: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
20: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है अभिषेक बनर्जी।
21: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
11: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
19: কাজী মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না, যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
11: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
22: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में, अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
11: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में 4th नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराई और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
10: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर 3-3 संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
23: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है, तो गलती आपकी नहीं।
24: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहां पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहां से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
1: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
24: कॉलेज नहीं है? कभी था?
1: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
24: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
1: हाँ।
2: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
24: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, ये हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है,

0: कोरोना और 2021 में दूसरी लहर, मतलब 5-6 साल हो गए
1: और कहा जब से बंद है।
0: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
1: नहीं आता।
0: कोई बस आती हो?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं आती।
0: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
1: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
2: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे। यहां सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
0: ये जो सेवियर कॉलेज है ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का आप प्रीमाइसिस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमाइसिस नहीं है। और साथ ही में इसी प्रीमाइसिस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
3: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
2: असल में एक खेल है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज है, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज, जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
4: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है और बाकी सब ये लोग फेल और पास करने की फैक्ट्री खोलकर बैठे हुए।
5: हमने शपथ पत्र लिए हैं, यदि जो दिया गया है उन्होंने जानकारी अपने शपथ पत्र में, यदि उसमें कमी पाई गई तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
2: फिलहाल खबरदार करती चिंता यही, जब भोपाल के आसपास ही केवल कागज पर चलती बीएड कॉलेज मौजूद है तो फिर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा? क्या कॉलेज केवल शपथ पत्र देकर खिलवाड़ नहीं कर रहे? रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
6: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
7: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी, लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और किश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आएं।

0: much know. They know the story.
1: Sir, you mean
0: they better behave.
2: मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
3: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत, एसपी और कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध, बीजेपी बोली अवैध निर्माण का होता है यही नतीजा। एनटीए ने जारी किया नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, 11 लाख से ज्यादा छात्र क्वालिफाई, आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने टॉपर, 21 जून को हुआ था री एग्जाम। और अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की नई रणनीति, हूती से बोला अगर ऊर्जा संस्थानों पर ट्रंप ने बरसाए बम तो रोक देना बाब अल मंदेब का रास्ता। बात करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मचे हुए विवाद के बारे में, क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाओ वरना हम हटवा देंगे। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर जोरदार सियासत जारी है।
1: पहले असदुद्दीन ओवैसी सीधे आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे।
2: आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों।
1: फिर मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए इमरान मसूद ने कहा अखिलेश को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं।
3: समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए, बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना, बर्बाद आप नहीं होते।
1: इन दो बयानों को सुनने के बाद अब याद करिए रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी नींव से लेकर उद्घाटन तक समाजवादी पार्टी के राज में हुआ।
4: इन इमारतों को जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त मिस्त्री लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, एक मजदूर की हैसियत से काम किया है और 20-50 लाख रुपया, बल्कि हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की मजदूरी श्रमदान के माध्यम से यहाँ की गई है।
1: रामपुर की जिस जौहर यूनिवर्सिटी को खुद आजम खान ने 2003 में जौहर ट्रस्ट बनाकर खुद को आजीवन इसका चांसलर बनाते हुए खड़ा किया,

0: रामपुर की उसी आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी में अब बुलडोजर चलने वाला है। और इसे सुनकर सबसे बड़ा सवाल राजनीति का ये कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे या फिर केवल सोशल मीडिया पर बयान से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बयान देंगे जैसे अभी दिया। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। अखिलेश ने लिखा है कि शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसके बाद बिना आरएसएस का नाम भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरी पोस्ट में ना तो अखिलेश यादव ने आजम खान का नाम लिया ना ही जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। सवाल इसीलिए आया, क्या इसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम पैरोकार के रूप में उन्हें तुष्टिकरण के कटघरे में बीजेपी खड़ा कर सके? क्योंकि आजम खान से जुड़ी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की प्रशासन की तैयारी वाली खबर के बाद दूसरे विपक्षी दल इस पर सीधे आजम का नाम लेकर सत्ता और सरकार को घेरते हैं।
1: देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार कहता हूँ, आजम साहब से अदावत थी, आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन शिक्षा के मंदिर के अंदर लाख हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो मानचित्र के अनुरूप नहीं बना तो भी बहुत सारे रास्ते हैं।
2: नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास है जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई, तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा?
3: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला सकते हैं, सरकारी विद्यालय बंद कर सकते हैं, नौजवानों का पेपर लीक करा सकते हैं, नौजवानों पर लाठी चला सकते हैं, उनका भविष्य खराब कर सकते हैं, ये अच्छा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छी सोच नहीं है, डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कुछ बनाने की सोच नहीं है, बिगाड़ने की सोच है, मिटाने की सोच है।
0: असल में रामपुर से 12 किलोमीटर दूर सिंगनखेड़ा गांव में करीब 300 एकड़ जमीन पर बनी आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाने वाला है।
4: मैं तो एक वो नोटिस देने के लिए आया हूँ।
5: अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए?
4: भैया, जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया।
5: किस चीज का?
4: इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को।
5: अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए?
4: हाँ, बस।
5: अच्छा, कहाँ से आए आप?
0: क्या 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, या तो यूनिवर्सिटी खुद कैंपस में खड़ी नालिशान इमारतों को गिरा दे, वरना प्रशासन और प्राधिकरण का बुलडोजर इनको ढहा देगा।
6: मुझे कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें।
7: तो क्या कोर्ट जाएंगे?
6: अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा ही पास कराया गया, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई हैं।
8: प्रकरण में ये आया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 40 भवन थे, जिसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जो कि अवैध पाए गए, उनके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित हो गया।
9: मैं आपको बताऊं कि हमने अभी रिजवी साहब से बात की, नजर डिग्री कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं, यहाँ एक प्रशासन ने कैंप लगाया है, उसमें परामर्श केंद्र बनाया है यहाँ पर, कि जो बच्चे पैनिक हों, यूनिवर्सिटी अगर बंद होती है या उसकी बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाता है तो बच्चों के एडमिशन कहाँ होंगे। तो इसलिए प्रशासन ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक कैंप की व्यवस्था की है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे सामने जो बिल्डिंग्स हैं जो चिन्हित की गई हैं, 38 भवनों में से एक बिल्डिंग सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग्स को फोकस किए। ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स हैं और ये एक बिल्डिंग्स ये है। मैं पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरी बिल्डिंग्स, ये आलिशान इमारतें हैं, आलिशान इमारतों को ये नोटिस दिया गया है और इसका RDA की तरफ से, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इसको नोटिस दिया गया था। अब इनको समय दिया गया है 15 से 20 दिन का, कि या तो खुद इसको अतिक्रमण को हटा लें, अगर RDA रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर इस पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूला जाएगा।
0: वही यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को PWD ने आम रास्ता बता दिया है, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये सड़क सरकारी बजट यानी 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिसे यूनिवर्सिटी ने गेट लगाकर बंद कर दिया और अब पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है।
10: जो रजिस्ट्री की नहीं है, पहले से पीडब्ल्यूडी की स्वामित्व की है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की 3 मीटर की सड़क थी, चौड़ीगंज में पीडब्ल्यूडी का ही हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पहले भी थी, आज भी है और पब्लिक की सड़क है, पब्लिक के लिए है, तो आम जनता उस पर आना जाना कर सकती है, किसी को रोक टोक नहीं है। आज हमने इसलिए गेट लगाया कि लोग वहां जाते नहीं, किसी को पता ही नहीं था, सब लोग सोचते थे यूनिवर्सिटी सड़क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसलिए पब्लिक उसको यूज कर सकती है।
0: दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके मन के सवालों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर अब कैंप लगा दिया गया, लेकिन असली शंका तो सियासत पर है। जहां बुलडोजर चलता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर दिखेगा। जहां तय है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस पर जमकर बोलेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के दौरान मुद्दा उठाकर सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे?
11: और अब बात करेंगे चढ़ावा चोरी और उस पर हो रही सियासत के बारे में। एक तरफ एसआईटी चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। खबर है कि अखिलेश पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा के पीछे हिंदू मतदाताओं को साधने की सियासत है।
12: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी कभी भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, मगर रिपोर्ट से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि एसआईटी जांच से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने करोड़ों में चोरी की रकम बरामद कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी पुलिस की ओर से की गई बरामदगी से पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने चोरों के पास से करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद कर लिए थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की थी और संदिग्धों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में नगदी बरामद की गई थी। इधर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, मगर अखिलेश यादव इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने तक का प्लान है।
13: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए।
12: अब बीजेपी को अखिलेश का सनातन प्रेम पसंद नहीं आ रहा
14: और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टिकरण वाली सपा, ये जातीय जमीकरण काटने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं ठोक पाए।
12: धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। वो कभी मंदिर में दिखते, कभी संत के साथ, कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते। अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
11: इटावा के एक मौलाना के बयान ने हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल मौलाना ने श्री कृष्ण और श्री राम को सीधे सीधे मुस्लिम बता दिया। मौलाना ने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। अब मौलाना को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।
15: जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
12: मिलिए मौलाना जर्जेस अंसारी से। यूपी के इटावा का रहने वाला ये मौलाना जहर उगलने में माहिर है। इस बार इसने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये देखिए।
16: यकीन ना आए, योगी उज्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर प्रग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो।
12: इस मौलाना की माने तो श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इसे कैसे तोड़ मरोड़ कर साबित कर रहा है, ये भी देखिए।
17: इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है।
12: श्री कृष्ण का काल और इस्लाम की उत्पत्ति के समय में कितना फर्क है, इसका इतिहास गवाह है। लेकिन प्राचीन इतिहास के कालखंड को उल्टी दिशा में मोड़ने में लगा है ये। कह रहा है कि श्री राम और श्री कृष्ण दीन और इस्लाम धर्म के प्रचारक थे।
17: इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है। कृष्ण जी ने भी पेश किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है।
12: ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने विवाद भड़काकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले कट्टर गैंग का स्लीपर सेल फिर एक्टिव हो चुका है।
18: इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान है और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
19: अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे हो और अपनी बात करो तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है?
12: ऐसे बयानों पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। इसके बयान पर हिंदू संगठनों की नाराजगी लाजमी है और इसे जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।
11: अब बात करेंगे मानसून सत्र को लेकर मचे हुए घमासान के बारे में, जहां सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। डिलिमिटेशन बिल को इस बार पास कराने का मन सरकार बना चुकी है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ऑल पार्टी मीट बुलाने की मांग की है।
12: 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी की बैठकों के बीच कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने भी मंथन किया। यूं तो 19 दिन के सत्र में 16 दिन की बैठकों के एजेंडे पर 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि इस सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं, परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक देश एक चुनाव विधेयक। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस कहती है कि वो फिर से सरकार को हराएगी।
20: हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे, और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे।
12: कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों में एकजुटता है और आगामी सत्र में एक साथ सरकार की कोशिशों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 17 अप्रैल के बाद देश में बड़ी हलचल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, 20 सांसद अलग हो गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, 6 सांसद शिवसेना में चले गए। तमिलनाडु में बेवफाई से नाराज डीएमके कांग्रेस के साथ बैठना तक नहीं चाहती। शरद पवार की पार्टी का रुख पहले के मुकाबले नरम नजर आ रहा है। बहरहाल इस मानसून सत्र में एक बार फिर जोरदार हंगामे के आसार हैं, जिसकी तैयारी दोनों ओर से की जा रही है। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
11: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में, जहां ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टीएमसी की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं।
12: टीएमसी का साथ छोड़ने वालों की लिस्ट में अब राज्यसभा सांसद कोयल मलिक का भी नाम जुड़ गया है। ममता की एक और करीबी विश्वास पात्र अब उन्हें छोड़ गई हैं।
21: देख लाम आरक जुन एमपी चलचित्र शिल्पी भालो शिल्पी ताके आमी सम्मान करी, तिनी गेछेन बीजेपी कोनो एकटा नेतार साथे मीटिंग करे रिजाइन करते। आमी आपनादेर ज्ञातार्थे बोली, उनी आगे ईमेल पाठिएछिलेन एबं थैंक्स टू हार
12: कल ही ममता गुट से विधायक मदन मित्रा ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने इस्तीफे की बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी को बताया था।
22: जब सत्यानाश हुआ, जो खत्म हुआ, जो खतरा हुआ, हम लोग का जो सर्वनाश हो गया, उसके लिए पूरा से पूरा जिम्मेदारी एक आदमी है, उसका नाम है।
23: जो लोग एक पैर सिनेमा और एक पैर अपना प्रोफेशन और एक पैर राजनीति में रख के जो लोग जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ सुविधा पाने के लिए जाते हैं, और जिस मोमेंट में आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया तृणमूल, तब वो छोड़ दे रहे। क्यों? आप तो तृणमूल में रह के भी तो आप सेवा कर सकते थे।
12: उधर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक के बचाव में आई, वहीं टीएमसी नेताओं के जाने की वजह ईडी का डर बताया। दीदी ने साफ किया कि किसी के आने जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
21: काजी मिथ्या कथा बोले चातुरी करार के चेष्टा करबेन ना, जादेर जेते हय जान, जा पड़े থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004 এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 1997 তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি, 2026 নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি।
12: टीएमसी से इस्तीफे के बीच कोयल मलिक की बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबरों ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज कर दी हैं।
1: वहाँ जो लोग चुन के आए उनकी पार्टी में अलग अलग उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस भावना से दुखी होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो?
12: राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के इस्तीफा देने की बात करें तो कोयल मलिक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो गई हैं। कोयल से पहले सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिकबराय और सुष्मिता देव राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जो अब बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोयल मलिक भी इस राह पर जाने वाली हैं? आज तक ब्यूरो।
11: यह खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पहले कागज पर चलता सरकारी अस्पताल दिखाया गया, हकीकत में वो खाली मैदान था। अब टीचर को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज कागज पर चलते हुए मिले हैं। कहीं खेत में बीएड कॉलेज का पता दर्ज किया गया है, कहीं एक ही जमीन पर तीन तीन संस्थान दिखा दिए गए हैं। जांच में सवाल उठा तो उसका भी रास्ता फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया।
2: इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर एक कॉलेज दिख रहा होगा, कॉलेज में पढ़ते वो युवा दिख रहे होंगे जो भविष्य में टीचर बनेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपको तो कॉलेज दिख नहीं रहा, अगर आपको यहाँ मैदान में गाय भैंस दिख रही है तो गलती आपकी नहीं।
3: अब कागजों में तो यहाँ पर होना चाहिए श्रीराम कॉलेज, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आपको सिवाय इस जमीन के और कुछ नहीं मिलेगा। इस जमीन पर अगर आप देखें तो आपको मवेशी घास चरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन कागजों के मुताबिक यहाँ पे श्रीराम कॉलेज होना चाहिए, खसरा नंबर 148/149। अब नियम के मुताबिक, यानी जो नियम बताए गए हैं उसके मुताबिक, तो यहाँ से हर साल करीब 100 छात्र बीएड की डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन जिस जमीन पे अगर आप देखें तो इस जमीन पर फिलहाल घास के, जंगली झाड़ियों के और इन पत्थरों के और कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन श्रीराम कॉलेज जिस जमीन पे होने का दावा किया जा रहा है, कॉलेज के साथ साथ यहाँ लेबोरेटरी, क्लासरूम्स, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिवाय ज़मीन के और उन ज़मीन पर चरते मवेशियों के आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है फिर?
4: ये तो खेती है साहब, श्रीराम कॉलेज तो नहीं है यहाँ।
3: कॉलेज नहीं है? कभी था?
4: नहीं, नाम तो चल रहा है। अच्छा। मगर कॉलेज नहीं है।
3: अच्छा, सिर्फ नाम ही चल रहा है।
4: हाँ।
2: इसी खाली मैदान के बगल में बगलामुखी ग्रुप का बोर्ड दिखता है, यहाँ कागज पर मिलेनियम कॉलेज और दूसरा बगलामुखी कॉलेज दर्ज है, लेकिन पता चला कि कागज का केवल ढांचा है, न छात्र छात्रा है, न पढ़ाई लिखाई, 5 साल से कॉलेज बंद।
3: बगल का एक और प्लॉट है जहाँ पे बगलामुखी कॉलेज है, यह हम आपको दिखाते हैं। इसी ठीक प्लॉट के बगल में बगलामुखी कॉलेज का ये गेट भी लगा हुआ है, यहाँ से भी जो है छात्र पढ़ के बीएड की डिग्री लेके निकल रहे हैं। तो आपसे जानते हैं, ये बगलामुखी कॉलेज चालू है?
4: ये नहीं है, बंद है।
3: ये बंद है?
4: हाँ, कोरोना से।
3: कोरोना से बंद है?
4: हाँ।
3: मतलब 2020 में आया था कोरोना। हाँ। और 2021 में दूसरी लहर। हाँ। मतलब 5-6 साल हो गए
4: और का, जब से बंद है।
3: यहाँ पे कोई बच्चा आता है?
4: नहीं आता।
3: कोई बस आती हो?
4: नहीं नहीं, कुछ नहीं आती।
3: तो क्या है, ताला लगा हुआ है क्या?
4: ताला नहीं, वो तो बंद ही है, वो तो कछु नहीं दिख रहा है, बच्चे गार्ड अकेले रहता है।
2: आज तक संवाददाता रमेश पाल सिंह इस बगलामुखी कॉलेज के भीतर भी गए, सब कुछ खाली मिला, बस एक सिलाई सिखाने वाला केंद्र मिला। इसके बाद संवाददाता रमेश पाल भोपाल के बावड़िया कला इलाके में पहुंचे, यहाँ सेवियर कॉलेज नाम का बीएड ट्रेनिंग सेंटर है, जो एक स्कूल की इमारत में चलता मिला। ऊपर से स्थानीय मोहल्ले की सोसाइटी का ऑफिस भी इसी कैंपस में है।
3: ये जो सेवियर कॉलेज है, ये दरअसल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है, और नीचे स्कूल लगता है और बाकी की जो इमारत है इसमें यहाँ पे कॉलेज लगता है। और ये पूरा कॉलेज का आप प्रीमिसेस देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रीमिसेस नहीं है, और साथ ही में इसी प्रीमिसेस के अंदर ये यहाँ की जो एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है, यानी इलाके की जो सोसाइटी का ऑफिस है, वो इसी कॉलेज के परिसर में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा परिसर नहीं है, करीब 900 स्क्वायर मीटर का ये परिसर है, जबकि नियमों के मुताबिक ये 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए था। क्या आप लोगों को फिर कहा गया है सेकंड इंस्पेक्शन के बाद, आप लोगों को मान्यता दी गई है या फिर अभी वो होल्ड पे है?
24: नहीं, दे दी गई है। जो सेकंड इंस्पेक्शन के बाद जो कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करा, तो उसके बाद उनकी जो मीटिंग हुई है, इसी की मीटिंग, उसमें हमारे इसको मान्यता दे दी गई है, पॉजिटिव है।
2: असल में एक खेल है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के तहत 129 बीएड कॉलेज, 2 सरकारी, 127 निजी कॉलेज,
0: जिनकी जांच में 25 कॉलेज में कमी मिली, 5 में गंभीर गड़बड़ी, 2 कॉलेज पते पर नहीं मिले, 3 कॉलेज कहीं और चलते मिले। बावजूद इसके 125 निजी बीएड कॉलेज को नोटरी पर हलफनामा देकर वापस खोल दिया गया। सवाल है कि क्या हवा हवाई बीएड कॉलेज से केवल फीस लेकर डिग्री बट रही है और जिन टीचर को बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रही। केवल बीएड की डिग्री लेकर जैसे कॉलेज का अता पता नहीं, वैसे ही योग्यता का भी कुछ अता पता नहीं है।
5: जो शासन के मापदंड है बीएड कॉलेज के लिए, कितने स्क्वायर फीट की का कॉलेज होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, वो कोई भी स्पेसिफिकेशन, 90% कॉलेज कोई स्पेसिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं जिनको मान्यता दी गई। साल में हर कॉलेज को 2-2.5 करोड़ की इनकम होती है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हवन पूजन में लग जाता है।
11: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार 5वें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
6: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार 5वें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और कीश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
11: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه، قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بحثی
0: एक अंतरिम समझौते के जरिए इस समुद्री मार्ग को खोला जाना था, लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनेई के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: با هم بتونیم که این تنگه رو مدیریت کنیم یک لحظه از جهت میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو۔ دشکوں کے پرتیبندھوں اور سنگھرشوں سے جوج رہی ایران کی بیمار ارتھویوستھا کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے ہیں۔ आज तक ब्यूरो।
3: बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव के बारे में, जहां लगातार पांचवें दिन ईरान और अमेरिका की ओर से जोरदार हमले किए गए। वहीं अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप अब ग्राउंड हमले की तैयारी में है।
4: ईरान पर अमेरिकी सेनाओं की बमबारी जारी। लगातार पांचवें दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हुर्मुज के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तेल टैंकरों पर हमले को लेकर सीज फायर टूटने के बाद अमेरिकी सेनाओं का ईरान पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के बंदर अब्बास, चाबहार, हिंगाम, केशम और कीश द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के दूसरे दौर का ऑपरेशन जारी है और उनकी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिकी हमलों से बदला लेने के लिए ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। IRGC ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक के बाद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस को निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि वो ठीक से पेश आए। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग का असर दुनिया पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अब एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा। आज तक ब्यूरो।
3: अब सारी लड़ाई हॉर्मुज पर कब्जे की है। अमेरिका ने एक बार फिर से हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग जहां ईरान को माली हालत को लेकर चिंताओं में है, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। तेहरान से इस खास रिपोर्ट को देखिए।

0: तेहरान का ऐतिहासिक आजादी स्क्वायर और यहां की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस सामान्य हलचल के पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन छिपी है। सड़कों पर लगे तीखे बैनर और अमेरिका विरोधी पोस्टर तेहरान के गुस्से को बयान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेटरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकने को तैयार नहीं। स्थानीय अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही हैं कि होर्मुज पर केवल ईरान का हक है, लेकिन प्रतिबंधों की मार झेल रहे आम लोगों के लिए ये नई नाकेबंदी एक बड़ी आर्थिक आफत बनकर आई है।
1: طبیعتاً خب جای نگرانی داره و واقعاً روی اقتصاد کشور تاثیر خیلی منفی داره این قضیه، قضیه محاصره که ما نتونیم حالا نفت بفروشیم، نتونیم چیزی وارد کنیم. بحث
0: एक अंतरिम समझौते के जरिए इस समुद्री मार्ग को खोला जाना था, लेकिन अमेरिकी सेना की निगरानी वाले रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। तेहरान की सड़कों पर सर्वोच्च नेता खामेनी के पोस्टर लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं।
2: हम बतानीम के इन तंगे रो मदीरियत कनीम एक लहजे अज जहत میهن پرستانه به نفع ماست و میتونیم یکم این زورگویی آمریکا رو واقعا کم.
0: امریکا نے اس سمندری راستے کو بل پوروک کھولنے کی دھمکی دی ہے، لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے واشنگٹن کو بھاری سینیہ طاقت جھونکنی ہو۔ دشکوں کے پرتیبندھوں اور سنگھرشوں سے جوج رہی ایران کی بیمار ارتھ ویوستھا کے لیے آنے والے دن بے حد مشکل ہونے والے ہیں۔ आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज राजनाथ सिंह के घर पर होगी एनडीए की बैठक। खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, संशोधन प्रस्ताव पर ऑल पार्टी मीट की मांग। पंजाब के जलंधर में प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रैली, कहा बीजेपी की तरफ से आशा भरी नजरों से देख रहे हैं यहां के लोग। हरियाणा के जींद में भी सभा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर को लेकर जारी है सियासत। एसपी